हाँ चालू हो गया, देखिएगा।

सुप्रभात। मीडियम वेव 374.5 मीटर अर्थात 801 किलोहर्ट्ज पर एवं न्यूज ऑन एयर ऐप पर आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। आज रविवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की तीसरी तिथि तदनुसार 24 मई सन 2026। इस समय सुबह के 5:58 हुए हैं। हमारी आज की प्रथम सभा अब आरंभ होती है।

हम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में हिंदी में समाचार अब हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। वे क्षेत्रीय और वैश्विक शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों सहित कई विषयों पर चर्चा करेंगे। विदेश मंत्री रूबियो कल क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होने के लिए चार दिन की यात्रा पर भारत पहुंचे। श्री रूबियो ने कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और उन्हें रक्षा, रणनीतिक प्रौद्योगिकी, व्यापार और निवेश तथा ऊर्जा सुरक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग में रही प्रगति के बारे में जानकारी दी। श्री मोदी ने कहा कि भारत और अमेरिका वैश्विक कल्याण के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। प्रधानमंत्री ने शांति प्रयासों के लिए भारत के निरंतर समर्थन की बात दोहराई। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक 26 मई को होगी। बैठक में विदेश मंत्री डॉ. जयशंकर, ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो शामिल होंगे। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका जिस तरह से हिंद प्रशांत क्षेत्र को देखता है उसमें भारत की भूमिका सबसे अहम है। नई दिल्ली में अमेरिकी दूतावास की सपोर्ट एनेक्स बिल्डिंग का उद्घाटन करते हुए श्री रूबियो ने कहा कि भारतीय कंपनियों ने अमेरिका में 20 अरब डॉलर का निवेश किया है।
1: अब हमारे व्यापारिक संबंध और भी बढ़ गए हैं। इसमें भारतीय कंपनियों का अमेरिका में 20 अरब डॉलर से अधिक का निवेश शामिल है। हमने हिंद प्रशांत क्षेत्र में सैन्य अभ्यासों के माध्यम से अपनी सुरक्षा साझेदारी को और भी मजबूत बनाया है। निश्चित रूप से इस महत्वपूर्ण रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए एक व्यवस्थित और सुरक्षित काउंसलर प्रणाली की अत्यंत आवश्यकता है।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में बोइंग कंपनी के वैश्विक लोक नीति और व्यावसायिक रणनीति के कार्यकारी उपाध्यक्ष जेफ शौकी से मुलाकात की। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने विमानन और अंतरिक्ष निर्माण क्षेत्र में भारत अमरीका सहयोग को आगे बढ़ाने के उपायों पर चर्चा की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल कल से भारतीय व्यापार जगत के नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ कनाडा की तीन दिन की यात्रा पर रहेंगे। वाणिज्य मंत्रालय ने बताया कि श्री गोयल ओटावा और टोरंटो में द्विपक्षीय बैठक करेंगे, जिसका उद्देश्य व्यापार, निवेश और भारत कनाडा व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते पर चल रही बातचीत को आगे बढ़ाना है। इस समझौते के लिए नियम और शर्तें इस साल मार्च में प्रधानमंत्री मार्क कार्नी की भारत यात्रा के दौरान तय की गई थी। श्री गोयल की यात्रा के दौरान बातचीत का एक और दौर ओटावा में आयोजित किया जाएगा। दोनों पक्ष इस वर्ष के अंत तक एक संतुलित और आपसी हित के समझौते को जल्द से जल्द अंतिम रूप देने की दिशा में काम कर रहे हैं। भारत रूस सैन्य तकनीकी सहयोग पर अंतर सरकारी आयोग के अंतर्गत भूमि मामलों से जुड़े पांचवें उप कार्य समूह की बैठक कल नई दिल्ली में सम्पन्न हुई। रक्षा मंत्रालय के अपर जन सूचना महानिदेशालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि दोनों पक्षों ने ऑपरेशनल तालमेल और द्विपक्षीय सैन्य क्षमताओं को बढ़ाने के उद्देश्य से सार्थक विचार विमर्श किया। प्रतिनिधिमंडल ने रक्षा सहयोग के नए तरीकों की तलाश के लिए शत्रुजीत ब्रिगेड का भी दौरा किया। सरकार ने विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 के अंतर्गत व्यापक जन परामर्श के लिए मसौदा नियम प्रकाशित किए हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि कोई भी व्यक्ति, हितधारक, संगठन या संस्था 21 जुलाई तक मसौदा नियमों पर आपत्ति या सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना इस वर्ष जुलाई से शुरू हो जाएगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के साथ एक वर्चुअल बैठक के बाद कल कोलकाता में इसकी घोषणा की। राज्य की स्वास्थ्य योजना स्वास्थ्य साथी के अंतर्गत मौजूदा लाभार्थियों को आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया जाएगा। श्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों की संख्या मौजूदा 117 से बढ़ाकर 469 करने के संबंध में केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव भेजा गया है। महाराष्ट्र की नाशिक अदालत में विशेष जांच दल ने टीसीएस कंपनी के एक केंद्र से संबंधित दुष्कर्म और धर्मांतरण मामले में 1500 पन्नों का अभियोग पत्र दाखिल किया है। जांच दल के प्रमुख संदीप मिटके ने बताया कि कल चार आरोपियों मतीन पटेल, निदा खान, दानिश शेख और तौसीफ अतहर के खिलाफ अभियोग पत्र दाखिल किया गया। आईपीएल क्रिकेट में पंजाब किंग्स ने कल लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज 2 मैच खेले जाएंगे। पहले मुकाबले में मुंबई इंडियंस का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

मीडियम वेव पर आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। विचार मंथन। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा है, सफलता की नींव हमेशा असफलता से होकर ही गुजरती है। मीडियम वेव पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से। प्रस्तुत है वंदना। सबसे पहले नमन अपनी मातृभूमि को, जिसके सुरभित परिवेश में हमारा जीवन विस्तार पाता है। इसकी संस्कृति हमारी पहचान है, इसका मान सम्मान हमारा महती कर्तव्य है।

नारायण लाल परमार की लिखी ये देशभक्तिपूर्ण रचना अभी आप सुन रहे थे समूह स्वर में। सदियों से चलायमान ये सृष्टि उस सर्वशक्तिमान ईश्वर की ही देन है और मानव के जीवन की डोर उन्हीं के हाथों संचालित होती है। हम तो बस निमित्त मात्र हैं, कर्ता वही परम पिता ईश्वर हैं।

अभी आप सुन रहे थे ये भक्ति रचना मधुप मुद्गल के स्वर में। जीवन प्रभु का दिया हुआ अनमोल उपहार है, इसे उनके ही स्मरण और सत्कार्यों में लगाना चाहिए। हमारी ऊर्जा, व्यस्तताएं, गतिविधियां सब उन्हीं की देन हैं। अतः प्रभु का नाम स्मरण हमारी दिनचर्या का सबसे आवश्यक हिस्सा होना चाहिए।

अभी आप सुन रहे थे ये भजन अनूप जलोटा के स्वर में। ईश्वर के अनेक मनमोहक रूप हमारे मन मंदिर में बसे हैं। उनका स्मरण हमारी क्षमताओं के एकीकरण में सहायक होता है। उनकी सुंदर छवि हमारे नयनों को शीतलता प्रदान करती है।

0: गोस्वामी तुलसीदास रचित ये भक्ति रचना अभी आप सुन रहे थे पुरुषोत्तम दास जलोटा के स्वर में। इसके साथ ही आज की वंदना अब संपन्न होती है। मीडियम वेव पर आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। प्रकाश किरण के अंतर्गत लीजिए सुनिए जैन ग्रंथ समाधि शतक से पाठ, स्वर श्री दामोदर शास्त्री का।
1: उपास्यात्मानमेवात्मा जायते परमोथवा मथित्वात्मानमात्मा इव जायते ग्निर्यथा तरुः। आत्मा से परमात्मा बनने का ये उपाय है कि इस आत्मा की निरंतर उपासना की जाए। जिस प्रकार वृक्ष की लकड़ियों में परस्पर मंथन करने से आग उत्पन्न हो जाती है, वैसे ही ये संसारी आत्मा ही निरंतर आध्यात्मिक साधना करते करते स्वयं परमात्मा बन जाती है। बहिरंतः परश्चेति त्रिधात्मा सर्वदेहिषु उपेया तत्र परमं मध्योपायाद् बहिस्त्यजेत। इस संसारी प्राणी की आध्यात्मिक यात्रा में तीन पड़ाव होते हैं। पहला है बहिरात्मा, दूसरा है अंतरात्मा और तीसरा अंतिम जो लक्ष्य है वह है परमात्मा। इसलिए साधक को चाहिए कि वह क्रम से बहिरात्मा से अंतरात्मा की स्थिति पर पहुँचे और अंतरात्मा की स्थिति से भी परमात्मा बनने का प्रयास करे। बहिरात्मा शरीरादौ जातात्म भ्रांतिरांतरः चित्त दोषात्म विभ्रांति परमात्मा ति निर्मलः। बहिरात्मा वह प्राथमिक स्थिति है जब प्राणी इस देहादि को आत्मा से भिन्न पदार्थों को आत्मा मान लेता है। इससे ऊपर की स्थिति है अंतरात्मा। इस स्थिति में साधक को राग द्वेष देह आत्मा इन पदार्थों के परस्पर भेद का पूर्ण विज्ञान हो जाता है और सबसे श्रेष्ठ अंतिम स्थिति है परमात्मा पद की। यह सबसे निर्मल और परम शुद्ध स्थिति है। यो न वेत्ति परम देहाद एवमात्मानमव्ययम् लभते सन निर्वाणम तप्त्वापि परमं तपः। जो व्यक्ति देह में और आत्मा में भेद नहीं समझ लेता, वह चाहे कितना भी कठिन तप करे, घोर तपश्चर्या करे, कभी मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। रागद्वेषादिकल्लोलैः अलोलं यन्मनोजलं सपश्यत्यात्मनस्तत्वं सतत्वं नेतरो जनः। परमात्म तत्व का साक्षात्कार वही व्यक्ति कर सकता है जिसके निर्मल मन रूपी जल में पूर्णतः शांति रहती है और वहां रागद्वेष की तरंगे नहीं उठती और मन अत्यंत शांत रहता है, कभी भी विचलित नहीं होता। ऐसा व्यक्ति ही परमात्म तत्व का साक्षात्कार कर सकता है। अविद्याभ्यास संस्कारैः अवसंक्षिप्यते मनः तदेव ज्ञान संस्कारैः स्वतस्तत्वेव तिष्ठते। जो मन अविद्या के संस्कारों से अज्ञान के संस्कारों में पढ़कर सांसारिक विषयों में भटकता रहता है, उसी मन में अगर ज्ञान के संस्कार डाल दिए जाएं, तो वह स्वतः परमात्म तत्व की साधना के लिए स्थिर हो जाता है। इसलिए शास्त्रों का अभ्यास कर ज्ञान के संस्कार मन में डालने चाहिए ताकि परमात्म तत्व की प्राप्ति अत्यंत सरलता से हो जाए।
0: प्रकाश किरण के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे जैन ग्रंथ समाधि शतक से पाठ, स्वर श्री दामोदर शास्त्री का। हम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस गान, गायक स्वर मिताली और भूपेंद्र सिंह का।

पिता के वचन की मर्यादा का पालन करने के लिए श्री राम को वन गमन करना था, किंतु सीता को वन जीवन के कष्ट भोगने देना राजा दशरथ को स्वीकार्य न था। अतः उन्होंने मंत्री सुमंत्र से ये कहा था, यदि दो चार दिनों में वन में घूम फिरकर राम वापस लौटने को तैयार न भी हों, तो वो सीता को अवश्य लौटा लाएं। श्री राम ने कई प्रकार से सीता को अयोध्या वापस लौट जाने की सीख दी, किंतु सीता का एक ही उत्तर था, हे करुणामय और परम ज्ञानी, आप विचार कर देखें, शरीर को छोड़कर छाया अलग कैसे हो सकती है। मंत्री सुमंत्र से उन्होंने कहा, आप पिता और ससुर के समान मेरे हितैषी हैं, आपकी बात का खंडन करना मुझे शोभा नहीं देता, किंतु अत्यंत आर्त होकर मैं आपके सम्मुख आई हूं। पति के चरण कमलों के अभाव में जगत के सभी नाते रिश्ते मेरे लिए व्यर्थ हैं,

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान। हम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, कृषि सामयिकी में आज का विषय है शुष्क बागवानी। लीजिए सुनिए इस विषय पर जानकारी।
1: शुष्क उद्यानिकी से मतलब ये होता है कि फलदार पौधों की या फलदार पेड़ों की वैज्ञानिक बागवानी, जिन्हें सामान्य बरसात से प्राप्त पानी और भूमि में अवशेष नमी से शुष्क परिस्थितियों में भी कम से कम सिंचाई प्रदान करके अच्छा उत्पादन लिया जा सकता हो। इन फलदार वृक्षों में प्रमुख गुण यह होना चाहिए कि इनकी वानस्पतिक वृद्धि वर्षा के प्रारंभ होने पर शुरू हो जाए और गर्मी का मौसम आते आते इनके फल पककर तैयार हो जाए। ऐसे फलों में तो आप बेर लगा सकते हैं, आंवला, अनार, सीताफल लगा सकते हैं। बेर जो है समशीतोष्ण जलवायु का वृक्ष है। फलों के विकास और पकने के लिए शुष्क जलवायु की आवश्यकता होती है। जलवायु की प्रतिकूल परिस्थितियों को सहन करने की इसमें अद्भुत क्षमता होती है। इसकी जो पत्तियां होती हैं अभी से लेकर जून तक झड़ जाती हैं और पौधे सुषुप्तावस्था में चले जाते हैं। इसको लगाने के बाद जड़ें शीघ्र ही काफ़ी गहराई तक चले जाती हैं। इस प्रकार जमीन की गहरी सतह से पानी आसानी से ये ले सकता है, इसलिए शुष्क क्षेत्रों में इसकी बागवानी आसानी से की जा सकती है। जुलाई में जब वर्षा आरंभ होती है इसमें नई वृद्धि शुरू हो जाती है। फूल नवंबर में सर्दी होने पर आने लगते हैं और गर्मी आते आते फल पककर तैयार हो जाते हैं। इसी प्रकार आंवला है, ये भी समशीतोष्ण जलवायु में उगने वाला वृक्ष है। पानी की कमी वाले शुष्क क्षेत्रों में भी इसे सुगमतापूर्वक उगाया जा सकता है। इसके फूल मार्च अप्रैल में आते हैं, किंतु फलों की वृद्धि वर्षा प्रारंभ होने के साथ साथ शुरू होती है। मौसम शुष्क होने के पहले ही फल पककर तैयार हो जाते हैं, इसलिए शुष्क क्षेत्रों में आंवले के पौधों को लगाना चाहिए। अनार की बात हमने की थी। अनार का पौधा काफी हद तक सूखे के प्रति सहनशील है, इन्हें भी शुष्क जलवायु वाले क्षेत्रों में आसानी से उगाया जा सकता है। अनार के मीठे और स्वादिष्ट फल उगाने के लिए गर्म वातावरण होना जरूरी होता है। फल की बढ़ोतरी और पकने के समय में लगभग 40 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान इसमें अच्छा पाया जाता है। 4 से 5 साल के बाद ये फलना शुरू होता है और पूरा विकसित जो पेड़ होता है इसमें लगभग 100 से 150 फल प्राप्त हो जाते हैं। इसके भंडारण और विपणन में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होती है। अब बात करें यदि सीताफल की, तो सीताफल भी एक गर्म और शुष्क जलवायु वाला फल है। दिसंबर से फरवरी तक यह सुषुप्ता अवस्था में रहता है। वसंत ऋतु में नई पत्तियां आती हैं, इसके बाद फूल लगते हैं। फूल आते समय शुष्क मौसम लाभदायक हो जाता है। इसकी भंडारण क्षमता अन्य फलों की अपेक्षा कम है। परिवहन में भी इसको सावधानीपूर्वक ले जाना होता है। यद्यपि बेर, आंवला, अनार और सीताफल जो कि हमने अभी आपको बताया, ये सभी प्रकार की पर्याप्त गहराई वाली भूमि में उगा सकते हैं इसको, किंतु उपजाऊ बलुई दोमट मिट्टी इसके लिए अच्छी होती है। अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए इनकी उन्नत प्रजातियां लें ताकि आपको उत्पादन अच्छा मिल सके। वैसे तो अधिकांश पौधों को बीजों द्वारा लगाया जाता है, किंतु इनमें घटिया गुणवत्ता वाली कम पैदावार प्राप्त होने के कारण बेर में पैबंदी या कलमी पौधों का प्रचलन अब धीरे धीरे बढ़ गया है और आप भी इसको उपयोग कर सकते हैं। आंवले के कलमी पौधे चश्मा चढ़ाकर या भेंट कलम से, अनार में कलम द्वारा, सीताफल के पौधे भेंट कलम या चश्मा चढ़ाने की विधि से तैयार किए जाते हैं। अभी इस समय कायक विधि से बड़े पैमाने पर उन्नत जाति के पौधे स्वयं तैयार आप नहीं कर सकते, तो इसको आप किसी विश्वसनीय शासकीय नर्सरी या फिर विश्वविद्यालय से खरीदें। बगीचा लगाने के लिए खेत को जोतकर समतल कर लेना चाहिए। इसके बाद अभी जो मौसम चल रहा है, गर्म चल रहा है, तो फल वृक्ष की प्रजाति के अनुसार 1 घन मीटर यानी 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर गहरा गड्ढा उचित दूरी पर बना लें। ऊपर की आधी मिट्टी गड्ढे की एक ओर

0: और नीचे की आधी मिट्टी दूसरी ओर रखना चाहिए। इसको एक महीने तक खुला छोड़ दें और गड्ढों को बरसात में 25 से 30 किलो गोबर की खाद, जो कि अच्छी पकी हुई हो, या कंपोस्ट, 500 ग्राम सुपर फॉस्फेट, 250 ग्राम अमोनियम सल्फेट और 100 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटास और पाउडर मिला दें ताकि दीमक का प्रकोप ना हो।
1: अभी आप सुन रहे थे कृषि सामी की। मीडियम वेव 374.5 मीटर अर्थात 801 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का जबलपुर केंद्र है। लीजिए सुनिए कार्यक्रम विवरण।

आज की दोनों सभा के मुख्य मुख्य कार्यक्रमों की जानकारी इस प्रकार है। आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रम सुबह 10:10 पर विश्व दर्पण स्पॉटलाइट आज रात्रि 9:15 पर और रात्रि 10:00 संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे।

आकाशवाणी भोपाल से हम रिले करेंगे सिंधी कार्यक्रम सिंधियत जी सुरहान आज सुबह 9:30 पर। डगर विकास की आज रात्रि 8:15 पर और सुर्खियों में रात्रि 8 बजे अनुप्रसारित किया जाएगा आकाशवाणी भोपाल से।

आज रात्रि 9:30 पर आप सुनेंगे रूपक और कृषि जगत कार्यक्रम में शाम 7:21 पर हम प्रसारित करेंगे भेंट वार्ता, जिसका विषय है मुर्गी पालन के लिए चूजों का प्रबंधन। जानकारी देंगे डॉक्टर आमिर खान।

सुगम संगीत में आज की कलाकार हैं रागिनी तैलंग, शाम 6:45 पर, और शाम 6:30 पर लोक संगीत में आप सुनेंगे शहजाद सिंह ठाकुर के गाए बुंदेली लोकगीत।

0: आज सुबह 9 बजे लोक रसधार कार्यक्रम में कलाकार हैं सारिका नायक और डॉक्टर बैजनाथ गौतम। बच्चों का कार्यक्रम मुस्कान आप सुनेंगे आज दोपहर 2:30 पर, सारंगा सुबह 10:20 पर। और सुबह 7:20 पर गुड मॉर्निंग जबलपुर कार्यक्रम हम प्रसारित करेंगे। अभी आप सुन रहे थे आज की दोनों सभा में अनुप्रसारित और प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। हम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में संस्कृत में समाचार अब हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे।
1: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः दिव्यानन्द झा। अथ वार्ताः। नवदिल्ल्यां हैदराबाद हाउस स्थले अद्य विदेशमंत्री डॉक्टर सुब्रह्मण्यम जयशंकरः अमेरिका देशीयेन विदेश सचिवेन मार्को रूबियो इत्यनेन समं द्विपाक्षिक संवादं करिष्यति। एतौ क्षेत्रीय वैश्विक शांति सुरक्षा संबद्धान विषयान समेत्य अनेकेषु भिन्न विषयेषु चर्चां करिष्यतः इति आशास्ते। अमेरिका विदेश मंत्री गतदिने प्रातः 4-दिवसीय यात्रा प्रसंगे भारतं संप्राप्तः। द्विपक्षीय संबंधान सुदृढ़ीकर्तुं अपि च वाणिज्य रक्षोर्जा सुरक्षा प्राविधिकी हिंद प्रशांत व्यूह रचनेत्यादिषु क्षेत्रेषु सहयोग विस्तारार्थं तस्य ईशा भारत यात्रा नितरां महत्वाधायिनी वर्तते। गतवासरे सः प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना सह भारतामेरिका व्यापक वैश्विक रणनीति सन्धिं सुदृढयितुं चर्चाम् अकरोत्। प्रधानमन्त्री कार्यालयस्य विज्ञप्त्यनुसारि अमेरिका विदेश मन्त्रिणा रक्षा प्राविधिकी व्यापार निवेशोर्जा सुरक्षा संपर्क शिक्षा पारस्परिक जनसंबंधादिषु विविध क्षेत्रेषु द्विपक्षीय सहयोगस्य निरंतर प्रगतेः विषये प्रधानमंत्री संसूचितः। अस्मिन् अवसरे श्रीमोदी शांति प्रयासेभ्यः भारतस्य सतत समर्थनं पुनरुदीरितवान् अपि च संभाषण कूटनीति माध्यमेन विवादानां शांतिपूर्ण समाधानाय पुनरेकदा आह्वानं कृतवान्। वाणिज्योद्योग मंत्री पीयूष गोयलः अद्यारभ्य भारतीय व्यापार नेतृणां एकेन प्रतिनिधिमंडलेन सह कनाडा देशस्य 3-दिवसीय यात्रायां भविष्यति। वाणिज्य मंत्रालयेन सूचितं यत् श्री गोयलः व्यापार निवेश भारत कनाडा व्यापकार्थिक सहभागिता वार्तालापं प्रवर्तयितुं ओटावा टोरंटो नगरयोः द्विपक्षीय समागमं करिष्यति। संसदीय कार्य सूचना प्रसारण राज्यमंत्री एल मुरुगुनः अवदत् यत् प्रशासनं 47-2000 वर्षपर्यन्तं विकसितं भारतं इति स्वप्नं साकारयितुं प्रतिबद्धमस्ति। चेन्नई स्थिते ICF इति संस्थाने आयोजितं आजीविका मेलनं संबोधयन् सः उक्तवान् यत् प्रधानमन्त्रिणः नेतृत्वे देशः आधारभूत संरचना विकासे वृत्त्यवसराणां वृद्धौ व्यापार सुगमतायां च तीव्रगत्या प्रगतिं करोति। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृत जगता सम्बद्धैः विभिन्नैः क्रियाकलापैः संवलितस्य संस्कृत साप्ताहिकीति विशिष्ट कार्यक्रमस्य प्रसारणम् आकाशवाण्याः FM गोल्ड प्रवाहिकातः अद्य मध्याह्ने 12:30 भविष्यति। भवन्तः सर्वे यथाकालं श्रोतुं प्रभवन्ति। भारतीयर्तु विभागेन अद्य पूर्वीयोत्तर प्रदेशाय, पूर्वीय मध्यप्रदेशाय, विदर्भाय च अतितापपरा रक्तवारणिकी संचेतना प्रसारिता। भारतस्य उत्तरपश्चिमीय मध्य पूर्वीय दिग्विभागेषु कतिपय क्षेत्रेषु समाना एव स्थितिः आगामी सप्तदिवस पर्यन्तं भविष्यति इत्यपि विभागेन सूचितम्। अन्ते क्रीडावार्तासु, इंडियन प्रीमियर लीग क्रिकेट स्पर्धा मालिकायां गतरात्रौ लखनऊ नगरे इकाना क्रिकेट क्रीडांगणे आयोजिते द्वंद्वे श्रेयस अय्यरेण अर्जितानां एकोत्तर शत धावनांकानां बलेन पंजाब किंग्स दलेन लखनऊ सुपर जायंट्स दलं सप्तभिः क्रीडकैः पराजितम्। क्रीडान्ते अय्यरः स्पर्धा पुरुषः घोषितः। अद्यतने द्वंद्वद्वये प्रथमं मुंबय्याम् अपराह्णे सार्धत्रिवादने मुंबई इंडियंस दलं राजस्थान रॉयल्स दलेन स्पर्धिष्यते, ततः सायं कोलकातायां कोलकाता नाइट राइडर्स दिल्ली कैपिटल्स दलयोः द्वंद्वं भविष्यति। इति वार्ताः।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवली निगम। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। वे क्षेत्रीय और वैश्विक शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों सहित कई विषयों पर चर्चा करेंगे। विदेश मंत्री रूबियो कल क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होने के लिए चार दिन की भारत यात्रा पर पहुंचे। श्री रूबियो ने कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और उन्हें रक्षा, रणनीतिक प्रौद्योगिकी, व्यापार और निवेश तथा ऊर्जा सुरक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग में हो रही प्रगति के बारे में जानकारी दी। श्री मोदी ने कहा कि भारत और अमरीका वैश्विक कल्याण के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। प्रधानमंत्री ने शांति प्रयासों के लिए भारत के निरंतर समर्थन की बात दोहराई। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक 26 मई को होगी। बैठक में विदेश मंत्री डॉ. जयशंकर, ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो शामिल होंगे। इस बीच श्री रूबियो ने कहा है कि अमेरिका जिस तरह से हिंद प्रशांत क्षेत्र को देखता है उसमें भारत की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में अमेरिकी दूतावास की सपोर्ट एनेक्स बिल्डिंग का उद्घाटन करते हुए श्री रूबियो ने कहा कि भारतीय कंपनियों ने अमेरिका में 20 अरब डॉलर का निवेश किया है।
3: अब हमारे व्यापारिक संबंध और भी बढ़ गए हैं। इसमें भारतीय कंपनियों का अमेरिका में 20 अरब डॉलर से अधिक का निवेश शामिल है। हमने हिंद प्रशांत क्षेत्र में सैन्य अभ्यासों के माध्यम से अपनी सुरक्षा साझेदारी को और भी मजबूत बनाया है। निश्चित रूप से इस महत्वपूर्ण रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए एक व्यवस्थित और सुरक्षित काउंसलर प्रणाली की अत्यंत आवश्यकता है।
2: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में बोइंग कंपनी के वैश्विक लोक नीति और व्यावसायिक रणनीति के कार्यकारी उपाध्यक्ष जेफ शौकी से मुलाकात की। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने विमानन और अंतरिक्ष निर्माण क्षेत्र में भारत अमरीका सहयोग को आगे बढ़ाने के उपायों पर चर्चा की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल कल से भारतीय व्यापार जगत के नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ कनाडा की तीन दिन की यात्रा पर रहेंगे। वाणिज्य मंत्रालय ने बताया कि श्री गोयल ओटावा, टोरंटो में द्विपक्षीय बैठकें करेंगे जिसका उद्देश्य व्यापार, निवेश और भारत कनाडा व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते CEPA पर बातचीत को आगे बढ़ाना है। इस समझौते के नियम और शर्तें इस साल मार्च में प्रधानमंत्री मार्क कार्नी की भारत यात्रा के दौरान तय की गई थी। दोनों देशों का साझा लक्ष्य वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाकर 70 अरब कैनेडाई डॉलर तक पहुंचाना है। भारत रूस सैन्य तकनीकी सहयोग पर अंतर सरकारी आयोग के अंतर्गत भूमि मामले से जुड़े पांचवें उप कार्य समूह की बैठक कल नई दिल्ली में संपन्न हुई। रक्षा मंत्रालय के अपर जनसूचना महानिदेशालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि दोनों पक्षों ने ऑपरेशनल तालमेल और द्विपक्षीय सैन्य क्षमताओं को बढ़ाने के उद्देश्य से सार्थक विचार विमर्श किया। प्रतिनिधिमंडल ने रक्षा सहयोग के नए तरीकों की तलाश के लिए शत्रुजीत ब्रिगेड का भी दौरा किया। सरकार ने विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 के अंतर्गत व्यापक जन परामर्श के लिए मसौदा नियम प्रकाशित किए हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि कोई भी व्यक्ति, हितधारक, संगठन या संस्था 21 जुलाई तक मसौदा नियमों पर आपत्ति या सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना इस वर्ष जुलाई से शुरू हो जाएगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के साथ एक वर्चुअल बैठक के बाद कल कोलकाता में ये घोषणा की। राज्य की स्वास्थ्य योजना स्वास्थ्य साथी के अंतर्गत मौजूदा लाभार्थियों को आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया जाएगा। महाराष्ट्र की नाशिक अदालत ने विशेष जांच दल ने TCS कंपनी के एक केंद्र से संबंधित दुष्कर्म और धर्मांतरण मामले में 1500 पन्नों का अभियोग पत्र दाखिल किया है। जांच दल के प्रमुख संदीप मिटके ने बताया कि कल चार आरोपियों मतीन पटेल, निदा खान, दानिश शेख और तौसीफ उतर के खिलाफ अभियोग पत्र दाखिल किया गया। IPL क्रिकेट में पंजाब किंग्स ने कल लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हराया। प्रतियोगिता में आज 2 मैच खेले जाएंगे। पहले मुकाबले में मुंबई इंडियंस का सामना राजस्थान रॉयल्स से दोपहर 3:30 बजे से होगा। दूसरा मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच शाम 7:30 बजे से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: दिस इज आकाशवाणी, the news read by Anuja Kumar. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar will hold bilateral talks with the US Secretary of State Marco Rubio at Hyderabad House in New Delhi today. They will discuss a wide range of issues, including regional and

0: त्विशा शर्मा की मौत के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने लिया स्वतः संज्ञान, चीफ जस्टिस सूर्यकांत की पीठ करेगी सुनवाई, और प्रदेश के 42 जिलों में लू चलने की चेतावनी। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश में सांस्कृतिक विरासत को सहेजने और जनमानस को आध्यात्मिक रूप से जोड़ने के लिए प्रत्येक नगर में गीता भवन के निर्माण की दिशा में कार्य किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में विकास कार्यों के साथ साथ आध्यात्मिक और सांस्कृतिक चेतना का भी विस्तार हो रहा है। मुख्यमंत्री ने कल सिंगरौली महोत्सव के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार प्रदेश के हर जिले के विकास के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। उन्होंने सिंगरौली को प्रदेश का सबसे विकसित और आधुनिक शहर बनाने की घोषणा की।
1: हमने अपने बच्चों के प्रोत्साहन को देने के लिए उनके साथ भी समय बिताया। विकास के लगभग 550 करोड़ के अलग अलग कामों का लोकार्पण किया। 1000 करोड़ से ज्यादा के कामों की स्वीकृति सिंगरौली में हुई है। आने वाले समय में सिंगरौली सुव्यवस्थित शहर में सबसे अच्छा शहर बने, इस दिशा में हम काम कर रहे हैं।
0: इससे पहले डॉक्टर यादव ने 513 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। इसके साथ ही प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना और सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के हितग्राहियों को राशि का अंतरण किया। बैढ़न में लगभग 12 करोड़ की लागत से निर्मित होने वाले आधुनिक खेल परिसर का भूमि पूजन भी मुख्यमंत्री ने किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत पहले रक्षा उपकरणों का आयात करता था, लेकिन आने वाले कुछ समय में यह रक्षा उत्पादों का एक प्रमुख निर्यातक बनकर उभरेगा। उन्होंने कल महाराष्ट्र के शिरडी स्थित सांवली विहिर औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित तोप के गोले बनाने वाले संयंत्र का उद्घाटन करते हुए कहा कि रक्षा क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी लगभग 30-35% है, जिसे भविष्य में बढ़ाकर 50% किया जाएगा।
2: सेल्फ रिलायंट इंडिया, आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के लिए प्राइवेट सेक्टर की एनर्जी का उपयोग आवश्यक है। इसलिए पॉलिसी रिलेटेड रिफॉर्म्स, नीतिगत सुधार भी किए गए। FDI को, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को लिबरलाइज किया गया। पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट लाई गई। हम लोगों ने एक लंबी लिस्ट मोर देन 5000 आइटम्स की तैयार की है। हम उनको निर्धारित समय के अंदर हम भारत की धरती पर बनाएंगे। हम दुनिया के किसी देश से उसको इम्पोर्ट नहीं करेंगे।
0: केंद्र सरकार ने जन परामर्श के लिए विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 2025 के अंतर्गत मसौदा नियम प्रकाशित किए हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा है कि कोई भी व्यक्ति, हितधारक, संगठन या संस्था अगले महीने की 21 तारीख तक इन मसौदा नियमों पर आपत्तियां या सुझाव प्रस्तुत कर सकता है। विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 20 वर्ष पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के स्थान पर लाया गया है। नए अधिनियम का उद्देश्य वित्तीय वर्ष में 100 दिन के रोजगार की कानूनी गारंटी को बढ़ाकर 125 दिन करना है। यह इस वर्ष 1 जुलाई से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू हो जाएगा। प्रदेश न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अब तक 13,10,000 किसानों से गेहूं का उपार्जन कर देश में पहले स्थान पर है। अब तक लगभग 100 लाख मीट्रिक टन गेहूं का उपार्जन कर प्रदेश पंजाब के बाद दूसरे स्थान पर है। गेहूं का उपार्जन अभी भी जारी है। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि COVID-19 की अवधि को छोड़कर विगत 10 वर्षों में इस वर्ष समर्थन मूल्य पर गेहूं का सर्वाधिक उपार्जन किया गया है। किसानों को अब तक उपार्जित गेहूं का 20,680 करोड़ रुपए का भुगतान भी किया जा चुका है। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
3: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या newsonair ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। भोपाल में सेवानिवृत्त जज की बहू त्विशा शर्मा की संदिग्ध परिस्थिति में मौत के मामले में उच्चतम न्यायालय ने कल स्वतः संज्ञान लिया है। मामले में सोमवार को देश के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत की पीठ सुनवाई कर सकती है। त्विशा के शव का आज एम्स भोपाल में दोबारा पोस्टमार्टम होगा। इसके लिए दिल्ली एम्स की 4 सदस्यीय विशेष फॉरेंसिक टीम हाईटेक इक्विपमेंट के साथ राज्य सरकार के चार्टर्ड विमान से भोपाल पहुंच गई। इससे पहले आरोपी समर्थ सिंह को कल अदालत ने 7 दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया था। जलगंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत गंगा दशमी पर कल प्रदेश में कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। राज्य शासन ने समस्त जिलों में गंगा दशमी पर्व पर आयोजित गतिविधियों एवं कार्यक्रम में सहभागिता करने वाले मुख्य अतिथियों की सूची जारी की है। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल रीवा में और अन्य

मंत्री जिलों में आयोजित कार्यक्रमों में शामिल होंगे। श्योपुर में भी कल गंगा दशहरा के उपलक्ष्य में जिले भर में दीपदान, जल स्रोतों का पूजन, कलश यात्राओं के आयोजन के साथ रामेश्वर धाम त्रिवेणी संगम पर मुख्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सीधी जिले के ग्राम कसीहवा में शॉर्ट सर्किट से हुए एक हादसे में 3 बच्चों की मृत्यु की घटना पर शोकाकुल परिजनों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की हैं। उन्होंने कहा कि मृत बच्चों के परिजनों को राज्य सरकार की ओर से 6-6 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। उन्होंने बताया कि जिला रेडक्रॉस सोसाइटी सीधी की ओर से परिजनों को 20-20 हज़ार रुपये की तत्काल आर्थिक सहायता राशि दे दी गई है। वहीं रायसेन जिले के गैरतगंज तहसील के सागौर ग्राम में कल 3 बालिकाओं की कुएं में डूबने से मौत हो गई। वे गांव के पास एक कुएं पर नहाने गई थीं। पीड़ित परिवारों को 4-4 लाख रुपये की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई है। अब रुख करते हैं खेल की खबरों का। रांची में 25 मई तक आयोजित 29वीं नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश एथलेटिक्स अकादमी की खिलाड़ी नितिका आकरे ने महिला पोल वॉल्ट स्पर्धा में रजत पदक जीता है। नितिका ने 4.10 मीटर की शानदार छलांग लगाकर न केवल प्रतियोगिता में दूसरा स्थान प्राप्त किया बल्कि एशियन गेम्स 2026 के लिए निर्धारित क्वालिफाइंग मार्क भी हासिल कर लिया है। इसके साथ ही उन्होंने 9 से 12 जुलाई तक ऑर्डोस चीन में आयोजित होने वाली प्रथम एशियन अंडर 23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए भी क्वालिफाई किया है। खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने नितिका आकरे को इस उपलब्धि पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। वहीं आईपीएल में लखनऊ में खेले गए मुकाबले में कल पंजाब किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। लखनऊ सुपर जायंट्स के 197 रन के लक्ष्य को पंजाब किंग्स ने 18 ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर ही हासिल कर लिया। प्रतियोगिता में आज 2 मैच खेले जाएंगे। मुंबई इंडियंस का सामना राजस्थान रॉयल्स से मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में 2:30 बजे और दूसरा मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच कोलकाता के ईडन गार्डन्स में शाम 7:30 बजे शुरू होगा। अब रुख करते हैं मौसम का। प्रदेश में नौतपा शुरू होने से पहले ही भीषण गर्मी ने लोगों का हाल बेहाल कर दिया है। राज्य के ग्वालियर, चंबल, सागर, रीवा और उज्जैन संभाग समेत कई इलाके हीट वेव की चपेट में हैं। गर्मी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मौसम विभाग ने प्रदेश के 42 जिलों में लू चलने की चेतावनी जारी की है। छतरपुर जिले का नौगांव सबसे गर्म रहा, जहां पारा 46.8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। इसके अलावा खजुराहो में 46.4 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक 31 मई तक प्रदेश में गर्मी अपने चरम पर रह सकती है। गुना जिले में भी गर्मी का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है, जहाँ पर तापमान 43 डिग्री दर्ज किया गया। अब कुछ समाचार संक्षेप में। भोपाल में भेल दशहरा मैदान पर कल मशहूर संगीतकार एआर रहमान का लाइव कॉन्सर्ट आयोजित किया गया। रहमान को सुनने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। खंडवा से होकर गुजरने वाली जयपुर और हैदराबाद के बीच चल रही स्पेशल ट्रेन को अब स्थायी साप्ताहिक ट्रेन के रूप में संचालित किया जाएगा। गुना के जिला पंचायत विश्राम गृह में 26 मई को युवा संगम कार्यक्रम के अंतर्गत जिला स्तरीय रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा और इंदौर में 9 से 13 जून तक ब्रिक्स सम्मेलन आयोजित किया जाएगा, जिसके लिए जिला प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि सरकार प्रदेश के हर जिले के विकास के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अब तक 13,10,000 किसानों से गेहूं का उपार्जन कर मध्य प्रदेश देश में पहले स्थान पर। तुषार शर्मा की मौत के मामले का सुप्रीम कोर्ट ने लिया स्वतः संज्ञान। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की पीठ करेगी सुनवाई और प्रदेश के 42 जिलों में लू चलने की चेतावनी। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए 2:10 पर। नमस्कार।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: मीडियम वेव 374.5 मीटर अर्थात 801 किलोहर्ट्ज़ पर एवं न्यूज ऑन एयर ऐप पर हम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। गुड मॉर्निंग जबलपुर।

साथियों, सूर्य देव के प्रचंड ताप से समूची प्रकृति, जनमानस, प्राणी जगत बेहाल हो रहे हैं और प्रकृति का चक्र अभी कुछ दिन और तपती ऋतु में ही चलायमान रहेगा। ऐसे में सबसे अधिक आवश्यकता हमें कौन सी चीज़ की होती है? जी हाँ, वो है शीतल छांव, शीतल जल और ठंडी हवा की। यूं तो एसी और रेफ्रिजरेटर हमारे जीवन के अभिन्न अंग बन चुके हैं, लेकिन जब हम खुले आसमान के नीचे होते हैं तो किसी घने वृक्ष की छांव और मटके का शीतल जल किसी वरदान के समान लगते हैं। और श्रोताओं, समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग इन्हीं प्राकृतिक साधनों के साथ ही तपती ग्रीष्म का सामना करता है। वो सभी वास्तव में प्रकृति पुत्र हैं, उन्हें कुदरत ने बहुत मजबूत बनाया है। उनके जीवन से हम कई सीख ग्रहण कर सकते हैं, जैसे जो प्राप्त है पर्याप्त है, प्रकृति माता के प्रति आभार, बहुत सीमित साधनों में संतुष्ट रहना और श्रम से सदा जुड़े रहना। ऐसा जीवन दर्शन न केवल प्रणम्य है वरन अनुकरणीय भी है। और हम अपने दैनिक जीवन में प्राकृतिक साधनों का अधिक से अधिक उपयोग कर सकते हैं और प्रकृति की ओर लौट सकते हैं।

जसपाल सिंह के स्वर में अभी आप सुन रहे थे गीत गाता चल फिल्म का ये गीत, शब्द रचना और संगीतकार रविंद्र जैन। दोस्तों, जैसे एक एक कड़ी जुड़कर मजबूत श्रृंखला का निर्माण करती है, वैसे ही एक मनुष्य समूह में रहकर परिवार, फिर समाज, नगर, राज्य और फिर एक विशाल राष्ट्र की संरचना बनाता है। और ऐसे कई राष्ट्र या देश मिलकर विश्व को परिभाषित करते हैं। श्रोताओं, दुनिया भर के स्वतंत्र और संप्रभु देशों का एक स्वैच्छिक समूह कहलाता है राष्ट्रमंडल, जिसे अंग्रेजी में हम कहते हैं कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस। वर्तमान में राष्ट्रमंडल में 56 सदस्य देश हैं। इसकी भौगोलिक विविधता ऐसी है कि इसमें अफ्रीका, एशिया, अमेरिका, यूरोप और प्रशांत क्षेत्र के कई देश शामिल हैं। और आज 24 मई हमारे देश में राष्ट्रमंडल दिवस के रूप में मनाया जाता है। श्रोताओ, राष्ट्रमंडल में कोई भी सरकार दूसरों पर शक्ति का प्रयोग नहीं करती। इसमें विविध सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक पृष्ठभूमि वाले देशों को स्थिति में समान माना जाता है। इसका उद्देश्य है लोकतंत्र, मानवाधिकारों, सुशासन, नागरिक स्वाधीनता, मुक्त व्यापार और विश्व शांति को बढ़ावा देना। इसी तारतम्य में राष्ट्रमंडल खेल यानी कॉमनवेल्थ गेम्स प्रति 4 वर्ष में एक बार आयोजित किया जाता है। और ये आयोजन विश्व के विभिन्न देशों के बीच मित्रता और सेतु का काम करता है।

मन्ना डे और साथियों के स्वर में अभी आप सुन रहे थे कवि प्रदीप की शब्द रचना, संगीतकार सी रामचंद्र और फिल्म का नाम पैगाम। गुड मॉर्निंग जबलपुर कार्यक्रम में लेते हैं एक छोटा सा अंतराल।

0: आज तो पार्टी चाहिए,
1: पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे।
2: आइडिया, यही करते हैं पार्टी।
0: पिज्जा पार्टी ये। चल अपना कार्ड और पिन दे।
3: मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी।

0: आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें।
1: बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं? नो शेयरिंग।
0: आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: पुलिस?
3: मिस सीमा
2: जी,
3: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए, वरना घर आ जाएंगे।
2: क्यों? लेकिन मैं
3: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
2: डिजिटल अरेस्ट?
3: 1,00,000 दो, बच जाओगे।
2: इतने पैसे?
3: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
2: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, आरबीआई इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
4: हेलो मम्मा।
5: आरबीआई कहता है
0: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: संदेशों के बाद आप सभी श्रोताओं का स्वागत है कार्यक्रम में। श्रोताओं, गुड मॉर्निंग जबलपुर कार्यक्रम में आनंद लीजिए संगीतिका संडे का। लीजिए सुनिए साहिर लुधियानवी की शब्द रचना महेंद्र कपूर की आवाज़ में। संगीतकार हैं रवि, फिल्म का नाम हमराज।

0: तो पार्टी चाहिए।
1: पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे।
2: आइडिया, यही करते हैं पार्टी।
0: पिज़्ज़ा पार्टी। ये चल अपना कार्ड और पिन दे।
3: मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें।
0: बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं? नो शेयरिंग।
3: RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: संगीतिका संडे में लीजिए सुनिए लता मंगेशकर की आवाज़ में हसरत जयपुरी का लिखा ये गीत। संगीतकार हैं शंकर जयकिशन। फिल्म का नाम हरियाली और रास्ता।

0: कभी तो हंसाए।
1: योगेश की शब्द रचना अभी आप सुन रहे थे मन्ना डे के स्वर में। संगीतकार सलील चौधरी और फिल्म का नाम आनंद। गुड मॉर्निंग जबलपुर कार्यक्रम में इस समय आप सुन रहे हैं संगीतिका संडे। लीजिए सुनिए मोहम्मद रफ़ी का गाया, नीरज का लिखा और एस डी बर्मन साहब का संगीतबद्ध किया गैम्बलर फिल्म का ये गीत।

गैम्बलर फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। लीजिए अब सुनिए शैलेंद्र का लिखा ये नगमा, स्वर लता मंगेशकर और मन्ना डे का है, संगीतकार शंकर जयकिशन, फिल्म का नाम रात और दिन।

श्रोताओ, संगीतिका संडे के आखिर में लीजिए सुनिए किशोर कुमार की आवाज़ में मजरूह सुल्तानपुरी की शब्द रचना। संगीतकार हैं राहुल देव बर्मन और फिल्म का नाम मेरे जीवन साथी।

तो श्रोताओं, अपने प्राकृतिक परिवेश और संसाधनों से न केवल जुड़े रहें बल्कि उन्हें संरक्षित भी करें। स्वस्थ रहें, रचनात्मक रहें, अपनों से जुड़े रहें। और अब आज के गुड मॉर्निंग जबलपुर कार्यक्रम से अनुमति दें अस्मिता को। नमस्कार।

0: मीडियम वेव पर आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। कुछ ही पलों में समाचार प्रभात। अब हम आकाशवाणी
1: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
2: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बनें। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना जुलाई से लागू होगी। स्वास्थ्य साथी योजना के लाभार्थी भी इसमें शामिल होंगे।

0: महाराष्ट्र विशेष जांच दल ने नाशिक टीसीएस दुष्कर्म और धर्मांतरण मामले में 4 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ समझौते पर काफी हद तक सहमति बनी, हॉर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलना भी शामिल। मौसम विभाग ने दिल्ली सहित उत्तरी, मध्य और पूर्वी भारत में आज भीषण लू की आशंका व्यक्त की। और गुरविंदर सिंह ने रांची में फेडरेशन कप एथलेटिक्स में राष्ट्रीय रिकॉर्ड के साथ पुरुषों की 100 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। वे क्षेत्रीय और वैश्विक शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों सहित कई विषयों पर चर्चा करेंगे। विदेश मंत्री रूबियो कल क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होने के लिए 4 दिन की यात्रा पर भारत पहुंचे।
1: क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक मंगलवार को होगी। बैठक में विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर, ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए क्वाड की परिकल्पना के अनुरूप प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने पर विचार विमर्श किया जाएगा। बैठक में क्वाड की वर्तमान पहलों की प्रगति की समीक्षा की जाएगी और हिंद प्रशांत क्षेत्र में हाल के घटनाक्रमों तथा आपसी चिंता अन्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा होगी। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
0: श्री रूबियो ने कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और उन्हें रक्षा, रणनीतिक प्रौद्योगिकी, व्यापार और निवेश तथा ऊर्जा सहित विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग में हो रही प्रगति के बारे में जानकारी दी। श्री मोदी ने कहा कि भारत और अमेरिका वैश्विक कल्याण के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। प्रधानमंत्री ने शांति प्रयासों के लिए भारत के निरंतर समर्थन की बात दोहराई और बातचीत तथा कूटनीति के जरिए संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान की अपनी अपील को दोहराया। विदेश मंत्री रूबियो ने पश्चिम एशिया की स्थिति सहित विभिन्न क्षेत्रीय वैश्विक मुद्दों पर अमरीकी दृष्टिकोण साझा किया। उन्होंने भारत को अमरीका का अत्यंत महत्वपूर्ण साझेदार बताया। इस बीच श्री रूबियो ने कहा है कि अमरीका जिस तरह से हिंद प्रशांत क्षेत्र को देखता है उसमें भारत की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में अमरीकी दूतावास की सपोर्ट एनेक्स बिल्डिंग का उद्घाटन करते हुए श्री रूबियो ने कहा कि भारतीय कंपनियों ने अमरीका में 20 अरब डॉलर का निवेश किया है।
2: अब हमारे व्यापारिक संबंध और भी बढ़ गए हैं। इसमें भारतीय कंपनियों का अमेरिका में 20 अरब डॉलर से अधिक का निवेश शामिल है। हमने हिंद प्रशांत क्षेत्र में सैन्य अभ्यासों के माध्यम से अपनी सुरक्षा साझेदारी को और भी मजबूत बनाया है। निश्चित रूप से इस महत्वपूर्ण रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए एक व्यवस्थित और सुरक्षित काउंसलर प्रणाली की अत्यंत आवश्यकता है।
0: पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना इस वर्ष जुलाई से शुरू हो जाएगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के साथ वर्चुअल बैठक के बाद कल कोलकाता में इसकी घोषणा की। राज्य की स्वास्थ्य योजना स्वास्थ्य साथी के अंतर्गत मौजूदा लाभार्थी को आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया जाएगा। आयुष्मान भारत आरोग्य मंदिर के संबंध में अगले महीने सहमति पत्र पर नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए जाएंगे। श्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों की संख्या मौजूदा 117 से बढ़ाकर 469 करने के संबंध में केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव भेजा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अलीपुरद्वार, कालिम्पोंग और दक्षिण दिनाजपुर जिलों में नए मेडिकल कॉलेज खोलने और उत्तर बंगाल के लिए एक नए एम्स के प्रस्ताव भी केंद्र सरकार को भेजा गया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि स्वास्थ्य सेवा अवसंरचना के साथ साथ स्वास्थ्य विशेषज्ञों, चिकित्सा पेशेवरों का प्रशिक्षण भी बहुत महत्वपूर्ण है। वे कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान बोर्ड के 23वें दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र में स्वस्थ भारत की परिकल्पना विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने में प्रमुख भूमिका निभाएगी।
1: हम सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में 2047 तक विकसित भारत बनाना है। जब हम 2047 तक विकसित भारत की बात करते हैं तो स्वास्थ्य और स्वस्थ भारत एक बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि जब हम स्वस्थ होंगे तभी सफलता प्राप्त कर सकते हैं।
0: सरकार ने विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 2025 के तहत व्यापक जन परामर्श के लिए मसौदा

0: नियम प्रकाशित किए हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि कोई भी व्यक्ति, हितधारक, संगठन या संस्था 21 जून तक मसौदा नियमों पर आपत्ति या सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं। एक रिपोर्ट।
1: विकसित भारत जीराम जी एक्ट ने 20 साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की जगह ली है। नए कानून के तहत अब एक वित्तीय वर्ष में रोजगार की गारंटी 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन कर दी गई है। मंत्रालय के अनुसार इस कानून के मसौदा नियम धारा 33 और अन्य संबंधित प्रावधानों के तहत तैयार किए गए हैं। मंत्रालय ने बताया कि मसौदा नियमों को जनता से सुझाव और राय लेने के लिए सार्वजनिक किया गया है। इनमें संक्रमण प्रावधान नियम, राष्ट्रीय स्तर संचालन समिति नियम, केंद्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद नियम, प्रशासनिक खर्च नियम और शिकायत निवारण नियम शामिल हैं। नए कानून में मजदूरी का भुगतान समय पर पारदर्शी और जवाबदेही के साथ करने पर विशेष जोर दिया गया है। इसके अलावा तय समय के भीतर काम नहीं मिलने पर बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान किया गया है। वीबीजी रामजी एक्ट 2025 को इस महीने की 11 तारीख को अधिसूचित किया गया था और यह इस साल 1 जुलाई से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होगा। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: महाराष्ट्र की नाशिक अदालत में विशेष जांच दल ने टीसीएस कंपनी के एक केंद्र से संबंधित दुष्कर्म और धर्मांतरण मामले में 1500 पन्नों का अभियोग पत्र दाखिल किया है। जांच दल के प्रमुख संदीप मिटके ने बताया कि कल 4 आरोपियों मतीन पटेल, निदा खान, दानिश शेख और तौसीफ अतर के खिलाफ अभियोग पत्र दाखिल किया गया। उन्होंने कहा कि इस मामले में अगले कुछ दिन में 7-8 अन्य आरोपियों के खिलाफ अतिरिक्त आरोप पत्र दाखिल होने की संभावना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
2: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
3: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
2: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इसराइल से बातचीत के बाद ईरान के साथ एक समझौते पर काफी हद तक सहमति बन चुकी है। उन्होंने कहा कि समझौते में होर्मुज जल डमरू मध्य खोलना भी शामिल है। एक रिपोर्ट।
4: श्री ट्रंप ने कहा कि समझौते के अंतिम पहलुओं और विवरणों पर चर्चा जारी है, शीघ्र ही इसकी घोषणा की जाएगी, लेकिन उन्होंने समझौते की समय सीमा के बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि समझौते के बारे में इजराइल के साथ सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र, जॉर्डन और बहरीन से बात की गई है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाकाई ने अमरीकियों पर विरोधाभासी बयान देने का आरोप लगाया। अमरीका और ईरान के बीच 8 अप्रैल को युद्ध विराम पर सहमति बनी थी और तब से दीर्घकालिक शांति समझौते के लिए बातचीत जारी है। अमरीका द्वारा ईरान के बंदरगाहों की नाकेबंदी के कारण ईरान ने होर्मुज जल डमरू मध्य को बंद कर दिया है। समझौते को लेकर मुख्य रुकावटें ईरान के परमाणु कार्यक्रम के भविष्य और होर्मुज जल डमरू मध्य पर उसके प्रभाव तथा क्षेत्र में अमरीकी सैन्य उपस्थिति से संबंधित रही है। समाचार कक्ष से चंद्रशेखर शर्मा।
0: अमेरिका में व्हाइट हाउस के पास गोलीबारी की घटना हुई है। घटना के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने इलाके को घेर कर हाई अलर्ट जारी कर दिया है। इस बीच सीक्रेट सर्विस ने घटनास्थल के पास ही एक संदिग्ध व्यक्ति को गोली मार दी। इस दौरान एक नागरिक भी गोली लगने से घायल हो गया। घटना के समय अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में ही मौजूद थे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल कल से भारतीय व्यापार जगत के नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ कनाडा की 3 दिन की यात्रा पर रहेंगे। वाणिज्य मंत्रालय ने बताया कि श्री गोयल ओटावा, टोरंटो में द्विपक्षीय बैठक करेंगे, जिसका उद्देश्य व्यापार, निवेश और भारत कनाडा व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते CEPA पर चल रही बातचीत को आगे बढ़ाना है। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और विदर्भ के कुछ क्षेत्रों में आज भीषण लू चलने की आशंका व्यक्त की है। बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना, पश्चिमी मध्य प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों में भी ऐसा ही मौसम रहेगा। गुरविंदर सिंह ने रांची में फेडरेशन कप एथलेटिक्स प्रतियोगिता में पुरुषों की 100 मीटर स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीत लिया है। उन्होंने 10.09 सेकंड के नए राष्ट्रीय कीर्तिमान के साथ ये उपलब्धि हासिल की। गुरविंदर का पिछला कीर्तिमान 10.17 सेकंड था। इसके साथ ही उन्होंने राष्ट्रमंडल खेलों के लिए क्वालिफाई भी कर लिया है। अनिमेश कुजूर

0: प्रस्तुत कर रहा है। इस श्रृंखला में पद्म पुरस्कार विजेताओं के कार्यों और जीवन के बारे में जानकारी दी जाएगी। इनका प्रसारण कल सोमवार को 100.1 आकाशवाणी गोल्ड पर किया जाएगा। श्रोताओं से अनुरोध है कि वे आज और कल सुबह 9:10 से आकाशवाणी से जुड़े रहें। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
1: धन्यवाद लवली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कल 51,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपने के दौरान ये कहना कि देश के नौजवानों को मिले ग्लोबल एक्सपोजर लोक सत्ते में है। दैनिक जागरण की सुर्खी है, प्रधानमंत्री ने कहा, युवाओं को ध्यान में रखते हुए ही हमने किए हैं अंतर्राष्ट्रीय समझौते। अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के भारत दौरे को भी अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान कहता है, मोदी से मिले रूबियो, अमरीका आने का न्योता। नवभारत टाइम्स के अनुसार, रूबियो से मिलकर पीएम बोले, बात से निकले संघर्ष का हल। रूबियो की भारत यात्रा पर दैनिक जागरण अपने संपादकीय में लिखता है कि उनके भारत दौरे की शुरुआत के बाद जिस तरह उन्होंने अपने समकक्ष से मिलने की परंपरा को तोड़ते हुए प्रधानमंत्री से मुलाकात की, ये प्रतीत होना स्वाभाविक है कि वे दोनों देशों के संबंधों को प्रगाढ़ करने में विशेष महत्व दे रहे हैं। गृहमंत्री अमित शाह के महाप्लान स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट पर लोकसत्ते ने संपादकीय में लिखा है कि गृहमंत्री की ये परियोजना वक्त की नजाकत को देखते हुए समीचीन है कि भारत के लिए आवश्यक भी है। अखबार के अनुसार, घुसपैठियों को रोकने के लिए हमारी सीमाएं मुस्तैद और सुरक्षित होनी जरूरी है। केंद्र सरकार का जिमखाना क्लब की जमीन 5 जून तक सरकार को सौंपने का समाचार अमर उजाला सहित सभी अखबारों में है। पंजाब केसरी के अनुसार, सरकार का कहना है कि ये भूखंड रक्षा बुनियादी ढांचे को मजबूत और सुरक्षित करने के लिए आवश्यक है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के 12वीं कक्षा की आंसर सीट की स्कैन कॉपी के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया की जानकारी दैनिक भास्कर ने विस्तार से दी है। देश का बड़ा हिस्सा भीषण लू की चपेट में, शीर्षक से जनसत्ता लिखता है, गर्म हवाओं से मस्तिष्क और आंखों पर पड़ रहा है बुरा असर। पत्र ने चिकित्सकों की सलाह को भी प्रमुखता दी है कि गंभीर सिरदर्द, चक्कर आना और बेहोशी जैसे लक्षण दिखते ही तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। राजस्थान पत्रिका ने इस वैश्विक अध्ययन को प्रमुखता से दिया है कि मुंबई विश्वविद्यालय ने दुनिया को दिए 31 अरबपति। पत्र ने इसे भारतीय सपनों की जीत बताते हुए लिखा है, दुनिया में सबसे अधिक अरबपति बनाने वाले विश्वविद्यालयों की सूची में ये 10वें नंबर पर पहुंच गया है।
0: धन्यवाद फरत। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना जुलाई से लागू होगी। स्वास्थ्य साथी योजना के लाभार्थी भी इसमें शामिल होंगे। महाराष्ट्र विशेष जांच दल ने नाशिक TCS दुष्कर्म और धर्मांतरण मामले में 4 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ समझौते पर काफी हद तक सहमति बनी, होर्मुज जल डमरू मध्य को फिर से खोलना भी शामिल। मौसम विभाग ने दिल्ली सहित उत्तरी मध्य पूर्वी भारत में आज भीषण लू की आशंका व्यक्त की। और गुरविंदर सिंह ने रांची में फेडरेशन कप एथलेटिक्स में राष्ट्रीय रिकॉर्ड के साथ पुरुषों की 100 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। द हेडलाइंस। External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar to hold bilateral talks with US Secretary of State Marco Rubio in New Delhi today. Ayushman Bharat scheme to be rolled out in West Bengal from July. Swasthya Sathi beneficiaries to be included. Maharashtra SIT files charge sheet against 4 accused in Nashik TCS sexual assault and religious conversion case. US President Donald Trump says Iran deal including reopening of Strait of Hormuz largely negotiated. IMD forecasts severe heat wave conditions in some parts of northern, central and eastern India, including Delhi today. And in athletics, Gurinderveer Singh wins men's 100-meter gold with new national record at Federation Cup in Ranchi. And now the news in detail. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar will hold bilateral talks with US Secretary of State Marco Rubio at Hyderabad House in New Delhi today. They will discuss a wide range of issues related to regional and global peace and security. Secretary Rubio arrived in India yesterday on a 4-day visit to participate in the Quad Foreign Ministers meeting.
3: The Quad Foreign Ministers Meet will be held on the 26th of

आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। अगले गीत से पहले एक सूचना सुनिए। क्या आपके आसपास कोई ऐसा बच्चा है जो अपनी असाधारण प्रतिभा से समाज में सकारात्मक बदलाव लाया है? भारत सरकार का महिला एवं बाल विकास मंत्रालय लेकर आया है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2026। यह पुरस्कार 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को वीरता, समाज सेवा,

पर्यावरण, खेल, कला संस्कृति और विज्ञान प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए दिया जाता है। बालिकाओं, कमजोर वर्गों, अनुसूचित जाति, जनजाति और दिव्यांग बच्चों की छिपी प्रतिभा को आगे बढ़ाने का यह एक बेहतरीन अवसर है। नामांकन केवल ऑनलाइन माध्यम से राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल awards.gov.in पर 31 जुलाई 2026 तक स्वीकार किए जाएंगे। देर न करें, आज ही अपने क्षेत्र के होनहार बच्चों का नामांकन सुनिश्चित करें। सूचना समाप्त हुई। आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। फिल्म संगीत में लीजिए, अब सुनिए मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में प्रोफेसर फिल्म का ये गीत। शब्द रचना हसरत जयपुरी की है, तर्ज बनाई है शंकर जयकिशन ने।

0: पुलिस।
1: मिस सीमा
0: जी,
1: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए वरना घर आ जाएंगे।
0: क्यों, लेकिन मैं
1: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
0: डिजिटल अरेस्ट?
1: 1 लाख दो, बन जाओगे।
0: इतने पैसे?
1: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
0: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
2: हेलो मम्मा।
3: RBI कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: फिल्म संगीत में लीजिए अब सुनिए CID फिल्म का गीत, मोहम्मद रफी और गीता दत्त के युगल स्वर में।

आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। लीजिए सुनिए पुरुषोत्तम पंकज का लिखा सावन को आने दो फिल्म का ये गीत। स्वर येसुदास का है, संगीतकार राजकमल।

श्रोताओं, फिल्म संगीत के अगले गीत से पहले एक आवश्यक सूचना सुनिए। क्या आपके आसपास कोई ऐसा बच्चा है जो अपनी असाधारण प्रतिभा से समाज में सकारात्मक बदलाव लाया है? यदि हाँ, तो भारत सरकार का महिला एवं बाल विकास मंत्रालय लेकर आया है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2026। यह पुरस्कार 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को वीरता, समाज सेवा, पर्यावरण, खेल, कला संस्कृति और विज्ञान प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए दिया जाता है। बालिकाओं, कमजोर वर्गों, अनुसूचित जाति, जनजाति और दिव्यांग बच्चों की छिपी प्रतिभा को आगे बढ़ाने का यह एक बेहतरीन अवसर है। नामांकन केवल ऑनलाइन माध्यम से राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल awards.gov

www.ecology.in पर 31 जुलाई 2026 तक स्वीकार किए जाएंगे। तो देर न करें, आज ही अपने क्षेत्र के होनहार बच्चों का नामांकन सुनिश्चित करें। सूचना समाप्त हुई। फिल्म संगीत में लीजिए, अब सुनिए लता मंगेशकर के स्वर में मजरूह सुल्तानपुरी की शब्द रचना, संगीतकार राहुल देव बर्मन, फिल्म का नाम आंचल।

इस गीत के साथ ही आज का फिल्म संगीत अब संपन्न होता है। श्रोताओं, फरमाइशी फिल्मी गीतों के कार्यक्रम सारंगा के साथ हम फिर हाजिर होंगे आज सुबह 10:20 पर। हम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही पलों में न्यूज़ हेडलाइंस अब हम आकाशवाणी भोपाल से रिले करेंगे।

0: तो पहले सुन लेते हैं इस घंटे की खास खबरें।
1: केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान बोर्ड के 23वें दीक्षांत समारोह में कहा कि स्वास्थ्य सेवा अवसंरचना के साथ साथ स्वास्थ्य विशेषज्ञों और चिकित्सा पेशेवरों का प्रशिक्षण भी बहुत महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कल सिंगरौली महोत्सव के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार प्रदेश के हर जिले के विकास के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कल महाराष्ट्र के शिरडी स्थित सांवली विहर औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित तोप के गोले बनाने वाले संयंत्र का उद्घाटन करते हुए कहा कि भारत आने वाले कुछ समय में रक्षा उत्पादों का एक प्रमुख निर्यातक बनकर उभरेगा। केंद्र सरकार ने विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 के मसौदा नियमों पर अगले महीने की 30 तारीख तक आपत्तियां या सुझाव मांगे हैं। विकसित भारत जी राम जी अधिनियम इस वर्ष 1 जुलाई से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू हो जाएगा। प्रदेश न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी में किसानों की संख्या के मामले में अब तक 13,10,000 किसानों से गेहूं खरीदकर देश में पहले स्थान पर है। मौसम विभाग ने प्रदेश के 42 जिलों में लू चलने की चेतावनी जारी की है। छतरपुर जिले का नौगांव सबसे गर्म रहा, जहां पारा 46.8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। और आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ में खेले गए मुकाबले में कल पंजाब किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: मीडियम वेव 374.5 मीटर अर्थात 800 किलोहर्ट्ज पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से। सुबह के 9 बजे हैं, प्रस्तुत है लोक रसधार। लोक रसधार में आज की पहली कलाकार हैं सारिका नायक और हमारे अगले कलाकार हैं डॉक्टर बैजनाथ गौतम। लीजिए सुनिए इनके गाए बुंदेली लोकगीत।

0: लोक रसधार में अभी आप सुन रहे थे सारिका नायक के गाए बुंदेली लोकगीत। आज के अगले कलाकार हैं डॉक्टर बैजनाथ गौतम। लीजिए सुनिए कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति।
1: जल भरियो हे बोड़ा खाए, ए जी जल भरियो, ओ जी

0: लीजिए सुनिए लोकरसधार कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति।
1: ओ कुरु जम्हारी हलनी आली जेर देश,

अभी आप सुन रहे थे लोक रसधार कार्यक्रम। आज के कलाकार सारिका नायक और डॉक्टर बैजनाथ गौतम। हम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं।

नमस्कार श्रोताओं, एक आवश्यक सूचना सुनिए। क्या आपके आसपास कोई ऐसा बच्चा है जो अपनी असाधारण प्रतिभा से समाज में सकारात्मक बदलाव लाया है? यदि हाँ, तो भारत सरकार का महिला एवं बाल विकास मंत्रालय लेकर आया है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2026। यह पुरस्कार 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को वीरता, समाज सेवा, पर्यावरण, खेल, कला संस्कृति और विज्ञान प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए दिया जाता है। बालिकाओं, कमजोर वर्गों, अनुसूचित जाति, जनजाति और दिव्यांग बच्चों की छिपी प्रतिभा को आगे बढ़ाने का यह एक बेहतरीन अवसर है। नामांकन केवल ऑनलाइन माध्यम से राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल अवार्ड्स awards.gov.in पर 31 जुलाई सन 2026 तक स्वीकार किए जाएंगे, तो देर न करें, आज ही अपने क्षेत्र के होनहार बच्चों का नामांकन सुनिश्चित करें। सूचना समाप्त हुई। हम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं, सिंधिया जी सुरहाण। लीजिए सुनिए सिंधी कार्यक्रम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से।

0: सिंधियत जी सुरहार ॿुधण वारे सभी रेडियो श्रोताउनि खे कविता चांदवानी जी सिक भरी नमस्कार। जय झूलेलाल दोस्तों। दोस्तों आराम हराम आ इहो पहाको चयो हो असांजे देश जे पहिरें प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जन, जंहिंजो जनम 14 नवंबर 1899 में इलाहाबाद, जंहिंखे असां हाणे प्रयागराज जे नाले सां ॼाणंदा आहियूं, उत्तर प्रदेश में थियो। उन्हनि जे पिता जन जो नालो हो मोतीलाल नेहरू जी, जेके हिकु ॼातल सुञातल वकील हुया। उन्हनि जी लंदन जे हीरो स्कूल ऐं कैम्ब्रिज कॉलेज में पंहिंजी बैरिस्टर जी पढ़ाई पूरी कई। 1919 में महात्मा गांधीअ सां उहे प्रेरित थिया ऐं स्वतंत्रता आंदोलन में अची विया। उन्हनि जो असहयोग आंदोलन ऐं नमक सत्याग्रह जहिड़नि घणेई आंदोलन में बि उन्हनि जो सहयोग रहियो ऐं लॻभॻि 10 सालनि ताईं उहे जेल में रहा। 15 अगस्त 1947 खां वठी 27 मई 1964 ताईं देश जा पहिरियां प्रधानमंत्री बि रहिया। उन्हनि देश में IIT, एम्स, इसरो जहिड़ियूं वॾियुनि वॾियुनि संस्थाउनि जी नींव रखी। उन्हनि देश जी अर्थव्यवस्था खे मज़बूत ठाहिण लाइ पंचवर्षीय जहिड़ियूं योजनाउनि खे बढ़ावो ॾिनो। दोस्तो पंडित जवाहरलाल नेहरू हिकु महान लेखक बि हुया। उन्हनि खे ॿारनि सां ख़ासि लॻाव हो ऐं उन्हनि खे ॿार प्यार सां चाचा नेहरू बि चवंदा हुया। इन करे ही उन्हनि जे जनम ॾींहं खे 14 नवंबर खे असां देश में बाल दिवस जे रूप में मल्हायो वेंदो आहे। त दोस्तो अचो 27 मई उन्हनि जी पुण्यतिथीअ ते उन्हनि जा जेके ॾेखारियल रस्ता आहिनि उन्हनि खे अपनायूं, त उहा ई उन्हनि लाइ सची श्रद्धांजलि हूंदी। दोस्तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जन खे ॿारनि सां प्यार हूंदो हो। ॿार चाचा नेहरू हुननि खे चवंदा हुआ त अचो इन ई ते ॿुधूं था ॿारनि जो ई सुहिणो गीत आयो फूकड़नि वारो, ढोलन राही जंहिंजो ॻायल ॿुधंदासीं ही सुहिणो गीत।
1: आयो आयो आयो यारो मुल्क सॼे में नाले वारो।

0: दोस्तों इन गीत खां पो बुधंदासीं ओम प्रकाश टहलियाणी जन जो काव्य पाठ।
1: मेहरबानी कविता, ढाडो सुठो लगो असांजा नई तही जा बार मथे था अचन इन प्रोग्रामन के कंपेयर था कन।
2: धन्यवाद भाऊ।
1: तां सा मुखातिब थी मां पेंजो कविता पाठ प्रारंभ तो कया।
2: बिल्कुल।
1: गजल पेशा मतलाए नेणन जादर नेठ दरे, नेणन जादर नेठ दरे, कुंड पुसाई लुड़क जरे।
2: वाह वाह।
1: नेणन जादर नेठ दरे, कुंड पुसाई लुड़क जरे। शेर दिसो, ख्वाब दिसण जो ढंग न हो, ख्वाब दिसण जो ढंग न हो, रहयुस निंड खां परे परे, कुंड पुसाई लुड़क जरे। नाहक पहंजन जी गोला, नाहक पहंजन जी गोला, केर जिए गद केर मरे, नाहक पहंजन जी गोला, केर जिए गद केर मरे, कुंड पुसाई लुड़क जरे। ही शेर दिसो, उन्य उन्य सदा जिन नजरन में, उन्य सदा जिन नजरन में, तिन सा किन जो हाँ ठरे, उन्य सदा जिन नजरन में, तिन सा किन जो हाँ ठरे। जार विछायण जी साजिश, जार विछायण जी साजिश, सयादन सा केर करे,
2: तमाम सहनो।
1: जार विछायण जी साजिश, सयादन सा केर करे, कुंड पुसाई लुड़क जरे। झूना थी व्या रांदीका, झूना थी व्या रांदीका, हिकड़ो न हिकड़ो रोज खरे, झूना थी व्या रांदीका, हिकड़ो न हिकड़ो रोज खरे, कुंड पुसाई लुड़क जरे। मक्ता का पैरी एक बशेर बेब, किन यारन घर माओ दिसी, किन यारन घर माओ दिसी, मुंह जहड़ो हर बार गरे, किन यारन घर माओ दिसी, मुंह जहड़ो हर बार गरे। कविता माओ असा बोलिए के चवंदा याद।
2: बिल्कुल बिल्कुल।
1: किन यारन घर माओ दिसी, मुंह जहड़ो हर बार गरे, यार अची वन, यार अची वन महफिल में, तो बिन मुहिंजी की नसरे, यार अची वन महफिल में, तो बिन मुहिंजी की नसरे, कुंड पुसाई लुड़क जरे। हाण पखी घर हलणोआ, हाण पखी घर हलणोआ, नंढड़ा नंढड़ा पेर भरे, नेणन जादर नेठ डरे, कुंड पुसाई लुड़क जरे।
2: वाह वाह वाह वाह, तमाम सुहिणी।
1: मेहरबानी कविता, एकड़ो ही गजल दिसो, याद इंदे बस हलिए।

0: geçici. Yad inde bas hali açıcı, dil na bharje vari vari açıcı. Yad inde bas hali açıcı, dil na bharje vari vari açıcı. Hal bimar jo tha roz puchho, hal bimar jo tha roz puchho. का दवा भी कदें खणी अचजे
1: वाह वाह डाढ़ी सुंदर
0: हाल बीमार जो था रोज पूछो का दवा भी कदें खणी अचजे दिल न भरजे वरी वरी अचजे हाय हाय कातिल दा ऐं बाहे अखियूं हाय कातिल दा बाय अखियूं दिल करे थी बरी ठरी अचजे दिल न भरजे वरी वरी अचजे ऐं घाव घाव आशिक ॾियण छॾे बि नथो घाव आशिक ॾियण छॾे बि नथो हल वरी हिकु दफ़ो मरी अचजे घाव आशिक ॾियण छॾे बि नथो हल वरी हिकु दफ़ो मरी अचजे ऐं खाली पैमानो भरिजी वेंदो वरी खाली पैमानो भरिजी वेंदो वरी मैं कदे मां न बुत बणी अचजे
1: वाह वाह वाह वाह मजो अचियो
0: खाली पैमानो भरजी वेंदो वरी मैं कदे मां न बुत बणी अचजे दिल न भरजे वरी वरी अचजे ए मक्ता है भल परावा पखी लगन पंहिंजा भल परावा पखी लगन पंहिंजा झुंड पंहिंजे फिरी घिरी अचजे झुंड पंहिंजे फिरी घिरी अचजे दिल न भरजे वरी वरी अचजे यादि ईंदे ई बस हली अचजे अचो हिकिड़ो गज़ल ॿियो बि ॿुधूं तुंहिंजी ॻाल्हियुनि खे ॿुधण जी कंहिंखे फुर्सत आहे तुंहिंजी ॻाल्हियुनि खे ॿुधण जी कंहिंखे फुर्सत आहे डोड़ा तोलाए बीहण जी कंहिंखे फुर्सत आहे तुंहिंजी ॻाल्हियुनि खे ॿुधण जी कंहिंखे फुर्सत आहे डोड़ा तोलाए बीहण जी कंहिंखे फुर्सत
1: आहे
0: ऐं ख़ूबसूरत गुल भली वण ते लुॾी केॾो ख़ूबसूरत गुल भली वण ते लुनी केॾो अख खणी तो ॾे ॾिसण जी कंहिंखे फुर्सत आहे डोड़ा तो लै बीहण जी कंहिंखे फुर्सत आहे ऐं भल अदब खे प्यार रखनि जीअरो कलम वारा भल अदब खे प्यार रखनि जीअरो कलम वारा पर किताबनि खे पढ़ण जी कंहिंखे फुर्सत आहे डोड़ा तो लै बीहण जी कंहिंखे फुर्सत आहे ऐं का गिला कंहिंजी न किल किल चोट अखरनि जी का गिला कंहिंजी न किल किल चोट अखरनि जी अहिड़ी दुनिया ते वधण जी कंहिंखे फुर्सत आहे डोड़ा तो लै बीहण जी कंहिंखे फुर्सत आहे ऐं मज़हबी माण्हुनि मज़हबी माण्हुनि सिंधियुनि खे छॾियो चीरे मज़हबी माण्हुनि सिंधियुनि खे ई छॾियो चीरे घाव गहरनि खे भरण जी
1: कंहिंखे फुर्सत आहे
0: घाव गहरनि खे भरण जी
1: कंहिंखे फुर्सत आहे
0: कंहिंखे फुर्सत आहे ऐं मक्ता आहे मोह माया खां पखी मोह माया खां पखी न्यारो

0: सदा रहजे। मोह माया खां पखी न्यारो सदा रहजे। अहड़ा पर खोले उड़ण जी कंहिंखे फुर्सता, अहड़ा पल खोले उड़ण जी कंहिंखे फुर्सता। दौड़ा तो लै भेण जी कंहिंखे फुर्सता। मेहरबानी भेण कविता, मेहरबानी सभिनी। सिंधी जिंदाबाद।
1: हिन काव्य पाठ खां पोइ ॿुधंदासीं हिकु सुहिणो गीत, सिक आहे या सूर, कमला केसवानी जंजो ऐं सतराम रोहिड़ा जंजो गायल ऐं गोर्धन भारती जंजो लिखियल, सी अर्जुन जंजी म्यूज़िक में ॿुधंदासीं हीउ सुहिणो गीत।

दोस्तों अचण वारी 28 मई ते ईद उल अजा जैके अस बकरी जे नाले से भी जानंदा आयो इस्लाम धर्म जो ही तमाम महत्वपूर्ण दिन आहे। ही दिन असा के करुणा त्याग सेवा समर्पण ए भगवान जे प्रति समर्पण जो संदेश दिंदा। दोस्तों छा ताके खबर आ त भारत सरकार राज्य सरकार से मिली करे वक्त वक्त ते अल्पसंख्यक समुदाय आहन उनन जे कल्याण ला तमाम योजनाओं हलाइंदी आ। इनन योजनाओं जो मकसद यो आ त देश में शिक्षा रोजगार विकास आर्थिक सहायता ए

समाज जो कल्याण थे। दोस्तों सरकार हर तकतेला हर माण्हू ला अलग अलग योजनाओं हलाईंदी आहे। जीअं जेके ॿार पढ़नि था पहिरीं खां ॾहीं क्लास ताईं उन्हनि लाइ अलॻि योजनाऊं हूंदियूं आहिनि। जेके ॾहीं खां वधीक क्लास था पढ़नि उन्हनि लाइ अलॻि योजनाऊं आहिनि। अलॻि अलॻि इस्पतालूं खोलंदियूं आहिनि, अलॻि अलॻि कॉलेज खुलंदा आहिनि, नई रोशनी जहिड़ियूं योजनाऊं जंहिंमें मायुनि खे उन्हनि खे विकास लाइ उन्हनि खे ट्रेनिंग ॾेई वेंदी आहे, जीअं उहे अॻियां मिली पंहिंजे पेरनि ते बीह सघनि। सीखो कमाओ योजना जंहिंमें सेखारे करे उन्हनि खे नौकरी ॾेई वेंदी आहे, जीअं उन्हनि जे घर जो ख़र्च बि हले, घटि व्याज ते उन्हनि खे पैसा ॾींदा आहिनि। अगरि उन्हनि खे पंहिंजो धंधो चालू करिणो आहे, कमु चालू करिणो आहे, त उहो बि चालू था करे सघनि। जेके ग़रीब ॿार आहिनि, पढ़ी नथा सघनि, जंहिंखे यू पी एस सी एस एस सी बैंक जे जहिड़ा एग्ज़ाम जी तयारी करण लाइ उन्हनि लाइ योजनाऊं आहिनि। दोस्तो तमामु अहिड़ियूं योजनाऊं आहिनि, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना। त दोस्तो चवण जो मक़सदु इहो ई आहे त देश में अगरि कहिड़ो ॿार पढ़णु चाहे त उन लाइ योजना अलॻि आहे। कहिड़ी माई अगरि चाहे मूंखे कमु करिणो आहे जाइफ़ा त उहो पंहिंजो कम थी करे सघे। केरु अगरि उधमी आहिनि, नया ॿार आहिनि जंहिंखे लॻे थो की मूंखे पंहिंजो बिज़नेस चालू करिणो आहे पर मूंखे हुन बिज़नेस लाइ पैसा कोन्हनि, त गवर्नमेंट उन लाइ योजनाऊं आहिनि चालू कयूं आहिनि। पर दोस्तो सुजाॻी ज़रूरी आहे। योजनाऊं ॾाढियूं आहिनि, असांखे फ़ाइदो तॾहिं मिलंदो जॾहिं असां में सुजाॻी हूंदी। अगरि असांखे ख़बर आहे त फ़र्ज़ु आहे त असां पंहिंजे जेके रिश्तेदार मिट माइट दोस्त यार आहिनि सभिनि में ॿुधायूं ऐं कीअं उन्हनि जो फ़ाइदो वठी था सघूं, कीअं उन्हनि जा पोर्टल आहिनि, कीअं उन्हनि जा फॉर्म भरे करे उन्हनि जा जेको फ़ाइदो आहे मिली सघे थो। दोस्तो इन ॼाण खां पोइ ॿुधंदासीं भगवंती नावाणी जंहिंजो ही सुहिणो गीत सारे जग जा, गोवर्धन भारती जन जो लिखियल, सी अर्जुन जन जी म्यूजिक में, सिंधुअ जे किनारे फिल्म जो ॿुधंदासीं ही सुहिणो गीत भगवंती नावाणी जन जो।

दोस्तो, इन गीत सां गॾु ई अॼु जे कार्यक्रम जो वक़्तु बि पूरो थियो आहे। पर दोस्तो, हलंदे हलंदे मां हिकु नंढी हिदायत तव्हांखे ॾियणु चाहींदसि त ॿाहिरि ॾाढी उस आहे, लू जा थपेड़ा था हलनि। दोस्तो, सावधानी रखो, पंहिंजो ख़्यालु रखो जेतिरो थी सघे। अगरि ॾाढो ज़रूरी न आहे, दोस्तो मजबूरी आहे, नौकरीअ ते वञिणो आहे, कम ते वञिणो आहे, अगरि ज़रूरी न आहे त घर खां ॿाहिरि न निकिरो, पंहिंजो ध्यानु रखो। हिन सां गॾु ई अॼु जे कार्यक्रम जो वक़्तु बि पूरो थियो। वरी जल्द मिलंदासीं हिकु नए समाचार सां, हिकु नई ख़ुशीअ सां। जेसिताईं पंहिंजी रेडियो साथी कविता चांदवानीअ खे ॾींदा इजाज़त। जय झूलेलाल, सभ जो भलो।

0: मीडियम वेव 188.32 मीटर यानी 1593 किलोहर्ट्ज़ पर, साथ ही डीटीएच के ऑडियो चैनल और न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर रोजाना सुनिए 5:02 पर युववाणी। युवा प्रस्तोताओं और रेडियो एंकर्स का शानदार अंदाज, युवा ख्वाबों को साकार करती सक्सेस स्टोरीज, युवा मनोभावों को व्यक्त करती कविता कहानियां और देश विदेश की रोचक जानकारी, साथ ही दिलकश फिल्मी गाने, तो सुनना ना भूलिए आपका अपना कार्यक्रम युववाणी।
1: ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है, कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है जिले की चिट्ठी।
2: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है दतिया जिले की चिट्ठी। आलेख मनोज गोस्वामी का है, वाचन स्वर है अभिषेक कटियार का। दतिया जिले में इस समय भीषण गर्मी पड़ रही है। अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच गया है, जिससे जनजीवन प्रभावित हुआ है और दोपहर के समय सन्नाटा छा जाता है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर बीके वर्मा ने बताया है कि अत्यधिक गर्मी और लू जानलेवा हो सकती है। गर्मी के दिनों में धूप में बाहर जाते समय हमेशा सफ़ेद और हल्के रंग के ढीले सूती वस्त्रों का ही प्रयोग किया जाना चाहिए। भोजन करके एवं पानी पीकर ही घर से बाहर निकले। बाहर जाते समय भी अपने साथ पानी रखें और गर्मी के दिनों में बच्चों और बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखा जाए, उन्हें धूप में घर से बाहर न निकलने दें और समय समय पर पानी पीने के लिए प्रेरित करें। दतिया जिले में युवा संगम रोजगार स्वरोजगार मेले का आयोजन कल किया जाएगा। युवाओं से दस्तावेजों के साथ इसमें शामिल होने की अपील की गई है। कलेक्टर स्वप्निल वानखेड़े की अध्यक्षता में जिले की कानून व्यवस्था के संबंध में 28 मई को एक बैठक का आयोजन भी किया गया है। जिला प्रशासन द्वारा वृद्धजनों के सम्मान, मनोरंजन, बेहतर स्वास्थ्य और खुशहाल वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से एक अनूठी पहल जिले में की गई है। रेडक्रॉस भवन में संचालित आनंद घर डे केयर सेंटर में वृद्धजनों के लिए सप्ताह के सातों दिन अलग अलग विभागों के समन्वय से विभिन्न रचनात्मक और स्वास्थ्य संबंधी गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। जिले में अवैध खनिज उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण के विरुद्ध लगातार सख्त अभियान चलाया जा रहा है। प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीम के द्वारा रतनगढ़ माता मंदिर रोड सहित विभिन्न क्षेत्रों में आकस्मिक जाँच और छापामार कार्यवाही बीते दिनों की गई। टीम के द्वारा संदिग्ध वाहनों की जाँच की गई। जाँच के दौरान कई वाहन चालकों द्वारा खनिज परिवहन से संबंधित वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जा सके। वे बिना अनुमति और बिना वैध परिपत्र के खनिज का अवैध परिवहन, उत्खनन और भंडारण कर रहे थे। अभियान के दौरान प्रशासन की टीम ने ग्राम इंदरगढ़ क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई करते हुए लगभग 1500 घन मीटर रेत जब्त की। बाद में इन अवैध रेत भंडारों को नष्ट करने की कार्रवाई भी की गई। दतिया स्थित जिला जेल में मुलाकात कक्ष में लीगल एड हेल्प डेस्क की स्थापना की गई है। स्थापित हेल्प डेस्क में प्रतिदिन प्रातः 10 बजे से 12 बजे तक लीगल एड डिफेंस काउंसिल में नियुक्त अधिवक्ताओं की ड्यूटी लगाई गई है। हेल्प डेस्क में नियुक्त लीगल एड डिफेंस काउंसिल द्वारा मुलाकात कक्ष में बंदियों के परिजनों को मौके पर ही कानूनी सलाह और सहायता तथा केस की जानकारी और अपील संबंधी मार्गदर्शन प्रदान किया जा रहा है। पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों की उच्च शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के उद्देश्य से छात्रवृत्ति योजना संचालित की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत शैक्षणिक सत्र 2025-26 में दतिया जिले से अध्ययनरत पिछड़ा वर्ग जाति के 532 छात्रों को छात्रवृत्ति राशि 91,59,000 रुपये का भुगतान किया गया है। सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग जिला दतिया के द्वारा जिले के सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं कि राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत लाभान्वित दिव्यांगजनों के डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट आगामी 15 दिनों के भीतर अनिवार्य रूप से तैयार किए जाएं। कलेक्टर स्वप्निल वानखेड़े द्वारा जनगणना के तहत चल रहे मकान सूचीकरण कार्य में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले सुपरवाइजरों को प्रशस्ति पत्र देकर बीते दिनों सम्मानित किया गया। कलेक्टर ने कहा कि सटीक मकान सूचीकरण न केवल जनगणना के लिए बल्कि भविष्य में विकास योजनाओं के लाभार्थियों तक पहुंच भी सुनिश्चित करेगा। उन्होंने सभी सुपरवाइजरों और फील्ड कर्मचारियों से अनुरोध किया कि जनगणना का कार्य निष्ठा और ईमानदारी से करें, ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए भरोसेमंद रिकॉर्ड बने। जिला स्तरीय परियोजनाओं, न्यायालयीन मामलों में समन्वय और विकासात्मक योजनाओं की समीक्षा करने के उद्देश्य से प्रधान न्यायाधीश विजय चंद्र की अध्यक्षता में जिला मॉनिटरिंग सेल की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश विजय चंद्रा ने मॉनिटरिंग सेल की पिछली बैठकों में लिए गए निर्णयों की प्रगति रिपोर्ट पर संक्षिप्त टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि न्यायालयीन व्यवस्थाओं और जिला स्तर पर चल रहे विकास कार्यों के बीच समन्वय बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है, ताकि जनहित से जुड़े कार्य समयबद्ध और प्रभावी ढंग से पूर्ण हों। श्री चंद्रा ने बताया कि 21 अगस्त से 23 अगस्त तक 3 दिवसीय विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें पक्षकारों की सहमति से बैंकिंग, सिविल, मोटर दुर्घटना, उपभोक्ता विवाद, रेरा, पारिवारिक विवाद, भूमि अधिग्रहण, किराया नियंत्रण आदि जैसे प्रकरणों का निराकरण किया जाएगा। दतिया जिले में मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के द्वारा संपर्क अभियान चलाया जा रहा है। प्रबंध संचालक ऋषि गर्ग ने बताया कि संपर्क अभियान में बिलों का सुधार किया जा रहा है। दतिया जिले की चिट्ठी में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे जिले की चिट्ठी। इसमें आज आपने सुनी दतिया जिले की चिट्ठी। आलेख मनोज गोस्वामी का था, वाचन था अभिषेक कटियार का।
1: मीडियम वेव पर आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। सुबह के 10:05 हुए हैं। वंदे मातरम गौरव गान की डेढ़ सदी। आज की इस कड़ी में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है।

श्रोताओं, वंदे मातरम। ये प्रत्येक भारतीय का अपनी मातृभूमि को प्रणाम है, उनकी स्तुति है, उनकी प्राकृतिक सुंदरता, ऐतिहासिक धार्मिक पृष्ठभूमि का गुणगान है। स्वतंत्रता आंदोलन में जन जन का प्रेरणा स्रोत वंदे मातरम गीत आज 150 वर्ष पूर्ण कर चुका है।

वंदे मातरम गौरव गान की डेढ़ सदी एक राष्ट्रीय पहल है जिसका उद्देश्य इस राष्ट्रगीत की अमर भावना और आज़ादी आंदोलन में इसकी ऐतिहासिक भूमिका को याद करना है।

वंदे मातरम प्रत्येक भारतीय की दिनचर्या का प्रथम अभिवादन होना चाहिए। राष्ट्र की सामूहिक भावना और एकजुट आह्वान का मूल मंत्र आज भी यही है, वंदे मातरम।

हम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 10:10 होने वाले हैं। विश्व दर्पण कुछ ही पलों में हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं लवलीन निगम। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ समझौते पर काफी हद तक सहमति बनी, हॉर्मुज जल डमरू मध्य को फिर से खोलना भी शामिल। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। अमेरिका में व्हाइट हाउस के पास गोलीबारी करने वाले संदिग्ध को सीक्रेट सर्विस ने मार गिराया। कांगो में इबोला संक्रमण से मरने वालों की संख्या 204 हुई। अफ्रीकी संघ ने इसके और देशों में फैलने की चेतावनी दी। और टेनिस में फ्रेंच ओपन ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट आज से पेरिस में शुरू। अब समाचार विस्तार से। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इसराइल से बातचीत के बाद ईरान के साथ एक समझौते पर काफी हद तक सहमति बन चुकी है। उन्होंने कहा कि समझौते में होर्मुज जल डमरू मध्य खोलना भी शामिल है। एक रिपोर्ट।
1: श्री ट्रंप ने कहा कि समझौते के अंतिम पहलुओं और विवरणों पर चर्चा जारी है, शीघ्र ही इसकी घोषणा की जाएगी, लेकिन उन्होंने समझौते की समय सीमा के बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि समझौते के बारे में इसराइल के साथ सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र, जॉर्डन और बहरीन से बात की गई है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाकाई ने अमरीकियों पर विरोधाभासी बयान देने का आरोप लगाया। अमेरिका और ईरान के बीच 8 अप्रैल को युद्ध विराम पर सहमति बनी थी और तब से दीर्घकालिक शांति समझौते के लिए बातचीत जारी है। अमेरिका द्वारा ईरान के बंदरगाहों की नाकेबंदी के कारण ईरान ने होर्मुज जल डमरू मध्य को बंद कर दिया है। समझौते को लेकर मुख्य रुकावटें ईरान के परमाणु कार्यक्रम के भविष्य और होर्मुज जल डमरू मध्य पर उसके प्रभाव तथा क्षेत्र में अमरीकी सैन्य उपस्थिति से संबंधित रही है। समाचार कक्ष से चंद्रशेखर शर्मा।
0: विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में हैदराबाद हाउस में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। वे क्षेत्रीय और वैश्विक शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों सहित कई विषयों पर चर्चा करेंगे। विदेश मंत्री रूबियो क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होने के लिए 4 दिन की यात्रा पर कल भारत

0: प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने पर विचार विमर्श किया जाएगा। बैठक में क्वाड की वर्तमान पहलों की प्रगति की समीक्षा की जाएगी और हिंद प्रशांत क्षेत्र में हाल के घटनाक्रमों तथा आपसी चिंता के अन्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा होगी। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
1: श्री रूबियो ने कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और उन्हें रक्षा, रणनीतिक प्रौद्योगिकी, व्यापार और निवेश तथा ऊर्जा सुरक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग में हो रही प्रगति के बारे में जानकारी दी। श्री मोदी ने कहा कि भारत और अमेरिका वैश्विक कल्याण के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। प्रधानमंत्री ने शांति प्रयासों के लिए भारत के निरंतर समर्थन की बात दोहराई और बातचीत तथा कूटनीति के जरिए संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान की अपनी अपील को दोहराया। विदेश मंत्री रूबियो ने पश्चिम एशिया की स्थिति सहित विभिन्न क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर अमरीकी दृष्टिकोण को साझा किया। उन्होंने भारत को अमरीका का अत्यंत महत्वपूर्ण साझेदार बताया। इस बीच श्री रूबियो ने कहा है कि अमरीका जिस तरह से हिंद प्रशांत क्षेत्र को देखता है उसमें भारत की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में अमरीकी दूतावास की सपोर्ट एनेक्स बिल्डिंग का उद्घाटन करते हुए श्री रूबियो ने कहा कि भारतीय कंपनियों ने अमरीका में $20 अरब का निवेश किया है।
2: Expanded commercial ties. अब हमारे व्यापारिक संबंध और भी बढ़ गए हैं। इसमें भारतीय कंपनियों का अमेरिका में $20 अरब से अधिक का निवेश शामिल है। हमने हिंद प्रशांत क्षेत्र में सैन्य अभ्यासों के माध्यम से अपनी सुरक्षा साझेदारी को और भी मजबूत बनाया है। निश्चित रूप से इस महत्वपूर्ण रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए एक व्यवस्थित और सुरक्षित काउंसलर प्रणाली की अत्यंत आवश्यकता है।
1: भारत ने पैक्स सिलिका समझौते पर भी हस्ताक्षर किए हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल कल से भारतीय व्यापार जगत के नेताओं के साथ प्रतिनिधि मंडल के साथ कनाडा की 3 दिन की यात्रा पर रहेंगे। वाणिज्य मंत्रालय ने बताया है कि श्री गोयल ओटावा टोरंटो में द्विपक्षीय बैठकें करेंगे जिसका उद्देश्य व्यापार, निवेश और भारत कनाडा व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते CEPA पर चल रही बातचीत को आगे बढ़ाना है। दोनों देशों का साझा लक्ष्य वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाकर $70 अरब तक पहुंचाना है। अमेरिका में व्हाइट हाउस के सुरक्षा जांच चौकी पर गोलीबारी करने वाले व्यक्ति की पुलिस जवाबी कार्रवाई में मौत हो गई है। सीक्रेट सर्विस ने बताया है कि अधिकारियों की जवाबी फायरिंग में घायल होने के बाद संदिग्ध को अस्पताल ले जाया गया जहां बाद में उसकी मृत्यु हो गई। कानून प्रवर्तन एजेंसी ने बताया है कि 17वीं स्ट्रीट और पेंसिल्वेनिया एवेन्यू क्षेत्र में मौजूद व्यक्ति ने सुरक्षा जांच चौकी पर गोलीबारी की। संदिग्ध की पहचान 21 वर्षीय युवक के रूप में हुई है। घटना में एक नागरिक भी घायल हुआ है। हालांकि अधिकारियों ने कहा है कि अभी ये स्पष्ट नहीं है कि उसे संदिग्ध की गोली लगी या अधिकारियों की फायरिंग से चोट पहुंची। घटना के समय अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में मौजूद थे। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। कांगो में इबोला प्रकोप के कारण अब तक 204 लोगों की मौत हो गई है। अफ्रीकी संघ के स्वास्थ्य एजेंसी ने कल चेतावनी दी थी कि कांगो और युगांडा के अलावा अफ्रीका के अन्य देशों में भी इबोला वायरस फैलने का खतरा है। रेड क्रॉस ने बताया है कि कांगो में उनके 3 स्वयंसेवकों की भी इस वायरस के कारण मौत हो गई। संयुक्त राष्ट्र में परमाणु अप्रसार संधि NPT की समीक्षा के लिए आयोजित 4 सप्ताह का सम्मेलन बिना किसी निष्कर्ष के समाप्त हो गया। सम्मेलन के अध्यक्ष और संयुक्त राष्ट्र में वियतनाम के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत डो युंग वियत ने इस पर निराशा व्यक्त करते हुए संधि के भविष्य प्रभावशीलता को लेकर चिंता जताई। श्री वियत ने कहा कि उन्हें इस बात का खेद है कि सम्मेलन किसी अंतिम निष्कर्ष दस्तावेज पर सहमति नहीं बना सका। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने भी सम्मेलन में सहमति नहीं बनने पर निराशा व्यक्त की। परमाणु अप्रसार संधि के पक्षकार देशों का 11वां समीक्षा सम्मेलन 27 अप्रैल से 22 मई तक संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में आयोजित किया गया था। इस बीच रूस ने कहा है कि परमाणु अप्रसार संधि NPT के समीक्षा सम्मेलन में अंतिम दस्तावेज को मंजूरी नहीं मिल सकी क्योंकि कुछ मुद्दों पर अमरीका के कड़े रुख के कारण सहमति नहीं बन पाई। अमेरिका में सांसदों और आवर्जन अधिकार कार्यकर्ताओं ने ट्रंप प्रशासन की नई ग्रीन कार्ड नीति की कड़ी आलोचना की है। इस नीति के अंतर्गत ग्रीन कार्ड के लिए आवेदन करने वाले लोगों को अपने ही देश से आवेदन करना होगा। डेमोक्रेटिक सांसदों ने इस फैसले को गलत बताते हुए कहा कि वे अमरीकी नागरिकता और आवर्जन सेवा के इस निर्णय के खिलाफ हर संभव कदम उठाएंगे और इसे वापस लेने की मांग करेंगे।

0: वेनेजुएला की नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मारिया कोरीना मचाडो ने फिर से राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष के अंत तक अपने देश लौटने की योजना बना रही हैं। नोबेल विजेता मचाडो ने ये बात कल पैनामा सिटी में वेनेजुएला के विपक्षी नेताओं के साथ बैठक के दौरान की। मचाडो दिसंबर से निर्वासन में रह रही हैं। वेनेजुएला में 11 महीने तक छिपकर रहने के बाद नॉर्वे गई थी, जहां उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हालांकि अभी स्पष्ट नहीं है कि वेनेजुएला में राष्ट्रपति चुनाव कब होगा। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों ने कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज की सराहना की है। रोड्रिगेज ने ईरान युद्ध के कारण बढ़ती तेल कीमतों के बीच वेनेजुएला के तेल उद्योगों को अमरीकी निवेश के लिए खोल दिया है। फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट आज से पेरिस में शुरू हो रहा है। नोवाक जोकोविच रिकॉर्ड 25वें ग्रैंड स्लैम खिताब के लिए मैदान में उतरेंगे। दूसरी वरीयता प्राप्त और 2024 के फाइनलिस्ट अलेक्जेंडर ज्वेरेव और सातवीं वरीयता प्राप्त टेलर फ्रिट्स की भी आज चुनौती होगी। महिला सिंगल्स में मौजूदा चैंपियन कोको ग्राफ और विश्व के नंबर एक खिलाड़ी आयरना सैबालेंका अपने अपने मुकाबले खेलेंगी। पुरुष डबल्स में भारत के यूकी भांबरी न्यूजीलैंड के माइकल वीनस के साथ जोड़ी होगी। एन श्रीराम बालाजी ब्राजील के मार्सेलो डेमोनिलर की जोड़ी की भी चुनौती रहेगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ समझौते पर काफी हद तक सहमति बनी, होर्मुज जल डमरू मध्य को फिर से खोलना भी शामिल। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। अमेरिका में व्हाइट हाउस के पास गोलीबारी करने वाले संदिग्ध को सीक्रेट सर्विस ने मार गिराया। कांगो में इबोला संक्रमण से मरने वालों की संख्या 204 हुई। अफ्रीकी संघ ने इसके और देशों में फैलने की चेतावनी दी। और टेनिस में फ्रेंच ओपन ग्रैंड स्लैम आज से पेरिस में शुरू। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 374.5 मीटर अर्थात 801 किलोहर्ट्ज़ पर और न्यूज ऑन एयर ऐप पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से। सुबह के 10:20 हुए हैं। श्रोताओं, हम हाजिर हैं फरमाइशी फिल्मी गीतों के कार्यक्रम सारंगा के साथ। आप सभी को अस्मिता का नमस्कार। पहले गीत में पसंद आप सभी की छत्रपति शंभाजी नगर से राजेश सावले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि श्रीमती शीतल राजेश, दिल्ली शहर मोरी गेट से कन्हैया लाल, रीता देवी, शिल्पा रानी, आकाश कुमार, कंवर कॉलोनी बड़वाह से प्रवीण श्रीमाली, मीना आदित्य, अदिति शिवानी और मीनू राज श्रीमाली, ग्राम पंचायत बठेना से बलकरण वर्मा, अंजनी ज्योति, रेखा और धनेश्वरी वर्मा। आप सभी ने लिख भेजा है। मुकेश और साथियों के गाए इस गीत के लिए शब्दकार मजरूह सुल्तानपुरी, संगीतकार राहुल देव बर्मन और फिल्म का नाम धर्म करम।

सारंगा कार्यक्रम के अगले गीत में पसंद आप सभी की। चटौदा सारागांव से सुजान वर्मा, सुहद्रा, आयुषी और कृत वर्मा। बनियाबारा धमतरी छत्तीसगढ़ से रामचंद माखीजा काफिर, श्रीमती सविता माखीजा, बेबी स्वाति, माही, पूजा, छुटकी, शरद और समस्त माखीजा परिवार। आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, मेहराज जहां। भाटापारा दतरेंगी छत्तीसगढ़ से दीपक कुमार वर्मा, झावेंद्र कुमार, किशोर कुमार और द्वारिका प्रसाद वर्मा। आप सभी ने लिख भेजा है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी के युगल स्वर में इंद्रजीत सिंह तुलसी के लिखे इस गीत के लिए। फिल्म का नाम चोर मचाए शोर और संगीतकार हैं रविंद्र जैन।

आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सारंगा। लीजिए सुनिए जानवर फिल्म का गीत मोहम्मद रफ़ी के स्वर में, शब्दकार हसरत जयपुरी, संगीतकार शंकर जयकिशन। और इस गीत के लिए हमें पत्र भेजे हैं आप सभी श्रोताओं ने। बेरड़ी से राजेश सोनी, कंचन सोनी, गायत्री ढोमने, वैष्णवी चंचल ढोमने, अर्जुन गवणेकर, धीरज सव्वासेरे, अंबेडकर चौक खुरई से राम सखी, परमानंद, सौरभ, गौरव, एलपी रोहित, लल्लू राम, पूरन रोहित, छोटू, डुंडुन एवं इनके परिवार के सभी सदस्य, महाराजा रेडियो श्रोता संघ जिला खंडवा ग्राम लोहारी से विशाल कुमार धंजे, राहुल कुमार धंजे, शीला गायत्री और राजेश कुमार धंजे, खुर्दी रोड मानपुर से महिमा वैद्य, नीतू रानी और विजय वैद्य। तो लीजिए आप सभी की फरमाइश पर मोहम्मद रफ़ी के स्वर में ये गीत।

सारंगा कार्यक्रम के अगले गीत के लिए हमें पत्र भेजे हैं आप सभी श्रोताओं ने। देवरी भाटापारा छत्तीसगढ़ से गन्नूलाल रजक, के आर साहू, अश्विनी।

वर्मा, गणेश मिस्त्री, कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से अमित कुमार राय, हैप्पी श्रीमती उषा और ओम प्रकाश राय, दुबीहा नेवादा गाजीपुर से श्रीमती रोशनी राय, प्रांजल और प्रतीक राय, शेरपुर कलां गाजीपुर से अवधेश, श्रीमती प्रीति और नवनीत राय। आप सभी सुनना चाहते हैं मोहम्मद रफ़ी और गीता दत्त के युगल स्वर में आर पार फिल्म का ये नगमा। गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी, संगीतकार ओपी नैयर।

आर पार फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे, मोहम्मद रफी और गीता दत्त के युगल स्वर में। लीजिए अब सुनिए आक्रमण फिल्म का गीत, स्वर लता मंगेशकर और किशोर कुमार का है, शब्द रचना आनंद बख्शी की, तर्ज बनाई लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने, और इस गीत के लिए हमें फरमाइश भेजी है आप सभी श्रोताओं ने। नर्मदा कॉलोनी मंडला मध्य प्रदेश से डॉक्टर सिया शरण ज्योतिषी, पुष्पा ज्योतिषी, गोल्डी रोली, लकी, श्वेता और परु ज्योतिषी। गुजराती कॉलोनी जबलपुर से श्री राम नामदेव, अंजू, सरस, नमन, आर्यन, अष्टी, आर्या, धार्या, रश्मि, चंचल, रोशनी और इनके परिवार के सभी सदस्य। प्रणाम सिटी खंडवा से यथार्थ कुमार खंडाले, सुभाष खंडाले, मंदा, राजेश कुमार, अंजलि, संदीप कुमार, माधुरी, पिंटू कुमार और जयश्री खंडाले। तो लीजिए आप सभी की फरमाइश पर आक्रमण फिल्म का ये नगमा।

आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से इस समय प्रसारित किया जा रहा है फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सारंगा। इस गीत के लिए हमें फरमाइश भेजी है आप सभी श्रोताओं ने। मयंक रेडियो श्रोता संघ नवागढ़ कटई से नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत, सीमा शारदा, दामिनी वर्मा। छत्तीसगढ़ बेमेतरा से सुरेश कुमार सारथी, भाई कमलकांत, वीरेंद्र और ब्रिजकांत सारथी। गड़िया मोजे अस्तु से प्रदीप कुमार मंडल, आशीष कुंदन, करीना कुमारी, पूजा आरती, सुनीता देवी। आप सभी सुनना चाहते हैं लता मंगेशकर के स्वर में छोटी सी बात फिल्म का ये नगमा। गीतकार योगेश, संगीतकार सलील चौधरी।

कार्यक्रम के आखिर में फरमाइश करता आप सभी श्रोता, घंटाघर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र, सन्मति पंचोलिया, पटेल नगर मलोट पंजाब से डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी, गगनदीप बेबी आरजू, गौरीनगर इंदौर से आनंद कुमार कामले, रेखा राखी पारस तपस्या करिश्मा कामले, ग्राम पजौनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार चंसोलिया, आदर्श सार्थक और अलौकिक, आप सभी ने सुनना चाहा है मुकेश और साथियों की आवाज़ में संबंध फिल्म का ये गीत। शब्द रचना कवि प्रदीप की है, तर्ज बनाई है ओपी नैयर ने।

0: इस गीत के साथ ही आज का सारंगा कार्यक्रम अब संपन्न होता है। मीडियम वेव पर आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। सुबह के 10:58 हुए हैं। आकाशवाणी मध्य प्रदेश के कार्यक्रम अब हम रिले करेंगे। सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस।
1: जो भी मदद संभव होगी वह की जाएगी। प्रदेश न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी में किसानों की संख्या के मामले में अब तक 13,000-10,000 किसानों से गेहूं खरीदकर देश में पहले स्थान पर है। वहीं मात्रा के मामले में अब तक 100 लाख मीट्रिक टन गेहूं का उपार्जन कर देश में दूसरे स्थान पर है। भोपाल में सेवानिवृत्त जज की बहू त्विशा शर्मा की मौत के मामले का सर्वोच्च न्यायालय ने कल स्वतः संज्ञान लिया है। देश के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की पीठ कल इस मामले पर सुनवाई कर सकती है। जलगंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत गंगा दशमी पर कल प्रदेश में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर आज निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। पहला सत्र प्रातः 9:30 से और दूसरा सत्र दोपहर 2:30 से 4:30 तक संचालित रहेगा। मध्य प्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड के द्वारा घोषित राज्य स्तरीय वार्षिक जैव विविधता पुरस्कार 2024 और 2025 में दक्षिण पन्ना वनमंडल को जैव विविधता स्वामित्व रखने वाले सर्वश्रेष्ठ विभाग की श्रेणी में सम्मानित किया गया है। और गुरिंदर वीर सिंह ने फेडरेशन कप एथलेटिक्स प्रतियोगिता में पुरुषों की 100 मीटर स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीत लिया है। उन्होंने 10.09 सेकंड के नए राष्ट्रीय कीर्तिमान के साथ ये उपलब्धि हासिल की। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
2: ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने।
3: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। पेश है फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने। सभी सुनने वालों को आपके रेडियो मित्र दिनेश कुमार का प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम आरंभ करने से पहले एक जरूरी बात, फोन करें गीत सुने कार्यक्रम अब रिकॉर्ड किया जाता है सुबह 10:30 से 11:00 और कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए हमारा टेलीफोन नंबर है 2660902 और एसटीडी कोड है 075।
4: हेलो, फोन करें गीत सुने।
3: जी फोन करें गीत सुने आकाशवाणी मध्य प्रदेश। कौन बोल रहे हैं आप?
4: हम सागर से बोल रहे हैं, पंडित सिमनाथ तिवारी।
3: क्या करते हैं आप?
4: पंडिताई करते हैं सर।
3: अच्छा, तो बताइए क्या सुनना चाहेंगे आज?
4: आज सुनना चाहेंगे सौतन की बेटी का।
3: सौतन की बेटी का कौन सा गीत के बोल बताएंगे?
4: ये हल्का हल्का सुरूर है।
3: ये जो हल्का हल्का सुरूर है, बहुत बढ़िया। और कुछ कहना चाहेंगे आप?
4: गर्मी बहुत पड़ रही है सर।
3: गर्मी बहुत पड़ रही है और सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है।
4: बिल्कुल बिल्कुल,
3: 44, 45, 46 जो कभी हम लोग नहीं देख पाते थे अब उसका। इसमें कहीं ना कहीं गर्मी जो इतनी ज्यादा पड़ रही है इसका कारण कहीं ना कहीं हम लोग हैं।
4: हाँ, वही तो, जंगल कट रहे हैं, प्रदूषण बढ़ रहा है।
3: आप जैसे जागरूक श्रोता अगर ये जानते हैं तो इसके लिए आप कुछ कर रहे हैं क्या?
4: वृक्ष लगाते हैं, वृक्ष हरे हरे वृक्ष होने चाहिए, लगाना चाहिए।
3: जी जी जी,
4: हमारे खेत पले हुए हैं।
3: ठीक है, तो आपका गीत आ रहा है आपके रेडियो सेट पर। कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

अरे अब कौआ काटे या सांप डसे, तूने प्यार का जहर पिला दिया, मुझे एक शराबी बना दिया, अरे मुझे एक शराबी बना दिया।

0: फोन कर इस गीत सुने आकाशवाणी मध्य प्रदेश, हमारी बात किन से हो रही है हम जानना चाहेंगे।
1: जी सर नमस्ते, मैं ग्राम बछोड़ा तहसील नागदा जिला उज्जैन से प्रेम सिंह।
0: प्रेम सिंह बोल रहे हैं?
1: जी सर।
0: नागदा उज्जैन से आज क्या सुनना चाहेंगे आप?
1: जी सर मैं फिल्म का नाम है हमराज और गाने के बोले नीले गगन के तले धरती का प्यार पले।
0: नीले गगन के तले, बहुत बढ़िया गीत आपने पसंद किया है, लेकिन अभी तो मौसम

0: है, बड़ा गरम गरम सा हो रहा है कुछ।
1: जी बिल्कुल, काफी गर्म हो रहा है। आपको
0: हाँ
1: बताऊं,
0: हाँ जी
1: टेम्परेचर हमारे यहाँ पे 45 डिग्री के करीबन चल रहा है। करीबन
0: जी जी
1: मतलब 20 दिन से ऐसा ही लगभग मौसम हो रहा है, और काफी गर्म तेज हवाएं भी चल रही है।
0: जी जी लेकिन हमने इसलिए मौसम की गर्म की बात की क्योंकि ये जो गीत फिल्माया गया है नीले गगन के तले, एक शरद ऋतु में फिल्माया गया है ना।
1: जी बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो
1: वैसे मैं बताऊं आपको, जैसे कि मेरे घर के पास में 2 बड़े बरगद के पेड़ हैं,
0: जी
1: वहाँ पे मतलब काफी पक्षी आते हैं, शाम के समय आते हैं, सुबह के समय आते हैं। तो उनकी जब चहचहाट होती है ना, तो मतलब उस समय शाम का जब समय होता है ना, तो काफी अच्छा लगता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए जो कुदरत जो हमें देती है, कुदरत की जो ध्वनियाँ होती है, चाहे पंछियों की हो चाहे पेड़ों की सरसराहट की हो, उसका एक अलग ही मजा होता है ना।
1: जी बिल्कुल। तो उन जो पक्षी आते हैं ना, उनके लिए हमने मतलब है ना,
0: जी
1: दो तीन टब में पानी भर के रखा हुआ है, और ऐसे मतलब
0: बहुत
1: पतंगे भी
0: बढ़िया
1: ऊपर के लटका रखे हैं मतलब पेड़ के नीचे,
0: जी
1: ताकि उनमें बैठे वो और पानी पिए। और
0: जी
1: मतलब कुछ ऐसे पक्षियों के लिए मतलब दाने भी बिखेर रखे हमने, कि वो पानी भी पिए, मतलब वहाँ
0: बहुत
1: पे बैठे
0: बढ़िया जी
1: और वो
0: जी जी
1: अपना दाना भी खाए।
0: प्रेम सिंह जी, आप तो गांव में रहते हैं, हम शहर में रहते हैं, उसके बावजूद हम क्या करते हैं, छत पर एक सकोरा रखते हैं, एक पीछे गार्डन में रखते हैं और एक आगे रखते हैं, और उसके अलावा चिड़िया, गिलहरी और कबूतर पूरे सब आके उसमें बिल्कुल पानी पीना खाना और आवाज़ देते हैं, आपको बताएं सवेरे सवेरे से हमको।
1: जी बिल्कुल। अगर उसमें पानी खत्म हो जाता है ना सर, तो वो
0: हाँ
1: मतलब उस
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: बर्तन के
0: बिल्कुल
1: आसपास में
0: बिल्कुल
1: बैठ जाते हैं,
0: हाँ
1: और मतलब ऐसे बोलते हैं कि इसमें पानी
0: जी
1: खत्म हो गया, उनकी भाषा में बोलते हैं। तो हमें
0: बिल्कुल
1: मतलब पता चल जाता है कि इनके बर्तन में पानी खत्म हो गया है, इनके आसपास
0: बिल्कुल।
1: में दाने खत्म हो गए, तो डालना है हमें।
0: तो चलिए बहुत अच्छा लगा, आपका जो गीत है आपकी पसंद का हमराज फिल्म का आपके रेडियो सेट पर आ रहा है।

0: रफ़ी मंसूरी। बताइए मोहम्मद रफ़ी साहब, आप क्या सुनना चाहेंगे? आप तो खुद गानों के सरताज हैं, नाम आपका मोहम्मद रफ़ी है।
1: जी शुक्रिया। ये फकीरा का सुनवा दीजिएगा सर, हम तो झुककर सलाम करते हैं।
0: हाँ, बहुत बढ़िया गाना है और बहुत दिनों में सुनने में आएगा ये।
1: हाँ हाँ, ये हिडन गाने रहते हैं सर कुछ।
0: बहुत बढ़िया, एक अलग तरह के की पसंद है आपकी। आप कव्वाली बेस्ड गाने आप थोड़े से पसंद करते हैं मुझे से।
1: कव्वाली, शरारत और मस्ती भरे जो गाने रहते हो।
0: तो ये खूबसूरत सा गीत आपके रेडियो सेट पर आ रहा है, गीत का आनंद लीजिए।
1: धन्यवाद सर।

0: अस्सलाम वालेकुम।
1: नमस्कार।
2: नमस्ते सर।
1: फोन करें गीत सुने आकाशवाणी मध्य प्रदेश।
2: नमस्ते, गंगा मेरा बात करी नीमच से।
1: कैसी हैं गंगा जी आप?
2: अच्छे हूँ मैं सर, आप कैसे हो?
1: हाँ मैं भी बढ़िया हूँ। आज क्या सुनना चाहेंगी?
2: सर मूवी का नाम है हम किसी से कम नहीं और गाने का बोल है चांद मेरा दिल।
1: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया गीत पसंद किया है आपने। इसी गीत को पसंद करने की कोई खास वजह?
2: जी सर, हमारी सिस्टर को बहुत पसंद है ये सॉन्ग।
1: अच्छा।
2: हम उसके लिए सुन रहे हैं।
1: गीत आ रहा है आपके रेडियो सेट पर, आपके सिस्टर और आप दोनों गीत का आनंद ली। कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

0: फोन करेगी सुनी।
1: नमस्ते सर।
0: नमस्ते,
1: महेंद्र वर्मा बात कर रहा हूँ, मंदसौर।
0: महेंद्र वर्मा, स्वागत है महेंद्र जी का। क्या करते हैं महेंद्र जी, आप हमारे श्रोता जानना चाहेंगे?
1: सर मैं वेल्डिंग का काम करता हूँ।
0: क्या क्या बनाते हैं आप, वेल्डिंग करके या केवल?
1: सर वो गेट की फ्रेम आती है और वो सब आता है ना, वो सब बनाते हैं सर।
0: अच्छा, तो ये आपकी खुद की शॉप है या फिर आप कहीं किसी के पास काम करते
1: हैं?
0: शौक क्या क्या है आपके और?
1: सर हमारा शौक स्विमिंग करना है।
0: स्विमिंग, अरे वाह बहुत बढ़िया। तो वहाँ तो कुछ आसपास नदी या कुछ इस तरह का है, तालाब वगैरह क्या है आपके?
1: सर मंदसौर में।
0: मंदसौर में
1: वाटर पार्क है ना, मंदसौर में
0: वाटर पार्क में।
1: शिवना नदी भी है, वो पशुपतिनाथ मंदिर है ना वहाँ पे।
0: मतलब नेचुरल स्विमिंग का आनंद लेते हैं आप। तो आज क्या सुनना चाहेंगे?
1: सर मूवी का नाम है टेबल नंबर 21 और गाने की बोल है मन मेरा।
0: तो कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गीत आ रहा है आपके रेडियो सेट पर।

0: आकाशवाणी मध्य प्रदेश कार्यक्रम फोन करें, गीत सुने।
1: कालीचरण यादव बोला सर, संदलपुर आंतरी से।
0: कालीचरण यादव जी, आप कहाँ से बोल रहे हैं?
1: मैं ग्वालियर के पास गाँव, मेरा आंतरी संदलपुर।
0: संदलपुर, क्या करते हैं कालीचरण जी आप?
1: मैं पान की खेत में काम करता हूँ। पान की पान होता है हमारे गांव में, देसी पान होता है, मतलब गांव में संदलपुर में।
0: जी जी जी, तो ये पान की खेती में काम करते हैं या खेती आपकी खुद की है?
1: खुद की खेती करते हैं ना हम।
0: जी
1: होती है उसमें, देसी किरा से होती है, पान होते हैं हमारे।
0: क्या होते हैं फिर से बताइए थोड़ा सा।
1: देसी पान होता है हमारे गाँव में, गाँव रात्रि संदलपुर में।
0: हाँ हाँ हाँ, तो इसकी तो आपने पूरा पॉली हाउस के अंदर करते हैं या ओपन में करते हैं इसको?
1: तो पत्थर की दीवार होती है ऊंचाई में, उसमें फिर तैयार करके करना पड़ती है, बांस लगाना पड़ता है, बहुत मेहनत काम।
0: हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बांस लगाना पड़ती है, मंडप बनाना पड़ते हैं, है ना? हाँ हाँ, नहीं पॉली हाउस के अंदर हमने इसकी खेती देखी है।
1: आपने कहाँ देखी थी सर?
0: ये हरदा में।
1: हरदा में होती पानी खेती होती है, हरदा में भी होती पानी खेती वहाँ मालूम।
0: जी, तो आज क्या सुनना चाहेंगे कालीचरण जी?
1: मेरे को गाना सुनना है, बच्चा सुनवा दो आप। जब प्यार किसी से होता है 100 साल पहले मुझसे प्यार था, लता रवि के बारे में गाना है, पुरानी पिक्चर है।
0: हाँ, ये देवानंद और आशा पारिक की फिल्म है। तो चलिए, आपका गीत आ रहा है आपके रेडियो सेट पर।

0: नमस्कार, फोन करेगी सुने आकाशवाणी मध्य प्रदेश।
1: सर मैं ग्राम परसेंटा जिला फतेहपुर उत्तर प्रदेश यमुना बेल्ट के किनारे से मैं आपका दोस्त बेटा सिंह यादव बातचीत कर रहा हूँ। सर
0: क्या सुनना चाहेंगे आज आप?
1: तो सर दिल वाली दुल्हनिया ले जाएंगे, ये है ना जाने मेरे दिल को क्या हो गया था, अभी तो यही था अभी खो गया।
0: गीत आ रहा है आपके रेडियो सेट पर। कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

0: नमस्कार, फोन करें गीत सुने आकाशवाणी मध्य प्रदेश।
1: हेलो, राधे राधे सर
0: जी। नमस्ते।
1: हेलो,
0: कौन बोल रहे हैं, किससे बात हो रही है हमारी?
1: राधे राधे, राजनंदिनी बात कर रही हूँ।
0: राजनंदिनी, तो क्या सुनना चाहेंगे राजनंदिनी जी आप?
1: सर, मूवी का नाम है संघर्ष, गाने के बोले पहली पहली बार बली है दिल का हार।
0: और कुछ कहना चाहेंगी राजनंदिनी जी?
1: जी सर, कहना चाहेंगे अभी घर में बहुत पड़ रही है तो कृपया घर में आए।
0: जी, गर्मी बहुत पड़ रही है लेकिन जो काम है हम लोगों को वो तो करना ही होते हैं।
1: वो तो है सर, फिर भी जरूरत है, हमें तो ही बाहर निकले।
0: बिल्कुल, लेकिन लेकिन गर्मी के लिए, इसे बचने के लिए जो एहतियात है वो बरत सकते हैं हम लोग, है ना? अगर पैदल जा रहे हैं तो छाता लेकर जा सकते हैं, गाड़ी पर है तो टोपी लगा सकते हैं, है ना? और उसके
1: चीजों का सेवन करें, छाछ पिए,
0: बिल्कुल बिल्कुल, मठा पिए, नारियल पानी पिए, इस समय
1: इलेक्ट्रोल अपने साथ में हमेशा रखें,
0: इलेक्ट्रोल ग्लूकोज हमेशा अपने साथ रहे तो बहुत ही अच्छी बात है।
1: बहुत अच्छी बात है सर
0: जी। तो कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए राजनंदिनी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। गीत आ रहा है आपके रेडी सेट पर।

0: हॅलो, कार्यक्रम फोन
1: हेलो,
0: करें गीत सुने, आकाशवाणी
1: मैं
0: मध्य प्रदेश।
1: श्रीताप जाखड़े बोल रहा हूँ, पूरे महाराष्ट्र से। ये
0: श्रीताप जाखड़े। जाखड़े साहब आज क्या सुनना चाहेंगे?
1: भूमध्य रेखा का गाया हुआ गाना सुनना है, मधुमती का।
0: मधुमती फिल्म का कौन सा गीत?
1: मधुमती का है, टूटे हुए बागों ने हमको ये सिखाया है, दिल ने।
0: टूटे हुए ख्वाबों ने, ये सैड सॉन्ग।

0: सुनने का क्या कारण है, आपने कोई वजह है इसकी कुछ?
1: हाँ, हमको तो मतलब ये पुराने गाने बहुत पसंद है ना सर।
0: पुराने गाने आपको पसंद है इसलिए सुनना चाहते हैं। गीत बहुत अच्छा है,
1: सलीम चौधरी साहब का संगीत है।
0: तो गीत आ रहा है आपके रेडियो सेट पर, गीत का आनंद लीजिए।

0: अभी आपने सुना मधुमति फिल्म का गीत मोहम्मद रफी की आवाज में। पसंद करने वाले श्रोता थे महाराष्ट्र से श्रीताप जाखड़े। मधुमति फिल्म के इस गीत के साथ ही आज का फोन इन कार्यक्रम अब समाप्त होता है। अब अपने रेडियो मित्र दिनेश कुमार को इजाजत दीजिए। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने। ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रस्तुत है इस घंटे की खास खबरें।
1: मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा युवाओं को रोजगार

0: के अवसर उपलब्ध कराने से केंद्र सरकार की युवाओं के प्रति प्रतिबद्धता अभिव्यक्त होती है। केंद्र सरकार के आवास एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू आज जबलपुर के एक दिवसीय प्रवास पर हैं। वे यहां सामाज के एक कार्यक्रम में शामिल होने के साथ ही विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे। सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत की पीठ कल भोपाल के तुषार शर्मा की संदिग्ध परिस्थिति के मौत के मामले की सुनवाई कर सकती है। शीर्ष अदालत ने इस मामले का स्वतः संज्ञान लिया है। प्रदेश के सभी जिला मुख्यालय पर आज निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। जनगणना के प्रथम चरण में भोपाल नगर निगम सीमा में 7 लाख से अधिक मकानों की गणना का कार्य किया जा चुका है। इसके साथ ही 3,285 जनगणना ब्लॉकों में से 2,800 मकानों का सूचीकरण कार्य भी लगभग पूर्ण हो चुका है। प्रदेश के अधिकांश शहरों में तापमान 43 डिग्री सेल्सियस से पार पहुंच चुका है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले 4 दिनों तक प्रदेश में भीषण गर्मी और हीट वेव का अलर्ट बना रहेगा। और IPL क्रिकेट में आज 2 मुकाबले होंगे। पहला मैच मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुंबई में दोपहर 3:30 बजे से होगा। वहीं दूसरा मैच कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच शाम 7:30 बजे से होगा। विजेता टीमों को प्लेऑफ में जगह मिलेगी। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी फरमाइश। आपकी फरमाइश कार्यक्रम सुनने वाले तमाम श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, सबसे पहले जिस गीत को हमने लिया है उसके सुनने के ख्वाहिशमंद हैं आप सभी। अमित खातकर, निहारिका, शिवपाल, अनामिका, अवंतिका, शिवलेखा, पारसमणि और संदीप पाटिल। इसी गीत को सुनना चाहा है वसंत कुमार वर्मा, राजूबाई वर्मा, माया वर्मा, शोभा वर्मा, राहुल, ज्योति, अतुल, प्रियांश वर्मा और ऋषि वर्मा। इन्होंने ये हमें ख़त लिखा प्रेमिलागंज आटोल ज़िला रतलाम से। और आप सभी ने सुनना चाहा है अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाज़ों में दिल है तुम्हारा फिल्म का नगमा। तो आइए आप सभी की फरमाइश पूरी करते हैं और सुनवाते हैं ये नगमा।

भाटेपारा नंतेरी द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार, जावेद्र कुमार, अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारिणी, सूरज, सुजला, ज्योति और रियांश, खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सन्मति पंचोलिया, आप सभी ने सुनना चाहा है आँखें फिल्म का नगमा लता मंगेशकर की आवाज़ में। तो आइए आप सभी की फरमाइश पूरी करते हैं और सुनवाते हैं ये नगमा।

0: बात कभी कभी।
1: इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी फरमाइश। अगली फरमाइश हमें लिख भेजी है पाकिजा रेडियो श्रोता संघ वैष्णो कॉलोनी से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक, मोहम्मद शकील, मोहम्मद अलकना खत्री, अलमश खत्री, रमेश गौर और शादाब खत्री ने। एक और हमें ख़त मिलता है झारखंड से, लिखने वाले हैं विकास शर्मा, ज्योति, मीना, नीरा सिंह और इनकी परिवार के सभी सदस्य। इन्होंने सुनना चाहा है पिघलता आसमान फिल्म का नगमा, आवाज़ लता मंगेशकर की, बोल इंदिवर के और धुन बनाई कल्याण जी आनंद जी ने।

नेपाल पहले सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका, नूपुर, ऋषिका और रॉबिन, औरंगाबाद से राजेश साबले पाटिल, शीतल, राजदीप और राशि। आप सभी ने सुनना चाहा है उदित नारायण और अलका याग्निक, लता मंगेशकर की आवाज़ों में दिल तो पागल है फिल्म का नगमा। गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार उत्तम सिंह। तो आइए आप सभी की फरमाइश पर सुनते हैं उदित नारायण और लता मंगेशकर के युगल सुरों में दिल तो पागल है फिल्म का ये नगमा।

अय्यूब आपको सुन रहते हैं आप सभी की फरमाइश। लिखने वाले हैं अमरावती महाराष्ट्र से कमरुल्ला ठेकेदार, नसीम बेगम, आयशा खान, हादिया, आसमा, सालिया, शुएब खान, मुस्तबा, रऊफ और शरीद, गांधी बाग अकोला से रमेश और वैशाली। आप सभी ने सुनना चाहा है सोनू निगम की आवाज़ में ये नगमा। फिल्म का नाम दिल तो बच्चा है जी।

इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत में आपकी फरमाइश कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है कार्यक्रम संग्रहालय से। इसके अंतर्गत आज हम आपको सुनवा रहे हैं धारावाहिक पंचतंत्र का 11वां भाग।

0: प्रणाम श्रोतागण, आप सबके साथ मैं भी प्रस्तुत हूँ पंचतंत्र की कथाओं का रसास्वादन करने के लिए। आज हम प्रारंभ कर रहे हैं पंचतंत्र का चौथा प्रकरण लब्ध प्रणाशम, जिसे पंडित विष्णु शर्मा ने इस प्रकार प्रारंभ किया। समुत्पन्नेषु कार्येषु
1: समुत्पन्नेषु कार्येषु बुद्धिर्यस्य न हीयते स एव दुर्गतरति जलस्थो वानरो यथा। अर्थात कार्य में विपत्ति के आ जाने पर जिस व्यक्ति की बुद्धि क्षीण नहीं होती है वह दुर्गम मार्गों को भी पार कर सकता है। जैसे जल में निवास करने वाले रक्तमुख नाम के वानर ने अपनी बुद्धि के द्वारा एक बहुत बड़ी विपत्ति को पार कर लिया। वत्सगण सुनो, समुद्र के किनारे सभी ऋतुओं में फलने वाला एक विशाल जामुन का वृक्ष था। उस वृक्ष पर रक्तमुख नाम का एक वानर निवास करता था। किसी दिन संयोग से कराल मुख नाम का एक मगर समुद्र से निकलकर उस वृक्ष के नीचे कोमल बालुका भूमि पर बैठ गया। उसे देखकर रक्तमुख ने कहा,

महाशय, आप मेरे घर आए हुए अतिथि हैं, आइए इस अमृत के समान मधुर जामुन का आनंद लीजिए।

0: अतिथि तो नारायण का रूप होते हैं।
1: अरे ये तो बड़ी अच्छी बात है मित्र, मैं अवश्य मीठे जामन खाऊंगा। आज से हम मित्र हैं, मैं तुम्हें शास्त्र पाठ सुनाया करूंगा। वाह, अरे वाह मित्र वाह, ये तो सचमुच बड़े स्वादिष्ट है। मैं कुछ फल अपनी पत्नी के लिए ले जाता हूँ। हाँ, अरे वो बहुत प्रसन्न हो जाएगी, वो बेचारी अकेली घर में रहती है, ऐसे फल उसे कहाँ मिलते
0: अवश्य मित्र, परंतु तुम्हारे भाग का तुम खा लो। मैं भाभी के लिए और मीठे जामुन तोड़ कर ला देता हूँ, और भाभी को देवर की ओर से प्रणाम देना मित्र।
1: अवश्य दूंगा मित्र, अवश्य दूंगा। आज मैं चलता हूँ भाई। प्रिय प्रिय, अरे कहाँ हो तुम? अरे शीघ्र आओ, देखो तो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ।
2: नाथ,
1: देखो देखो,
2: वाह क्या स्वाद है। तुम इन अमृत तुल्य फलों को कहाँ से लाए हो?
1: भद्रे, रक्तमुख नाम का वानर मेरा अत्यंत घनिष्ठ मित्र हो गया, वही प्रेम पूर्वक प्रतिदिन इन फल को देगा, वो इसी फल वृक्ष में रहता भी है।
2: अच्छा। जो सदा इन अमृत तुल्य फलों को खाता है उसका हृदय भी अमृत के समान होगा। यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मुझे उसका हृदय ला कर दो, ताकि उसे खाकर मैं अमर हो जाऊं और तुम्हारे साथ आनंद भोगती रहूं।
1: प्रिय, ऐसी बात न कहो, वो मेरा भाई है, इस बात को मैं स्वीकार कर चुका हूँ। वो रोज फल देता है, मैं उसे मार नहीं सकता। इस निरर्थक आग्रह को तुम छोड़ दो।
2: इससे पूर्व कभी तुमने मेरे वचनों का उल्लंघन नहीं किया। जान पड़ता है वो कोई वानरी है, तुम्हें उससे अनुराग हो गया है, इसी कारण तुम दिन भर वहीं रहते हो।
1: ये तुम क्या कह रही हो? तुम व्यर्थ ही संदेह कर रही हो।
2: आज मैं तुम्हें भली भांति समझ गई हूँ, तुम मेरे प्रश्नों का उत्तर प्रसन्न मन से नहीं दे रहे हो और मेरे मन की कोई इच्छा भी पूरी नहीं करते हो। धूर्त, तुम्हारे हृदय में मेरी ही तरह कोई दूसरी प्रियतमा है।
1: नहीं नहीं प्राण प्रिय, अब मैं तुम्हारे पैरों पर गिर चुका हूँ और दासता के लिए प्रस्तुत हूँ, मुझ पर इतना प्रसन्न क्यों हो रही हो?
2: देखो, इस प्रकार मेरे चरणों में बैठकर झूठे प्रेम का ढोंग करना व्यर्थ है। यदि वो सचमुच वानर है तो उसके प्रति तुम्हारे हृदय में इतना स्नेह क्यों? यदि तुमने मुझे उसका हृदय लाकर नहीं दिया तो आज से मेरा अनशन है।
1: क्या करूं? अरे अरे, मैं उसे कैसे मार सकता हूं?
0: आओ आओ मित्र, आज इतने दिनों बाद क्यों आए? क्या बात है, सदा की भांति प्रसन्न नहीं हो, इस उदासी का क्या कारण है?
1: मित्र, तुम्हारी भाभी ने मुझे बहुत डांटा फटकारा।
0: हाँ?
1: उसने मुझसे कहा है कि मैं कृतघ्न हूं।
0: क्यों बोला?
1: और मैं उसे अपना मुंह न दिखाऊं।
0: अरे रे रे, ऐसी क्या बात हो गई?
1: क्योंकि भैया, मैं रोज तुम्हारे घर आकर चावल खाता हूँ और तुम्हारा कोई भी उपकार नहीं करता, कभी तुम्हें घर भी नहीं ले जाता, इसलिए आज मैं तुम्हें घर लेकर ही चलूंगा, अन्यथा वो मुझसे परलोक में ही मिलेगी।
0: ओह, ये बात है। अरे मित्र, इसमें कौन सी आपत्ति है? चलेंगे, कभी चलेंगे, जरूर चलेंगे।
1: नहीं नहीं मित्र, आज ही चलने के लिए प्रस्तुत हो जाओ, तुम्हारी भाभी तुम्हारी प्रतीक्षा में चौका सजाकर सुंदर गहनों और वस्तुओं से श्रृंगार करके द्वार पर वंदनवार सजाकर उत्कंठा पूर्वक बैठी है।
0: मित्र।

0: मित्र, मैं तुम्हारा प्रेम समझता हूँ, परंतु हम जंगल में रहने वाले लोग हैं, जल के भीतर कैसे जा सकते हैं? आप भाभी को यहाँ ले आए जिससे मैं प्रणाम करके उनका भी आशीर्वाद ले सकूं।
1: रक्तमुख भाई, हाँ? समुद्र के भीतर एक अत्यंत रमणीय टापू पर मेरा घर है।
0: अच्छा,
1: तुम मेरी पीठ पर बैठकर अत्यंत सुख से निर्भय होकर वहां पहुंच सकते हो।
0: यदि ऐसी बात है तो विलंब क्यों, शीघ्र चलें। लीजिए, मैं आपकी पीठ पर चढ़ जाता हूँ।

0: भाई तनिक धीरे धीरे चलिए, जल की इन लहरों से मेरा शरीर भीगता जा रहा है, ऐसा लगता है मैं अभी डूब जाऊंगा।
1: अब तुम्हें ऐसे बीच सागर में ले आया हूं, ये अब मेरे वश में है, कहीं उधर उधर भाग नहीं सकता।
0: संभाल के थोड़ा।
1: अब मुझे असली अभिप्राय कह ही देना चाहिए ताकि ये अपने इष्ट देव को स्मरण कर ले।
2: रक्तमुख, स्त्री की बातों का विश्वास दिलाकर मैं तुम्हें यहां मारने के लिए लाया हूं। तुम अपने इष्ट देव का स्मरण कर लो।
0: भाई, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है जिससे आपने मेरे वध का निश्चय किया?
2: मेरी स्त्री ने कहा है कि नित्य मधुर जामुन को खा खा कर तुम्हारा हृदय स्वादिष्ट हो गया है, इसीलिए वो तुम्हारे हृदय मांस को खाना चाहती है।
0: दुष्ट, अभी बताता हूं। भद्र, यदि ऐसी बात थी तो मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैंने तो अपना हृदय जामुन वृक्ष की कोटर में सुरक्षित रखा है, मैं उसे लाकर भाभी को समर्पित कर देता। आप मुझे हृदयहीन बनाकर यहाँ क्यों लाए? हम वानर हृदय को सुरक्षित रखने के लिए अपने शरीर से अलग ही रखते हैं।
2: अरे मित्र, यदि ऐसी बात है तो फिर मैं पुनः तुम्हें उसी जामन वृक्ष पर पहुंचा देता हूं। तुम मुझे अपना हृदय दे देना ताकि मैं अपनी दुष्ट पत्नी के अनशन को तोड़ सकूं।
0: हे प्रभु, शीघ्र ही किनारे पहुंचा दो।
2: लो मित्र, तट आ गया। अरे तुम तो पहले ही कूद गए हैं। अरे वृक्ष पर भी पहुंच गए।
0: आज बड़े भाग्य से मेरे प्राण बच गए और मैं सकुशल लौट आया।
2: अरे मित्र, ए मित्र।
0: हाँ?
2: अरे अपना वो हृदय तो मुझे दे दो जिसे खाकर तुम्हारी भाभी अपना अनशन व्रत तोड़ दे।
0: मूर्ख, विश्वासघाती, क्या किसी के दो हृदय होते हैं? तुम इस जामुन के पेड़ के नीचे से शीघ्र ही चले जाओ और फिर कभी इधर ना आना।
2: अरे अरे मैं कितना बड़ा मूर्ख हूं। चलो पुनः प्रयत्न करता हूं, संभव है मेरे कहने में आकर वो पुनः मेरा विश्वास कर ले। अरे मित्र, अरे मैंने तो तुम्हारी मित्रता की परीक्षा ली थी। तुम्हारी भाभी को हृदय की कोई आवश्यकता नहीं है। अरे वो तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है।
0: दुष्ट, यहां से तत्काल चले जाओ। अब मैं तुम्हारी बातों में आने वाला नहीं हूं। प्रियदर्शन सर्प से कह दो कि अब गंगदत्त पुनः कुएं में जाने वाला नहीं है।
2: क्या मतलब? अरे जरा साफ साफ समझाओ।
0: किसी नगर में गंगदत्त नाम का एक मेंढक रहता था। उसने अपने कुटुंबजनों से अपमानित होकर प्रियदर्शन नाम के एक सर्प को उन सभी कुटुंबजनों को मारने के लिए नियुक्त किया।
2: अच्छा, अच्छा।
0: उस सर्प को उसी कुएं में रहने का प्रबंध भी कर दिया। जब उस प्रियदर्शन सर्प ने उसके सारे कुटुंबजनों को खा लिया, तब गंगदत्त के परिवारजनों को खाना प्रारंभ कर दिया। गंगदत्त अपने

0: किए पर पश्चाताप करने लगा, किसी तरह कुएं से निकलकर भागा। प्रियदर्शन के लाख समझाने और मित्रता की दुहाई देने पर भी वो कुएं में नहीं लौटा। इस कारण मैं अब तुम्हारे घर कभी नहीं जाऊंगा करालमुख।
1: मैं जानता हूं मित्र, मैंने तुम्हारे साथ विश्वासघात किया है, परंतु यदि तुम मेरे साथ नहीं चले तो मैं अहिंसन करके यहीं पर प्राण त्याग दूंगा।
0: तुम्हारे जो मन में आए करो, परंतु तुमने जो कपट किया है वो अक्षम्य है। तुम स्त्रैण हो, पत्नी की बातों में आकर तुमने अपने मित्र के प्राणों को लेने की सोची। सच है, स्त्री की बातों में आकर पुरुष उन्हें क्या क्या नहीं दे डालता, क्या क्या नहीं करता। तुमने नंदवर रुचि की कथा सुनी है?
1: नहीं तो?
0: तो सुनो, किसी राज्य में नंद नाम का अत्यंत प्रसिद्ध बलवान और पराक्रमी राजा राज्य करता था।
1: अच्छा।
0: अनेक राजाओं की मुकुटमणियों की ज्योति से उसका पाद पीठ जगमगाया करता था। उसका यश संपूर्ण पृथ्वी पर फैला हुआ था। उसका वररुचि नाम का एक मंत्री था।
1: अच्छा।
0: वो शास्त्रों का प्रकांड विद्वान था। एक बार उसकी स्त्री के साथ उसका कलह हो गया।
1: अच्छा।
2: पिए, ऐसी क्या बात है कि तुम मुझसे रुष्ट हो गई? कल से तुम्हारे स्वभाव में ये परिवर्तन देख रहा हूँ।
3: आप मुझसे न ही पूछे तो उचित होगा। इस समय मैं अपने आपे में नहीं हूँ, आप मुझे अकेला छोड़ दें।
2: पिए, तुम जैसे भी प्रसन्न हो सकती हो कहो, मैं तुम्हारी हर इच्छा की पूर्ति करूँगा।
3: यदि आप जानना ही चाहते हैं तो सुने। अगर आप अपना सिर मुड़ाकर मेरे पैरों पर गिर जाएं, तो मैं प्रसन्न हो सकती हूँ।
4: वर रुचि ने वही किया, फिर उसकी स्त्री मंदारी प्रसन्न हुई। इधर संयोगवश महाराज नंद से उनकी महारानी कुपित हो गई थी। किसी भी प्रकार महाराज उन्हें प्रसन्न नहीं कर पा रहे थे।
5: महारानी, आप क्यों क्रोधित हो रही हैं? आपको ये करना क्या शोभा देता है?
6: महाराज, मुझे क्या शोभा देता है और क्या नहीं, ये आप मुझे ना समझाएं। मैं भी महाराज अधिराज अमर शक्ति की एकमात्र पुत्री हूं। महारानी की क्या मर्यादा है, ये मैं आपसे नहीं सीखूंगी।
5: प्रिय, मैं तुम्हारे बिना एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकता, इसलिए तुम चाहो तो मैं तुम्हारे पैरों पर गिरकर तुम्हें मनाऊं।
6: आप घोड़ा बन जाइए, मैं आपके मुख पर लगाम लगाकर दौड़ाती हूँ। मेरे दौड़ाते समय यदि आप घोड़े की तरह हिन हिन आएंगे तो मैं आप पर प्रसन्न हो जाऊंगी।
5: अरे यार, क्या कह रही है?
4: विवश होकर राजा ने वही किया जो महारानी ने कहा, तदंतर वो भी प्रसन्न हो गईं।

दूसरे दिन राजसभा में बैठे हुए महाराज नंद के समक्ष जब वररुचि आए तो उनको मुंडित देखकर राजा ने पूछा,

0: वरुचि, किस पर्व पर तुमने ये मुंडन कराया है?
1: महाराज, स्त्रियों के आग्रह से मनुष्य क्या नहीं करता। जिस पर्व में वो घोड़ी की तरह हिनहिनाता है, मैंने उसी पर्व में मुंडन करवाया है।
0: अच्छा।

0: दुष्ट मकर, तुम भी नंद और वररुचि की तरह स्त्रैण हो, इसलिए उनके कहने से तुमने मुझे मारने का प्रयास किया।
1: मगरमच्छ अभी वार्तालाप कर ही रहा था कि किसी जलचर ने आकर कहा कि उसकी स्त्री जो अनशन पर बैठी थी वो उसे देर होती देख और स्वयं को तिरस्कृत समझकर मर गई। कराल मुख वज्रपात के समान शब्दों को सुनकर शोक से व्याकुल हो उठा।
2: ओह, मुझे अभागे पर ये क्या विपत्ति आ गई। मित्र, मैंने जो तुम्हारा अपराध किया है इसके लिए क्षमा कर दो। अब मैं स्त्री के वियोग में अग्नि में प्रवेश करके प्राण दे दूंगा।
0: अरे भाई, ये तो मैं पहले ही जान गया था कि तुम स्त्री से वशीभूत हो। अब तो पूर्ण विश्वास भी हो गया। मूर्ख, ये तो आनंद का अवसर है। ऐसी स्त्री के मर जाने पर तो उत्सव मनाना चाहिए।
2: हे वानर, तुम्हारा कथन यथार्थ है, किंतु मैं क्या करूं? मुझ पर तो एक साथ दो विपदाएं आ पड़ी हैं। एक तो स्त्री के मर जाने से मेरा घर भी नष्ट हो गया है, दूसरा मेरे मित्र से मनोमालिन्य हो गया है।
1: इसी वार्तालाप के बीच एक अन्य जलचर ने आकर मगरमच्छ से कहा कि तुम्हारे घर में किसी दूसरे मगरमच्छ ने आधिपत्य कर लिया है।
2: हाय हाय, अरे मेरा दुर्भाग्य तो देखो, मेरा मित्र भी शत्रु बन गया है, उधर मेरी स्त्री भी मर गई, साथ ही मेरे घर में भी किसी ने आधिपत्य कर लिया। पता नहीं अभी और क्या क्या होने वाला है। अब तुम ही बताओ मित्र, मैं क्या करूं? साम दाम दंड भेद किसका प्रयोग करूं?
0: अरे कृतघ्न पापी, मेरे मना करने पर भी तुम मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ रहे हो? तुम्हारे जैसे मूर्ख को मैं कोई उपदेश भी नहीं देना चाहता। यद्यपि स्त्री संसार में सबसे प्रिय होती है, तथापि उसके कहने से मित्रों और भाइयों को समुद्र में नहीं डुबोया जाता।
2: भद्र, विद्वानों का कथन है एक साथ सात पग चलने से ही सज्जन दूसरों को अपना मित्र मान लिया करते हैं। अरे मैं तो तुम्हारे साथ बहुत दिनों तक बैठा हूं, अतः पुरानी मित्रता को सामने रखकर इस विश्वासघाती मित्र को उचित परामर्श देने की कृपा करो।
0: भद्र, यदि ऐसी बात है तो वहां जाकर उस मगर के साथ युद्ध करो। युद्ध में अगर मारे जाओगे तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी, और यदि भाग्य से जीवित बच गए तो घर के साथ साथ यश भी मिलेगा।
2: अच्छा।
0: नीति शास्त्र में कहा गया है कि समान शक्ति संपन्न शत्रु के साथ युद्ध करके उसे शांत करना चाहिए।
1: कराल मुख ने वानर के विचार को सुनकर युद्ध करने का निश्चय करके घर की ओर प्रस्थान किया। वहां पहुंचकर वो अपने घर में घुसे आतताई के साथ युद्ध करने को प्रवृत्त हो गया, और अपनी दृढ़ता और साहस से उसने पुनः अपना घर प्राप्त कर लिया और सुखपूर्वक रहने लगा।

सच ही कहा गया है। बिना पुरुषार्थ के अनायास ही प्राप्त होने वाली लक्ष्मी से यदि सुख मिल भी जाता है तो उससे उतनी प्रसन्नता एवं तुष्टि नहीं हो पाती जितनी की पुरुषार्थ द्वारा प्राप्त की हुई लक्ष्मी से होती है। रसिक जन, कैसी लगी ये कहानी हमें अवश्य बताएं। लब्ध प्रणाशम नामक ये प्रकरण यहीं पर समाप्त होता है। अगला प्रकरण अगले सप्ताह आज ही के दिन आज ही के समय सुनना ना भूलिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।

कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे रेडियो धारावाहिक पंचतंत्र की 11वीं कड़ी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। हमारा अगला कार्यक्रम कुछ ही पलों में होगा, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रस्तुत है इस घंटे की खास खबरें।
2: मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा युवाओं को रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराने से केंद्र सरकार की युवाओं के प्रति प्रतिबद्धता अभिव्यक्त होती है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत उमरिया जिले के ग्राम खेरवा टोला में बाघ के हमले में एक महिला की मृत्यु हो गई और कुछ नागरिक घायल हुए हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मृतक के परिजनों को 25 लाख की आर्थिक सहायता प्रदान करने तथा घायलों के निःशुल्क उपचार एवं आवश्यक मुआवजा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। जनगणना के प्रथम चरण में भोपाल नगर निगम सीमा में 7 लाख से अधिक मकानों की गणना का कार्य किया जा चुका है। साथ ही 3,285 जनगणना ब्लॉकों में से 2,800 मकानों का सूचीकरण कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है। आकाशवाणी के 90 साल पूरे होने पर भोपाल के रविंद्र भवन में कल सुरों की लोक सूफी शाम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत पुष्पलता शर्मा ने बुंदेली विवाह गीत से की, उसके बाद मशहूर सूफी गायक उस्ताद मुनव्वर मासूम ने कव्वाली पेश की। प्रदेश के अधिकांश शहरों में तापमान 43 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच चुका है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले 4 दिनों तक प्रदेश में भीषण गर्मी और हीट वेव का असर बना रहेगा। और रांची में 29वीं नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश एथलेटिक्स अकादमी की खिलाड़ी नीतिका आकरे ने महिला पोलवाल्ट स्पर्धा में रजत पदक जीता है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, लीजिए प्रस्तुत है महिला कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आकाशवाणी शिवपुरी की प्रस्तुति है।

महिला सभा सुनने वाली सभी बहनों को आपकी कार्यक्रम सखी मोनिका चतुर्वेदी का प्यार भरा नमस्कार। बहनों, अपनी चर्चा में हम सबसे पहले आपसे बात करने जा रहे हैं दुनिया में शांति, सद्भाव और एकता का प्रतीक राष्ट्रमंडल दिवस यानी कॉमन वेल्थ डे के विषय में, जिसे हम प्रतिवर्ष 24 मई को मनाते हैं। बहनों, ब्रिटिश साम्राज्य की गुलामी से आज़ाद हुए दुनिया के सभी देशों को एक साथ एक सूत्र में बांधे रखने का काम करता है राष्ट्रमंडल संगठन। बहनों, राष्ट्रमंडल संगठन का विचार सबसे पहले 1901 में महारानी विक्टोरिया ने अपने जन्मदिन के मौके पर रखा। उनकी मृत्यु इसी वर्ष हो गई। सन 1902 में सर्वप्रथम एम्पायर डे यानी साम्राज्य दिवस मनाया गया, लेकिन सन 1958 में हैरोल्ड मैकमिलन ने एम्पायर डे का नाम बदलकर कॉमनवेल्थ डे कर दिया। तब से इसे कॉमनवेल्थ डे के नाम से ही जाना जाता है। राष्ट्रमंडल का मुख्यालय लंदन में स्थित है। बहनों, यह दिवस हमें यह संदेश देता है कि विश्व के सभी देशों को आपसी सहयोग, भाईचारे और समानता की भावना के साथ आगे बढ़ना चाहिए। आज पूरी दुनिया अनेक चुनौतियों का सामना कर रही है। कहीं युद्ध हो रहा है, कहीं आतंकवाद फैल रहा है, तो कहीं जाति, धर्म और भाषा के आधार पर भेदभाव बढ़ रहा है। ऐसी परिस्थिति में शांति और एकता का महत्व और भी बढ़ जाता है। यदि विश्व में शांति होगी तभी विकास संभव होगा। यदि देशों के बीच प्रेम और सहयोग रहेगा तभी मानवता सुरक्षित रह पाएगी। राष्ट्रमंडल केवल देशों का समूह नहीं है, बल्कि यह आपसी विश्वास, सम्मान और सहयोग का प्रतीक है। यह हमें सिखाता है कि चाहे हमारी भाषाएं अलग हो, संस्कृति अलग हो या रहन सहन अलग हो, फिर भी हम सब एक परिवार की तरह रह सकते हैं। भारत जैसे देश ने हमेशा वसुदेव कुटुंबकम अर्थात पूरा विश्व एक परिवार है का संदेश दिया है। आज युवाओं की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि वे समाज में प्रेम और भाईचारे का वातावरण बनाएं। हमें किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति या भाषा के आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए। छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करने के बजाय हमें मिलकर समस्याओं का समाधान निकालना चाहिए। बहनों, महात्मा गांधी जी ने कहा था, अहिंसा ही सबसे बड़ा धर्म है। यदि हम उनके विचारों को अपनाएं, तो समाज में शांति स्थापित की जा सकती है। हमें अपने जीवन में सहनशीलता, दया और सहयोग की भावना विकसित करनी चाहिए। बहनों, विश्व शांति केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि हम सभी की जिम्मेदारी है। यदि हर व्यक्ति अपने भीतर प्रेम और सद्भाव की भावना रखे, तो दुनिया निश्चित रूप से अधिक सुंदर और शांतिपूर्ण बन सकती है। आइए हम सब मिलकर एक बेहतर विश्व के निर्माण में अपना योगदान दें। आगे बहनों, अपनी चर्चा में हम आपसे बात करने जा रहे हैं सांस्कृतिक धरोहर के प्रतीक हमारे त्यौहार के विषय में। बहनों, भारतीय संस्कृति विश्व की सबसे प्राचीन और महान संस्कृतियों में से एक है। हमारे त्यौहार केवल उत्सव नहीं होते, बल्कि वे हमारी परंपराओं, आस्था, संस्कारों और सांस्कृतिक धरोहर के प्रतीक होते हैं। गंगा दशहरा भी ऐसा ही पावन पर्व है, जो इस वर्ष 25 मई को मनाया जाएगा। मान्यता है कि इस दिन माँ गंगा स्वर्ग से पृथ्वी पर अवतरित हुई थी। राजा भागीरथ की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर माँ गंगा धरती पर आई और लोगों के पापों का नाश किया। इसलिए इस दिन गंगा स्नान और पूजा का विशेष महत्व माना जाता है। माँ गंगा केवल एक नदी नहीं है, बल्कि करोड़ों भारतीयों की आस्था और जीवन का आधार है। गंगा हमारे खेतों को सींचती हैं, लोगों को जल प्रदान करती हैं और भारतीय सभ्यता को जीवित रखती हैं। इसीलिए हमारी संस्कृति में गंगा को माँ कहा गया है। गंगा दशहरा हमें यह भी सिखाता है कि हमें अपनी नदियों और पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए। आज नदियाँ प्रदूषण का शिकार हो रही हैं। यदि हम अपनी सांस्कृतिक धरोहर को बचाना चाहते हैं, तो हमें गंगा सहित सभी नदियों को स्वच्छ रखना होगा। त्यौहार समाज में प्रेम, एकता और भाईचारे की भावना को बढ़ाते हैं। परिवार और समाज के लोग मिलकर पूजा करते हैं, दान पुण्य करते हैं और खुशियाँ बांटते हैं। यही हमारी भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता है। आज के आधुनिक युग में कुछ लोग अपनी संस्कृति और परंपराओं से दूर होते जा रहे हैं। हमें अपने त्योहारों के महत्व को समझना चाहिए और नई पीढ़ी को भी इनके बारे में बताना चाहिए,
क्योंकि अपनी संस्कृति को बचाना ही अपने देश की पहचान को बचाना है। बहनों, गंगा दशहरा केवल धार्मिक पर्व नहीं बल्कि हमारी सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। आइए हम सभी माँ गंगा का सम्मान करें, पर्यावरण की रक्षा करें और अपनी महान संस्कृति को आगे बढ़ाएं।

आगे बहनों, अपनी चर्चा में हम आपसे बात करने जा रहे हैं अपनी क्षमता खुद पहचाने और इसे कैरियर बनाए के विषय में। बहनों, हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई विशेष प्रतिभा अवश्य होती है। किसी को संगीत पसंद होता है, किसी को खेल, किसी को चित्रकला, तो किसी को विज्ञान और तकनीकी। लेकिन अक्सर लोग अपनी असली क्षमता को पहचान नहीं पाते और दूसरों की नकल करने लगते हैं। यही कारण है कि कई लोग जीवन में संतुष्ट नहीं रह पाते। बहनों, सफलता का पहला कदम है स्वयं को पहचानना। जब हम अपनी रुचि को और क्षमता को समझ लेते हैं, तब सही दिशा में आगे बढ़ना आसान हो जाता है। यदि किसी बच्चे की रुचि खेल में है और उसे ज़बरदस्ती डॉक्टर या इंजीनियर बनाने के लिए कहा जाए, तो वह कभी पूरी खुशी और सफलता प्राप्त नहीं कर पाएगा। आज के समय में करियर के अनेक विकल्प उपलब्ध हैं। पहले लोग केवल कुछ सीमित क्षेत्रों को ही अच्छा करियर मानते थे, लेकिन अब संगीत, अभिनय, फोटोग्राफी, डिजिटल मार्केटिंग, एनिमेशन, खेल, लेखन, यूट्यूब, डिज़ाइनिंग और कई नए क्षेत्रों में भी शानदार अवसर है। बहनों, हमें अपनी कमज़ोरी से डरने की बजाय अपनी ताकत पर ध्यान देना चाहिए। मेहनत, आत्मविश्वास और निरंतर अभ्यास से कोई भी व्यक्ति अपनी प्रतिभा को सफलता में बदल सकता है। देश के पूर्व राष्ट्रपति माननीय डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी ने कहा था, सपने वे नहीं होते जो हम सोते समय

देखते हैं। सपने वे होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। विद्यार्थी को चाहिए कि वे अपने लक्ष्य को स्पष्ट रखे और उसी दिशा में मेहनत करे। माता पिता और शिक्षकों को भी बच्चों की रुचि को समझना चाहिए और उन्हें प्रोत्साहित

हम सभी अपनी प्रतिभा को पहचानें, उसे निखारें और अपने सपनों को साकार करें। आगे बहनों, अपनी चर्चा में हम आपसे बात करने जा रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी की 7 बातों के विषय में। बहनों, हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी समय समय पर देशवासियों को ऐसे संदेश देते हैं जो केवल व्यक्तिगत जीवन ही नहीं बल्कि देश की अर्थव्यवस्था और स्वास्थ्य के लिए भी महत्वपूर्ण होते हैं। वैश्विक तनाव और आर्थिक चुनौतियों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को आर्थिक रूप से मजबूत और आत्मनिर्भर बनाने के लिए नागरिकों से 7 महत्वपूर्ण अपीलें की हैं। इनका मुख्य उद्देश्य विश्व मुद्रा भंडार की बचत करना और देश को आत्मनिर्भर बनाना है। ये 7 बातें इस प्रकार हैं। पहली, ईंधन की खपत कम करें, पेट्रोल डीजल के उपयोग को सीमित करें, जहां संभव हो वहां मेट्रो या सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें और कार पुलिंग को अपनाएं। दूसरी, सोने की खरीदारी टालें, विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव कम करने के लिए कम से कम 1 साल तक अनावश्यक सोना न खरीदें। विदेशी यात्राओं में कमी, गैर जरूरी विदेश यात्राओं और विदेशों में डेस्टिनेशन वेडिंग करने से बचें। चौथी, वर्क फ्रॉम होम को अपनाएं, दफ्तरों और कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम यानी घर से काम की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित किया गया ताकि ईंधन और समय की बचत भी हो। उन्होंने यहाँ पर हमें यह भी बताया कि इसका प्रयोग हम लोग कोरोना काल में कर चुके हैं। पांचवी, खाद्य तेल का कम उपयोग करें, सेहत और देश के आयात बिल को ध्यान में रखते हुए अनावश्यक खाद्य तेल के उपयोग में कमी लाएं। छठवी, प्राकृतिक खेती को अपनाएं, किसानों से रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करने और प्राकृतिक खेती के तरीकों को अपनाने की अपील की गई है। सातवीं, स्वदेशी अपनाएं, घरेलू निर्माण को बढ़ावा देने के लिए विदेशी ब्रांडों के बजाय स्वदेशी उत्पादों को प्राथमिकता दी। बहनों, इसमें उन्होंने लोगों से खाद्य तेल का कम उपयोग करने और सोने की खरीदारी से बचने की अपील की है जो हम बहनों से सीधा जुड़ा है। बहनों, यदि हम खाद्य तेल की बात करें तो आजकल लोग तला भुना भोजन अधिक खाने लगे हैं। इससे मोटापा, हृदय रोग, मधुमेह और कई अन्य बीमारियां बढ़ रही हैं। यदि हम तेल का सीमित उपयोग करें और संतुलित भोजन अपनाएं तो हम स्वस्थ रह सकते हैं। बहनों, प्रधानमंत्री जी का यह संदेश केवल स्वास्थ्य तक सीमित नहीं है बल्कि यह देश हित से भी जुड़ा है। भारत को खाद्य तेल का बड़ा हिस्सा विदेशों से आयात करना पड़ता है। यदि खाद्य तेल की खपत कम करेंगे तो देश का विदेशी मुद्रा खर्च भी हम कम कर पाएंगे और आत्मनिर्भर भारत का सपना मजबूत होगा। इसी प्रकार सोने की अत्यधिक खरीदारी भी देश की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव डालती है। भारत में लोग सोने को निवेश और प्रतिष्ठा का प्रतीक मानते हैं, लेकिन अत्यधिक सोना खरीदने से देश का पैसा विदेशों में जाता है क्योंकि लगभग 90% सोना आयात किया जाता है। बहनों, प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि लोग अपनी बचत को उत्पादक कार्यों में लगाएं, जैसे शिक्षा, व्यवसाय, स्टार्टअप और देश के विकास से जुड़े क्षेत्रों में निवेश करें। इससे देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। हमें समझना चाहिए कि छोटी छोटी आदतें भी देश के विकास में बड़ा योगदान दे सकती हैं। यदि हर नागरिक जिम्मेदारी से संसाधनों का उपयोग करे तो भारत तेजी से प्रगति कर सकता है। बहनों, प्रधानमंत्री जी के संदेश केवल सलाह नहीं बल्कि देश के उज्जवल भविष्य की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। हमें स्वस्थ जीवन अपनाना चाहिए, अनावश्यक खर्च से बचना चाहिए और देश हित में सर्वोपरि रहना चाहिए। आइए हम सभी एक जागरूक नागरिक बने और देश के विकास में अपना योगदान दें।

बहनों, 25 तारीख को गंगा दशहरा है और इस दिन शिवपुरी अंचल में मंदिरों में भी आम खरबूजा दान करने का चलन बहुतायात में है और इन दिनों बाजार में खरबूजे और आम बहुत ही आ रहे हैं। तो चलिए खाना खजाना में बनाते हैं खरबूजे की कुल्फ़ी। इसके लिए हमें चाहिए 2 कप पका हुआ और बारीक कटा हुआ खरबूजा, 1/2 लीटर फुल फैट दूध, 1/2 कप कंडेंस्ड मिल्क, चीनी स्वाद अनुसार। मैंने यहाँ पर 3-4 चम्मच ली है, आप अपने अनुसार ले सकते हैं क्योंकि हम इसमें कंडेंस्ड मिल्क भी मिला रहे हैं। 1/4 छोटा चम्मच इलायची पाउडर, सजाने के लिए बारीक कटे हुए ड्राई फ्रूट्स जो भी आपके घर में अवेलेबल हों, 2 बड़े चम्मच मलाई। अब एक भारी तले के बर्तन में दूध डालकर मध्यम आँच पर 10-12 मिनट तक पकाएं। बीच बीच में चलाते रहें ताकि दूध तले में ना लगे। जब दूध गाढ़ा हो जाए तो

इसमें कंडेंस्ड मिल्क और चीनी डालकर 2-3 मिनट तक पकाएं। गैस बंद करें और दूध को पूरी तरह ठंडा होने दें। खरबूजे के टुकड़ों को मिक्सी में पीसकर इसकी स्मूदी बना लें। अब ठंडे दूध में खरबूजे की प्यूरी मिलाएं, इलायची और ड्राई फ्रूट्स मिलाएं। मिश्रण को कुल्फी मोल्ड या ना हो आपके पास तो आप छोटे ग्लासों में भरकर ऊपर से फॉइल पेपर से पैक करके और इसमें एक स्टिक लगा सकती हैं। 6-8 घंटे या रात भर के लिए इसे फ्रीज़र में जमने के लिए रख दें। सुबह आप इसे डीमोल्ड करें और तैयार है आपकी ठंडी ठंडी खरबूजे की कुल्फ़ी। चलिए बहनों, अब बनाते हैं आम और नारियल से बनने वाले टेस्टी से लड्डू। इसके लिए हमें चाहिए 1 कप ताज़ा या सूखा हुआ नारियल, जिसे आप कद्दूकस कर लें, 3/4 कप आम का गाढ़ा पल्प, 1/2 कप कंडेंस्ड मिल्क, 1 बड़ा चम्मच घी, 1/4 चम्मच इलायची पाउडर, 2 बड़े चम्मच दूध पाउडर। सजाने के लिए नारियल का बूरा। एक नॉनस्टिक पैन में घी गर्म करें, इसमें किसा हुआ नारियल डालकर 2 मिनट हल्का भून लें। अब आम का पल्प डालें और लगातार चलाते हुए 3-4 मिनट पकाएं। मिश्रण में कंडेंस्ड मिल्क और इलायची पाउडर डालें और गाढ़ा होने तक पकाएं। जब मिश्रण पैन के किनारे छोड़ने लगे तो गैस बंद करके इसे ठंडा होने दें। हाथ में थोड़ा घी लगाकर छोटे छोटे लड्डू बना लें। सूखे नारियल के बूरे में रोल करें, ऊपर से मनचाहे ड्राई फ्रूट से सजाकर 20 मिनट फ्रिज में रखें और ठंडे ठंडे सर्व करें। आप चाहे तो ये दोनों रेसिपी गंगा दशहरा पे बनाकर बजाय आम और खरबूजे चढ़ाने के भगवान को इसका भोग लगा सकती हैं। बहनों, समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। अपनी कार्यक्रम सखी मोनिका चतुर्वेदी को दे इजाज़त। नमस्कार।

आप सुन रहे थे महिला कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आकाशवाणी शिवपुरी की प्रस्तुति थी। हमारा अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में होगा, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: सदी हो तुम, या यूं कहें वक्त की रफ्तार हो। कच्ची यादों से उम्मीदों के चिराग जगमगाने तक, यूं ही चलते चलते अचानक कुछ याद आ जाने तक, हर कदम पर रहे हो साथ साथ। मनोरंजन, समाज और इतिहास तुम्हारी जुबान से ही तो सुना है हमने। सदा बहार हो तुम, बेमिसाल हो तुम, देश की आवाज हो तुम।
1: आकाशवाणी,
2: मैं विनय उपाध्याय। आकाशवाणी की यात्रा के 9 दशक पूरे हो रहे हैं। ये सूचना निश्चित रूप से हम जैसे लोगों के लिए बहुत ही खुशी की सूचना है। हम भी आकाशवाणी की इस यात्रा में एक आवाज के रूप में हम सफर रहे हैं। कहते हैं कि नदियों का गुमुख बहुत छोटा होता है। एक छोटी सी झील के रूप में कोई नदी निकलती है अपने अमृत कुंड से और अपनी यात्रा में अनेक कूल किनारों को तय करते हुए एक समंदर में जाकर मिल जाती है। आकाशवाणी के साथ भी ऐसा ही है। दरअसल आवाजों का एक भरा पूरा घर ही आकाशवाणी है। और कितनी सारी आवाजें, वो आवाजें जो भरोसा बनकर आकाशवाणी के स्टूडियो से श्रोताओं तक पहुंचती रही है। श्रोता और आकाशवाणी के बीच में दरअसल एक विश्वास तैर कर इन 90 वर्षों में जाता रहा है। आकाशवाणी के इस अवधि को पूरा करने के अवसर पर मैं अपनी आंतरिक शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं और उम्मीद करता हूं कि जिस निहित उद्देश्य को लेकर सूचना, शिक्षा और मनोरंजन, इन तीन पदों को साथ में लेकर आकाशवाणी ने जो अपनी यात्रा शुरू की थी वो नए उत्कर्ष पर पहुंचे। सभी आकाशवाणी से जुड़े साथियों और श्रोताओं को एक बार फिर हार्दिक बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट।

0: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लोक संगीत के कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए सुधीर बाबू पांडे के गाए लोकगीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी शिवपुरी की प्रस्तुति है। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं सुधीर बाबू पांडे के द्वारा गाए हुए इस लोकगीत के साथ।

लोक संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे सुधीर बाबू पांडे द्वारा गाए लोकगीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी शिवपुरी की प्रस्तुति थी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। सुगम संगीत के कार्यक्रम में लीजिए प्रस्तुत है बद्री प्रसाद नागर द्वारा गाए भजन। ये कार्यक्रम आकाशवाणी शिवपुरी की प्रस्तुति है।

0: सुगम संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे बद्री प्रसाद नागर द्वारा गाए भजन। ये कार्यक्रम आकाशवाणी शिवपुरी की प्रस्तुति थी। हमारा अगला कार्यक्रम कुछ ही पलों में होगा, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: मैं विनय उपाध्याय, आकाशवाणी की यात्रा के 9 दशक पूरे हो रहे हैं। ये सूचना निश्चित रूप से हम जैसे लोगों के लिए बहुत ही खुशी की सूचना है। हम भी आकाशवाणी की इस यात्रा में एक आवाज के रूप में हम सफर रहे हैं। कहते हैं कि नदियों का गोमुख बहुत छोटा होता है। एक छोटी सी झील के रूप में कोई नदी निकलती है अपने अमृत कुंड से और अपनी यात्रा में अनेक कूल किनारों को तय करते हुए एक समंदर में जाकर मिल जाती है। आकाशवाणी के साथ भी ऐसा ही है। दरअसल आवाजों का एक भरा पूरा घर ही आकाशवाणी है। और कितनी सारी आवाजें, वो आवाजें जो भरोसा बनकर आकाशवाणी के स्टूडियो से श्रोताओं तक पहुंचती रही है। श्रोता और आकाशवाणी के बीच में दरअसल एक विश्वास तैर कर इन 90 वर्षों में जाता रहा है। आकाशवाणी के इस अवधि को पूरा करने के अवसर पर मैं अपनी आंतरिक शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं और उम्मीद करता हूं कि जिस निहित उद्देश्य को लेकर सूचना, शिक्षा और मनोरंजन, इन 3 पदों को साथ में लेकर आकाशवाणी ने जो अपनी यात्रा शुरू की थी वो नए उत्कर्ष पर पहुंचे। सभी आकाशवाणी से जुड़े साथियों और श्रोताओं को एक बार फिर हार्दिक बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
4: नमस्कार, मैं राजीव वर्मा, स्वच्छता ही सेवा अभियान से जुड़ा हुआ हूं और आप सभी से गुजारिश करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि आप भी इससे जुड़ें और अपने कार्यालय, घर, कॉलोनी, मोहल्लों को स्वच्छ रखें। धन्यवाद। जय हिंद।
5: सुनिए एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए प्रस्तुत है फिल्मी गीतों पर आधारित हमारा कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत आपके लिए प्रस्तुत है सुखविंदर सिंह की आवाज़ में फिल्म स्टैनली का डब्बा से।

हितेश सोनिक का संगीत, अमोल गुप्ते के लिखे बोल, सुखविंदर सिंह की आवाज़ में गीत सुना आपने फिल्म स्टैंडी का डब्बा से। कार्यक्रम का अगला गीत आपके लिए प्रस्तुत है शान और आमिर खान की आवाज़ में फिल्म तारे ज़मीन पर से।

0: शंकर, एहसान लॉय का संगीत प्रसून जोशी के लिखे बोल आमिर खान और शान की आवाज़ में गीत सुना आपने फिल्म तारे ज़मीन पर से, और इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, कुछ ही पलों में प्रादेशिक समाचार प्रसारित होंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं नवनीत चौबे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का एक लेख साझा किया। इस लेख में बताया गया है कि किस तरह सिक्किम के खांग चेंजोंगा की 5 धरोहर 2047 तक विकसित सिक्किम का लक्ष्य प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त कर रही है। यह लेख खांग चेंजोंगा को सिक्किम की भूमि, स्मृति और चेतना के रक्षक के रूप में चित्रित करता है और इसके सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और ऐतिहासिक महत्व को दर्शाता है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में कई मुद्दों पर चर्चा की। दोनों पक्षों ने भारत और अमेरिका सामरिक भागीदारी को महत्वपूर्ण बताया और कहा कि यह भागीदारी व्यापार, ऊर्जा, मोबिलिटी और क्षेत्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में विशेष रूप से है। दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउस में डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि श्री रूबियो की भारत यात्रा ऐसे समय में हुई है जब दोनों पक्ष नियमित रूप से एक दूसरे के संपर्क में हैं। उन्होंने यह भी कहा कि खाड़ी क्षेत्र के संबंध में भी चर्चा हुई और क्वाड बैठक से पहले हिंद प्रशांत क्षेत्र प्राथमिकता बना हुआ है। विदेश मंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते का जल्दी होना जरूरी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज कर्नाटक के दौरे पर हैं। इससे पहले पत्रकारों से चर्चा करते हुए उन्होंने सिंगरौली जिले के विकास के बारे में चर्चा की
1: और ये आने वाले समय की दृष्टि से हम इसका मास्टर प्लान बना रहे हैं सिंगरौली के लिए और विकास के लेकर के मध्य प्रदेश सरकार के पास कई सारे प्रोजेक्ट हैं। बहुत जल्दी उनके रिजल्ट भी आएंगे और जिस प्रकार से हमने अपने निवेश और रोजगार को लेकर के गत वर्ष काम किया था उसके बलबूते पर ये पूरे हमारे आसपास के जिलों को भी रोजगार यहाँ मिले, इस तरह का प्रबंधन कर रहे हैं।
0: भोपाल में सेवानिवृत्त जज की बहू ट्विशा शर्मा की संदिग्ध परिस्थिति में मौत के मामले का उच्चतम न्यायालय ने कल स्वतः संज्ञान लिया है। मामले में सोमवार को देश के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की पीठ सुनवाई कर सकती है। ट्विशा के शव का आज एम्स भोपाल में दोबारा पोस्टमार्टम किया जा रहा है। इसके लिए दिल्ली एम्स की 4 सदस्यीय विशेष फॉरेंसिक टीम हाईटेक इक्विपमेंट के साथ भोपाल पहुंची है। इससे पहले आरोपी समर सिंह को कल अदालत ने 7 दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया था। अब बात मौसम की। प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर जारी है। प्रदेश के अधिकांश शहरों में तापमान 43 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच चुका है और लोगों को तेज धूप व लू का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले 4 दिनों तक प्रदेश में भीषण गर्मी और हीट वेव का असर बना रहेगा। लोगों को फिलहाल राहत मिलने की संभावना कम है। विभाग ने आज टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना और सतना जिलों में तीव्र लू का रेड अलर्ट जारी किया है। लोगों को दोपहर के समय विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। सरकार वजन और माप की जांच प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए जांच केंद्रों GSTC की भूमिका का विस्तार करेगी। इसके लिए 2013 के नियम में संशोधन किया गया है। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने कहा कि नए नियमों के तहत ये केंद्र वजन और माप की 23 श्रेणियों का सत्यापन कर सकेंगे। इनमें पेट्रोल और डीजल, CNG, LPG, LNG और हाइड्रोजन डिस्पेंसर की जांच भी शामिल है। इसका उद्देश्य व्यापार को पारदर्शी बनाना, व्यवस्था में तकनीक के उपयोग और वैश्विक मानकों के अनुरूप आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को बढ़ावा देना है। प्रदेश में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अब तक 13,10,000 किसानों से गेहूं का उपार्जन कर देश में पहले स्थान पर है। अब तक लगभग 100,00,000 मीट्रिक टन गेहूं का उपार्जन कर प्रदेश पंजाब के बाद दूसरे स्थान पर है। गेहूं का उपार्जन अभी भी जारी है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। पश्चिम मध्य रेलवे के जबलपुर मंडल स्थित रेल उत्सव हाल मदन महल में 19वें रोजगार मेले का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में 211 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। नर्मदापुरम जिले की ग्राम पंचायत मलोथर में प्रशासन आपके द्वार अभियान के तहत रात्रि चौपाल आयोजित की गई। प्रभारी कलेक्टर ने ग्रामवासियों से संवाद कर शासकीय योजनाओं की जानकारी दी। और रांची में 29वीं नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश एथलेटिक्स अकादमी की खिलाड़ी नीतिका आकरे ने महिला पोल वॉल्ट स्पर्धा में रजत पदक जीता है। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7

0: भारत और अमेरिका ने दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को महत्वपूर्ण बताया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा, शीघ्र व्यापार समझौता जरूरी, देश के लिए ऊर्जा आपूर्ति के विविधीकरण पर जोर। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत को सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में से एक बताया। पश्चिम बंगाल के फलता विधानसभा क्षेत्र के पुनर्मतदान में भाजपा उम्मीदवार दिबांशु पांडा ने भारी बढ़त हासिल की। सरकार ने इबोला के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए भारतीय नागरिकों को कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान की गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के क्वेटा में रेलवे ट्रैक के पास हुए विस्फोट में 24 लोग मारे गए। और फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट आज से पेरिस में शुरू हो रहा है। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में कई मुद्दों पर बातचीत की। दोनों पक्षों ने भारत और अमेरिका सामरिक भागीदारी को महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि ये भागीदारी व्यापार, ऊर्जा, मोबिलिटी और क्षेत्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में विशेष रूप से है। डॉ जयशंकर ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापक वैश्विक सामरिक भागीदारी है जो गहरे सहयोग पर आधारित है।
1: भारत और अमेरिका के बीच राजनीतिक समझ के बारे में हमारे बीच एक रणनीतिक साझेदारी है। ये साझेदारी कई क्षेत्रों में दोनों पक्षों के राष्ट्रीय हितों से बनती है। बैठक में हमने पश्चिम एशिया, मध्य पूर्व, भारतीय उपमहाद्वीप और पूर्वी एशिया से संबंधित घटनाक्रमों पर चर्चा की।
0: उन्होंने कहा कि दोनों देशों के संबंधों का पूरी दुनिया पर असर पड़ता है और कई क्षेत्रों में उनके हित एक समान हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि मौजूदा चर्चा जटिल वैश्विक परिस्थितियों में हुई है, लेकिन उन्हें खुले मन से और सार्थक चर्चा का विश्वास है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को जल्दी अंतिम रूप दिया जाना जरूरी है। विदेश मंत्री ने ऊर्जा व्यापार में हुए विस्तार का स्वागत किया और कहा कि अधिकाधिक स्रोतों से ऊर्जा की आपूर्ति भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए जरूरी है। डॉ जयशंकर ने यह भी कहा कि दोनों देशों की जनता के परस्पर संबंध महत्वपूर्ण हैं और कानूनी तौर पर आवाजाही में व्यवधान उत्पन्न नहीं होना चाहिए। ईरान संघर्ष के बारे में श्री जयशंकर ने कहा कि भारत और अमरीका दोनों इस पक्ष में हैं कि दुनिया भर में ऊर्जा की कीमतें कम रहें।
1: हम इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता चाहते हैं। दूसरा, हमारे लिए प्रवासी समुदाय का कल्याण और भलाई बहुत आवश्यक है। तीसरा, हम चाहते हैं कि ईंधन की कीमतें कम हों, क्योंकि हम इसके बहुत बड़े आयातक हैं और इसका अधिकतर हिस्सा इसी क्षेत्र से आता है। हम इस क्षेत्र से सुरक्षित और बिना किसी रुकावट के समुद्री व्यापार के पूरी तरह पक्ष में हैं। और साथ ही हम ये देखना चाहते हैं कि वहां के बाजार खुलें। हम कोई रुकावट नहीं देखना चाहते। These would be the principles with which we would
0: approach that region. अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि भारत अमेरिका के सबसे महत्वपूर्ण सामरिक भागीदारों में से है।
2: एक रणनीतिक साझेदारी बहुत अलग चीज है, ये उससे कहीं अधिक व्यापक है। जिन मुद्दों पर हम भारत के साथ मिलकर काम करते हैं, उनकी व्यापकता और दायरा ही इस बात को दर्शाता है कि भारत दुनिया में हमारे सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में से एक है। इसकी शुरुआत हमारे साझा मूल्यों से होती है। हम दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्र हैं।
0: श्री रूबियो ने कहा कि दोनों देशों ने आतंकवाद की पीड़ा झेली है और दोनों देश उन मुद्दों पर एक जैसी राय रखते हैं जो आने वाली सदी की रूपरेखा तय करेंगे। श्री रूबियो ने कहा कि ऊर्जा के मुद्दे पर भी दोनों देशों की राय एक समान है। एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि अमेरिका 21वीं सदी के लिए अपनी आप्रवासन नीति को नया रूप दे रहा है। ईरान के बारे में उन्होंने कहा कि अगले कुछ घंटों में सकारात्मक खबरें आ सकती हैं। दोनों नेताओं ने खाड़ी और हिंद प्रशांत सहित क्षेत्रीय मुद्दों पर भी चर्चा की। श्री रूबियो की भारत यात्रा ऐसे समय में हुई है जब क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक भी होने वाली है। इससे पहले विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज अपने उद्घाटन संबोधन में कहा कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापक वैश्विक सामरिक भागीदारी है जो गहरे सहयोग पर आधारित है। उन्होंने बात नई दिल्ली में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ बैठक में कही। अमेरिकी विदेश मंत्री 4 दिन की यात्रा पर कल भारत पहुंचे। वे 26 मई को क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे। इस बैठक में ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वॉन्ग और जापान के विदेश मंत्री तोशी मित्सु मोटेगी

0: भी शामिल होंगे। विदेश मंत्रियों के बीच प्राथमिक क्षेत्रों में क्वाड सहयोग बढ़ाने पर चर्चा होगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल में फलता विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए मतगणना जारी है। ताजा समाचार मिलने तक 16वें दौर में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार देवांशु पांडा काफी आगे चल रहे हैं। उन्हें अब तक 76,397 वोट मिले हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआईएम के शंभुनाथ कुर्मी दूसरे स्थान पर हैं। कांग्रेस के अब्दुल रजाक मुल्ला तीसरे और तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार जहांगीर खान चौथे स्थान पर हैं। वोटों की गिनती 14 केंद्रों पर की जा रही है। मतगणना 21 चरणों में हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर देश में अराजकता फैलाने का आरोप लगाया है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ राहुल गांधी का बयान कांग्रेस और विपक्षी दलों की साजिश की ओर इशारा करता है। श्री गोयल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी का उद्देश्य देश को बदनाम करना, संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करना और विदेश जाकर विदेशी शक्तियों से भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने की अपील करना है। मत्स्य पालन, पशुपालन और दुग्ध उत्पादन मंत्री राजीव रंजन सिंह कल मिजोरम के आइजोल में समीक्षा बैठक करेंगे। बैठक में उत्तर पूर्वी क्षेत्र में मछली पालन, पशुपालन और दुग्ध उत्पादन से जुड़ी योजनाओं और कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में करस्योंग इकाई ने आज आकाशवाणी एट 90 मैराथन का आयोजन किया। करस्योंग के विधायक सोनम लामा ने मैराथन को रवाना किया। श्री लामा ने कहा कि आकाशवाणी की 90 वर्ष की अनवरत और गौरवशाली सेवाओं का स्मरण नेपाल और नेपाली भाषियों के लिए अत्यंत गौरव का क्षण है। 8 जून 1936 को स्थापित आकाशवाणी करस्योंग नेपाली भाषियों को लगातार शिक्षा, सूचना और मनोरंजन प्रदान कर रहा है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 12वीं कक्षा के परिणाम के संबंध में नई सूचना जारी की है। ये सूचना 21 और 22 मई को गलत फीस कट जाने को देखते हुए जारी की गई है। ये समस्या जांची गई उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई कॉपी के लिए आवेदन के दौरान हुई थी। बोर्ड ने कहा है कि कुछ मामलों में ज्यादा भुगतान काटा गया है जबकि कुछ मामलों में कम राशि ली गई है। सीबीएसई के अनुसार अतिरिक्त भुगतान के मामलों में राशि खाते में लौटा दी जाएगी। कम भुगतान के मामले में विद्यार्थियों को बाकी भुगतान के लिए अलग से सूचित किया जाएगा। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि उचित शुल्क वाले सभी आवेदनों के मामलों में उत्तर पुस्तिका उपलब्ध कराई जाएगी और विद्यार्थियों को नए सिरे से आवेदन नहीं करना होगा। महाराष्ट्र की नाशिक अदालत में विशेष जांच दल ने टीसीएस कंपनी से संबंधित दुष्कर्म और धर्मांतरण मामले में 1,500 पन्नों का अभियोग पत्र दाखिल किया है। जांच दल के प्रमुख संदीप मिटके ने बताया कि 4 आरोपियों के खिलाफ कल अभियोग पत्र दाखिल किया गया। सरकार ने विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 के अंतर्गत व्यापक जन परामर्श के लिए प्रारूप प्रकाशित किया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि कोई भी व्यक्ति, हितधारक, संगठन और संस्था 21 जून तक प्रारूप के बारे में आपत्ति तथा सुझाव दे सकते हैं। अधिनियम में एक वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी दी गई है। इसके अनुसार निर्धारित समय में काम न मिलने पर बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान है। भारत ने अफ्रीका रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्रों को चिकित्सा सामग्री और सुरक्षा किट की पहली खेप भेजी है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये सामग्री उभरते इबोला संकट को देखते हुए भेजी गई है। उन्होंने कहा कि भारत इस संकट से निपटने में अफ्रीका का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार ने इबोला संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए भारतीय नागरिकों को अफ्रीकी देश कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान की गैर जरूरी यात्रा न करने की सलाह दी है। एक रिपोर्ट।
1: सरकार ने इन देशों में मौजूद भारतीय नागरिकों से भी स्थानीय स्वास्थ्य दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने और एहतियात बरतने के निर्देश दिए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इबोला को आपात स्थिति घोषित किया है। इबोला वायरस से फैलने वाला रोग है जिसमें बुखार और रक्तस्राव होता है। फिलहाल इसके लिए कोई टीका या इलाज उपलब्ध नहीं है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल XHIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में आज रेलवे लाइन पर हुए धमाके में 24 लोग मारे गए हैं और कई घायल हैं। यह धमाका राजधानी क्वेटा के चमन फाटक रेलवे स्टेशन के पास हुआ। धमाके में एक रेलगाड़ी को मामूली नुकसान पहुंचा और आसपास खड़ी 10 गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गईं। धमाके के बाद एहतियात के तौर पर पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस को क्वेटा रेलवे स्टेशन पर रोक दिया गया। शहर के कई संस्थानों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है क्योंकि मलबे में दबे यात्रियों को अब भी निकाला जा रहा है। उत्तरी चीन में एक कोयला खदान में हुए धमाके में 82 लोग मारे गए हैं। शुक्रवार को धमाके के समय लगभग 247 श्रमिक ड्यूटी पर थे। चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने घायलों के इलाज और खदान में बचे लोगों की तलाश के लिए निर्देश दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के शानशी प्रांत में खान दुर्घटना में मरने वालों के प्रति गहरा दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में चीन के लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने लापता लोगों की तत्काल और सुरक्षित वापसी की कामना भी की है। भारत में चीन के राजदूत शिव फेईहुंग ने शानसी में खान दुर्घटना के मृतकों के प्रति संवेदना के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। चीन के राजदूत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि दुर्घटना स्थल पर राहत और बचाव कार्य चल रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस के पास गोलीबारी के बाद त्वरित कार्रवाई के लिए अधिकारियों और सीक्रेट सर्विस एजेंटों को धन्यवाद दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर कहा कि संदिग्ध का हिंसक इतिहास था। पेरिस में फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के मुकाबले अब से कुछ देर में शुरू होंगे। पहला मैच 3 बार के चैंपियन सर्बिया के नोवाक जोकोविच और फ्रांस के जियोवानी पेत्री पेरिकार्ड के बीच होगा। आज ही अलेक्जेंडर ज्वेरेव और टेलर फ्रिट्स आमने सामने होंगे। विश्व के नंबर एक खिलाड़ी इटली के यानिक सिनर अपना पहला मैच कल खेलेंगे। पुरुष डबल्स में भारत के युकी भांबरी न्यूजीलैंड के माइकल वेनस के साथ और एन श्रीराम बालाजी ब्राजील के मार्सेलो जमोलिनर के साथ खेलेंगे। अन्य खेल खबरों के साथ हैं जागृति शर्मा।
2: आईपीएल क्रिकेट में आज 2 मुकाबले खेले जाएंगे। पहला मैच मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुंबई में दोपहर बाद 3:30 बजे से होगा। दूसरा मैच कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच शाम 7:30 बजे से होगा। विजेता टीमों को प्लेऑफ में जगह मिलेगी। इससे पहले कल पंजाब किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। उधर गुरविंदर वीर सिंह ने फेडरेशन कप एथलेटिक्स प्रतियोगिता में पुरुषों की 100 मीटर स्पर्धा का स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। उन्होंने नए राष्ट्र कीर्तिमान के साथ राष्ट्रमंडल खेलों के लिए क्वालिफाई कर लिया है। अनिमेश कुजूर ने रजत और प्रणव प्रमोद ने कांस्य पदक जीता है। इस बीच ईरान की फुटबॉल टीम ने फीफा विश्व कप के लिए अपना बेस कैंप अमेरिका से मैक्सिको ले जाने का फैसला किया है। इसके लिए उसे फीफा से मंजूरी भी मिल गई है। फीफा विश्व कप अगले महीने से शुरू होगा। बेस कैंप अमेरिका से हटाने का फैसला ईरान, अमेरिका और इसराइल के बीच बढ़ते भू राजनीतिक तनाव को देखते हुए लिया गया है।
0: विश्व स्वास्थ्य संगठन की बैठक स्विट्जरलैंड के जेनेवा में संपन्न हो गई है। बैठक में स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुपक्षीय सहयोग के लिए कई संकल्प लिए गए। बैठक में दिमागी दौरों, टीबी, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, आपातकालीन चिकित्सा, हीमोफीलिया, प्रिसिजन मेडिसिन और विकिरण से संबंधित निर्णय लिए गए। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा है कि स्वस्थ समाज ही समृद्ध राष्ट्र का निर्माण कर सकता है। आज सुबह गुजरात के अहमदाबाद में साइकिल दिवस और राष्ट्रमंडल दिवस के अवसर पर उन्होंने कहा कि साइकिल चलाने से प्रदूषण के समाधान के साथ साथ ईंधन की भी बचत होती है। मौसम विभाग ने आज पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में लू चलने की आशंका व्यक्त की है। अगले 5 दिन तक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, विदर्भ, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली के कुछ इलाकों में लू चलने की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और अमेरिका ने दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को महत्वपूर्ण बताया। विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने कहा शीघ्र व्यापार समझौता जरूरी, देश के लिए ऊर्जा आपूर्ति के विविधीकरण पर जोर। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत को सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में से एक बताया। पश्चिम बंगाल के फलता विधानसभा क्षेत्र के पुनर्मतदान में भाजपा उम्मीदवार देवांशु पांडा ने भारी बढ़त हासिल की। सरकार ने इबोला के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए भारतीय नागरिकों को कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान की गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।

0: बच्चों बोलो
1: मुस्कान। सुनने वाले सभी बच्चों को प्रीति दीदी का ढेर सारा प्यार। बच्चों, अभी तो आप सभी की छुट्टियां चल रही हैं, तो कोई दादी के हाथ के पकवान खा रहा होगा, तो कोई नानी या मामी के हाथ का, कोई तीर्थ यात्रा पर होगा, तो कोई किसी पर्यटन स्थल का आनंद ले रहा होगा। पर इन सब के साथ आप सबको इंतजार होगा आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम मुस्कान का, क्योंकि इसी के माध्यम से आपको आपकी दीदी कई सारी जानकारियां साझा करती हैं। साथ ही आपके साथ आपके कई साथी अपनी अपनी कविता कहानी के माध्यम से आपसे जुड़ते हैं। तो आइए बच्चों, चलते हैं आज के मुस्कान के सफर पर और साझा करते हैं आज की तारीख से जुड़ी जानकारी। तो बच्चों, आज यानी 24 मई को हम हर साल राष्ट्रमंडल दिवस यानी कॉमनवेल्थ डे मनाते हैं। अब हमारे बच्चे ये जानना चाहते होंगे कि ये राष्ट्रमंडल दिवस हम क्यों मनाते हैं। तो बच्चों, ये दिवस वे सभी राष्ट्र मनाते हैं जो कभी ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा थे, या यूं कहें कि ब्रिटिश साम्राज्य के उपनिवेश थे, यानी जिन देशों पर अंग्रेजों का शासन था वे सभी देश इसे मनाते हैं। हमारे भारत पर भी अंग्रेजों का राज था, इसलिए हम भी राष्ट्रमंडल दिवस मनाते हैं। इसे 24 मई को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया का इस दिन जन्मदिन होता है। जानते हैं बच्चों, हमारा देश 1947 में स्वतंत्रता के बाद इसमें शामिल हुआ। अभी लगभग 54 देश राष्ट्रमंडल का हिस्सा हैं। बच्चों, अब हमारे आज के मुस्कान के सफर का अगला पड़ाव है, हमारा अगला क्रम। आओ जाने, क्योंकि इस समय हमारे बहुत से बच्चे यात्रा कर रहे होंगे, घर से बाहर जा रहे होंगे, या फिर कोई नई चीजें सीखने भी जा रहे होंगे, तो आज हम बात करेंगे आपकी सुरक्षा की। जानेंगे कि कैसे आपको अपना ख्याल रखना है। बच्चों, सबसे पहले तो हम जब भी कहीं बाहर जा रहे हों तो अपनी मम्मी के साथ पैकिंग करवाने में सहयोग करें, ताकि ज़रूरत पड़ने पर आपको भी पता हो कि कौन सा सामान कहाँ रखा है। यात्रा के दौरान अपने बड़ों का साथ कभी ना छोड़ें, हमेशा उनकी नज़रों के सामने बने रहें। अगर कोई व्यक्ति जिसे हम नहीं जानते वो हमें खाने पीने को दे तो कभी ना लें। अगर कोई कुछ गलत व्यवहार करे तो तुरंत अपने पेरेंट्स को बताएं, उनके फ़ोन नंबर याद रखें। अगर किसी कारणवश हम खो जाएं तो अपने आसपास पुलिस को खोजें और उनके माध्यम से अपने पेरेंट्स से कांटेक्ट करें। अगर आपने अपनी किसी पसंदीदा चीज़ को सीखने के लिए इन छुट्टियों में कोई क्लास ज्वाइन की है, तो वहाँ आते जाते समय या क्लास में भी अगर आपको किसी का भी कोई व्यवहार ठीक नहीं लगता तो तुरंत अपने पेरेंट्स को बताएं। बच्चों, अगर आप किसी भी वजह से अकेले घर से बाहर जा रहे हैं तो घर में पता होना चाहिए आप कहाँ जा रहे हैं और कब तक लौटेंगे। रास्ते में जाते समय भी अपने चारों तरफ का ध्यान रखें ताकि आप सुरक्षित बने रहें। बाकी मम्मी पापा के साथ जाते समय तो हम सुरक्षित होते ही हैं और उनके साथ अपने सफर का आनंद बड़ी खूबसूरती के साथ लेते हैं।
0: बच्चों, हर बार की तरह इस बार भी कई सारे छोटे छोटे प्यारे प्यारे से बच्चे अपनी अपनी कविता और कहानियों के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो हम बारी बारी से जानेंगे बच्चों से कि वो हमारे लिए क्या तैयार करके आए हैं, लेकिन उसके पहले थोड़ी सी बातें हो जाएं। तो बच्चों, गर्मी की छुट्टियाँ कैसी बीत रही हैं? अच्छा, बारी बारी से सब बताएंगे कि कौन क्या कर रहा है इन छुट्टियों में।
2: मैं बैडमिंटन सीख रही हूँ, मैं डांस सीख रही हूँ,
3: मैं फुटबॉल सीख रहा हूँ।
0: इसका मतलब है सभी बच्चे अपनी अपनी छुट्टियों का

0: उपयोग कर रहे हैं, कुछ ना कुछ ऐसी चीजें सीख रहे हैं जो उनके आगे कुछ ना कुछ काम तो आने वाला है। अच्छा ये बताओ, ये हम जो चीजें सीखते हैं वो हमारे लाइफ में क्या काम आ सकती हैं, क्या सिखाती हैं हमें,
1: अनुशासन,
0: और क्या सीख सकते हैं?
2: कॉन्फिडेंस।
0: कॉन्फिडेंस, वेरी गुड। कि आगे जाके अगर हमें कभी कोई अपनी लाइफ में कोई ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जब हम निर्णय नहीं ले पाते हैं, तो ये जो चीजें हम सीखते हैं वो हमें ये काम आ जाता है आगे जाके कि हम कोई भी निर्णय बड़े आराम से ले सकते हैं। अच्छा, अब सब बच्चे अपना अपना नाम बताते जाएंगे और क्या तैयार करके आए हैं वो बताते जाएंगे। बेटा आपका क्या नाम है?
3: मेरा नाम अनन्या जैन है। मैंने एक लघु कथा, उसका शीर्षक है पुरानी किताब।
0: अच्छा, अब हमारे साथ अनन्या है और अनन्या हमारे लिए एक छोटी सी कहानी लेकर के आई है।
3: स्कूल की लाइब्रेरी में आर्यन को एक बहुत पुरानी किताब मिली। उसने पन्ने पीले पड़ चुके थे और ऊपर धूल जमी थी। बाकी बच्चे नए किताब और रंगीन किताबें चुन रहे थे, इसीलिए किसी ने उस किताब की तरफ ध्यान नहीं दिया। आर्यन उसे घर ले आया। जब उसने पढ़ना शुरू किया तो उसने महान लोगों के शीर्षक और सफलता की कहानियाँ थीं। हर पन्ने पर नई नई सीख छिपी थी। अगले दिन शिक्षक ने पूछा, तुमने सबसे अच्छा क्या चीज़ सीखी? आर्यन मुस्कुराकर बोला, सर, पुरानी चीज़ें हमेशा बेकार नहीं होती, उनमें अनुभव और सीख छिपी होती है। उस दिन से कई बच्चे भी लाइब्रेरी की पुरानी किताबें पढ़ने लगे।
0: बहुत ही अच्छी कहानी थी। इस कहानी का मतलब ये था कि कोई भी चीज़ कभी पुरानी नहीं होती। दूसरी बात ये कि पढ़ने की जो आदत हमारी ख़त्म हो गई है वो पढ़ने की आदत हमें दोबारा से डालनी चाहिए। पढ़ना ये नहीं है कि हमने अपना कोर्स कवर कर लिया, ट्यूशन में पढ़ लिया, बल्कि हमारे कोर्स में जो चीज़ें नहीं हैं वो भी नई नई चीज़ें हमें सीखना है, पढ़ के जानना है। और एक और चीज़ इस कहानी से हम सीखते हैं कि जो अनुभव होता है वो कभी भी बेकार नहीं जाता। किसी भी चीज़ का अनुभव हो, चाहे वो हम अपने घर के बड़ों से ले सकते हैं अनुभव, और चाहे अपने खुद के अनुभव से। अब हमारे साथ कौन जुड़ा है, अपना नाम बताओ बेटा।
2: मेरा नाम यशी जैन है।
0: यशी, यशी आप क्या तैयार करके आए हो?
2: मैंने एक लघु कथा तैयार करी है जिसका शीर्षक है समय की कीमत।
0: बहुत अच्छे, चलो एक और छोटी सी कहानी हमारे बच्चों के साथ साझा कर रही हैं यशी।
2: आरव हमेशा अपना काम कल पर टालता था, होमवर्क अधूरा रहता था और परीक्षा में भी उसके कम अंक आते थे। एक दिन उसके दादाजी ने उसे एक बंद घड़ी दी और कहा, जो समय रुक जाता है वह किसी के काम नहीं आता। आरव बात समझ गया और उसने समय से पढ़ाई शुरू की और धीरे धीरे उसकी आदत बदलने लगी। अब उसे समझ आ चुका था कि समय की कदर ही सफलता की पहली सीढ़ी है।
0: तो भाई बच्चों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? ये छोटी सी जो कहानी यशी ने हमें सुनाई कि समय कितना कीमती है, हमें समय का एक भी पल नहीं गंवाना चाहिए। अब आगे कौन क्या सुना रहा है?
4: हम दोनों साथ एक की कहानी सुनाएंगे। पहले ये आती है, फिर आती मैं।
0: अच्छा, तो कहानी तैयार की है कि कविता?
4: कविता।
0: कविता, अभी क्योंकि ये कहानी बोली थी। अच्छा, दोनों जन ने एक ही कविता तैयार की है। बिल्कुल सुनेंगे तुम दोनों की कविता। पहले दोनों जन अपना अपना नाम बताओ, क्या नाम है आपका?
4: शानवी जैन।
0: शानवी, और आपका? किसी
5: का जैन।
0: कौन सी कविता है? काका
5: लाए एक कार।
0: काका लाए एक कार। तो बच्चों तैयार हो जाओ दोनों से एक ही कविता सुनने के लिए। आधी एक सुनाएगी और आधी दूसरी सुनाएगी। काका लाए एक कार।
5: काका लाए एक कार, लेकर उसको गए बाजार। एक दो तीन चार, उसके पहिए पूरे चार। पांच जगह हम गए घूमने, छह गोलगप्पे खाए हमने।
4: सात बार शीशी की, आठ गिलास पानी पिया। नौ बजे हम घर को आए, पूरी बात बताए सबको। कहा हमने 10 बार, सबसे अच्छी अपनी कार।
0: बहुत अच्छे, सबसे अच्छी अपनी कार, क्योंकि इनके काका जी कार लाए थे तो वो ऑब्वियसली है, कार तो अच्छी होनी ही थी, है ना। और सब लोग मिलके बैठ के एक साथ जाते हैं घूमने के लिए। कौन कौन कहाँ कहाँ गया गर्मी की छुट्टियों में घूमने के लिए?

0: नानी के घर,
1: मामा की शादी में।
0: मामा की शादी में, अच्छा भगवान के दर्शन करने गए। भाई ये अच्छा रहता है, गर्मी की छुट्टियां आती हैं तो सबसे ज्यादा खुश होती हैं मम्मियाँ, क्योंकि उन्हें अपने अपने मायके जाने को मिलता है ना। तो अब इनकी मम्मियों से जब हम बात करेंगे तब हम उनके अनुभव भी लेंगे। बाकी अभी तो बच्चों की खुशी दिख ही रही है छुट्टियों की। हाँ तो अब आगे और कौन हमारे साथ जुड़ रहा है, कौन क्या सुना रहा है? क्या नाम है बेटा आपका?
2: अनुमित।
0: अनुमित क्या सुना रहे हो?
2: कविता।
0: कविता, एक और कविता। कौन सी कविता है बेटा?
2: देशभक्ति।
0: देशभक्ति से जुड़ी हुई कविता। चलो बच्चों, तो आज हम देशभक्ति के रंग में रंग जाते हैं।
2: मिट्टी की खुशबू, वीरों की शान, तिरंगे से ऊंची भारत की शान, देश के लिए जीना और देश के लिए मरना, यही है हमारा अभिमान।
0: अनुमित आपकी उम्र क्या है बेटा? 8 साल। देखो इतनी छोटी उम्र में अपने देश के लिए इतनी अच्छी भावनाएं रखना, वाकई में हमारे बच्चे देश से कितने जुड़े हुए हैं ये बात हम समझ सकते हैं। अब और कौन हमारे साथ क्या साझा कर रहा है? बेटा नाम बताओ सबसे पहले अपना।
3: निशान जैन।
0: निशान क्या तैयार करके आए हो?
3: मेरा परिवार।
0: मेरा परिवार क्या है, कविता है कि कहानी?
3: कविता।
0: कविता, चलो सुनाओ।
3: दादी मेरी कहे कहानी, दादा दे पौधों को पानी, दीदी भैया खेल खिलाते, मम्मी पापा शेयर कराते।
0: बहुत ही अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी सी कविताएं ये छोटे छोटे से बच्चे तैयार करके आए हैं। अब अगला और कौन हमारे साथ जुड़ रहा है? क्या नाम है बेटा आपका?
4: आराध्या जैन।
0: और आराध्या क्या सुना रही है हमें?
4: आज मैं आपको एक कहानी सुनाने।
0: कहानी, अच्छा चलो बढ़िया है। कौन सी कहानी है?
4: दो बैलों की कथा।
0: दो बैलों की कथा सुनाओ।
4: दो बैलों की कथा है। पहली बैल का नाम होता है हीरा, दूसरे का मोती। दोनों अपने मालिक जूरी के साथ रहते थे और जूरी उनसे जो भी काम कराता वह करते और जो खाने को देता वह सिर झुका के खा लेते। एक दिन जूरी का साला आया और उन दोनों बैलों को लेके अपने यहाँ लेके चला गया। उन दोनों बैलों को सूखा भूसा दे दिया और एक मोटी सी रस्सी से बांध दिया। वो दोनों जब वह सब खाने बैठे तब वहाँ से एक छोटी सी बच्ची आई और अपनी एक एक रोटी खिला के चली गई। फिर जब वो चली गई तो उन दोनों बैलों ने अपने मुख्य भाषा में बातें की कि अगर हमारे पास वाणी होती तो हम अपने मालिक से पूछते कि उनने हमें क्यों भेजा यहाँ पे सूखा भूसा यहाँ पे दे रहे हैं। जब सब सो गए फिर वो दोनों अपने मालिक के पास चले गए। जब जूरी सुबह उठा उन दोनों को देख के जूरी बहुत खुश हुआ। फिर गांव वाले तालियां बजाने लगे और गांव वाले उन दोनों के लिए बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लाने लगे।
0: बहुत ही अच्छी कहानी है दो बैलों की कथा। ये मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी, हमारे सुनने वाले सभी बच्चों को हम बता दें कि ये मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी है जिसमें दो मूक पशुओं हीरा और मोती की कहानी बताई गई है। इस कहानी के माध्यम से ये भी बताया गया है कि दोस्ती क्या होती है, दोस्ती के साथ साथ स्वामी भक्ति क्या होती है, ये भी इस कहानी के द्वारा बताया गया है। तो अब हमारे साथ और कौन जुड़ रहा है? नाम बताओ बेटा आप अपना।
5: मेरा नाम तरुष जैन है।
0: तरुष क्या सुना रहा है?
5: मैं एक कविता यहाँ पे प्रस्तुत कर रहा हूँ।
0: कविता, चलो भैया एक और कविता हमारे साथ लेके आए हैं तरुष।
5: सबसे पहले मेरे घर का अंडे जैसा था आकार, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा है यह संसार। फिर मेरा घर बना घोंसला सूखे टिनकों से तैयार, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा है यह संसार। फिर मैं निकल गई शाखाओं पर, हरी भरी थी जो सुकुमार, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा है यह संसार। आखिर जब मैं आसमान में उड़ी दूर तक पंख फसा, तब समझ में मेरे आया बहुत बड़ा है यह संसार।
0: एक छोटी सी चिड़िया की कहानी कविता के माध्यम से हमने तरुष से सुनी। सच बात है, चिड़िया हमें पंख फैला के उड़ना ही नहीं सिखाती बल्कि सिखाती है कि हम अनुशासन से यदि अपने माता पिता की बात मानें तो हम बड़े आराम से पूरे आसमान को अपने वश में कर सकते हैं। अब आगे और कौन हमारे साथ जुड़ रहा है? बेटा सबसे पहले आप अपना नाम बताओ।
6: वीर जैन।
0: वीर क्या तैयार करके आया है?
6: कविता।
0: कौन सी कविता है?

0: तुम हंसना सीखो, भौरों से नित गाना, तरु की झुकी ढालियों से नित सीखो, शीश झुकाना, दूध थता पानी से सीखो, मिलना और मिलाना, सूरज की किरणों से सीखो, जगना और जगाना।
1: देखो वीर ने कितनी अच्छी कविता सुनाई है। प्रकृति की हर एक चीज़ हमें सिखाती है कि हमें किस तरीके से रहना चाहिए और अपनी हर एक चीज़ को बिना किसी शर्त के साझा करना चाहिए, क्योंकि प्रकृति कभी भी हमसे किसी चीज़ की मांग नहीं करती, बस देती है और देती है, वो हमें देना सिखाती है। अब और कौन हमारे साथ जुड़ रहा है? क्या नाम है बेटा आपका?
2: आगम जैन।
1: आगम, आगम क्या तैयार करके आए हो?
2: मैं एक कहानी।
1: कहानी? कौन सी कहानी है?
2: दो दोस्तों की कहानी।
1: दो दोस्तों की कहानी, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। अभी भी एक कहानी हमने सुनी, वो भी दोस्ती पे आधारित थी, ये भी है, सुनाओ।
2: दो दोस्त थे, एक का नाम था अमन और दूसरे का नाम था हामिद। वो लोग रेगिस्तान को पार कर रहे थे। अमन की लड़ाई हो गई हामिद से कुछ देर बाद, तो अमन ने हामिद को थप्पड़ मार दिया, तो हामिद ने रेत पर जाके अपनी उंगली से लिखा कि आज अमन ने मुझे थप्पड़ मारा। और फिर कुछ देर बाद उन्हें प्यास लगने लगी, तो अमन को दूर से एक तालाब जैसा कुछ दिखा, तो उन लोगों को लगा कि वहाँ पे पानी है। वो लोग दौड़ के गए, अमन उस तालाब पर डूब गया, लेकिन वो तालाब नहीं था, दलदल था। फिर अमन गिर गया था दलदल में, तो फिर हामिद ने उसके अपनी जान पर खेलकर बचा लिया। फिर अमन ने पत्थर पर फिर से लिखा कि आज अमन नहीं, हामिद ने मेरी जान पे खेलकर रक्षा की। फिर हामिद ने यह पूछा कि जब मैंने तुम्हें मारा थप्पड़ तो तुमने रेत पर क्यों लिखा, और जब मैंने तुम्हारी जान बचाई तो तुमने पत्थर पर क्यों लिखा। तो अमन ने हामिद को यह जवाब दिया कि जब तुमने मुझे मारा तो मैंने इसलिए वो रेत में लिखा कि जब हवा चलेगी तो वो मिट जाएगा, और जब तुमने मेरी जान बचाई तो मैंने पत्थर पर इसलिए लिखा क्योंकि जितनी भी आंधी चल जाएगी लेकिन पत्थर में से वो जो मैंने लिखा है वो नहीं मिटेगा।
1: बहुत अच्छी कहानी है। देखो दो दोस्तों की ये कहानी हमें ये बताती है कि हमें अच्छी चीज़ें याद रखनी चाहिए और बुरी चीज़ों को भूल जाना चाहिए। अच्छी चीज़ें हमेशा साथ जाती हैं और बुरी चीज़ें अगर हम याद रखेंगे तो सब कुछ खराब कर देती हैं। क्या नाम है? अभ्यांक। अभ्यांक कितने साल के हो?
3: 4
1: साल के हो। अच्छा, पढ़ते हो?
3: हाँ।
1: कौन सी क्लास में पढ़ते हो? LKG में पढ़ते हो। क्या सुनाओगे हमको? सुनाओ
3: कविता।
1: कविता सुनाओ।
3: बालक माँ का प्याला ना, एक हमारे सबसे महान दासिन।
1: सही बात है, देश हमारा सबसे महान, और इस महान देश के नाम के साथ समय हो रहा है सभी बच्चों से विदा लेने का। मेरे साथ सब बोलेंगे
4: जय।

अभी आप सुन रहे थे बच्चों का कार्यक्रम मुस्कान। ये आकाशवाणी जबलपुर की प्रस्तुति थी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए प्रस्तुत है फिल्मी गीतों पर आधारित हमारा कार्यक्रम फिल्म संगीत, जिसमें पहला गीत आपको सुनवा रहे हैं अभिजीत की आवाज़ में फिल्म फिर भी दिल है हिंदुस्तानी से।

जतन ललित का संगीत जावेद अख्तर के लिखे बोल, अभिजीत की आवाज़ में गीत सुना आपने फिल्म फिर भी दिल है हिंदुस्तानी से। कार्यक्रम का अगला गीत आपके लिए प्रस्तुत है अभिजीत और अलका याग्निक की आवाज़ में, फिल्म का नाम है यस बॉस।

0: जतिन ललित का संगीत जावेद अख्तर के लिखे बोल, अभिजीत और अलका याग्निक की आवाज़ में गीत सुना अपने फिल्म यस बॉस से। और इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। हमारा अगला कार्यक्रम कुछ ही पलों में होगा, कृपया प्रतीक्षा करें। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रस्तुत है इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का एक लेख साझा किया। इस लेख में बताया गया है कि किस तरह सिक्किम के खांग चेनजोंगा की 5 धरोहर 2047 तक विकसित सिक्किम का लक्ष्य प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त कर रही है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में कई मुद्दों पर चर्चा की। सरकार वजन और माप की जाँच प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए जाँच केंद्रों GATC की भूमिका का विस्तार करेगी। इसके लिए 2013 के नियम में संशोधन किया गया है। भोपाल में सेवानिवृत्त जज की बहू ट्विशा शर्मा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के मामले में ट्विशा के शव का आज एम्स भोपाल में दिल्ली से आई 4 सदस्यीय विशेष फॉरेंसिक टीम द्वारा दोबारा पोस्टमार्टम किया गया। आज शाम उनका अंतिम संस्कार भदभदा विश्राम घाट पर किया जाएगा। प्रदेश न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कल तक 13,10,000 किसानों से गेहूं का उपार्जन कर देश में पहले स्थान पर है। प्रदेश लगभग 100,00,000 मीट्रिक टन गेहूं का उपार्जन कर पंजाब के बाद दूसरे स्थान पर है। प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर जारी है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले 4 दिनों तक भीषण गर्मी और हीट वेव का असर बना रहेगा। फिलहाल राहत मिलने की संभावना कम है। और IPL क्रिकेट में आज 2 मुकाबले होंगे। पहला मैच मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुंबई में अब से कुछ देर में 3:30 बजे से होगा। दूसरा मैच कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब हम आपको आज की संध्याकालीन सभा के प्रमुख कार्यक्रमों की जानकारी दे दें। शाम 5:02 पर सुनिए युवा साथियों का विशेष कार्यक्रम।

युववाणी, ये कार्यक्रम आकाशवाणी शिवपुरी की प्रस्तुति होगा। रात 7:21 पर सुनिएगा कार्यक्रम ग्राम सभा, जिसके अंतर्गत रात 7:30 से प्रसारित होगा सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो ग्राम सभा, जहां ग्रीष्म ऋतु में समसामयिक कृषि कार्य विषय पर श्रोताओं की शंकाओं का समाधान करने के लिए स्टूडियो में उपस्थित होंगे विशेषज्ञ डॉक्टर के नेमा। कार्यक्रम सुर्खियों में सुनिएगा रात 8:00, 8:15 पर सुनिएगा इंदौर केंद्र की प्रस्तुति कार्यक्रम डगर विकास की, विषय होगा जल जीवन मिशन। 9:30 पर सुनिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश। अखिल भारतीय रविवासरीय संगीत सभा में रात 10:00 सुनिएगा पंडित हरिशंकर भट्टाचार्य का सितार वादन, इसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। ये थे आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रम।

सेट पर तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। चलिए देखते हैं आज मनचाहे गीत कार्यक्रम में किन किन श्रोताओं के मनचाहे गीत शामिल हो रहे हैं। मनचाहे गीत प्रोग्राम में अपने सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। सुनने वालों को संगीता श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार।

आन मिलो सजना, इस फिल्म का गीत आपने सुना लता मंगेशकर मोहम्मद रफी की आवाजों में। आनंद बख्शी के बोल थे, संगीत था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। और इस गीत को सुनना चाहा जिला यमुनानगर हरियाणा से जयपाल धीमान, यशपाल धीमान, विनोद और राजीव धीमान। इसी गीत के लिए फरमाइश की रावर करनाल से ज्ञानभूषण शर्मा, सोमनाथ कालिया। और इस गीत को सुनना चाहते थे जिला अहमदनगर बालम टाकली से नंद कुमार अदवंत, उर्मिला अदवंत, नीलेश अदवंत, मयूरी अदवंत, कल्पेश अदवंत और संगीता अदवंत।

एक बार मुस्कुरा दो इस फिल्म में आशा भोसले मुकेश की आवाजें आपने सुनी। एसएच बिहारी के बोलों को सुर में ढाला ओपी नैयर ने। इस गीत को सुनना चाहा दारागंज प्रयागराज उत्तर प्रदेश से गंगाराम पांडे, तीर्थराज पांडे, दिलीप शर्मा, ध्रुवराज पांडे और इनके बहुत से साथी। इसी गीत को सुनना चाहा सिकंदर अली खान, बदुद्दीन शमसुद्दीन की बाड़ी के पास से, और ये पत्र आया बीकानेर राजस्थान से। एक और श्रोता ने इस गीत की फरमाइश की जिला अमरावती से, प्रवीण नगर से। ये हैं चंदू हातोले, सीमा हातोले, गंज ढुंडवारा उत्तर प्रदेश से, बीपी गौतम, सरिता, अनन्या, कुश, रिंकू टिंकू, रीना, ऐश्वर्या, श्रेय, आप सभी की फरमाइश थी।

खय्याम की बनाई तर्ज पर इस गीत को गाया लता मंगेशकर, किशोर कुमार और यश दास ने। त्रिशूल फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। साहिर लुधियानवी का लिखा। रामलीला मैदान सचिंदी से बाबा शिवानंद त्रिपाठी, शशि त्रिपाठी, मीनू त्रिपाठी और शिवांश अनूप सिंह और अभिजीत सिंह की ये फरमाइश थी। हेतु रांची से प्रवीण कुमार और इसी गीत को सुनना चाहा गुराई बुरीवली वेस्ट मुंबई से अंशिका ने। आप सुन रहे हैं विविध भारती से कार्यक्रम मनचाहे गीत।

चोर मचाए शोर इस फिल्म का दो गाना था, मोहम्मद रफ़ी लता मंगेशकर का गाया गीत और संगीत थे रविंद्र जैन के। गणेश कुमार की फरमाइश है ये पुणे से, और भरत यादव, काजल शर्मा, विकास सक्सेना इनकी फरमाइश है बदायूं उत्तर प्रदेश से। और ये हमारे श्रोता हैं तहसील तेल्हारा अकोले महाराष्ट्र से, विनोद कुमार आर्या, भारती, पारस पायल, श्वेता और उर्वीबेन आर्या।

ये गीत आप सुन रहे थे द ट्रेन फिल्म से, मोहम्मद रफी लता मंगेशकर का गाया, आनंद बख्शी के बोल थे, राहुल देव बर्मन की तर्ज थी और इस गीत की फरमाइश की हंडीखेड़ा सिरसा से राधेश्याम शर्मा, इंदिरा शर्मा, कलाना राजस्थान से विक्रम कड़वासरा, सचिन कड़वासरा, डुमराव बिहार से वलीउल्लाह अंसारी, आसमानाज अंसारी और इसी गीत की फरमाइश की लीला बेन, स्मिता बेन, भारती, निधि, सेजल, मनाली ने। ये हमारे श्रोता थे तेलहारा महाराष्ट्र से। और अब आज के मनचाहे गीत कार्यक्रम में इतना ही, दीजिए इजाजत संगीता श्रीवास्तव को, नमस्कार।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: नाट्य तरंग आज के प्रोग्राम में सुनिए उषा सक्सेना का लिखा नाटक चंदन वृक्ष।

0: रहा है?
1: फिलहाल तो चाय और समोसे चल रहे हैं। अब आप आ गए हैं तो
0: चल चलो सुमित, उधर बैठते हैं खिड़की के पास।
2: वहाँ क्यों?
0: अरे भाई, आज शनिवार की शाम है, कोई डिनर के लिए जाएगा, कोई लोकल गार्जियन के यहाँ, कोई पिक्चर जाएगा और कोई शॉपिंग के लिए। तरह तरह की ड्रेसेस और साज सज्जा देखने को मिलेगी। आया जी।
3: हाँ बिटिया,
0: हमारी चाय यही दे देंगे ना?
3: लाई चाय बिटिया।
0: चल बैठ सुमित।
2: अरे यार, तुम्हारी बकबक से तो मेरा सिर दर्द करने लगता है।
0: तो ले चाय पी, एकदम गरम है।
4: अरे सुमी, जरा रेशमा का जूड़ा तो देख।
2: कहाँ? ओहो, जूड़ा? अरे ये तो एकदम अजंता की मूर्तियों जैसा केश विन्यास है।
0: बुदित वो
2: कहाँ?
0: तूने शायद शैम्पू किया है। वाह, कितने खूबसूरत बाल हैं।
2: एकदम वर्षा की घनघोर घटाओं की तरह।
0: सुमन, सुमी, वो देख, वो देख, सुमन देखो
2: कहाँ।
0: अरे कितनी अच्छी लग रही हैं।
5: सच में,
0: सफेद शरारा सूट और हवा में लहराती सफेद चुन्नी, क्या बात है।
2: अरे यार, ऐसे लग रहा है जैसे कोई हंसनी धीरे धीरे तैरती हुई चली जा रही है।
0: तंग आ गई मैं तुम्हारी कविता से। न कोई थ्रिल है, न कोई एक्साइटमेंट
2: है। क्यों नहीं? अरे तुम तो हो थ्रिल एक्साइटमेंट का जीता जागता रूप। गोरी गोरी दुबली पतली एक प्यारी सी बालिका, जैसे
0: कटनार की गली, यही कहेगी ना। ले समोसा खा।
2: गरम गरम खिला रहे हो।
0: हाँ तो फ्रेंड्स,
3: यस
0: मिस सुमी, आपको अपनी एक नई कविता सुनाने जा रही है।
3: बिल्कुल, वेलकम वेलकम।
0: ये कविता इन्होंने अपने प्रिय दोस्त चंदन के लिए लिखी है।
3: चंदन?
0: बस ये भी चंदन जैसी है। पर जरा सांप से बच कर है ना माय डियर फ्रेंड।
2: रीमा तू नहीं सुनेगी।
0: तो सुनिए आप सब इनकी नई रचना।
6: Three cheers for भावी कवित्री।
0: तो शुरू हो जाइए मिस सुमी।
2: अरे यार समोसा खाने दो।
0: कोई नखरा वखरा नहीं चलेगा, कम ऑन।
2: और रीमा, अच्छा अच्छा तो सुन बस। खुशबू बिखेरता महकाता पवित्र करता नंदन, कितना प्यारा कितना सुंदर है ये वृक्ष चंदन। जी चाहता है इसे आंखों में आंज लूं, शब्दों में बांध लूं, मन में समेट लूं, कल्पना से संवार दूं, कर लूं वंदन हे वृक्ष चंदन।
0: लो मेरी तो गाड़ी आ गई भाई, मैं तो चली। चलेगी सुमी?
2: आज नहीं, भैया आते होंगे, उनका इंतजार करूंगी।
0: ओके, बाय बाय फ्रेंड।
3: बाय।

0: अरे नमस्ते भाई साहब।
1: अरे तू रीमा, लगता है संगत का असर आ गया है। हाय हेलो नहीं, नमस्ते। आज वो तुम्हारी कबूतरी नहीं आई?
0: कबूतरी? What do you mean? You mean सुमी? देखिए भाई साहब, आप मेरी दोस्त का अपमान कर रहे हैं। अरे थोड़ी भावुक है बस, बच्चों जैसी मासूम है, हंसती है तो सुरीले तार झंकृत होड़ते हैं, बोलती है तो जैसे कोयल कुहकुटती है, और चलती है तो
1: लगता है कोई हाथी झूम झूम कर चल रहा है।
0: अच्छा भैया, फिर आपने उसकी बेइज्जती की?
1: अरे भाई गजगामनी कहा, इट्स अ कॉम्प्लीमेंट।
0: अच्छा भाई, तो भाई आप उसकी इतनी बातें क्यों करते हैं, कहीं कोई चक्कर वक्कर तो नहीं है?
1: चक्कर और उससे? अरे बाबा डर लगता है। आती है तो कहती है, डॉक्टर साहब एक नया गीत लिखा है सुनिए। क्या करूं तुम्हारी दोस्त है, झेलना पड़ता है उसे। लिखती है, कितना मोहक कितना सुंदर है इन फूलों का जीवन, हंसना खिलना और शर्माना, महकाना धरती का कड़कण।
0: अच्छा और क्या कहती है?
1: कहती है, खिलती कलियां झूमती लताएं, तपस्वी से चंदन वृक्ष, सब मुझे बहुत अपने लगते हैं, जिस दिन बाग में न जाऊं वे उदास हो जाते हैं।
0: और आप?

0: कहिए तो प्रपोज कर दूं।
1: नहीं रीमा, बहुत भोली है वो। अदखिली अनछुई ओस में नहाई पावन कली की तरह, जिसकी पलकों में न जाने कितने सपने हैं। मैं इंतजार करूंगा।
0: समझ गई भाई साहब, मौका देखकर मैं जरूर बात करूंगी। अभी तो वो भी मगन होगी अपने भैया के साथ।
2: स्वामी बिटिया जी, वो भैया जी आए हैं।
3: अरे भैया, आप घर में सब लोग ठीक तो हैं? और डैडी की तबीयत?
4: बहुत अच्छी, घर में सब लोग अच्छी तरह से। वो तुझे मेरा तार नहीं मिला था क्या?
3: तार वो तो नहीं मिला। खैर, अब तो आप खुद ही आ गए हैं, बता दीजिए क्या लिखा था तार में।
4: यही कि रात की ट्रेन से हम लोगों का रिजर्वेशन है।
3: रिजर्वेशन?
4: हाँ, हमें आज ही बांदा जाना।
3: लेकिन क्यों, अभी तो मेरी छुट्टियों में एक महीना बाकी है और फिर मुझे परमिशन भी नहीं मिलेगी।
4: मैं तुम्हारी वार्डन से बात कर चुका हूँ, तुम जाकर अपनी पैकिंग कर लो, ठीक 8 बजे मैं टैक्सी लेकर आऊंगा।
3: लेकिन भैया, अचानक ये सब क्या हो रहा है? मैं इतने दिन क्लासेस कैसे मिस करूंगी? साफ बताओ ना भैया, क्या बात है?
4: तो सच कह दूं? तो सुन, पापा ने तेरे ब्याह की तारीख पक्की कर दी।
3: ब्याह?
4: इसी माह की 25 तारीख को तेरी शादी, और इसीलिए मैं तुझे लेने आया।
3: ये तुम क्या कह रहे हो भैया? देखो भैया, मुझे ऐसा मजाक अच्छा नहीं लगता।
4: ये मजाक नहीं सुमी, सच है। घर में मेहमान भी आने शुरू हो गए।
3: वाह भैया, मुझसे पूछा भी नहीं और सब कुछ तय कर लिया।
4: देख सुमी, परेशान मत हो, तू तो जानती है पापा रिटायर होने से पहले अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर लेना चाहते हैं। अरे आखिरी का रईस घराना है, लड़का मैकेनिकल इंजीनियर है, 2 बार बाहर भी हुआ है।
3: ओ भैया,
4: सब ठीक ही है। और देख, रही तुझसे पूछने की बात, तो अपने खानदान में ऐसी परंपरा नहीं है, बड़े बूढ़े जो भी ठीक समझते हैं वही करते हैं।
3: हाँ, तभी तो आप भुगत रहे हैं। रईस घराने की लाडली बेटी से पापा ने आपका ब्याह कर दिया और आपकी जिंदगी।
4: सुमी बस प्लीज, दुख तिरक मत छेड़, सब अपना मुकद्दर है। पर तेरे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं उनके घर वालों से मिल चुका हूँ, बहुत अच्छे लोग हैं। और लड़के की बहन मंजू, वो तो बहुत ही प्यारी। अच्छा सुन, मैं चलता हूँ, तू तैयार है ना?
3: सामान बांट लो, सब लाट साहब हैं, मुझसे बिना पूछे ही सब कुछ तय हो गया। कहते थे एमए कराएंगे और अब बीए भी नहीं कर पाऊंगी। लड़का इंजीनियर है, अरे तो कोई और लड़की नहीं मिली, मेरा ही करियर खराब करना था। चल बेटा, चढ़ जा सूली पर। एक खत तो लिख दूं रीमा को। प्यारी रीमा, तेरे चंदन वृक्ष को सर्प घेरने वाले हैं। मतलब मेरा ब्याह हो रहा है इसी 25 को। पहले से आ जाना, नहीं तो जिंदगी भर नहीं बोलूंगी और नहीं ब्याह करूंगी। सुनी
2: विजया जी, चलिए भैया जी आ गए हैं।

0: अरे सुमी सुमी, देख तेरी बारात आ गई।
1: ए सुमी,
0: मैं भी तेरा दूल्हा देखा।
2: नहीं देना, मुझे छोड़कर मत जा।
0: क्यों?
2: मुझे बहुत घबराहट हो रही है।
0: अरे घबराहट कैसा? सभी का ब्याह होता है। अरे शीशे में एक बार अपनी छवि तो देख ले, बिल्कुल अप्सरा लग रही है।
2: छोड़ मुझे रीमा, शीशे में भी मुझे वही चंदन वृक्ष और उससे लिपटे हुए सांप दिखाई दे रहे हैं। मेरा क्या होगा रीमा?
0: सब बढ़िया होगा। अरे कुछ दिनों के लिए बस अपनी कविताएं भूल जा, अब तू एक नई जिंदगी में कदम रखने जा रही है ना।
2: ठीक है,

0: मां मैं भी चलूं?
1: अरे बेटा इतनी जल्दी क्यों, शोमी के आने तक रुक जाती बेटी।
0: नहीं अंकल, रुक तो जरूर जाती पर आज का रिजर्वेशन है और भैया स्टेशन आएंगे।
1: अच्छा बेटी ये बताओ
0: अंकल
1: कि शोमी का दूल्हा तुम्हें कैसा लगा?
0: अंकल ये सब ब्याह से पहले पूछा जाता है, जो बिंद गया वही मोती।
1: हाँ।
0: सुमी खुश रहे बस यही कामना है मेरी। अच्छा चलती हूँ, सुमी की यात्रा शुभ हो और वो अपनी एक नई जिंदगी में खो जाए।
1: हाँ।

0: भाभी घूंघट हटा दीजिए और पीछे टिक कर बैठिए। अरे अभी तो कई दिनों तक झुक कर बैठना होगा, है ना भैया? वैसे भाभी है बहुत खूबसूरत। भैया पापा की पसंद की दाद देनी पड़ेगी।
1: खूबसूरत है ये लड़की, वाह क्या कहना है, पारुल दीदी के पैरों की धूल भी नहीं है ये। इसे कह दो मंजू इसे आईएस बनना है, आईएस समझी?
0: जरूर बनेगी भैया, भला तुम्हारा कहना कौन टाल सकता है, है ना भाभी?
2: अरे चलो चलो नानी चलो मिले नानी, अरे तार आप ताई आंटी दीजिए ना, जोड़ी की आंटी तार है जोड़ी है, देखो जरा सा।
0: आइए भाभी अब उधर बैठिए, आइए भैया
2: तुम भी चलो
1: नहीं
2: के लिए।
1: मैं आंगन में जा रहा हूँ भाभी ताई जी और बुआ जी के पास।
3: मुबारक हो लल्ला जी।
4: अरे भैया दुल्हन है कि एकदम चांद का टुकड़ा,
2: किस्मत वाले हैं हमारे भी भैया।
0: अच्छी हो जी, चाय पी लीजिए भैया, थक गई मैं।
2: आप लोग
0: अरे आप लोग भी चाय पीजिए।
1: क्या कहा, मैं थक गया हूँ, इतनी जरूरी मीटिंग बुला रखी है मैंने, ऑफिस का सारा काम पड़ा है, ये कितनी सारी फाइलें निपटानी है और तुम कहती हो मैं थक गया हूँ। ये चाय ले जाओ और उस लड़की को पिला दो जो मेरे कमरे में बैठी है।
0: वो भाभी है भैया, अभी परसों ही तो तुम्हारे साथ उनका ब्याह हुआ है, हम लोग ही तो उन्हें विदा करा कर लाए हैं, कितनी प्यारी है भाभी।
1: भाभी अच्छा मजाक है, किसी को भी सजा कर बैठा दिया और वो तुम्हारी भाभी हो गई। ये भी भाभी है, ये भी भाभी है, कितनी सारी भाभियां हैं चारों तरफ, भाभी भाभी भाभी, वाह। लो लो चाय पियो, लो लो भाभी तुम भी पीनो, तुम भी पीनो, तुम भी पीनो।
4: अरे इसकी शादी क्यों कर दी गई, हे भगवान और बहू का क्या होगा, डॉक्टर ने कहा था चांद सी बहू आते ही ग्रहण लग गया, हाय अब क्या होगा।
5: अरे बंधी भी तो पागल के साथ।
1: क्या कहा, अरे मैं पागल हूँ? तुम पागल हो, तुम पागल हो, तुम भी पागल हो, तुम भी सब पागल हो, पागल हो, ये पागलों की बारात है, पागलों की। मैं पागल, मेरा मन हुआ पागल, पागल मेरी प्रीत रे। अरे ये मुझे क्या पहना दिया, हार अंगूठी, ये लो ये लो ये लो, लूटो लूटो, पागल का ब्याह हुआ है, झूमो नाचो गाओ।
4: भैया भैया ये क्या कर रहे हो भैया, भाभी बुआ पकड़िए इन्हें, मैं बाबूजी को बुलाती हूँ।
1: छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, मुझे मुझे छोड़ दो छोड़ दो, देखो देखो मैं पागल नहीं हूँ, मैं पागल नहीं हूँ, तुम सब पागल हो, तुम सब पागल हो।
6: मैं पागल नहीं हूँ, मैं पागल नहीं हूँ,
1: मैं
6: पागल नहीं।
0: बाबूजी बाबूजी बाबूजी बाबूजी,
7: क्या है मंजू बेटी, इतनी घबराई हुई क्यों हो?
0: भैया को फिर दौरा पड़ा है बाबूजी, अनशन बोल रहे हैं।
7: क्या कह रही,
0: कभी हंसते हैं तो कभी रोते हैं, कपड़े फाड़ रहे हैं, चाची बुआ साबुन पकड़े हुए हैं।
7: घबरा मत बेटी, मैं अभी गाड़ी निकलवाता हूँ, उसे डॉक्टर क्या तुरंत ले जाना होगा, ऐसा कर तू जल्दी डॉक्टर वर्मा को फोन कर दे।
0: अच्छा
7: भाभी, राहुल विकी तुम लोग इसे लेकर पीछे बैठो, मंजू तुम बेटे बहू को संभालना।
0: अच्छा बाबूजी,
7: घबरा गई होगी, हम लोग इसे लेकर अस्पताल तुरंत जा रहे हैं।
0: ठीक है बाबूजी, भाभी ताई जी संभालिए भैया को। भाभी भाभी ये क्या आप रो रही हैं, भैया ठीक हो जाएंगी, घबराने की कोई बात नहीं है भाभी, ये लीजिए पानी पी लीजिए।
8: नई जिंदगी की शुरुआत, वो भी
0: इस ठग से। मंजू जी, क्या हो गया आपके भैया को? क्या इसकी वजह मैं हूं, या फिर ऐसे दौरे इन्हें पहले भी पड़ चुके हैं? सच बताइएगा मंजू जी, आपको मेरी कसम।
8: सच ही बोलती हूँ भाभी, मेरे भैया जन्म से ऐसे नहीं हैं।
0: तो फिर?
8: बचपन से ही पढ़ने में बहुत तेज थे, हर इम्तिहान में टॉप करते थे। इतनी छोटी उम्र में अच्छी नौकरी भी मिल गई, बाहर भी घूम आई हैं। लेकिन अचानक ही हमारे परिवार में एक ट्रेजेडी हो गई।
0: ट्रेजेडी?
8: हाँ भाभी, मेरे सबसे बड़े भैया का स्कूटर दुर्घटना में देहांत हो गया। भैया उन्हें बहुत प्यार करती थी और ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सके। 10 दिनों तक ना सोए और ना ही किसी से बात की। उसके बाद ही पहला अटैक पड़ा, इलाज किया गया, ठीक हो गई, मेहनत की और नौकरी भी मिल गई।
0: वहाँ ठीक रहते हैं?
8: हाँ भाभी, ऑफिस में बड़ी तारीफ करते हैं लोग उनकी, काम भी बहुत करते हैं।
0: और डॉक्टर्स क्या कहते हैं?
8: उम्मीद दिलाती रहती हैं कि सब ठीक हो जाएगा। वैसे ठीक रहते हैं, तभी तो उनका ब्याह किया गया है। भाभी आप क्यों चिंता करती हैं? अरे अचानक ही दौरा पड़ गया होगा, 2-3 दिन में नॉर्मल हो जाएंगे। अच्छा अब आप आराम कर लीजिए, मैं आपके लिए कुछ खाने को लाती हूँ।
0: नहीं मंजू जी, अभी भूख नहीं।
8: तो लेट कर सोने की कोशिश कीजिए, मैं अभी आती हूँ। शायद बाबूजी आ गए हैं।
0: कितनी सुंदर जगह ब्याह किया है अपनी लाडली बेटी का। रईस खराना, शानदार हवेली, 4-5 गाड़ियां, ढेरों नौकर चाकर और एक प्यारा सा पागल पति। अरे टेटी, इससे अच्छा होता अगर आप मेरा गला घोट देती। जीते जी मुझे मारने की क्या जरूरत थी टेटी? रीमा तो सच कहती थी, इस चंदन वृक्ष से संघर्षों के सर्प लिपट गए हैं। बड़ा डर लग रहा है मुझे।
8: भाभी सो गई मेरी भाभी, कैसा निश्चल भोला चेहरा है, कुछ घंटों में ही कुंभला गया है। किस सम्मोहन ने बांध दिया है मुझे इस मासूम ने, मुझे ही कुछ करना होगा। लगता है बाबूजी आ गए हैं। भगवान भैया ठीक हो गए हूँ। बाबूजी क्या हाल है भैया का?
9: क्या बताऊं बेटे, बहुत ही वायलेंट हो गया था।
8: हैं?
9: हाँ, अगर सावधानी न बरती जाती तो शायद वो नर्स का गला ही खोल देता।
8: बाबूजी?
9: हाँ, उसे इंजेक्शन देने जा रही थी और वो इंजेक्शन बड़ा ही कष्टदायक था बेटा। हे भगवान, ये किस पाप की सजा दे रहा है मुझे?
0: पाप क्या होगा बाबूजी?
9: क्या कह सकता हूँ मैं, फिलहाल तो इंजेक्शन देकर सुला दिया गया है। डॉक्टर साहब कह रहे हैं मेंटल हॉस्पिटल शिफ्ट करना होगा।
0: नहीं।
9: राजेश बेटा।
10: जी बाबूजी।
9: कल सुबह सब जगह फोन करके डिनर कैंसिल करने की सूचना दे देना।
8: लेकिन बाबूजी, भाभी के मायके वाले ट्रेन से आ रहे हैं, चल ही दिए होंगे। बाबूजी भैया की शादी करके आपने ठीक नहीं किया।
9: उस समय तो ठीक था बेटा, डॉक्टर की राय से ही तो सब कुछ हुआ था।
8: उन्होंने तो ये भी कहा था कि शादी से ठीक भी हो सकती है और बीमारी बढ़ भी सकती है, इसमें रिस्क है। हम सब ने आपसे मना भी किया था बाबूजी।
9: अरे बेटे की मोहब्बत को तुम लोग क्या समझोगे?
8: ठीक कह रहे हैं आप, उसके लिए एक क्या कई सुमी की जिंदगी दांव पर लगाई जा सकती है।
9: मंजू मंजू,
8: अगर आपकी बेटी के साथ भी यही होता तो?
9: चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। जो मुंह में आता है पढ़ देती है।
8: सच कह रही हूँ, इसलिए आप सहन नहीं कर सकती। कितनी मासूम लड़की है, उम्र में भी मुझसे छोटी। उसकी सिसकियां, उसका रोना, उसका दुख मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। उसके लिए भी तो कुछ सोचिए बाबूजी।
9: अब तो बस एक ही उपाय है बेटी, शाम को उसके मायके वाले आ रहे हैं। सोचता हूं उसे उनके साथ भेज दूंगा, शायद उसका वहां मन बहल जाए। जब रितेश ठीक हो जाएगा तो उसे बुलवा लूंगा।
8: ठीक है, मैं भाभी को मायके जाने के लिए राजी कर लूंगी। अब आप भी आराम कीजिए।
9: ठीक।
10: अरे आगे आप लोग, सुमी भी आई है। डिनर कैसा रहा? सुमी तू कुछ बोलती क्यों नहीं? रितेश कहाँ है?
11: मम्मी प्लीज, के सब बातें एक ही साथ पूछ लेंगे। सुमी बहुत थक गई है, उसे आराम करने दीजिए।
10: अरे क्या हुआ सुमी? अरे तेरा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? देखूं तो? हाँ, अरे तुझे तो बड़ा तेज बुखार है, जल्दी से डॉक्टर को बुला ला। सुमी चल तू अंदर लेट जा बेटा। अरे जाना जल्दी से डॉक्टर को ले आ।
11: अरे हाँ बुलाता हूँ, आप उसके पास बैठिए।
10: सो जा बेटा। क्या हो गया मेरी सुनी बेटी?
11: आइए डॉक्टर साहब, देखिए कितनी तेज बुखार है।
10: हाँ देखिए डॉक्टर साहब, कितना तेज बुखार है।
12: इत्मीनान रखिए, इत्मीनान रखिए, मैं देख लेता हूँ। अरे भाई इसको तो बुखार है। ऐसा करता हूँ मैं इसे एक इंजेक्शन फिलहाल लगा देता हूँ, और ये दवाएं आप बाजार से मंगवा लीजिएगा, चार चार घंटे पर देते रहिएगा, सुबह तक बुखार उतर जाएगा।
10: ठीक है ठीक है,
12: और घबराने की कोई बात नहीं है।
10: ठीक है, जा बेटा दवाएं ले आ।
11: थैंक यू डॉक्टर साहब, आइए मैं आपको दरवाजे तक छोड़ देता हूँ। सुमी सो गई है मम्मी, आप उस कमरे में चलिए, डैडी यहाँ बैठ जाएंगे। हाँ
10: ठीक है,
11: आपसे कुछ जरूरी बातें करनी है, आइए।
10: हाँ हाँ बोलो बेटा, क्या बात है?
11: मम्मी हमें धोखा दिया गया है।
10: धोखा? कैसा धोखा?
11: हाँ मम्मी धोखा, वो बात यह है कि रितेश को पागलपन के दौरे पड़ते हैं। कई महीनों तक वो मेंटल हॉस्पिटल में भी रहा। वो तो कल शाम को ही फिर से उसे दौरा पड़ा, अब हॉस्पिटल में।
10: अच्छा,
11: उसके ड्राइवर ने हमें सब कुछ बता दिया मम्मी, नहीं तो हम तो धोखे में रहते।
10: नहीं नहीं ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। हे भगवान, ये सब क्या हो गया? अब क्या होगा राकेश, मेरी मासूम बच्ची सुमी, ये क्या?
11: देखिए मम्मी, इस तरह घबराने से कुछ काम नहीं चलेगा। मैंने और डैडी ने तय कर लिया।
10: क्या?
11: सुमी अब वहां नहीं जाएगी। रितेश वायलेंट हो जाता है मामा, तो जान पर भी हमला करता है। अब हम सुमी को नहीं खोना चाहते। मम्मी एक बार सुमी ठीक हो जाए तो उसे पढ़ाई पूरी करने के लिए भेज देंगे, रीमा उसकी केयर करेगी, और रही ससुराल वालों की बात तो उनसे हम निपट लेंगे।
10: अच्छा
11: अब ठीक है मामा, आप सुमी के पास जाइए।
10: ठीक है।
8: वर्ष बीत गए अपने आप से लड़ते हुए। वाह सुमी चौधरी वाह, बाहर मुखौटा पहन रखा है एक गंभीर प्राध्यापिका का, लेकिन अंदर अंदर छटपटाती है भोली भाली सुमी। क्या अपराध था मेरा, क्या अपराध था? भाग्य ने दुख भोगने के लिए मुझे ही क्यों चुना? अगर रीमा और डॉक्टर राजन न होते तो क्या होता?
13: था मेरा, मैं तो टूट चुकी थी और मैंने मुझे बदले में क्या दिया, रीमा को दुख और डॉक्टर साहब को तड़प। आखिर आखिर वो क्यों तप रहे हैं टूटे हुए इंसान के लिए। मुझे मुझे हर वक्त समझाती रहती है पर मैं क्या करूं, क्या करूं मैं।
14: अंदर आ सकता हूं?
13: ओ आप आइए आइए बैठिए ना। रीमा का कोई खत आया? कैसी है वो? और जीजा जी और बच्चे तो ठीक है ना?
14: सब ठीक है, तुम कैसी हो सुमी?
13: अच्छी हूँ। सुना है आप बाहर जाने वाले हैं।
14: यहाँ रहकर भी क्या करूंगा सुमी, एक बात कहूँ सुमी, जिंदगी अनिच्छा से जी जाए तो बोझ बन जाती है, हर लम्हा बोझिल हो जाता है। अभी वक्त है सुमी, ये घेरा जो तुमने अपने चारों ओर बना रखा है उसे तोड़ दो, तोड़ दो सुमी, आज आखिरी बार कह रहा हूं।
13: कैसे तोड़ दूं? ये दुनिया, ये समाज मुझे जीने देगा?
14: समाज, समाज, फिर वही समाज। क्या दिया है समाज ने तुम्हें? घुटन, तनाव और दुख, तिल तिल कर जलने के लिए छोड़ दिया है तुम्हें, और लोग भी जल रहे हैं, लेकिन तुम्हें इससे क्या? हार गए हैं हम भी, क्या मिलेगा शिलाओं से टकराने से। चलता हूं, गुड बाय सुमी।
13: राजन!
14: सुमी
13: रुक जाओ प्लीज, मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं बहुत थक गई हूं
14: सुमी।
13: और राजन हो?
14: ओ सुमी, मैं जीत गया सुमी, मैं जीत गया। शायद चंदन रस से सांप हट गए हैं
13: और बिखर गई है मादक गंध।

0: अभी आप सुन रहे थे नाटक चंदन वृक्ष। इसकी लेखिका थीं उषा सक्सेना, निर्देशिका रमा अरुण त्रिवेदी। आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र की इस प्रस्तुति के साथ ही आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती।

0: उजाले उनकी यादों के। इस कार्यक्रम में आज हमारे साथ हैं जाने माने फिल्म निर्देशक रमेश तलवार। एक लंबी यात्रा रही है रमेश तलवार की, एक फिल्म निर्देशक, रंगमंच की दुनिया के निर्देशक और साथ में प्रोड्यूसर भी। सन 1977, दूसरा आदमी।
1: अरे चल कहीं दूर निकल जाए।
0: 1981, बसेरा।
2: जहां पे सब

0: 1984 दुनिया
1: तू चांद नगर की शहजादी मैं जिस धरती का बंजा
0: 1985 जमाना
2: एक बात है हमसे कहीं नहीं जाए
3: क्या
0: 1993

0: बतौर प्रोड्यूसर उन्होंने बनाई फिल्म रंगमंच पर भी रमेश तलवार का लंबा काम रहा है। हम रमेश तलवार जी के घर गए और उनसे की लंबी बातचीत। रमेश तलवार से बातचीत की है आपके इस दोस्त यूनुस खान ने। आज आप सुनेंगे इस बातचीत का पांचवा भाग। बीते चार हफ्तों में रमेश तलवार ने एक से बढ़कर एक घटनाएं सुनवाई हैं। जाहिर है कई श्रोता भूल गए होंगे या कई नए श्रोता शामिल हुए होंगे जिन्हें नहीं पता होगा कि पहले एपिसोड में रमेश तलवार ने कौन सी रोचक घटना सुनाई थी। तो चलिए बीते चारों एपिसोड्स में से कुछ दिलचस्प वाक्य दोहराते हैं और उसके बाद सुनते हैं आगे की बातचीत। ये है रीकैप एपिसोड 1।
1: जब पार्टीशन हुआ तो हम आए श्रीनगर में। उसके बाद जो है कुछ दिन सेट होने के बाद कुछ रिश्तेदार बम्बई आ गए थे ऑलरेडी, तो उन्होंने मेरे ग्रैंडफादर को फोन किया कि आपके लिए भी एक ट्रक खरीद लिया है। यहाँ कोलीवाड़ा में जहाँ हम थे
2: जी,
1: तो वहाँ पे ये मिलिट्री के क्वार्टर्स थे कुछ
2: साइन में,
1: साइन कोलीवाड़ा। तो हमारा जो कमरा था उसका नाम था T157
2: जी।
1: तो टी मतलब होता है टट्टी,
2: अरे
1: ओरिजिनल टट्टी थी वो।
2: ओ गॉड।
1: तो उसको लेवल करके सीमेंट करके घर बनाया गया और कुलदीप जी शुरू से ही म्यूजिक के माहिर थे, गाते बहुत अच्छा थे, हमेशा कुछ ना कुछ ट्रॉफी जीत के आ जाते थे। कोलीवाड़ा में भी कोई प्रोग्राम होता था, दिवाली आई, होली आई, कुछ आया, ये गाते थे और खूब रंग जमाते थे। मैं जब नाटक वाटक करने लग गया, छोटे छोटे रोल मिलने, तो मैं अपने ब्लैक बोर्ड पे लिखा करता था
2: जी
1: कि फलाना नाटक, किसी नाटक का नाम लिखता था, डायरेक्टेड बाय रमेश तलवार, म्यूजिक बाय कुलदीप सिंह, ऐसा लिखता था।
2: जब ऐसा कुछ हो नहीं रहा है।
1: ना ना, वो कुछ करते नहीं थे वो, लेकिन ब्लैक बोर्ड पे लिखा होता था। उन्होंने भी कई बार नाम पढ़ा और वो कहते हैं कि ऐसा था उनके दिल में ये आ गया कि यार ये मैं मुझे म्यूजिक डायरेक्टर बनाना चाहता है। और इसी दौर में एक फिल्म की है, पता चला कि एक फिल्म बन रही है डेविड कॉपरफील्ड के ऊपर, वो है उसका नाम है सौतेला। तो मुझे उसके रोल के लिए ले जाया गया, कुछ छोटा मोटा टेस्ट लिया और मैं सेलेक्ट हो गया और मद्रास AVM में जो है उसकी शूटिंग थी।
0: एपिसोड 2 में रमेश तलवार ने ये दिलचस्प घटना बताई थी।
1: तो मैंने पढ़ा कुछ दिनों के बाद कि इत्तफाक एक फिल्म बनेगी, एक महीने में कंप्लीट हो जाएगी और राजेश खन्ना उसका हीरो होगा। राजेश खन्ना तो मेरा स्टेज का दोस्त
2: बिल्कुल।
1: तो मैं

0: मनमोहन जी से, फिर कहा मनमोहन कृष्ण साहब से कि वहाँ चलते हैं, ये पिक्चर है और मुझे असिस्टेंट रख लेंगे, एक महीने में सारी एक पिक्चर सामने से गुजरेगी आँख से, तो मैं काफ़ी आगे चलूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है चलो। गए तो बी आर चोपड़ा सर ने कहा हाँ भाई आ जाओ रमेश बैठो, मनमोहन जी यश को बुलाओ भाई, यश जी आए भाई, उन्होंने कहा इसको असिस्टेंट रखो यश अपनी पिक्चर में। भाई साहब मेरे पास ऑलरेडी 4 असिस्टेंट हैं, अगली बार बुलाइए जब अगली पिक्चर शुरू करेंगे। तो फिर बी आर चोपड़ा ने कहा पांचवा असिस्टेंट बना लीजिए, बैठा रहेगा कोने में, देखेगा सब
1: जी।
0: तो यश जी मान गए बड़े भाई की बात, मैं ड्रामे का डायरेक्टर हूँ,
1: यस
0: मैं सिनेमा, मैंने हर फिल्म अच्छी फिल्म देखी हुई है 5 आने में, फ्रंट रो में बैठ के आकाश कुरला पे जाके, कोलीवाड़ा से आकाश कुरला एक आने का टिकट, वहां जाता 5 आने की पिक्चर, एक आने का खाना और एक आना वापस आना, ठन्नी में
1: काम बन जाता था,
0: काम बन जाता।
1: कौन कौन सी फिल्में देखी
0: सब
1: होगी?
0: कोई भी आप अच्छी पिक्चर का नाम लो, मैंने देखी है बिमल राय की सारी फिल्में, सत्यजीत रे की सारी फिल्में, गुरुदत्त की सारी फिल्में। अब था वो चलते हुए एक आध बार ऐसी चीज आई, रुक गई शूटिंग, सब राइटर डिस्कस कर रहे थे, कुछ पॉइंट पूछा गया और मैंने कहा ये क्यों ना कर लें, तो सब राइटर ने बोला हाँ ये तो बिल्कुल सिंपल है, ये तो बिल्कुल आसान है, ये जाएगा इफ्तिखार करेगा, करेक्ट है। अब साहब वो चीज की गई, अब मेरी थोड़ी सी इम्पोर्टेंस जगह पे यश चोपड़ा में नोट किया, उन्होंने प्ले भी देखा था शतरंज मोरे, यहाँ ये नोट कर लिया कि इसको जबरदस्ती 5 बार से रखकर कोने में बैठा साहब आगे चले। तो इन्होंने मुझे कहा कि आप आइए हमसे मिलिए, मैं गया मिलने,
1: जावेद साहब ने,
0: जावेद साहब और सलीम साहब दोनों बैठे थे, तो मैं गया, बोलने लगे भाई एक प्रोजेक्ट है करेंगे आप, मैंने कहा जी आप कमाल कर रहे हैं, आप प्रोजेक्ट दे रहे हैं तो मैं क्यों नहीं करूँगा, देखिए कमर्शियल सब्जेक्ट है आप सुन लीजिए
1: हाँ
0: फिर बोलिए, और हम आपको कास्टिंग भी बताते हैं, आपका दोस्त ऋषि कपूर इसमें होगा, मैं ऋषि कपूर के साथ उन दिनों बहुत फिल्में कर रहा था,
1: हाँ बिल्कुल
0: ऋषि कपूर इसमें होगा और साथ में होंगे राजेश खन्ना,
1: वो भी आपके दोस्त।
0: तो अब उसी टाइम पे एक्चुअली डिंपल की शादी राजेश खन्ना के साथ हो गई थी
1: जी जी,
0: और कंट्रोवर्सी चल रही थी कि वो हीरोइन थी बॉबी में,
1: हाँ
0: तो पिक्चर को बिल्टअप मिलता है ये उनके जहन में था, और रमेश तलवार के दोनों हीरो दोस्त हैं। तो साहब वो फिल्म मैंने कहानी सुनी, मेरा बसेरा करने के बाद और दूसरा आदमी करने के बाद दिमाग जो है खराब हो चुका था, खराब मतलब सीरियस हो गया था। ये पिक्चर बिल्कुल कमर्शियल पिक्चर थी, मैंने कहा यार वही स्मगलिंग वही पुलिस और सिपाही, और तो देखिए मुझे मेरे लायक नहीं है, कोई और करे तो बेटर है आपके लिए।
2: तीसरे एपिसोड में रमेश तलवार ने सुनाई थी ये घटना,
0: करते करते 1 साल लगा वो पिक्चर रिलीज करवाने में, वो पिक्चर जिस दिन रिलीज हुई उस दिन संजय दत्त अरेस्ट हो गया,
1: बाप रे,
0: उनके पोस्टर फाड़ दिए गए लालबाग में, और उनका बहुत जबरदस्त रोल था मेरी पिक्चर में, और ऋषि कपूर ने संजय दत्त को ये कहा था साले इसमें तेरे को अवार्ड मिलेगा तू ये रोल कर, और मैं जब संजय दत्त से मेरी कोई दोस्ती नहीं थी तो थ्रू ऋषि कपूर में गया था साइन करने के,
1: हाँ हाँ,
0: तो उसके बाद संजय दत्त के साथ मेरी बहुत दोस्ती हो गई। अब ये सोचो कब सोचा था कि साहिबा जैसी फिल्म 1-1.5 साल लेट भी हो गई
1: और सलमान खान ड्रॉप हो गए,
0: जो वो ड्रॉप हो गए और वो पिक्चर जो है चली नहीं, लगाई मतलब लोगों ने पोस्टर फाड़ दिए ना,
1: लेकिन आज उस फिल्म को लोग बहुत
0: लोग देखते हैं, नहीं करते भी हैं, देखते भी हैं, याद भी करते हैं, सब है, गाने भी इतना है, सब कुछ है, लेकिन देखिए जब हमने बनाई थी ये सोच के बनाई थी कि ये फिल्म अभी जो फिल्में इस वक्त आ रही हैं ये सबसे हटके होगी,
1: बिल्कुल, और थी भी वो
0: उस तरह की है। तो एनीवेज माधुरी दीक्षित संजय दत्त ऋषि कपूर के साथ
1: बड़ी स्टार कास्ट,
0: बड़ी स्टार कास्ट, अच्छा मुहूर्त हुआ, अच्छी तरह से बनाई, बड़े

0: रमेश तलवार से आपके इस दोस्त यूनुस खान की बातचीत के चौथे एपिसोड में ये हिस्सा बड़ा ही दिलचस्प था।
1: तो मुझे ऋषि कपूर का एक दोस्त है, उसने आइडिया सुनाया। उसमें ऋषि कपूर है, नीतू सिंह वाला रोल है और बाप और माँ है वो है, उसमें राखी का रोल नहीं था। तो मैंने उनके दोस्त से कहा कि भाई तेरी स्टोरी में लेता हूँ, लेकिन इसमें चेंजेस वेंजेस होंगे। नया न्यू कमर था राइटर,
0: जी जी जी,
1: उन्हीं का नाम है राइटर, है राइटर, स्टोरी राइटर उनका नाम ही है। तो उन्होंने कहा मैं तुम्हारे साथ हूँ जो भी है। तो मैंने चिंटू से कहा, मैंने कहा भैया ये ऐसा ऐसा है, सागर सरदी साहब से कहें करने के लिए। बोला बहुत अच्छा, अगर सागर सरदी कर लें। तो सागर साहब एडवर्टाइजिंग एजेंसी में काम करते रहे 3-4 साल, वो जो एक्सपीरियंसेस उनको थे वो उन्होंने इसमें डाले। और इलिस्टेड वीकली में किसी का फोटो आया था, एक कोई सीनियर थी एडवर्टाइजिंग में, उसका फेस बहुत आता था, उनका फेस आया, उन्होंने वो मुझे दिखाया, ऐसी कोई औरत। और फिर करते करते ये आइडिया आ गया कि 40 साल की वो और 20 साल का लड़का,
0: हाँ।
1: तो हमको एक विलन का नया नेगेटिव कैरेक्टर मिल गया।

0: तो चलिए अब सुनते हैं आगे की बातचीत, जिसमें हमने रमेश जी से रंगमंच की उनकी गतिविधियों के बारे में पूछा है।
1: अच्छा, अभी आखिर में कुछ ऐसे नाटकों की बातें करना चाहता हूँ जो आपने सेलिब्रिटीज़ के साथ किए हैं, जैसे शबाना आज़मी के साथ नाटक किया है, जया भादुड़ी के साथ, जया बच्चन के साथ नाटक है, शत्रुघ्न सिन्हा के साथ है, जीनत अमान के साथ है।
2: जी, सबसे पहले मैंने पूजा भट्ट के साथ किया नाटक।
1: खूबसूरत
2: खूबसूरत। पूजा भट्ट के साथ क्या हुआ कि उन्होंने बोला कि भाई प्ले कर रही है वो, और कोई और डायरेक्टर डर कर रहा था, मैं नहीं कर रहा था, कोई कर रहे थे। तो वो डायरेक्टर गुरु टाइप के थे, तो उन्होंने डांटा बांटा ये किया, तो ये कुछ आपस में अनबन हो गई उनकी। तो मेरे ख्याल में बोनी कपूर ने कहा रमेश जी को पूछ लो, तो मेरे पास कोई आया जो भी ऐसा है करोगे, बाहर अमेरिका में टूर है ऐसा। तो मैंने कहा कौन सा प्ले है, उन्होंने प्ले बताया, प्ले स्क्रिप्ट बताई, और मैंने वो सुनी और मुझे लगा कि प्ले बहुत अच्छा है, प्ले था, बहुत अच्छा था। और उसमें कोई और आर्टिस्ट कर रहा था रोल पहले, जो मुझे लगा मेरे कंट्रोल में नहीं रहेगा। पूजा भट्ट के संग बाप का रोल कोई और कर रहा था, मैं नाम नहीं लेना चाहता उस एक्टर।
1: जी जी,
2: मैंने कहा ये जो इधर टेंट्रम दिखा रहे हैं हमको, जो कुछ बातें वो करते थे ऐसी, ये नहीं हो रही होगा, ये नहीं होगा, मैंने नाटक में नहीं होता।
1: जी जी,
2: मैं आपके सिनेमा में बात सुन सकता हूँ।
1: जी,
2: नाटक में अमेरिका में बैठे तो मैं क्या करूँगा। तो वो मैंने कहा भरत कपूर को ले लेते, मेरे नाटकों में सब में काम करता है वो, और तुम्हारा फादर बिल्कुल लगेगा और मेरे कंट्रोल में। तो उस आर्टिस्ट को मैंने कह दिया भाई तुम्हारे ऐसी प्रॉब्लम है, शूटिंग डेट्स होती हैं, फलां होता है, ये होता है, वो होता है, नाटक में ऐसा नहीं होता, तो तुम अगर ना करना चाहो तो। उन्होंने कहा हाँ मैं नहीं करूँगा, मेरे पास टाइम जितना है मैं वही दूँगा, मैं क्या कर सकता हूँ। वो भरत कपूर को मैंने सुनाया सब्जेक्ट, उसने कहा मैं कर लेता हूँ। फिर पूजा भट्ट के साथ हम वहाँ गए, वहाँ उसके 5-6 शो हुए अमेरिका में, यहाँ आके 4-5, फिर 5-6 शो यहाँ पे किए, मतलब मेरे ख्याल में मुश्किल से 10-12 शो किए थे हमने उसके।

0: शबन आजमी वाला प्ले
1: नहीं, इसके बाद हमने पहले ये, इनके बाद जिया जी के पास गए हम।
0: जी जी,
1: मेरे पास मेरा दोस्त संजय गोराडिया आया।
0: जी,
1: संजय गोराडिया गुजराती का बहुत फेमस प्रोड्यूसर डायरेक्टर है और एक्टर भी है, और वो मेरे साथ शुरू में मेरी फिल्मों में प्रोडक्शन भी करता रहा। सागर साहब के साथ बाजार में प्रोडक्शन असिस्टेंट था सागर साहब का, और फिर वो मैंने एक बनाई थी NFDC के लिए पिक्चर, तेरा नाम मेरा नाम, न्यू कॉमर्स को लेके, उसमें भी प्रोडक्शन कर रहा था और एक आध रोल भी किया था। तो आया, उसने कहा मैं तुम जैसे पूजा भट्ट के साथ प्ले करके आए हो वैसा अगर मेरे लिए प्ले करो तो मुझे अमेरिका का टूर मिल रहा है। तो मैंने कहा अच्छा, तो कौन सा प्ले करना चाहते हो? उसने प्ले का नाम बताया, ये वाला प्ले, ये स्क्रिप्ट। मैंने कहा ये स्क्रिप्ट किसको शूट करती है, किसको करती है? जिया जी को करती है। और कौन है
0: जी
1: जो इसमें ठीक रहेगा? पहले जिया जी के पास पूछते हैं, अगर वो करने के लिए हाँ कर दें। और जिया जी के साथ मैं सीरियल कर चुका था उन दिनों, उनकी कंपनी का ABCL के लिए मैंने आरजू एक सीरियल किया था, 50 एपिसोड किए थे उसके। तो बड़े अच्छा रिलेशनशिप थी, बहुत इज्जत करती थी, मैं भी बहुत इज्जत उनकी करता था। मैंने उनको बताया कि ऐसा मैं कर रहा, अगर आप फ्री हैं और आप करना चाहती हैं अमित जी से भी बात कर लेती है, महीने का टूर होगा कहीं अमेरिका का अलग अलग सिटीज में। बोले सब्जेक्ट सुनाओ, मैंने सब्जेक्ट सुना, सब्जेक्ट उनको बहुत पसंद आ गया और उन्होंने कुछ कहा, ऑलमोस्ट हाँ है, फिर भी मैं एक बार अमित जी से बात कर। फिर उन्होंने एक शर्त रखी कि हम रिहर्सल कितने दिन करेंगे? मैंने कहा ऐसे 6 हफ्ते होती है या 45 दिन होती है। बोले उसके बाद आप मेरी फैमिली को दिखाएंगे प्ले, ओपिनियन लीजिए आप। मैंने कहा बिल्कुल, अमित जी को बुलाऊंगा, बच्चों को भी बुलाऊंगा, सब जो भी देखना चाहें और भी ऑडियंस में जिसको आप बुलाना चाहती हैं, मैं भी अपने लोगों को भी बुलाऊंगा, हम देख लेंगे। कमिट करने से पहले मैंने कहा डेटे कमिट नहीं हो तब तक मैं बेचूंगा नहीं, फिर वेट थोड़ा सा करना पड़ेगा डेटों का, टूर का। बोले ठीक है। रिहर्सल हुई, हमने शो रखा भाईदास में, प्राइवेट शो जिसमें अमित जी भी आए और भी बच्चे भी आए, सब सब ने, हमारे भी दोस्त फैमिलीज आई, सब ने देखा, लोगों को प्ले बहुत पसंद आया। जब प्ले होने लगा था तो मेरे ख्याल में था कि इनके सामने हस्बैंड जो है अनुपम खेर टाइप का कोई आदमी हो, या अनुपम हो या कोई और इस तरह का आदमी होना चाहिए। उन्होंने कहा रमेश जी आप ही करिए।
0: अरे वाह।
1: उन्होंने मुझे थिएटर करते हुए देखा होता, मेरे प्लेस देखे हुए जब दिन में मैं एक्टर था। ये आप ही करिए, कोई बात नहीं। तो मुझे थोड़ा सा वो झटका लगा कि जिया जी के सामने मैं नहीं करेंगे, बहुत अच्छा करेंगे आप, करिए, आपने जैसा सुनाया ना वैसा ही करिए। तो जब पढ़ा था मैंने उनके सामने प्ले, तो मेरे से करनी शुरू हो गया और फिर हमने अमेरिका टूर किया और बहुत अच्छा हुआ। और इधर जो ट्रायल हुआ उसमें भी लोगों ने मुझे अप्रूव किया।
0: वाह वाह वाह।
1: उन्होंने कहा रोल मेन जिया जी का, लेकिन आपका रोल भी बहुत अच्छा है, आप एकदम रिलीफ है प्ले में, आप जब जब आप आते हैं आपके एंट्री का इंतज़ार होता है, क्योंकि वो जज थ्रू आउट प्ले में है। और मेरा कभी कभी बीच में आता था मैं 3-4, तो सब ने अप्रिशिएट किया और मैंने वो रोल कर डाला।

और फिर उसके बाद नेक्स्ट ईयर जब हुआ, अब जिया जी को भी पसंद आ गया थिएटर करना, वो प्ले सुपर डुपर हिट हुआ और इन लोगों को फीस जो उन्होंने मांगी वो मिली थी। उसके बाद दूसरा प्ले आया, वो मैंने इनको डॉक्टर मुक्ता प्ले सुनाया, उसमें भी वो मेन रोल था लेकिन सीरियस प्ले था। तो उसमें उन्होंने कहा कि आप ये रोल करिए जो हस्बैंड का रोल है। अगेन मेरा रोल बीच में ही है लेकिन लाफ्टर लाफ्टर आते हैं मेरे आने पर, ऑल्दो मैं कॉमेडियन नहीं हूँ लेकिन वो रोल ऐसा होता है कि मुझे लाफ्टर तो मिलते हैं। वो रोल भी, वो प्ले, फिर हम दोनों प्ले साथ लेके फिर अमेरिका टूर पे गए। अमेरिका से फिर गल्फ कंट्रीज भी गए, पहले लंदन गए, लंदन से गल्फ कंट्रीज भी गए। इस तरह हमारा 40 दिन का टूर हुआ, बहुत अच्छा रहा और सबको फीस अच्छी मिली। क्योंकि बाहर प्ले में आपको मुँह मांगा दाम, जब आप स्टार प्ले करते हैं तो जो प्राइस स्टार बोलेगा उस हिसाब से पैसे मिल जाते हैं, फिर डायरेक्टर को भी उस तरह मिल जाते हैं। इस तरह से हमको जब ये प्ले चल रहे थे तो एक दिन शत्रु जी से मुलाकात हुई। तो उन दिनों कुछ दिल्ली जाते थे और ये सब, तो उन्होंने कहा यार मैंने तेरा प्ले देखा बहुत अच्छा था। मैंने कहा आप करेंगे प्ले? नहीं करूँगा, जरूर करूँगा, कब करना चाहोगे?

कौन सी भैया स्क्रिप्ट सुनाओ, और उनको स्क्रिप्ट सुनाई और वो मेरा ट्राइड एंड टेस्टेड प्ले था जो उन्होंने सुना, और वो प्ले अच्छा है आज तक चल रहा है वो भी, और उसमें राकेश बेदी और ये और लड़की एक है और संजय गोरडिया एज प्रोड्यूसर, वो एंट्री भी मारता है कुछ शुरू में। तो चार ही कैरेक्टर हैं, मैं उसमें रोल नहीं करता हूँ। वो प्ले भी हिट हुआ आज तक चल रहा है। उसके बाद जीनत जी किसी शो पे आई थी अमित जी के ना इनके शत्रु जी के, उन्होंने दो तीन बार अटेंड किया था प्ले। उन्होंने कहा आपका मेरे लिए स्क्रिप्ट है? मैंने कहा हाँ है। मैंने कहा वो देखिए बात यह है कि संजय गुरड़िया से आप कमर्शियल बातें कर लीजिए, मैं आपको स्क्रिप्ट पर बाद में सुनाऊंगा, क्योंकि होता है ना कि बात कर लें फिर स्क्रिप्ट भी आप तक पहुंच गई, फिर उसके बाद मैं किसी और को सुनाऊंगा, आपको लगेगा आपका सब्जेक्ट किसी और को सुना दिया। उन्होंने कहा हाँ मैं कर लेती हूँ। उन्होंने बात जो भी मिशन प्रोड्यूसर हो गया उन्होंने हाँ कर दी। अब जब आया तो उन्होंने कहा आप रोल करेंगे, मैंने जया जी के साथ आपको रोल करते दोनों प्लेस में देखा है। मैंने कहा जी वहाँ जया जी की हाइट कम है, आपकी हाइट बहुत ज़्यादा है। बोले आप चेंज के जूते पहन लो। और मैंने वैसे जूते बनाए, उनके ऑपोजिट रोल किया, वो हो गया। इतने में एक प्ले था शीशों का मसीहा, फैज़ अहमद फैज़ की पोइट्री के ऊपर उनकी कहानी लाइफ कहानी थी, तो उसको जोड़ा हुआ था और वो हमने प्ले खेला। शबाना जी ने हाँ कर दिया। मैंने पूछा जावेद साहब करेंगे? बोले तुम पूछो भाई, मैं नहीं बोलूँगी। मैंने उनको सुनाया, उन्होंने कहा मैं करूँगा, पढ़ना है खाली ना, याद तो नहीं करने डाले, मैं पढ़ूँगा और पोइट लगूँगा मैं। तो उन्होंने भी ओके कर दिया। तो वो लेके हमने 5-6 शो इधर ही किए, लेकिन जो फिर वो उनके राइटर थे उस प्ले के, वो चाहते थे कि वो रोल करें खुद। तो मैंने कहा भाई अब ये तो प्ले चल गया है, अब तो वो करते हैं, मैं उनको थोड़ा बोलूँगा तो आप छोड़ दीजिए प्ले, शबाना जी को ये थोड़ा करूँगा कि अब आपके साथ ये करेंगे। तो उन्होंने फिर मैं आपको स्क्रिप्ट नहीं दे सकता, समथिंग राइटर ने। ठीक है, शौकत भाभी ने अपनी आप बीती लिखी, तो टाटा एक्सपेरिमेंटल थिएटर में उन्होंने पहला चैप्टर पढ़ा उसका स्टेज पे, पढ़ा तालियां बज रही हैं, ये हो रहा है, बहुत अच्छा लिखा हुआ है, आप वो किताब पढ़िएगा। तो जैसे ही खत्म हुआ चैप्टर, मैंने कहा शबाना इस पे हम प्ले करेंगे, क्या बात करते हो? मैंने कहा आप उसमें रोल करेंगे यही वाला जो शौकत भाभी ने किया है, और अगर जावेद साहब करना चाहें कैफी साहब का रोल तो जावेद साहब को दे दे, आप दोनों का पेयर भी हो जाएगा सेम, आप लोगों ने दोनों साथ में किया हुआ है, तो कैसे तुमको लगता है कि ये सब्जेक्ट हो जाएगा अच्छा बनेगा? मैंने कहा उसमें बीज सारे हैं, मैंने आपका तुम्हारी अमृता भी देखा है, उसमें भी आप बैठ के दोनों पढ़ते थे फारूक और आप, शीशों का मसीहा भी किया है हमने, और ये भी है, बहुत अच्छा बनेगा। तो फिर एक काम करिए जावेद साहब से कहिए लिखें। मैंने कहा जावेद साहब को आप कहिए। बोल गए मैं नहीं कहूँगी, मुझसे ना करेंगे तो फिर मैं क्या करूँगी, आप अपने ढंग से आपने काम किया हुआ है ना उनके साथ, तो आप उनकी स्क्रिप्टों फिल्में बना चुके हो, कहिए। तो फिर मैंने जावेद साहब से कहा कि आप ये स्क्रिप्ट लिखिए। तो जावेद साहब ने स्क्रिप्ट लिखी और रोल किया, और प्ले तब से लेकर आज तक चलता है। अभी जावेद साहब ने खुद बिजी हो गए, तो उन्होंने कहा रमेश जी अभी आप ना मुझे रोल के लिए मत बोलिए, क्या होता है मुझे आप लोगों के साथ डेटें मैच करनी पड़ती हैं शबाना की और वो, तो आप किसी और भी, तो आप कमलजीत सिंह करते हैं रोल, वो सेम रोल, और अभी हम टूर करते रहते हैं, अभी भी ऑफर आई हुई है, जाएंगे बाहर।

0: रमेश जी, बहुत बरस तक फिल्में डायरेक्शन किया आपने, टेलीविजन पर काम किया, और उसके बाद फिर एक बहुत लंबा अरसा है जहां आप वापस थिएटर की तरफ लौट रहे हैं, और मैं आपके प्लेस देखता रहा हूं। आप थिएटर को जीते हैं, उसको एंजॉय करते हैं, वो एक जुनून है आपका। अपने सबसे लंबे समय से चले आ रहे प्लेज और इन दिनों जो कुछ नाटक आप कर रहे हैं उनके बारे में बताइए।
1: देखिए साहब, पहली बात तो यह है कि मैंने फिल्में करना बंद नहीं किया। मैंने लास्ट फिल्म बनाई है शत्रुघ्न सिन्हा जी के लिए, जिसमें रेखा जी और शत्रुघ्न सिन्हा है, उन्होंने प्रोड्यूस किया है, उनकी मिसेज और एक उनकी पार्टनर है कोई, दोनों ने मिलके, और फिल्म बहुत अच्छी बनी हुई है। अब वो कैसे रिलीज करेंगे वो अब देखते हैं, OTT पे करते हैं या क्या करना चाहते हैं। और

0: उनके साथ नाटक भी मेरा चल रहा है, उसके भी शोज करते रहते हैं। तो इप्टा में जो नाटक मेरे हैं जो बहुत देर से चल रहे हैं, एक तो शतरंज के मोहरे
1: सबसे पुराना है।
0: पुराना है मतलब ये था कि मैं जब पहली बार शतरंज के मोहरे करने लगा था उसमें मैं बच्चा था और चेहरे से लगता था कि 14-15 साल का है, और मुझे लव सीन करना होता था। 20 साल का रोल है श्याम का, उसमें कैरेक्टर का नाम श्याम है, तो मैं मुंह चुगाता था रोल करने के लिए कि मैं बड़ा लगूं, और मेरे सामने जो एक्ट्रेस होती थी वो अपना छुलवार या हिंदी में या कहीं और दूसरी जगह कोई नॉन एक्ट्रेस ऐसा रोल करती थी, तो मैं बड़ा लगना चाहिए। और उस वक्त जब मैंने पंजाबी में पहले प्ले किया, उस वक्त मनमोहन कृष्ण जी एक मेन काका जी का बुजुर्ग का रोल कर रहे थे, चाचा का, और हंगल साहब करते थे रोल आचार्य का उसमें, और मैं शाम जो लड़का है उसका करता था, और बाकी साथ में नितिन सेठी उस वक्त के हीरो थे वो करते थे डॉक्टर सतीश का रोल, अचला सचदेव उनकी मतलब मेरी बड़ी बहन का रोल करती थी। ये यहाँ से शुरू किया था। अब जो था मैंने वो प्ले का हमको शो मिल गया हैदराबाद में। ऐसा हुआ कि एक प्ले कर रहे थे आदर का ख्वाब जिसमें बलराज सहनी साहब थे और गीता सिद्धार्थ, तो पिगमिलियन पे था प्ले। तो उन्होंने कहा हमको दो प्ले चाहिए, तो हमारे पास दूसरा प्ले कुछ था नहीं, तो हमने कहा ये जो पंजाबी में प्ले किया है इसको सब हिंदी में बोलना शुरू करो, तो देखते हैं कि कितना तक क्या चाहिए। वो बोलने लग गए, सब लोग हिंदी में सेम लाइन है, पंजाबी और हिंदी नज़दीक नज़दीक की हैं, सिंपल वैसे ही वर्ड रखे, क्लिष्ट हिंदी नहीं होगी, सिंपल हिंदी होगी, वो बन गया। जब एंड तक पहुंच गए फिर मैंने उसको फाइनल थोड़ा सा छोटा मोटा जो करेक्शन करनी थी कर ली, वो करके हम लोग जाके हैदराबाद में हमने शो खेला, और तब से लेकर अब आज तक ये नाटक हिंदी में चल रहा है। अब मैं वो रोल मेरे मैंने बंद किया तो रमन कुमार करता था वो रोल, मैं कोई और रोल करने लग गया, रमन कुमार के बाद राकेश बेदी वो रोल करने लग गया, फिर राकेश बेदी बड़ा हो गया, वो 20 साल का नहीं लगता बड़ा लगने लग गया, तो अब कोई और बच्चा नया लड़का करता है, और मैं अब वो मनमोहन कृष्ण का रोल करता हूँ कभी कभी, और मैं जब राकेश बेदी अवेलेबल होता है तो वो मनमोहन कृष्ण का रोल करता है, अगर वो नहीं अवेलेबल तो मैं करता हूँ।
1: वाह वाह,
0: तो वो प्ले आज तक चलता आ रहा है। दूसरा प्ले जो मैंने आपको पहले कहा कि ये प्ले जो आखिरी क्षमा जो कैफी साहब का लिखा हुआ है और जिसमें बलराज सहनी काम करते रहे, उसके बाद उस गालिब का रोल भरत कपूर करते रहे, अभी वो कंवलजीत भरत कपूर का रोल करते हैं गालिब का रोल, और अभी हमने 56 साल की ट्रॉफियां बांटी हैं उसकी।
1: जी जी जी, काबुली वाला भी चल रहा है।
0: काबुली वाला अलग है, काबुली वाला का ऐसा था कि यही जब मैं शबाना के संग प्ले कर रहा था तो रिंकी भट्टाचार्य जी विमलराज की बेटी वो आई परीक्षित थाने के संग आई थी, उन्होंने कहा कि रमेश तुम काबली वाला क्यों नहीं स्टेज पे खेलते। मैंने कहा काबली वाला एज इट इज तो नहीं खेला जा सकता, नाटक का वर्षन बनाना पड़ेगा वो करके, मैं फिल्म के ऊपर से ले लेता हूँ, आपके ओरिजिनल डायलॉग ओरिजिनल चीज़ें लेके एक स्क्रिप्ट बना के आपको सुना दूंगा। और परीक्षित थाने से कहा तुम रोल कर लो काबली वाला का, क्योंकि बलराज सहनी ने रोल किया था। उन्होंने नहीं यार मैं अब हिम्मत नहीं है स्टेज पे काम करनी, वो टाइम अलग था अब नहीं कर पाऊँगा। तो मैंने आसिफ शेख से कहा कि भाई ये है तो आसिफ शेख करता है वो रोल काबली वाला का, और वो नहीं होता तो विकास रावत कभी कभार करता।
1: मैंने देखा है क्यूट प्ले है।
0: हाँ बहुत अच्छा, तो लेकिन वो तो ओरिजिनल फिल्म से लिया हुआ है।

0: नमस्कार। मीडियम वेव 374.5 मीटर अर्थात 800 किलोहर्ट्ज़ एवं न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर हम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5 बजे हैं। अब आकाशवाणी मध्य प्रदेश के कार्यक्रम अनुप्रसारित किए जाएंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: मांडविया ने कहा कि स्वस्थ समाज ही समृद्ध राष्ट्र का निर्माण कर सकता है। सरकार वजन और माप की जांच प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए जांच केंद्रों GATC की भूमिका का विस्तार करेगी। इसके लिए 2013 के नियम में संशोधन किया गया है। गंगा दशहरा पर्व के पावन अवसर पर 25 मई को जल गंगा संवर्धन अभियान को जन भागीदारी आधारित बनाने के लिए प्रदेश के ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में व्यापक जल संरक्षण गतिविधियों और भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जिससे जन जन को इस पुनीत कार्य से सीधे जोड़ा जा सके। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 12वीं कक्षा के परिणाम के संबंध में नई सूचना जारी की है। यह सूचना 21 और 22 मई को गलत फीस कट जाने को देखते हुए जारी की गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने धावक गुरिंदर वीर सिंह

0: को एथलेटिक्स फेडरेशन कप में स्वर्ण पदक जीतने पर बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। गुरिंदर वीर सिंह 10.10 सेकंड से कम समय में 100 मीटर दौड़ पूरी करने वाले पहले भारतीय एथलीट बन गए हैं। और आईपीएल क्रिकेट में आज दो मुकाबले होंगे। पहला मैच मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुंबई में जारी है। दूसरा मैच कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच शाम 7:30 से खेला जाएगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। 5:02 हुए हैं। युवा साथियों के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम युवावाणी। आज की प्रस्तुति आकाशवाणी शिवपुरी की।

नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके दैनिक कार्यक्रम युववाणी में। मैं हूं आपकी दोस्त शिवानी राठौर। दोस्तों, क्रम आज की बात में हम चर्चा करेंगे गर्मी के मौसम में लू से बचें विषय पर। साथ ही हमारा दूसरा विषय है मरकोर का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। दोस्तों, इसके साथ ही हम चर्चा करेंगे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की 7 खास बातों का पालन करने और राष्ट्र के हित में योगदान देने पर। दोस्तों, क्रम वार्ता में हम आपको वार्ता सुनवाएंगे सोशल मीडिया का उपयोग सोच समझ कर करें विषय पर। वार्ताकार हैं प्रज्ञा गौतम। साथ ही क्रम जीवन आलोक में हमारा चर्चा का विषय रहेगा जैसी संगत वैसी रंगत। और दोस्तों, हम आपका मनोरंजन कराएंगे कुछ खूबसूरत गीतों के साथ। दोस्तों, क्रम आज की बात में हम चर्चा कर रहे हैं गर्मी के मौसम में लू से बचे विषय पर। दोस्तों, गर्मी के मौसम में लू से बचाव आवश्यक है। गर्मियों का मौसम अपने साथ तेज धूप, उच्च तापमान और कई स्वास्थ्य समस्याएं लेकर आता है। इस मौसम में यदि सही सावधानी न बरती जाए तो शरीर पर इसका बुरा प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए गर्मियों में स्वास्थ्य की देखभाल करना अत्यंत आवश्यक है। सही खान पान, पर्याप्त पानी का सेवन और दिनचर्या में थोड़ा सा बदलाव कर हम स्वस्थ रह सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमें पानी की मात्रा अधिक से अधिक लेनी है। शरीर से पसीने के रूप में पानी की कमी तेजी से होती है, जिससे डिहाइड्रेशन यानी जल की कमी हो जाती है। इससे बचने के लिए दिन भर में पर्याप्त मात्रा में पानी पीना आवश्यक है। इसके अलावा नारियल पानी, नींबू पानी, छाछ, फलों का रस जैसे तरल पदार्थ भी शरीर को ठंडा और हाइड्रेट रखने में मदद करते हैं। तरबूज, खरबूज, खीरा और संतरा जैसे पानी से भरे फल भी हमें अत्यंत लाभ प्रदान करते हैं। दोस्तों, गर्मियों में खान पान पर विशेष ध्यान देना चाहिए। बाहर का तला भुना और मसालेदार भोजन कम से कम लेना चाहिए, क्योंकि यह पाचन तंत्र पर अतिरिक्त दबाव डालता है। इसके बजाय हल्का, सुपाच्य और पौष्टिक भोजन लेना चाहिए। हरी सब्जियां, दालें और सलाद का सेवन स्वास्थ्य के लिए बेहद आवश्यक है। दोस्तों, इस मौसम में धूप से बचाव भी अत्यंत आवश्यक है। तेज धूप में अधिक देर तक रहने से लू हीट स्ट्रोक लग सकती है, जो गंभीर समस्या बन सकती है। इसलिए दोपहर के समय खासकर 12 से 4 के बीच बाहर निकलने से बचना चाहिए। यदि बाहर जाना जरूरी हो तो सर ढककर, हल्के ढीले कपड़े पहनकर, धूप का चश्मा लगाकर या छाते का उपयोग करके जाना चाहिए। इससे शरीर को धूप के दुष्प्रभाव से बचाया जा सकता है। दोस्तों, गर्मियों में पर्याप्त आराम और नींद लेना भी बेहद जरूरी है। अधिक गर्मी के कारण शरीर जल्दी थक जाता है, इसलिए दिन भर में थोड़ा विश्राम करना और रात में पर्याप्त नींद लेना आवश्यक है। साथ ही हल्का व्यायाम, योग करना भी शरीर को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करता है। दोस्तों, इसके अलावा मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी आवश्यक है। गर्मी में चिड़चिड़ापन और थकान बढ़ सकती है, इसलिए शांत रहने, सकारात्मक सोच रखने और ठंडी जगहों पर समय बिताने की कोशिश करनी चाहिए। संगीत सुनें, किताबों को पढ़ें और परिवार के साथ समय बिताएं, जिससे मानसिक संतुलन बनाए रखने में सहायता प्रदान होती है। दोस्तों, हम कह सकते हैं गर्मियों में स्वास्थ्य की देखभाल करना कोई कठिन कार्य नहीं है, बल्कि यह हमारी दिनचर्या में छोटे छोटे बदलाव से संभव है। यदि हम पर्याप्त पानी पिएं, संतुलित आहार लें, धूप से बचाव करें तो हम इस मौसम में भी स्वस्थ और ऊर्जावान रह सकते हैं और लू से अपने आप को बचा सकते हैं। साथियों, अब समय हुआ है क्रम आज की बात में हमारे अगले विषय मार्कोर का अंदर

राष्ट्रीय दिवस पर चर्चा करने का। दोस्तों, मार्कोर एक खूबसूरत और दुर्लभ जंगली बकरी है जो अपने लंबी और मुड़ी हुई सींगों के लिए प्रसिद्ध है। यह प्रजाति मुख्य रूप से भारत, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और तजाकिस्तान की पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। इस प्राणी की सुरक्षा और संरक्षण की दिशा में जागरूकता फैलाने के लिए हर साल मार्कोर का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, मार्कोर की आबादी पिछले दशकों में बहुत कम हो गई है। इसका मुख्य कारण शिकार, प्राकृतिक आवास का विनाश और घरेलू पशुओं के साथ चराई के लिए संसाधनों की प्रतिस्पर्धा है। ग्रीन बेल्ट के संरक्षण के प्रयासों और स्थानीय समुदायों की भागीदारी से ही यह प्रजाति अब धीरे धीरे बढ़ रही है। दोस्तों, इस अंतर्राष्ट्रीय दिवस का उद्देश्य लोगों को इस प्राणी और इसके आवास के महत्व के बारे में जागरूक करना है। साथियों, इस दिन का महत्व केवल मार्कोर की सुरक्षा तक ही सीमित नहीं है। यह दिन हमें पूरे पारिस्थितिकी तंत्र के महत्व को भी याद दिलाता है। मार्कोर शाकाहारी होते हैं और वे पहाड़ी क्षेत्रों में वनस्पतियों को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। इसलिए मार्कोर की सुरक्षा केवल एक प्रजाति को बचाने का नहीं बल्कि पूरे पर्यावरण और जैव विविधता की सुरक्षा का संदेश देती है। मार्कोर के संरक्षण में स्थानीय समुदायों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। कई गांवों ने संरक्षण के कार्यक्रमों में सक्रिय भागीदारी दिखाई है। वे अपने इलाके में राष्ट्रीय उद्यानों और संरक्षित क्षेत्रों का ध्यान रखते हैं। इन क्षेत्रों में पारंपरिक शिकार को नियंत्रित करने और पर्यटन के माध्यम से आय बढ़ाने के प्रयास किए गए हैं। इस प्रकार स्थानीय लोग संरक्षण के साथ साथ आर्थिक लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मार्कोर की सुरक्षा के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर और वर्ल्ड वाइल्ड फंड फॉर नेचर जैसी संस्थाएं सरकारों और स्थानीय लोगों के साथ मिलकर मार्कोर की आबादी पर नजर रखती है और कानूनों का पालन सुनिश्चित करती है। यह सहयोग इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जंगली जानवरों की सुरक्षा केवल एक देश तक ही सीमित नहीं रह सकती। दोस्तों, कह सकते हैं कि मार्कोर का अंतर्राष्ट्रीय दिवस केवल एक प्रतीकात्मक दिन नहीं है बल्कि यह हमें प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा और जैव विविधता के महत्व का एहसास कराता है। यह हमें सिखाता है कि प्रजातियों की सुरक्षा में हमारा योगदान आवश्यक है और हमारे छोटे छोटे प्रयास भी सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। मार्कोर की सुरक्षा न केवल इस सुंदर प्राणी के लिए जरूरी है बल्कि हमारे पर्यावरण और भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, मार्कोर का अस्तित्व हमें आशा, धैर्य और प्राकृतिक सुंदरता की याद दिलाता है। इसे संरक्षित करना केवल हमारी जिम्मेदारी नहीं बल्कि हमारा दायित्व भी है। साथियों, अब समय हुआ है फिल्म संगीत की दुनिया में जाने का। आइए सुनते हैं प्यारा सा ये गीत।

दोस्तों अभी सुन रहे थे आप ये गीत। अब समय हुआ है क्रम आज की बात में, हमारे अगले विषय माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की 7 खास बातों का अनुसरण करें और राष्ट्र हित में योगदान दें पर चर्चा करने का। दोस्तों माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 7 प्रमुख अपील जनता से की। उन्होंने

0: दोस्तों, अब समय हुआ है क्रम वार्ता में आपको विषय सोशल मीडिया का उपयोग सोच समझ कर करें पर वार्ता सुनवाने का। वार्ताकार हैं प्रज्ञा गौतम।
1: आज के इस आधुनिक युग में सोशल मीडिया हमारे दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बन गया है। हमारे दोस्तों और परिवार के साथ जुड़ने से लेकर व्यवसायों को बढ़ावा देने में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित हुए हैं। साथियों, सोशल मीडिया विभिन्न प्रौद्योगिकियों को संदर्भित करता है जो अपने उपयोगकर्ताओं के बीच विचारों एवं सूचनाओं को साझा करने की सुविधा प्रदान करती है। दोस्तों, सोशल मीडिया की व्यापकता का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि लगभग 5 अरब से भी अधिक लोग सोशल मीडिया का उपयोग करते हैं, जो विश्व की लगभग 62% आबादी के बराबर है। साथियों, सोशल मीडिया ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हैं जो उपयोगकर्ताओं को सामग्री बनाने और साझा करने, दूसरों के साथ बातचीत करने और समुदाय बनाने की अनुमति देते हैं। हालांकि सोशल मीडिया के अत्यधिक उपयोग से नकारात्मक प्रभाव भी हो सकते हैं। साथियों, आज हम सोशल मीडिया के समझदारी पूर्वक उपयोग के बारे में विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। दोस्तों, डिजिटल युग में सोशल मीडिया के फायदे निर्विवाद हैं जो हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं पर प्रभाव डालते हैं। दोस्तों, वैश्विक संपर्क को बढ़ावा देने से लेकर एक शक्तिशाली मार्केटिंग टूल के रूप में काम करने तक सोशल मीडिया भौगोलिक सीमाओं को पार करता है, लोगों को एक साथ लाता है और हमारे संवाद करने को एक नया रूप देता है। दोस्तों, सोशल मीडिया के माध्यम से आज हम विश्व के किसी भी क्षेत्र में बैठे अपने दोस्तों और परिजनों से वीडियो कॉल करके जुड़ सकते हैं, उनके साथ होने का अनुभव कर सकते हैं। केवल इतना ही नहीं साथियों, व्यवसाय एवं उद्योग जगत में भी सोशल मीडिया के साधनों के कारण क्रांतिकारी परिवर्तन आया है। लोग घर बैठे ऑनलाइन शॉपिंग करने लगे हैं। दोस्तों, वर्तमान समय में शिक्षा क्षेत्र में भी सोशल मीडिया का उपयोग लगातार बढ़ रहा है। इसके माध्यम से विद्यार्थी विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी सुलभता से करते हैं। निसंदेह सोशल मीडिया तेज गति वाले डिजिटल युग में हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग बन गया है, जो हमारे जुड़ने, संवाद करने और जानकारी प्राप्त करने के तरीकों को नया आकार देता है। लेकिन दोस्तों, सोशल मीडिया ने जहां कनेक्टिविटी के लिए कई लाभ और अवसर प्रदान किए हैं, वहीं यदि इसका इस्तेमाल बिना सोचे समझे किया जाए तो इसके कई दुष्परिणाम भी देखने को मिलते हैं। साथियों, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से अध्ययन करते समय विद्यार्थियों का ध्यान भटकता है और बच्चे, यहाँ तक कि बड़े विद्यार्थी भी पढ़ाई करते हुए अन्य मनोरंजक चीज़ें देखने लगते हैं। इसके अलावा दोस्तों, किसी भी वायरल पोस्ट या संदेशों के माध्यम से फर्जी खबरें और दुष्प्रचार करना बहुत आसान है, जिससे गुमराह होने की अधिक संभावना रहती है। साथ ही व्यक्तिगत जानकारी को साझा करने और डेटा चोरी जैसी घटनाओं से उपयोगकर्ता की गोपनीयता से समझौता होता है और दोस्तों, कई बार तो यूज़र को धोखाधड़ी का शिकार होना पड़ता है। सोशल मीडिया के अत्यधिक उपयोग का सबसे बुरा प्रभाव पारिवारिक रिश्तों पर पड़ा है। लोग सार्थक रिश्तों के स्थान पर सोशल मीडिया पर जुड़े रिश्तों को अधिक समय और महत्व देने लगे हैं। आजकल हम देखते हैं कि एक ही घर में सभी सदस्य साथ बैठकर भी अपने अपने मोबाइल पर व्यस्त हैं, जो कहीं ना कहीं पारिवारिक और सामाजिक दृष्टिकोण से बेहद हानिकारक है। इससे लोगों की वास्तविक रिश्तों और खुशहाली में बाधा उत्पन्न होती है। साथियों, गुमनाम और फेक अकाउंट्स के माध्यम से मशहूर हस्तियों सहित जनसाधारण को ट्रोल करना, सार्वजनिक रूप से अपमानित करने जैसी घटनाएं आए दिन सामने आती रहती हैं। इसके साथ ही फर्जी अकाउंट बनाकर पहले लोगों से दोस्ती करना, उन्हें अपने जाल में फंसाना और बाद में ब्लैकमेल करने जैसी घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ रही हैं। इन सब का कारण कहीं ना कहीं लोगों का लापरवाही से सोशल मीडिया का उपयोग करना है, जैसे अनजान लोगों से दोस्ती करना, उन पर भरोसा करना

0: लोगों को कहीं ना कहीं परेशानी में डालता है। दोस्तों, सोशल मीडिया पर अत्यधिक समय व्यतीत करना आजकल बहुत आम बात हो गई है। ऐसे में लोगों से व्यक्तिगत संपर्क, संचार और सामाजिकता कम हो रही है, जिससे व्यक्ति सबसे कटकर अकेला रहना पसंद करने लगा है। साथियों, एक अध्ययन से पता चलता है कि लोगों में, विशेष रूप से किशोरावस्था में, सोशल मीडिया का उपयोग उनके आत्मसम्मान, चिंता और अवसाद का कारण भी बन रहा है। परफेक्ट सेल्फी प्रस्तुत करने तथा लाइक और कमेंट प्राप्त करने के लिए पोस्ट पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित करने से दूसरों के साथ अवास्तविक तुलनाएं उत्पन्न होती हैं, जिससे चिंता और अवसाद बढ़ता है। सोशल मीडिया घोटाले और धोखाधड़ी फैलाने में भी जिम्मेदार हो सकता है। फर्जी खबरें, फिशिंग हमले और फर्जी योजनाएं सामाजिक माध्यमों से आसानी से फैल जाती हैं, जो वित्तीय धोखाधड़ी का कारण भी बनती हैं। आए दिन हम सुनते और पढ़ते रहते हैं कि सोशल मीडिया के माध्यम से नौकरी देने का झांसा देकर लोग ठगी का शिकार हो रहे हैं। साथियों, इसमें दोष सोशल मीडिया का नहीं है, दोष हमारी लापरवाही का है, जो हम भ्रमित सूचना पर भरोसा कर धोखाधड़ी का शिकार बन जाते हैं। साथियों, सोशल मीडिया का सर्वाधिक नकारात्मक प्रभाव छोटी उम्र के बच्चों पर पड़ रहा है। इनके अत्यधिक उपयोग के कारण बच्चे इसके आदि हो गए हैं, जिससे उनका स्वभाव चिड़चिड़ा और जिद्दी हो रहा है। ऐसे में अभिभावकों को चाहिए कि उन्हें मोबाइल और सोशल मीडिया से दूर रखकर वास्तविक जीवन जीना सिखाएं। हम यह बिल्कुल भी नहीं कह रहे हैं कि सोशल मीडिया या उसका उपयोग खराब है या हानिकारक है। निश्चित रूप से इसने हमें कई सुविधाएं प्रदान कर हमारे जीवन को आसान बना दिया है, किंतु दोस्तों, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। सोशल मीडिया ने वैश्विक रूप से जोड़ने का काम तो किया है, लेकिन यदि इसका अत्यधिक इस्तेमाल किया जाए या बिना सोच विचार के किया जाए, तो निश्चित ही इससे गंभीर समस्याएं भी उत्पन्न होती हैं। ऐसे में दोस्तों, हम तो बस इतना ही कहेंगे कि सोशल मीडिया के सभी माध्यमों का उपयोग अपने हित के लिए करें, ना कि इनके आदि बनकर स्वयं को सोशल मीडिया का गुलाम बनाएं, बल्कि इसका उपयोग अपने जीवन को तरक्की के मार्ग पर अग्रसर करने के लिए करें। दोस्तों, सोशल मीडिया के साथ ही अपने परिवार को भी पर्याप्त समय दें। यदि घर में बच्चे सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, तो कोशिश करें कि वे कम से कम इसका उपयोग करें और आपकी देखरेख में ही करें। साथियों, वर्तमान समय में सोशल मीडिया कुछ सीमा तक हमारे लिए आवश्यक भी है, इसलिए हम ये तो नहीं कह सकते कि इसका इस्तेमाल ही ना करें, लेकिन इतना अवश्य कहेंगे कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग अपनी आवश्यकता अनुसार सुविधा के लिए सावधानीपूर्वक और सीमित मात्रा में ही करें। अंत में कुछ पंक्तियों के माध्यम से मैं अपनी बात पूरी करूंगी। सोशल सोशल करते हो, क्या सोशल मीडिया पर ही मरना है? बाहर निकलो इस जाल से तुम, अब कुछ ख्वाब हकीकत करना है। चाहत रखो जीने की तुम, सब कुछ करके दिखलाओगे। सोशल मीडिया से दूर तो जाओ, ख्वाब हकीकत पाओगे। बैठे हो तुम दोस्त बनाए सोशल के हथियारों से। हुई जरूरत अगर तुम्हें तो हो जाओगे बेकारों से। सच कहती हूँ मान लो कहना दूर रहो बहकावे से। जीना है जीवन अच्छा तो साथ चलो अपनाने से। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं अंत में बस यही कहूंगी दोस्तों, समय बहुत अनमोल है, इसे सोशल मीडिया पर व्यर्थ ही बर्बाद ना करते हुए अपने और अपने परिवार, समाज तथा राष्ट्र हित के लिए अच्छे कार्य करने में लगाएं।
1: दोस्तों, अभी सुन रहे थे आप वार्ता, विषय सोशल मीडिया का उपयोग सोच समझकर करें पर। वार्ताकार थी प्रज्ञा गौतम। दोस्तों, अब समय हुआ है क्रम जीवन आलोक में हमारे आज के विषय जैसी संगत वैसी रंगत पर चर्चा करने का। दोस्तों, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और उसका जीवन समाज के बीच ही विकसित होता है। वह जिन लोगों के साथ रहता है

उनके विचारों, व्यवहार और आदतों का प्रभाव उस पर अवश्य पड़ता है। इसी सत्य को दर्शाने वाली कहावत है, जैसी संगत वैसी रंगत, अर्थात मनुष्य जिस प्रकार की संगति में रहता है उसका स्वभाव और चरित्र भी वैसा ही बन जाता है। अच्छी संगति मनुष्य को ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती है, जबकि बुरी संगति उसे पतन की ओर ले जाती है। दोस्तों, संगति का प्रभाव सबसे अधिक बच्चों और युवाओं पर पड़ता है। बचपन और युवा अवस्था सीखने की अवस्था होती है। इस समय व्यक्ति अपने आसपास के लोगों से बहुत कुछ सीखता है। यदि बच्चे अच्छे मित्रों और संस्कारी लोगों के संपर्क में रहें, तो उनमें अच्छे गुण विकसित होते हैं। वे ईमानदार, मेहनती, अनुशासित और विनम्र बनते हैं। इसके विपरीत यदि उनकी संगति गलत लोगों से होती है, तो वे झूठ बोलना, आलस करना, अनुशासनहीनता जैसी बुरी आदतें सीख जाते हैं। साथियों, अच्छी संगति हमें सकारात्मक सोच, आत्मविश्वास और प्रेरणा प्रदान करती है। अच्छे मित्र कठिन समय में हमारा साथ देते हैं और सही मार्ग दिखाते हैं। वे हमें मेहनत करने, अपने लक्ष्य पर ध्यान देने और जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। विद्यालय और महाविद्यालयों में विद्यार्थियों के लिए अच्छी संगति विशेष रूप से आवश्यक होती है, क्योंकि यही समय उनके भविष्य की नींव को तैयार करता है। दोस्तों, आज के आधुनिक युग में संगति का अर्थ केवल प्रत्यक्ष मित्रों तक ही सीमित नहीं रह गया। सोशल मीडिया, इंटरनेट, मनोरंजन के साधन भी हमारी संगति का हिस्सा बन चुके हैं। हम जो देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, उसका भी हमारे विचारों, व्यवहार पर प्रभाव पड़ता है। इसलिए हमें सकारात्मक सोच, ज्ञानवर्धक चीजों को अपनाना चाहिए और नकारात्मक प्रभावों से बचना चाहिए। दोस्तों, हम कह सकते हैं कि जैसी संगत वैसी रंगत केवल एक कहावत नहीं, बल्कि जीवन का महत्वपूर्ण सत्य है। मनुष्य का चरित्र और भविष्य उसकी संगति पर बहुत हद तक निर्भर करता है। इसलिए हमें सदैव अच्छे लोगों की संगति अपनानी चाहिए और बुरी संगति से दूर रहना चाहिए। अच्छी संगति जीवन को सुख, सफलता और सम्मान से भर देती है, जबकि बुरी संगति जीवन को दुख और असफलता की ओर ले जाती है। दोस्तों, अब घड़ी की सुइयां इशारा कर रही है आपसे विदा लेने को। दीजिए आपकी दोस्त शिवानी राठौर को अनुमति। नमस्कार।

0: पुलिस।
1: मिस सीमा
0: जी,
1: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए वरना घर आ जाएंगे।
0: क्यों, लेकिन मैं
1: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
0: डिजिटल अरेस्ट?
1: 1 लाख दो, बच जाओगे।
0: इतने पैसे?
1: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
0: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
2: हेलो मम्मा।
3: RBI कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: हम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5:31 हुए हैं। अब लीजिए सुनिए श्रोताओं, फिल्म संगीत का कार्यक्रम।

आवाज में, बोल जावेद अख्तर के और संगीत जतिन ललित का। अब सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत। प्यार किया तो डरना क्या, इस फिल्म से ये गीत है और आवाज है इस गीत में उदित नारायण की। संगीतकार हैं जतिन ललित।

अब सुनिए अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाज में रास फिल्म से ये गाना। समीर का ये गीत है और संगीत निर्देशन नदीम श्रवण का।

श्रोताओं, ये गीत आपने सुना खामोशी फिल्म से अलका याग्निक और हरिहरन की आवाज़ में। माफ़ कीजिएगा श्रोताओं, ये गीत आपने सुना उदित नारायण की आवाज़ में और प्यार हो गया इस फिल्म से। और इसी के साथ ही आज का ये फिल्म संगीत का कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। अब लीजिए सुनिए कार्यक्रमों का विवरण। आज शाम 6:10 पर आप सभी सुनेंगे देशभक्ति फिल्मी गीत। लोक संगीत का कार्यक्रम 6:30 पर, कलाकार होंगे शहजाद सिंह ठाकुर। सुगम संगीत 6:45 पर, कलाकार होंगी रागनी तेलांग। शाम 7:21 पर सुनिएगा कृषि जगत। इसके अंतर्गत मुर्गी पालन के लिए चूजों का प्रबंधन विषय पर जानकारी देंगे डॉक्टर आमिर खान। सुर्खियों में सुनिएगा रात

बजे से और 8:15 पर होगा डगर विकास की। ये दोनों ही कार्यक्रम हम आकाशवाणी भोपाल से रिले करेंगे। रात 9:30 पर रूपक, जन आस्थाओं में नर्मदा, आलेख श्री विकास मिश्र का, प्रस्तुत करता होंगे गर्जन सिंह वरकड़े। रात 10:00 आप सभी सुनेंगे संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम, जिसे हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे।

0: कल सुबह 6:45 पर सुनेगा कृषि सामग्री के अंतर्गत गर्मी में गहरी जुताई। गुड मॉर्निंग जबलपुर सुनेगा 7:20 पर, इसके अंतर्गत गौणकालीन जल संपदा संस्कारधानी के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में विषय पर जानकारी देंगे डॉक्टर संजय कुमार वर्मा, भेंटकर्ता होंगे प्रशांत परमार। फिल्म संगीत सुनिएगा 8:30 पर, 9:00 से सुनिएगा लोक रसधार, कलाकार होंगे शोभना कश्यप और शिवानी राजपूत। आईना उर्दू कार्यक्रम सुनिएगा सुबह 9:30 पर और जिले की चिट्ठी होगी सुबह 10 बजे से। ये दोनों ही कार्यक्रम हम आकाशवाणी भोपाल से रिले करेंगे। वंदे मातरम गौरव गान की 150वीं सुनेगा सुबह 10:05 पर, विश्व दर्पण सुबह 10:10 पर, जिसे हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे। सारंगा सुनेगा सुबह 10:20 पर और 10:58 पर होगा आकाशवाणी मध्य प्रदेश के कार्यक्रम न्यूज हेडलाइंस। शाम 5:00 से आप सुनेंगे माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा पद्म पुरस्कार अलंकरण समारोह का सीधा प्रसारण, जिसे हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे। श्रोतो, ये थे आज के कार्यक्रमों का विवरण। हम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। शाम 6:00 हैं। हिंदी में समाचार हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में कई मुद्दों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने भारत अमेरिका रणनीतिक भागीदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई और व्यापार, ऊर्जा, मोबिलिटी तथा क्षेत्रीय सुरक्षा समेत कई क्षेत्रों में सहयोग का उल्लेख किया। डॉक्टर जयशंकर ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को जल्द से जल्द अंतिम रूप दिया जाना चाहिए।
2: हमने हाल ही में ऊर्जा क्षेत्र में विस्तार का स्वागत किया है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए आपूर्ति विविध माध्यम में उपलब्ध है। हमने परमाणु ऊर्जा सहयोग पर भी बातचीत की है। शांति अधिनियम के पारित होने से हमारे सामने नई संभावनाएं खुली हैं।
1: ईरान संघर्ष पर डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत उन गिने चुने देशों में शामिल है जिनके अमेरिका, इसराइल, ईरान और अन्य खाड़ी देशों के साथ मजबूत रिश्ते हैं। उन्होंने कहा कि भारत क्षेत्र में शांति और स्थिरता तथा भारतीय समुदाय के कल्याण के साथ साथ ईंधन की कम कीमतें चाहता है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भागीदारी के रणनीतिक आयामों का उल्लेख किया और भारत को अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण भागीदार बताया। अमेरिका के विदेश मंत्री क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। यह बैठक 26 मई को आयोजित की जाएगी। इसमें ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी भी भाग लेंगे। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार देवांशु पांडा ने फलता विधानसभा सीट जीत ली है। श्री पांडा ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार शंभुनाथ कुर्मी को 1,09,000

0: हजार से अधिक मतों से हराया। श्री कुर्मी को 40,600 से अधिक वोट मिले हैं। तीसरे स्थान पर कांग्रेस के अब्दुल रजाक और चौथे स्थान पर तृणमूल कांग्रेस के जहांगीर खान रहे। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान फलता में मतदान में धांधली होने के बाद इस सीट पर पुनर्मतदान के आदेश दिए थे। यहाँ इस महीने की 21 तारीख को मतदान कराया गया था। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE को त्रुटि रहित पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया सुनिश्चित करने में सहायता के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास और IIT कानपुर के प्रोफेसरों और तकनीकी विशेषज्ञों का एक दल तैनात करने का निर्देश दिया है। यह निर्णय CBSE के परीक्षा परिणाम सेवा पोर्टल के संबंध में विद्यार्थियों और अभिभावकों की चिंताओं और समस्याओं को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स की 4 सदस्यों की मेडिकल टीम ने आज भोपाल में पूर्व मॉडल और अभिनेत्री त्रिशा शर्मा का दूसरा पोस्टमार्टम किया। यह पोस्टमार्टम कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच लगभग 3 घंटे तक चला। कानूनी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद शव परिवार को सौंप दिया गया और भोपाल के भदभदा शमशान घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया गया। 33 वर्षीय त्रिशा की मृत्यु भोपाल में उनके ससुराल में हुई थी। त्रिशा के परिवार ने ससुराल वालों पर दहेज उत्पीड़न और आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस अवसर पर आकाशवाणी अपनी श्रृंखला आकाशवाणी पर पीपल्स पद्म के साथ 16 कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहा है। इनका प्रसारण आज और कल आकाशवाणी गोल्ड के 100.1 चैनल पर किया जाएगा। इन्हें न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी सुना जा सकता है। श्रोताओं से अनुरोध है कि वे आज और कल आकाशवाणी से जुड़े। सरकार ने इबोला संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए भारतीय नागरिकों को अफ्रीकी देश कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान की गैर जरूरी यात्रा न करने की सलाह दी है। मौसम विभाग ने आज पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में लू चलने की चेतावनी दी है। अगले 5 दिन तक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, विदर्भ, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली के कुछ इलाकों में भी लू की चेतावनी जारी की गई है। और खेलों में मुंबई में IPL क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने मुंबई इंडियंस को 206 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक मुंबई ने तीसरे ओवर में 2 विकेट पर 18 रन बना लिए हैं। वहीं कोलकाता में आज शाम 7:30 बजे से दिल्ली कैपिटल्स का सामना कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय निशित कुमार। External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar and U.S. Secretary of State Marco Rubio held wide-ranging discussions in New Delhi today. Both leaders reaffirmed the strength of the India-U.S. strategic partnership and outlined key areas of cooperation, including trade, energy, mobility, and regional security. Addressing a press conference following delegation-level talks, Dr. Jaishankar highlighted the need to conclude a trade agreement at the earliest, welcome the expansion in energy trade, and stressed that diversified energy supplies are vital for India's energy security.
2: Secretary and I therefore welcome the expansion in our energy trade in recent months. Diversified supplies are at the heart of energy security for India. We devoted some time to nuclear energy cooperation as well. The passage of the Shanti Act has opened up new possibilities.
1: On the Iran conflict, Dr. Jaishankar said both India and the United States have a strong interest in ensuring that global energy prices remain low and that there is unimpeded commerce. U.S. Secretary of State Marco Rubio strongly underscored the strategic dimension of the partnership, describing India as one of the United States' most important partners in the world. Mr. Rubio arrived in India yesterday on a 4-day visit to participate in the Quad Foreign Ministers meeting, which will be held on the 26th of this month. In West Bengal, Bharatiya Janata Party candidate Debangshu Panda has registered a landslide victory in the repoll in the Trinamool Congress bastion Falta Assembly constituency. Mr. Panda won the seat by over 1,09,000 votes. Communist Party of India Marxist candidate Shambhunath Kurmi finished in the second place with over 40 1,600 votes. Congress candidate Abdul Razak Mola came third, and Trinamool Congress candidate Jahangir Khan was pushed to the fourth position with over 7,700 votes.

ये गीत अभी आपने सुना दिल जले फिल्म से, कुमार सानू और आदित्य नारायण की आवाज़ में, बोल जावेद अख्तर के और संगीत अनु मलिक का। अब सुनिए कार्यक्रम का अगला नगमा, एआर रहमान और सुखविंदर की आवाज़ में, द लेजेंड ऑफ भगत सिंह। इस फिल्म से ये गीत है, इस गीत को लिखा है समीर ने और संगीत दिया है एआर रहमान ने।

0: अभी आप सुन रहे थे देशभक्ति फिल्मी गीतों का कार्यक्रम। आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। शाम के 6:20 हुए हैं। संस्कृत में समाचार हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे।
1: आकाशवाणी संप्रति वार्ता श्रूयंताम प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। आदौ मुख्य वार्ताः। भारत संयुक्त राज्य अमेरिका देशौ रणनीतिक सहभागितां सुदृढ़ीकरणाय पुनः पुष्टिं कृतवन्तौ। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकरः शीघ्र व्यापार संधेः आह्वानम् अकरोत्। सहैव राष्ट्रस्य कृते ऊर्जा आपूर्तेः विविधीकरणे बलम् अददात्। पश्चिम बंगाल राज्ये भारतीय जनता पार्टीति दलस्य प्रत्याशी देवांशु पांडा इत्येषः फाल्टा विधानसभा क्षेत्रस्य पुनर्निर्वाचने महति विजयम् अवाप्नोत्। अमेरिकीय विदेश मंत्री मार्को रूबियो उक्तवान् यत् भारतं संयुक्त राज्य अमेरिकायाः अत्यंत महत्वपूर्णेषु रणनीतिक सहभागिषु अन्यतमः अस्ति इति। प्रशासनेन इबोला संक्रमणस्य प्रकोपं दृष्ट्वा सर्वे भारतीय नागरिकाः कांगो युगांडा तथा दक्षिण सूडान देशेषु अनावश्यक यात्रां न कर्तुं परामर्शः प्रदत्तः। पाकिस्तानस्य बलूचिस्तान प्रान्तस्य क्वेटा नगरे रेलमार्गस्य समीपे जाते विस्फोटे 24 जनाः मृताः। अपि च आईपीएल क्रिकेट क्रीडायाम् अद्य कोलकाता नाइट राइडर्स दलं दिल्ली कैपिटल्स दलेन सह कोलकाता स्थिते ईडन गार्डन्स क्रीडांगणे प्रतिस्पर्धां करिष्यति। अथ वार्ताः विस्तरेण। डॉक्टर एस जयशंकरः मार्को रूबियो चोभौ अद्य नवदिल्लीनगरे अनेक विषयेषु चर्चाम् अकुरुताम्। उभौ भारत अमेरिका सामरिक सहभागितां महत्वपूर्णाम् अवदताम्। ताभ्याम् उक्तं यत् एषा सहभागिता व्यापार ऊर्जा गतिशीलता क्षेत्रीय सुरक्षा क्षेत्रेषु विशेष रूपेण अस्ति। डॉक्टर जयशंकरः अवदत् यत् भारतस्य अमेरिका देशेन सह व्यापकः वैश्विकः सामरिक सहभागित्व सम्बन्धः अस्ति, यः गहन सहयोगे आधारितः अस्ति। सः उक्तवान् यत् उभयोः देशयोः सम्बन्धाः सम्पूर्ण विश्वे प्रभावं जनयन्ति तथा च अनेकेषु क्षेत्रेषु तयोः हितानि समानानि सन्ति। विदेशमंत्री उक्तवान् यत् एषा वर्तमान चर्चा कठिन वैश्विक परिस्थितिषु अभवत्, परञ्च तस्मै मुक्त मनसा सार्थका चर्चा भविष्यति।

अभी आप सुन रहे हैं लोक संगीत का कार्यक्रम और इस कार्यक्रम के अंतर्गत हमारे आज के कलाकार हैं शहजाद सिंह ठाकुर।

अभी आप सुन रहे थे लोक संगीत का कार्यक्रम, और इस कार्यक्रम के अंतर्गत हमारे आज के कलाकार थे शहजाद सिंह ठाकुर। आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। शाम के 6:45 हुए हैं। अब लीजिए सुनिए श्रोताओं, सुगम संगीत का कार्यक्रम, और इस कार्यक्रम के अंतर्गत हमारी आज की कलाकार है रागनी तेलांग।

0: अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत का कार्यक्रम, और इस कार्यक्रम के अंतर्गत हमारी आज की कलाकार थी रागनी तेलांग। हम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए श्रोताओं, सुनिए एक आवश्यक सूचना। क्या आपके आसपास कोई ऐसा बच्चा है जो अपनी असाधारण प्रतिभा से समाज में सकारात्मक बदलाव लाया है? भारत सरकार का महिला एवं बाल विकास मंत्रालय लेकर आया है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2026। ये पुरस्कार 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को वीरता, समाज सेवा, पर्यावरण, खेल, कला संस्कृति और विज्ञान प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए दिया जाता है। बालिकाओं, कमजोर वर्गों, अनुसूचित जाति, जनजाति और दिव्यांग बच्चों की छिपी प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने का एक ये बेहतरीन अवसर है। नामांकन केवल ऑनलाइन माध्यम से राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल awards.gov.in पर 31 जुलाई 2026 तक स्वीकार किए जाएंगे। देर न करें, आज ही अपने क्षेत्र के होनहार बच्चों का नामांकन सुनिश्चित करें। ये सूचना समाप्त हुई। आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। शाम के 7 बजे हैं। हिंदी में समाचार हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं करिश्मा राय। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में कई मुद्दों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने भारत अमेरिका रणनीतिक भागीदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई और व्यापार, ऊर्जा, मोबिलिटी तथा क्षेत्रीय सुरक्षा समेत कई क्षेत्रों में सहयोग का उल्लेख किया। डॉक्टर जयशंकर ने प्रतिनिधि मंडल स्तर की बातचीत के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को जल्द से जल्द अंतिम रूप दिया जाना चाहिए।
2: हमने हाल ही में ऊर्जा क्षेत्र में विस्तार का स्वागत किया है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए आपूर्ति विविध माध्यम में उपलब्ध है। हमने परमाणु ऊर्जा सहयोग पर भी बातचीत की है। शांति अधिनियम के पारित होने से हमारे सामने नई संभावनाएं खुली हैं।
1: ईरान संघर्ष पर डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत उन गिने चुने देशों में शामिल है जिनके अमेरिका, इसराइल, ईरान और अन्य खाड़ी देशों के साथ मजबूत रिश्ते हैं। उन्होंने कहा कि भारत क्षेत्र में शांति और स्थिरता तथा भारतीय समुदाय के कल्याण के साथ साथ ईंधन की कम कीमतें चाहता है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भागीदारी के रणनीतिक आयामों का उल्लेख किया और भारत को अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण भागीदार बताया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आज नई दिल्ली में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से मुलाकात की। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि दोनों पक्षों के बीच मुख्य रूप से रक्षा, सुरक्षा और रणनीतिक प्रौद्योगिकी सहयोग पर चर्चा हुई। मंत्रालय ने कहा कि श्री डोभाल और श्री रूबियो ने द्विपक्षीय व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को दी जाने वाली उच्च प्राथमिकता के प्रति फिर प्रतिबद्धता व्यक्त की। अमेरिका के विदेश मंत्री क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए 4 दिन की भारत यात्रा पर है। यह बैठक 26 मई को आयोजित की जाएगी। इसमें ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री तोशी मित्सो मोतेगी भी भाग लेंगे। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार देवांशु पांडा ने फलता विधानसभा सीट जीत ली है। श्री पांडा ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी

0: मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार शंभुनाथ कुर्मी को 1,09,000 से अधिक वोटों से हराया। श्री कुर्मी को 40,600 से अधिक वोट मिले हैं। तीसरे स्थान पर कांग्रेस के अब्दुल रजाक और चौथे स्थान पर तृणमूल कांग्रेस के जहांगीर खान रहे। फलता सीट को तृणमूल कांग्रेस का गढ़ माना जाता था। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE को त्रुटि रहित पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया सुनिश्चित करने में सहायता के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास और IIT कानपुर के प्रोफेसरों और तकनीकी विशेषज्ञों का एक दल तैनात करने के निर्देश दिए हैं। यह निर्णय CBSE के परीक्षा परिणाम सेवा पोर्टल के संबंध में विद्यार्थियों और अभिभावकों की चिंताओं और समस्याओं को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स की 4 सदस्यों की मेडिकल टीम ने आज भोपाल में पूर्व मॉडल और अभिनेत्री त्विशा शर्मा का दूसरा पोस्टमार्टम किया। यह पोस्टमार्टम कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच लगभग 3 घंटे तक चला। कानूनी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद शव परिवार को सौंप दिया गया और भोपाल के भदभदा शमशान घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगे। इस अवसर पर आकाशवाणी अपनी श्रृंखला पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी के तहत 16 कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहा है। इनका प्रसारण आज और कल आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल पर किया जाएगा। इन्हें न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी सुना जा सकता है। श्रोताओं से अनुरोध है कि वे आज और कल आकाशवाणी से जुड़े रहें। कोलकाता में IPL क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने दिल्ली कैपिटल्स के साथ मुकाबले में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। इसी बीच मुंबई ने ताजा समाचार मिलने तक 13वें ओवर में 5 विकेट पर 124 रन बना लिए हैं। राजस्थान रॉयल्स ने मुंबई इंडियंस को 206 रन का लक्ष्य दिया है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashwani. The news read by Tanvi Khurana. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar and U.S. Secretary of State Marco Rubio held wide-ranging discussions in New Delhi today. Both leaders reaffirmed the strength of the India-U.S. strategic partnership and outlined key areas of cooperation, including trade, energy, mobility and regional security. Addressing a press conference following delegation-level talks, Dr. Jaishankar highlighted the need to conclude a trade agreement at the earliest, welcomed the expansion in energy trade and stressed that diversified energy supplies are vital for India's energy security.
2: Our government's fundamental responsibility is to address the needs of 1.4 billion people. Obviously, ensuring the accessibility and affordability of energy for them is our prime objective. Secretary and I therefore welcome the expansion in our energy trade in recent months. Diversified supplies are at the heart of energy security for India.
1: U.S. Secretary of State Marco Rubio strongly underscored the strategic dimension of the partnership, describing India as one of the United States' most important partners in the world. Mr. Rubio arrived in India yesterday on a 4-day visit to participate in the Quad Foreign Ministers meeting, which will be held on 26th of this month. In West Bengal, Bharatiya Janata Party candidate Dibangshu Panda has registered a landslide victory in the Trinamool Congress Bastion Falta Assembly constituency. Mr. Panda won the seat by over 1,09,000 votes. Falta's seat was widely regarded as the stronghold of Trinamool Congress. Communist Party of India Marxist candidate Shambhunath Kurmi finished in second place with over 40,600 votes. Congress candidate Abdul Razak Mola came third and Trinamool Congress candidate Jahangir Khan was pushed to the fourth position with over 7,700 votes. Election Commission had ordered a re-poll in Falta following allegations of large-scale malpractice during the polling of the West Bengal Assembly constituency elections. The re-polling was held on 21st of this month. The West Bengal government has directed all district magistrates to set up holding centres for suspected illegal foreigners and

0: foreign prisoners awaiting deportation or repatriation in line with the Ministry of Home Affairs MHA guidelines. According to an official communication issued by the Home and Hill Affairs Department, districts have been asked to take necessary steps for housing individuals identified as staying illegally in the country, including those who have completed prison sentences and are awaiting deportation. The directive instructs authorities to act as per the MHA framework on deportation and repatriation procedures for Bangladeshi nationals and Rohingyas found residing illegally in India. Union Education Minister Dharmendra Pradhan has given directions to depute a team of professors and technical experts from Indian Institute of Technology Madras and IIT Kanpur to assist the Central Board of Secondary Education, that is CBSE, in ensuring a glitch-free re-evaluation process. This decision has been taken in view of the developments and concerns raised by the students and parents regarding the CBSE post-result services portal. A four-member medical team from the All India Institute of Medical Sciences, AIIMS, Delhi, today conducted second autopsy of the former model-turned-actor Tushar Sharma in Bhopal. The post-mortem lasted nearly 3 hours under tight security arrangements. After completion of legal formalities, the body was handed over to the family and the last rites were performed at the Bhadbada Crematorium in Bhopal. At the Asian Under-23 Wrestling Championships, Indian grapplers continued their impressive run, clinching 2 silver and 1 bronze medal in the women's freestyle events in Vietnam's Da Nang today. In the 50-kilogram category, Sweetie won silver after going down against local favourite Ngo Linh Do, 7-5 defeat in the gold medal match. And in IPL cricket, Rajasthan Royals have set a target of 206 runs against hosts Mumbai Indians at Wankhede Stadium. In reply, Mumbai Indians were 137 for 5 in 13.3 overs when reports last came in. And that is the end of this news bulletin.
1: Pradeshik Samachar.
2: Tino college mein.
3: Don't worry.
2: Fees to dekho.
4: Hey, kya hal hai? Kya hua?
3: फीस की टेंशन
4: राहुल का बैंक अकाउंट तो है ही
5: रास्ता क्लियर बैंक से जरूरत भर के हिसाब से स्टूडेंट एजुकेशन लोन इजीली मिलेगा और उसमें भी 4 लाख रुपए तक नो कोलैटरल
4: वो कहाँ है
5: मिठाई
6: आरबीआई कहता है
7: करो सही शुरुआत बनो फाइनेंशियली स्मार्ट
8: यार सच बताऊं अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है इस बार तो लगवा ही देता हूँ जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई आप भी लगवा ही दो पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in
9: मोबाइल चार्ज करना
10: दिमाग चार्ज कर अपना
11: ऐसे पब्लिक पोर्ट से फोन चार्ज किया तो पर्सनल डेटा होगा पब्लिक
10: देखा
9: पापा रुको मैं पे करता हूँ नो सिग्नल
11: अब क्या करोगे
9: तेरी वाईफाई है ना
10: बुद्धू सुधर जा
11: पेमेंट्स के लिए नो ओपन वाईफाई
9: यानी फ्रॉड को करो बाय बाय
11: आरबीआई कहता है
7: करो सही शुरुआत बनो फाइनेंशियली स्मार्ट
12: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार नमस्कार समाचारों के साथ मैं नवनीत चौबे सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव गंगा दशहरा के अवसर पर कल उज्जैन में कार्यक्रमों में होंगे शामिल भोपाल की तुषा शर्मा मृत्यु मामले में आज दिल्ली एम्स टीम ने किया दोबारा पोस्टमार्टम और प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर जारी अधिकांश शहरों का तापमान 45 डिग्री के आसपास अब समाचार विस्तार से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी इस अवसर पर आकाशवाणी अपनी श्रृंखला पीपुल्स पद्म ऑन आकाशवाणी के तहत 16

0: रहा कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहा है। इन एपिसोड में पद्म पुरस्कार विजेताओं के कार्यों और जीवन के बारे में जानकारी दी जाएगी। इनका प्रसारण आज और कल आकाशवाणी गोल्ड के 100.1 चैनल पर किया जाएगा। इन्हें न्यूज ऑन एयर और यूट्यूब चैनल पर भी सुना जा सकता है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE को त्रुटि रहित पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया सुनिश्चित करने में सहायता के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास के प्रोफेसरों और तकनीकी विशेषज्ञों का एक दल तैनात करने का निर्देश दिया है। यह निर्णय CBSE के परीक्षा परिणाम सेवा पोर्टल के संबंध में विद्यार्थियों और अभिभावकों की चिंताओं और समस्याओं को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। शिक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि IIT मद्रास का विशेषज्ञ दल प्रणाली में तकनीकी सुधार लागू करेगा और विशेष रूप से पोर्टल की स्थिरता और सर्वर के सुचारू संचालन की जांच करेगा। यह दल समग्र IT अवसंरचना की मजबूती, लॉगिन प्रमाणीकरण, उपयोगकर्ता पहुंच प्रणाली, भुगतान गेटवे की सटीकता और सुचारू कार्यप्रणाली सुनिश्चित करने के लिए सुधारात्मक उपाय करने में सहायता करेगी। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में कई मुद्दों पर चर्चा की। दोनों पक्षों ने भारत और अमेरिका सामरिक भागीदारी को महत्वपूर्ण बताया और कहा कि यह भागीदारी व्यापार, ऊर्जा, मोबिलिटी और क्षेत्रीय सुरक्षा के रूप में विशेष रूप से है।
1: हम इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता चाहते हैं। दूसरा, हमारे लिए प्रवासी समुदाय का कल्याण और भलाई बहुत आवश्यक है। तीसरा, हम चाहते हैं कि ईंधन की कीमतें कम हों, क्योंकि हम इसके बहुत बड़े आयातक हैं और इसका अधिकतर हिस्सा इसी क्षेत्र से आता है। हम इस क्षेत्र से सुरक्षित और बिना किसी रुकावट के समुद्री व्यापार के पूरी तरह पक्ष में हैं। और साथ ही हम ये देखना चाहते हैं कि वहां के बाजार खुलें। हम कोई रुकावट नहीं देखना चाहते।
0: मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव गंगा दशहरा के अवसर पर 25 और 26 मई को उज्जैन में शिप्रा तट पर आयोजित परिक्रमा, चुनरी अर्पण, पूजन एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों में शामिल होंगे। इस अवसर पर श्रद्धा, संस्कृति और जल संरक्षण के संदेश से जुड़े विविध आयोजन किए जाएंगे। जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत गंगा दशहरा पर 25 मई को प्रदेश भर में वहत कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। प्रदेश के विभिन्न जिलों में प्रभात फेरिया, नदी एवं जलाशय परिक्रमा, साइकिल रैली, चुनरी अर्पण, पूजन तथा जल और नदियों पर आधारित सांस्कृतिक प्रस्तुतियां आयोजित की जाएगी। वहीं भारत भवन भोपाल में सदानीरा का आयोजन 27 मई से 2 जून तक किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान अंतर्गत ग्राम खेरवा टोला जिला उमरिया में बाघ के हमले में एक महिला की मृत्यु और कुछ नागरिकों के घायल होने पर दुख व्यक्त किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने संवेदनाएं व्यक्त करते हुए हमले में मृतक के परिजन को 25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करने के निर्देश दिए हैं। घायलों को निशुल्क उपचार और आवश्यक मुआवजा उपलब्ध कराने के लिए भी निर्देशित किया गया है। अब समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक, साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर EIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsoneair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन EIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: समाचारों में आपका स्वागत है। दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स की 4 सदस्यों की मेडिकल टीम ने आज भोपाल में त्विशा शर्मा का दूसरा पोस्टमार्टम किया। यह पोस्टमार्टम कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच लगभग 3 घंटे तक चला। कानूनी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद शव परिवार को सौंप दिया गया और भोपाल के भदभदा विश्राम घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया गया। उनके परिवार ने मेडिकल टीम से अनुरोध किया था कि वे एक बहुविषयक फॉरेंसिक, पैथोलॉजिकल और रेडियोलॉजिकल दृष्टिकोण अपनाएं और उनकी उन चिंताओं की स्वतंत्र रूप से जांच करें। गौरतलब है कि 33 वर्षीय त्विशा की मृत्यु भोपाल में उनके ससुराल में हुई थी। त्विशा के परिवार ने ससुराल वालों पर दहेज उत्पीड़न और आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया है। भारतीय सेना में अग्निवीर भर्ती के लिए ज्वाइन इंडियन आर्मी की वेबसाइट पर पंजीकृत अभ्यर्थियों का ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस एग्जाम 1 जून से 12 जून तक भोपाल के 2 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित किया जाएगा। विभिन्न श्रेणियों के लिए परीक्षा प्रतिदिन 4 शिफ्टों में होगी। सेना भर्ती कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार ऑनलाइन परीक्षा के लिए भोपाल में केंद्र ION डिजिटल जोन, प्रेस्टीज, श्री जयराम एजुकेशन सोसाइटी, कोकता बायपास, रायसेन रोड और ION डिजिटल जोन, RGPM सनखेड़ी, दानिशकुंज, कोलार रोड पर स्थित है। सरकार ने जन परामर्श के लिए विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 2025 के अंतर्गत मसौदा नियम प्रकाशित किए हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि कोई भी व्यक्ति, हितधारक, संगठन या संस्था अगले महीने की

काहेर लोगों को तेज धूप व लू का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग के अनुसार 31 मई तक प्रदेश में गर्मी अपने चरम पर रह सकती है। अगले चार दिनों तक लोगों को तेज धूप और गर्म हवाओं से राहत मिलने की संभावना नहीं है। कल से शुरू हो रहे नौतपा के दौरान भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर और जबलपुर समेत पूरे प्रदेश में तापमान और बढ़ने की संभावना जताई गई है। विभाग ने लोगों को दोपहर में घर से बाहर निकलने से बचने, पर्याप्त पानी पीने और सतर्क रहने की सलाह दी है। वहीं शहडोल जिले में झुलसा देने वाली गर्मी का असर जल स्रोतों पर भी दिखने लगा है। जिले का सबसे बड़ा बाण सागर बांध 56% तक खाली हो चुका है। छोटे बांधों की स्थिति और भी चिंताजनक है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। छिंदवाड़ा जिले में तेंदुपत्ता संग्रहण का कार्य तेजी से जारी है। उपवन संरक्षक अनादि बुधुलिया ने बताया कि अब तक कई क्षेत्रों में लक्ष्य का 50% से अधिक संग्रहण पूरा हो चुका है। नर्मदापुरम जिले में जनजातीय कार्य विभाग द्वारा सबसे पहले सबसे दूर अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत दूरस्थ जनजाति ग्रामों तक पहुंचकर आदि सेवा केंद्रों के माध्यम से जनसुनवाई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

0: दी
1: हाँ
0: ये देख कैसे
2: हैप्पी बर्थडे भाई
0: दीका
3: हाँ मेरा फेवरेट कलर हमेशा शॉपिंग
4: आई नो माँ बट खर्चा करने की भी यही उम्र है राइट
5: सेविंग करने की भी यही उम्र है
6: आई नो पा सेव करो सही जगह निवेश करो रकम पर ब्याज मिलेगा जिसे फिर से निवेश करने पर ब्याज मिलता रहेगा
4: आई नो ना
6: आरबीआई कहता है
7: करो सही शुरुआत बनो फाइनेंशियली स्मार्ट
8: दादी कौन सा प्लांट है
5: टेंजरीन बहुत मीठा होता है तोड़ना नहीं है फ्री फॉरेन ट्रिप क्लिक ऑन द लिंक अभी करता हूँ
8: दादी रुको लिंक में क्लिक मत करना
5: क्यों
8: ये SMS स्कैम है क्लिक करोगे तो आपके बैंक डिटेल्स होंगे चोरी
5: ओह थैंक्स गप्पू बचा लिया ये ले तेरी समझदारी का फल
9: RBI कहता है स्मार्ट बनो कूल रहो
10: ये आकाशवाणी भोपाल
11: मीडिया वे पर हम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं शाम के 7:20 हुए हैं लीजिए सुनिए कृषि जगत

कृषि जगत कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान भज्जा भौजी हरों के काजे आकांक्षा बिन्नू की राम राम। अब देखो हमारे गांव की बात यह बता रहा है, आज रामू और श्यामू दो ही पक्के दोस्त हैं। श्यामू तनक समझदार सो है और रामू खो हंसी मजाक सूझत रात। सो रामू पहुँचे स्कूल, श्यामू बोले आज स्कूल में इतनी साफ सफाई काया हो रही, कोनो विशेष आदमी आ रहा होगा। सो श्यामू बोले आहा आज राष्ट्रमंडल दिवस है। इतने ही में रामू बोले का कह रहा है, रसोई मंडल दिवस है। सो श्यामू बोले तुमसे तो बस खावे पीवे की बातें करवा लो, यही से तो कक्का खिसियात रहा तुम्हें, बस खावो सोबो दो ही काम है, जो तो है नहीं है कि माँ साहब आवे बारे हैं सो तनक काम काज करवा ले। लो भी आ गए माँ साहब। अब उत्ते में मास्टर पहुँचे और बच्चों से सीधे प्रश्न पूछने लगे कि बताओ राष्ट्रमंडल का होत है। सो रामू हंसत भाई बोले मास्टर साहब एक ऐसा मंडल जिते

अरे गोल गोल बैठे हूँ मैं। सुमस्सा बोले, वैसे तुमने कही तो बात सही है, भले मजाक में किया दही, लेकिन बात सही है। राष्ट्रमंडल कई देशों को समूह का हाउत है, जो कि आपस में मिलकर दोस्ती और सहयोग बढ़ाऊ है। अच्छा मैं सब अब आई समझ में, जैसे हम औरों की क्रिकेट टीम रात और सभी जने मिलजुल के आपस में खेलत रात, ऐसे ही राष्ट्रमंडल हो थुज है ना मास साहब। इतने में रामू बोले, मास साहब फिर तो अपने मोहल्ला को सोई एक राष्ट्रमंडल भाव चाहिए, जितने बैठ के सब जने गप्पे सप्पे करवे, मिलवे जुलवे, सुबेरे शाम तनक उठवो बैठवो होवे। सो श्यामू बोले, मास साहब रामू के मोहल्ला में चुगली ज्यादा हो, तो इनकी काकी तो इन सब में PhD करके हैं बैठी। भुनसारे वारी बात घंटा भरे में वायरल हो जाते और पतोलो नहीं चलत, जब पतो चलो जब रात हो जात। क्या अरे जा बात तो सुबह हमने बताई थी, हो जा वायरल कैसे हो गई। मास साहब बोले कि देखो जो सब तो चलत रात, अकेले आज को दिना मनाबे को मतलब बस इतना ही है कि जैसे अलग अलग देश आपस में सहयोग की भावना रखत, आपस में मिलके काम करत, उसे ही हम सब खो भी रहने, एक दूसरे की कमियों को दूर करत भय, अच्छाइयों को देखत भय, हमेशा आगे बढ़त रहने। कायसे राष्ट्रों को मेल है, मित्रता को खेल है, शांति और सहयोग से सजो राष्ट्रमंडल दिवस को रेल है। भाषा भले अलग हो भय, पर मन सबके एक हैं, मिलजुल के आगे बढ़ने जोई नेक संदेश है।

0: तो पार्टी चाहिए,
1: पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे।
2: आइडिया, यही करते हैं पार्टी।
0: पिज्जा पार्टी, ये चल अपना कार्ड और पिन दे।
3: मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें।
0: बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं, नो शेयरिंग।
3: RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, यात्रा के दौरान अगर TC टिकट मांगे तो दिखा दीजिए, लेकिन कोई भी OTP पिन या पासवर्ड मांगे तो उसे तुरंत भगा दीजिए।
5: RBI कहता है OTP या पिन के लिए कॉल या मैसेज आए तो थोड़ा ध्यान से।
6: रुद्रदत्त भैया से उमदा लोकगीत सुनने के बाद रामू श्यामू चले गए अपने घर है, और मां साहब जा रहे थे अपने दोस्त डॉक्टर आमिर खान के घर है। मां साहब कक्का से कहने लगे कि कक्का चलो आप सोई चलो, कहा है ई बेरे हम सोच रहे थे कि मुर्गी पालन को काम कर ले वे, सो मुर्गी पालन के लाने चूजों को प्रबंधन ई पे पूरी जानकारी अपने दोस्त से ले ले वे, वो कि बाद ही हम सोच रहे कि काम शुरू करो जो है, कहा है ना कि पूरी जानकारी के संगे करे भय काम में जल्दी और अच्छी सफलता मिल जात। सो कक्का बोले हाँ भैया हम तो खुदा ही उन लोग चले जात। सो ऐसे दो ही जने पहुँचे डॉक्टर आमिर खान भैया के घर।
7: किसान भैया हरो, आज हमने अपने कार्यक्रम में बुलाओ है डॉक्टर आमिर खान साहब के लाने, और अपने लाने जानकारी दें कि मुर्गी पालन करबे के लाने चूजों को प्रबंधन अपन कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो डॉक्टर साहब हम अपने कार्यक्रम में आपको स्वागत करते हैं।
8: जी नमस्कार। जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद लखन भैया।
7: डॉक्टर साहब मुर्गी पालन में ब्रायलर पालबे के लाने सबसे पहले तो आप हमारे किसानों को सुझाव दें।
8: ब्रायलर फार्मिंग क्या है? ऐसा व्यवसाय है जिसमें अपन कम समय में और कम लागत में किसान भाई अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। इसलिए आज ये ब्रायलर फार्मिंग बहुत तेजी से उभर रहा है
7: जी।
8: और इसमें कुछ पहलू हैं जिस पर अपन प्रकाश डालेंगे। तो सबसे पहले अपन चूजों के पालने की संबंधित जानकारी किसान भाइयों से साझा करेंगे
7: जी। हाँ,
8: इसमें सबसे पहले चूजों को अगर अपन फार्मिंग करते हैं तो सबसे पहले उसके स्थान का चयन सही होना चाहिए
7: जी। जी,
8: स्थान चयन में अपन को देखना चाहिए जो जमीन अपन इस्तेमाल कर रहे हैं वो समतल होना चाहिए, उतार चढ़ाव ना हो उसमें
7: जी।
8: दूसरा थोड़ा सा ऊंचाई पर हो, जिसमें बारिश के समय क्या होता है पानी भरता है तो चूजों में बीमारियां बढ़ती हैं
7: जी। हाँ,
8: मॉइस्चर बढ़ता है उससे बैक्टीरिया वायरस की पैदावार ज्यादा होती है वहां पे। इसके बाद हम जो ब्रॉयलर फार्मिंग है कम से कम शहर से दूर हो, वो थोड़ा सा ज्यादा दूर ना हो, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन में कभी कभी क्या होता है जो चूजा जब बड़ा हो जाता है ब्रॉयलर फार्मिंग रेडी हो जाता है तो उसके आदान प्रदान में ज्यादा समस्या ना हो
7: जी।
8: और उस क्षेत्र में बिजली प्रकाश की सुविधा अच्छी हो, वातावरण अच्छा हो
7: जी।
8: और ज्यादा लोगों की आवक जावक ना हो, उससे क्या होता है कुछ बीमारियां चूजों में ऐसी होती हैं जो ट्रांसमिट होती हैं
7: जी।
8: तो उससे बचाव के लिए उसको थोड़ा सा शहर से दूर होना चाहिए। मगर अगर उनका प्रिवेंशन, उनका टीकाकरण वगैरह अगर सुचारू रूप से होता है तो उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं होती है
7: जी।
8: पोल्ट्री फार्मिंग में क्या होता है, शेड का निर्माण वैज्ञानिक तरीके से करना चाहिए। हमारे किसान भाई पोल्ट्री फार्मिंग जब करते हैं तो अपने घर के पास बाड़े में मुर्गी पालन छोड़कर मतलब देसी तरीके से उनका व्यवसाय करते हैं, तो उसमें इतना ज्यादा मुनाफा नहीं हो पाता। तो उसके लिए कुछ वैज्ञानिक पद्धतियां हैं जिसपे अपन को अगर शेड का निर्माण करते हैं तो उससे चूजों को ज्यादा आराम मिलता है, तो वो कम समय में कम दाना खा के ज्यादा वजन देते हैं
7: जी।
8: तो सबसे पहले क्या है, जो दिशा है
7: जी,
8: वो पूरा पश्चिम दिशा में होना चाहिए
7: जी। हाँ,
8: जिससे क्या होता है ज्यादा बहुत तेज जो सूर्य का प्रकाश होता है वो डायरेक्ट शेड के अंदर नहीं पड़ता
7: जी।
8: तो उससे क्या होता है स्ट्रेस से बर्ड बचता है
7: जी।
8: इसके पश्चात ये जो शेड में क्या होता है एक बेडिंग मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं
7: जी।
8: मतलब आरामदायक चूजों को सरफेस देने के लिए अपन बुरादे का इस्तेमाल करते हैं
7: जी।
8: बुरादा या उसे लिटर बोलते हैं अपना टेक्निकल लैंग्वेज में
7: जी। हाँ,
8: तो वो 3-4 इंच का बुरादा इस्तेमाल करते हैं उसमें
7: जी।
8: इसके पश्चात क्या होता है चूजों में कुछ ब्रूडिंग की जाती है, जैसे देसी मुर्गी सिकाई करती है अपने बच्चों की।
7: हाँ,
8: तो ऐसा एक अपन को ब्रूडिंग अरेंजमेंट चूजों के लिए किया जाता है, उनको एक तापमान दिया जाता है
7: जी।
8: शेड के अंदर,
1: हाँ।
8: तो लगभग वो 95 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर प्रथम सप्ताह में देना पड़ता है उनको, जब चूजा एक दिन से लेके 7 दिन तक होता है।
1: जी,
8: तो जैसे जैसे चूजा बड़ा होता जाता है उसका तापमान 5 डिग्री फ़ारेनहाइट कम करते जाते हैं।
1: जी,
8: जहाँ जिस के पास जो सुविधाएं होती हैं उस हिसाब से ब्रूडिंग करते हैं।
1: जी,
8: जैसे कुछ लोग बल्ब से ब्रूडिंग करते हैं, कुछ हेलोजन का भी इस्तेमाल करते हैं जब बहुत ज़्यादा सर्दी होती है। कई जगह क्या होता है जहाँ पे बिजली की ज़्यादा पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी नहीं हो पाती, उसके लिए वो गैस ब्रूडर आते हैं।
1: जी,
8: वो 1000-2000 चिक्स के ब्रूडर आते हैं, उसमें आप गैस ब्रूडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। और कुछ स्थान पर जहां लकड़ी की पैदावार ज्यादा होती है वहां पर अपन सिगड़ी वगैरह का इस्तेमाल करके भी ब्रूडिंग कर सकते हैं।
1: जी, अब डॉक्टर साहब, चूजा आवे के पहले जो शेड है वो को प्रबंधन कैसे करना चाहिए हमारे मुर्गी पालक भैया हन के लाने?
8: जी जी बिल्कुल। तो सबसे पहले क्या होता है, जो चूजे के दाने और पानी के बर्तन रहते हैं, पहले उसकी अच्छे तरीके से डिटर्जेंट से सफाई कर लेना चाहिए।
1: जी,
8: उसके पश्चात शेड की सफाई का तरीका भी हम थोड़ा सा बताते हैं किसान भाइयों को।
1: हाँ, हाँ।
8: उसके लिए आपको क्या करना है, अगर आपका पक्का शेड है तो उसके लिए आपको चूना और कॉपर सल्फेट की पुताई करना है पूरे शेड में। फिर उसके बाद कुछ फॉर्मेलिन के स्प्रेज और कुछ दवाइयां आती हैं मुर्गी से रिलेटेड, जैसे B904 है, X185 है, इनके स्प्रे करने से क्या होता है जो बैक्टीरिया वायरस की रोकथाम हो जाती है वो नियंत्रित हो जाती है। इसके पश्चात ये जो बुरादा है वो अपन अपने शेड में बिछाते हैं। बुरादे की जगह आप धान का छिलका और लकड़ी का बुरादा इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं, या तो बुरादा या धान का छिलका,
1: दो में से कौन?
8: जो किसान भाइयों को जो उपलब्ध हो जाए कम लागत में वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और 2-3 इंच की उसकी मोटाई रहती है। तो इसमें क्या होता है कि अपन ने शेड में ये बुरादा बिछा दिया, उसके पश्चात उसमें अपन ब्रूडिंग अरेंजमेंट्स करते हैं।
1: जी।
8: और प्रति 100 चूजों में 2-3 दाने के बर्तन और पानी के बर्तन अगर आप रखते हैं तो उनको सुचारू रूप से वातावरण मिलता है।
1: जी।
8: खाने का भी और पीने का। इसके पश्चात जो अपना ब्रॉयलर फार्मिंग में जो दाना इस्तेमाल किया जाता है उस पर विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए किसान भाइयों को। इसमें 3 किस्म का दाना दिया जाता है।
1: जी।
8: जब चूजा पहले दिन से लेके 10 दिन तक होता है तो उसको प्री स्टार्टर दाना दिया जाता है। प्री स्टार्टर दाने में क्या प्रोटीन की मात्रा थोड़ा सा ज्यादा होती है, 22-23% होती है।
1: हाँ हाँ।
8: तो क्या होता है, इसका तरीका ये है कि उस टाइम 1-10 दिन में जो चूजे हैं उसकी जो वृद्धि होती है बहुत तेज होती है।
1: जी।
8: तो उसमें प्रोटीन की आवश्यकता ज्यादा होती है।
1: हाँ हाँ।
8: फिर जब 11वें दिन से लेके 20वें दिन तक जब चूजा होता है तो वहां पे स्टार्टर दाना दिया जाता है।
1: जी।
8: इसमें प्रोटीन की मात्रा थोड़ा सा कम होती है, 20-21% होती है।
1: हाँ हाँ।
8: इसके पश्चात दाने को 21 दिन से लेके 40-42 दिन तक, जब तक चूजा अपना मुर्गा तैयार नहीं हो जाता, उस टाइम एक फिनिशर दाना दिया जाता है। तो ये मूलतः 3 प्रकार के दाने का इस्तेमाल किसान भाइयों को करना चाहिए।
1: जी हाँ।
8: जिससे क्या होता है उनकी ग्रोथ और FCR, फीड कन्वर्जन रेशो, इसको किसान भाई बोलते हैं कि दाना मुर्गी जितना दाना खाती है और कितना वजन देती है।
1: जी।
8: वो जितना आपका कम होगा उससे आपका मुनाफा लगातार बढ़ेगा।
1: जी, अब डॉक्टर साहब आपने मुनाफा की बात करी तो बहुत हमें जब बात की खबर ही हो आई है कि कई बन्नी ऐसी बीमारियां सुई हो जाती हैं के बीच में, मान लो मुर्गी के चूजों के हैं या बड़ी मुर्गियों के हैं या कोई खो भी, ये बीमारियां बिल्कुल नहीं छोड़ती हैं, सब खो लग जाती हैं। तो चूजों को बीमारियों से बचावे के लाने उनकी कछु रोकथाम के उपाय और बताओ।
8: जी, जैसे ही आपके शेड में चूजे आते हैं उसके लिए कुछ दवाइयां

0: है उसका इस्तेमाल अपन को करना चाहिए। जैसे कुछ विटामिन AD3C B कॉम्प्लेक्स होते हैं,
1: जी
0: उनको अपन को पानी में चूजों को प्रदान करना चाहिए। क्या है,
1: जी
0: चूजे जब भी कहीं बाहर से आते हैं हैचरी वगैरह से, तो उसको ट्रांसपोर्टेशन स्ट्रेस लगता है,
1: हाँ
0: तो 2 घंटे के लिए आप पानी में उनको बी कॉम्प्लेक्स विटामिन AD3C पिलाएं
1: जी
0: लगातार।
1: हाँ
0: उसके पश्चात उनको अपन फीड या दाना प्रोवाइड करें।
1: जी
0: इसके बाद जो जो मेन मेन दवाइयां हैं, उसमें कुछ एक एंटीबायोटिक्स का भी इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि आपका फार्म का मैनेजमेंट कैसा है उसको बचने के लिए,
1: जी
0: तो बाजार में काफ़ी किस्म के एंटीबायोटिक का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें कोलेस्टिन सल्फेट हो गया, इतने सारे एंटीबायोटिक्स हैं, आप उसमें भांति भांति से उसका इस्तेमाल कर सकते हैं।
1: जी अब डॉक्टर साहब, चूजों में बीमारी हो गई ने तो एक ही पहलू हमारे जो मुर्गी पालक भैया हैं वे टीकाकरण करवा सकत हैं का?
0: जी, टीकाकरण आज के फार्मिंग में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है उसका,
1: जी
0: क्योंकि आजकल ब्रॉयलर फार्मिंग दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, तो इससे क्या हो रहा है, रोग भी बहुत सारे अपनी मुर्गियों में और चूजों में लगते हैं, तो उसकी रोकथाम के लिए वैक्सीनेशन प्रोग्राम है, उसको आपको ज़रूर करना चाहिए।
1: जी
0: तो जैसे ही चूजा आपके फार्म पर आता है, 6वें दिन सबसे पहला वैक्सीन होता है F1B1 या ND-Killed। ये रानीखेत बीमारी से बचने का टीका है।
1: जी
0: रानीखेत, ये मतलब मुर्गी पालन के लिए सबसे खतरनाक बीमारी है।
1: हाँ
0: अगर किसी शेड में रानीखेत बीमारी का इन्फेक्शन अगर आ जाता है, तो लगभग 80 से 100% मोर्टिलिटी भी हो जाती है।
1: जी
0: तो इसकी रोकथाम के लिए ये वैक्सीन आपको 6वें दिन इस्तेमाल करना है।
1: जी
0: किसान भाई इसको 2-3 तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, चूजों के पानी में मिला के भी दे सकते हैं,
1: हाँ
0: कुछ
1: हाँ
0: वैक्सीन ऐसे हैं कि उनको आँख में एक ड्रॉप डाल सकते हैं, कुछ इंजेक्शंस आते हैं किल्ड वैक्सीन बोलते हैं उनको,
1: जी हाँ
0: उनको चमड़ी में या इंट्रामस्कुलर इस्तेमाल कर सकते हैं।
1: जी
0: उसके पश्चात एक 12वें दिन गम्बोरों की बीमारी होती है, वो भी बहुत हानिकारक होती है
1: जी
0: चूजों के लिए, तो उसका वैक्सीन भी बहुत ज़रूरी है।
1: जी
0: किसान भाइयों से आग्रह है कि वो ज़्यादातर अच्छे किस्म की वैक्सीन का उपयोग करें।
1: जी
0: इसके पश्चात कुछ किसान भाई जो बड़े फार्मर होते हैं, जो लार्ज स्केल पे पोल्ट्री फार्म करते हैं, वो 21-22वें दिन भी ये रानीखेत का वैक्सीन रिपीट करते हैं, उसको बूस्टर वैक्सीन बोला जाता है,
1: जी
0: तो इसका इस्तेमाल करेंगे तो उसमें क्या होगा कि जो चूजे हैं उसमें रानीखेत के जो टाइटर रहते हैं वो अच्छे आते हैं, इस पे बीमारी होने की मतलब चांसेस बहुत कम होते हैं।
1: जी हम डॉक्टर साहब बीच में तन्नक इजाबात और जानबो चाहत हैं कि रानीखेत की बीमारी बड़ी मुर्गियों में तो होता ही है, या चूजों में से हो जाते का?
0: हाँ, चूजों में भी हो सकती है,
1: जी
0: 2 सप्ताह के बाद उसमें भी ये बीमारी के
1: जी
0: लक्षण आ सकते हैं।
1: जी जी जी अब डॉक्टर साहब एक बात और है आखिरी में हम जब पूछो चाह रहे हैं आपसे कि जो बाह्य जीव हैं, बाह्य जीवों से बचावे के लाने जे चूजा हैं, कौन कौन से हमारे किसान भैया ने ऐसे उपाय अपनावें, प्रयास करें?
0: जी, जैव सुरक्षा आज के समय में बहुत अत्यंत आवश्यक है। मतलब आप किसी शत्रु को अपने घर में प्रवेश नहीं करने देंगे, उसके लिए आपको क्या क्या सावधानियां बरतना है।
1: जी
0: इसमें क्या होता है, जो भी आपका फार्म है उसकी जो बाउंड्री वॉल होती है, उसके गेट पर किसी भी बाहरी व्यक्ति, बाहरी जानवर का प्रवेश बिल्कुल निषेध कर दें,
1: जी
0: और जो भी आपका व्हीकल है या ट्रांसपोर्टेशन का साधन है, जो माल लेने वाली गाड़ी आती है, चूजे छोड़ने वाली गाड़ी आती है, उन सबको अपने फार्म के बाहर रखें, और जब उनका प्रवेश अपने फार्म के अंदर अगर होता है, तो उनको फॉर्मिलीन या KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट है, तो इन दवाइयों के स्प्रे से उनको साफ करें।
1: जी
0: और उसके पश्चात अगर कोई विजिट पर आपके फार्म पर कोई विजिट करने आता है, तो उसके जूते चप्पलों को भी आप उतरवा के अपने यहाँ चप्पलें रखवा के उनके फार्म में एंट्री कराएं,
1: जी
0: और आपके आसपास के वातावरण में भी समय समय से कुछ स्प्रेज आते हैं, जैसे फॉर्मेलिन हो गया, इनका स्प्रे सुचारू रूप से करते रहें,
1: जी
0: तो इससे आपको बायो सिक्योरिटी में बहुत मदद होगी।
1: जी तो डॉक्टर आमिर खान साहब, आप हमारे कार्यक्रम में आए और आपने मुर्गी पालन हेतु चूजों को प्रबंधन करवे के बारे में उम्दा उम्दा बातें बताई हैं, आपके लाने बहुत बहुत
0: जी
1: धन्यवाद।
0: लखन भैया, बहुत बहुत धन्यवाद।
2: Hey girls,
3: hi, congratulations.
2: आज तो पार्टी चाहिए,
4: पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे।
5: आइडिया, यही करते हैं पार्टी,
2: पिज्जा पार्टी। ये चल अपना कार्ड और पिन दे।
5: मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें।
2: बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है, सुना नहीं? नो शेयरिंग।
5: RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: पुलिस?
7: मिस सीमा
6: जी,
7: अभी पुलिस स्टेशन आई है।

0: रुकिए, वरना घर आ जाएंगे।
1: क्यों, लेकिन मैं
0: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
1: डिजिटल अरेस्ट?
0: 1 लाख दो, बन जाओगे।
1: इतने पैसे?
0: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
1: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
2: हेलो मम्मा।
3: RBI कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, यात्रा के दौरान अगर TC टिकट मांगे तो दिखा दीजिए, लेकिन कोई भी OTP, पिन या पासवर्ड मांगे तो उसे तुरंत भगा दीजिए।
6: RBI कहता है, OTP या पिन के लिए कॉल या मैसेज आए तो थोड़ा ध्यान से।
7: मुर्गी पालन के लाने चूजों के प्रबंधन विषय पे पूरी जानकारी लाई अपन ने डॉक्टर आमिर खान से। पूरी जानकारी लेके मासब और कक्का आ रहे थे खेत पे। कान लगे कि अपने लखन भैया ने बतकाओ खूब उम्दा करो। फिर कक्का बोले, कायरे रामू, जो इतो चमक रहो काया धरो। सो रामू बोले, अरे कक्का, जो सोलर पंप है इकी मोटर सूरज की रोशनी से चलत है। कक्का तुम जो मान ले हो कि अपन खो बिजली विभाग के चक्कर न लगाने पर हैं, इमें न लाइट को चक्कर न डीजल को खर्चा। उत्तई में आ गए सरपंच साहब, कान लगे, रामू भले तुम्हारो मन खावे और सोबे में ज़्यादा लगत, अकेली प्रधानमंत्री किसान सुरक्षा और उत्थान महाअभियान योजना को उम्दा लाभ तुम्हें नहीं उठाओ। कक्का जा योजना को नाओ, इतो बड़ो बड़ो है, सुई को काम सोई उत्ते ही बड़ो है। सरपंच साहब बोले, हो कक्का, किसान आदमी को खर्चा कम हो जाए, इसे बड़ो काम कछु हो सकत का। इमें किसानों के काजे सोलर ऊर्जा से सिंचाई की सुविधा दी जात और अपनो खर्चा बचत। कह रामू, हम सही कह रहा है कि नहीं कह रहा है? सो रामू बोले, 100% सही है कह रहा है। अब हमाई को देख लो, हमाई मोटर दिन भरे चलत और जेब भी ज़्यादा खाली नहीं होत। मानो जा कह सकत कि जा योजना खेत के लाने वरदान साबित हुई है। सबसे बड़ी बात कि इमें प्रदूषण भी कम होत है। कक्का बोले, मतलब अब सूरज देवता सोई अपन औरों की मदद कर रहे, जा कह सकत अपन और हैं कि नहीं? सो सब जनन की ऐसी हंसी मजाक शुरू हो गई और बोले, हम सोई अब अगली बेरे आवेदन कर दे भी। राम बोले, हाओ कक्का, जब सूरज देवता संगे हैं तो मौका काय को छोड़ने फ़ायदा उठावा ही चाहिए। सरपंच साहब बोले, भैया रो ऐसो है, सूरज की किरणों से अब खेत मुस्काबे, मेहनत करवे वारे किसान अब खुशियां पावे, सोलर ऊर्जा से बदलवे खेती की पहचान, उज्जवल हो रहा अब हर किसान को सम्मान।

भैया रो देखो, अबे अपन और सुन रहे थे भवानी दास अहिरवार भैया को गाओ भाव लोकगीत। और देखो जैसो अपन ने अब लोकगीत सुनो है वही लोकगीत पे आज हमारे घरे हमारे गांव में चर्चा हो रही थी। गांव में चौपाल लगी है थी सोते ही हमारे रामू कक्का सरपंच साहब और गांव की सबरी औरतें काकी हरें बैठी हैं थी। सो रामू काका कान लगे भैया पहले के टाइम में सोचा था कि औरतें अकेली घर को काम काज करती अकेले, अब तो गांव की बेटियां सोई खूब आगे बढ़ रही। सो कक्का बोले हाओ दद्दा नहीं काकी को देखो अपने बाजू बारी खेत वहाँ संभाल रही बच्चों की पढ़ाई संभाल रही संभाल रही और देखो इतने उतने नौकरी सोई कर रही मानो एक संगे 10 ठो काम कर रही है। और हमारे गांव की उन सुनीता दीदी को देख लो गुड्डन जी को देख लो और उन भौजी को देख लो उनने सिलाई केंद्र खोल के कितनी लो महिलाओं के लाने कितनी लो भौजी काकी हरों के लाने काम दाओ। सरपंच साहब बोले आज सरकार सोई महिलाओं को आगे बढ़ावे के काजे कई प्रकार की योजनाएं चला रही अगर अपने देश की नारी शिक्षित हुई है तो पूरा परिवार तो आगे बढ़े समाज आगे बढ़े और अपना देश भी शिक्षित मानो जाए है। सो भैया एक बात तो कहे हैं हम देखो रामू कक्का कि पहले लोग अपनी बेटियन को पढ़ावे में डरा थे अकेले अब सबई को जवाब समझ में आ गई कि बिटियाँ बेटों से कम नहीं हैं जा भी कह सकत के अपनी बिटियाँ घर की ताकत कहाती और नारी को भी एक अपनो नाम बिटिया से माँ बनात माँ से नारी कहाउत माँ के बिना तो जो मान लो का घर सूनो सूनो लगत कैसे एक माई हो जो अपने बाल बच्चों को अच्छे संस्कार दे के एक अच्छो इंसान बना सकत हैं। और महिलाएं देखो घर में स्वयं सहायता समूह बना के अपना रोजगार चला रही। सो सरपंच बोले बिल्कुल सही बात आए जा कि जौन समाज में महिलाओं को सम्मान होत है वही समाज तरक्की करत है। सो भैया सभी जने जो जान लो कि नारी शक्ति को सम्मान करो चाहिए उखो पढ़ाओ चाहिए आगे बढ़वे को उखो अवसर दो चाहिए और जा भी कह सकत के नारी अकेलो एक शब्द नहीं कहाउत नारी हिम्मत की पहचान कहाउत घर आंगन की रौनक कहाउत और समाज की शान कहाउत कैसे उमें ऐसी ताकत होत के बस दुख सह के भी मुस्कुराउत उसकी जा भी कह सकत क्योंकि सबसे बड़ी ताकत तो जाई कहाउत के दुख में भी नारी मुस्कुरा के अपने दुख काट लेत। सो भैया अब हम जाई के हैं कि अपन और तो पड़ गए गांव देहात के सो अपन और को अपने दिमाग से जब मानसिक निकालने पर है कि हमें अपनी बेटियों के स्कूलों नहीं भेजने जो नहीं करने इतने नहीं भेजने अब जो मान लो कि पढ़ाऊने हैं और उन्हें अनुशासन से रेबो सिखाऊने घर की सबरे काम तो सिखाऊने संगे संगे बाहरे के भी सिखाऊने अनुशासित तरीके से जिंदगी को जी वो सिखाऊने। और सबसे बड़ी बात कि आज के जोन जे मोड़ी मोड़ा का करत हैं कि देर रात लो पढ़ रहे सुबेरे से देर में उठ रहे जो सब नहीं करने काहूत दिनचर्या सही हुई है तो अपनो दिमाग सही हुई है दिमाग सही हुई है तो मन से अपन और अच्छे अच्छे उमदा उमदा काम कर पे हैं और एक एक आजें कई जात के सुबेरे से उठो चाहिए अपन को। सो भैया रोई की पूरी बात जे बताएं देत अपने रेवा राम विश्वकर्मा भैया और सुने लेत।

रीवाराम विश्वकर्मा को गाव जो लोकगीत तुमदा सुनो अपन और अन्य और भैया हरो सभी जनन के लाने आकांक्षा बिन्नू की राम राम जय जवान जय किसान।

अभी आप सुन रहे थे कृषि जगत, आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। रात्रि के 8 बजे हैं सुर्खियों में, जिसे हम आकाशवाणी भोपाल से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: थोड़ी ही देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में।
1: सुर्खियों में
2: नमस्कार। सुर्खियों में कार्यक्रम के आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं सोनू सूद और आज के कार्यक्रम में हम विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 के मुख्य प्रावधानों और उद्देश्य पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ रही हैं ग्रामीण विकास मंत्रालय में संयुक्त सचिव रोहिणी आर भाजी भाकरे। रोहिणी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आकाशवाणी में।
3: नमस्कार, थैंक यू सोनू जी।
2: रोहिणी जी, ये जो अधिनियम आया है विकसित भारत गारंटी रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण 2025, ये अब क्रियान्वित होने जा रहा है 1 जुलाई से, सो इसके बारे में बहुत उत्साह है। आप हमें अगर बता सकें कि जो महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना थी उसकी जगह इसको लाया गया है, इसे एक बहुत बड़ा सुधार माना जा रहा है रोजगार आजीविका और ढांचे में, तो आप हमें बताएं कि इसके प्रमुख महत्वपूर्ण सुधारात्मक प्रावधान कौन से हैं जो हमें सबसे ज्यादा प्रभावी कह सकते हैं कि जिनके कारण हमें सुधार देखने को मिलेंगे हमारे पूरे रूरल इकोनॉमी में, रूरल एम्प्लॉयमेंट इकोसिस्टम में।
3: सोनू जी, आपने बिल्कुल सही कहा। विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण, जिसे बहुत ही प्यार से विकसित भारत जी राम जी नाम से जाना जा रहा है, यह अधिनियम 11 मई को भारत सरकार ने नोटिफाई कर दिया है और 1 जुलाई से इस अधिनियम का कार्यान्वयन होने जा रहा है। यह अधिनियम भारत के ग्रामीण विकास के क्षेत्र में और ग्रामीण रोजगार और आजीविका के क्षेत्र में यह एक बहुत ही ऐतिहासिक पहल है, ऐसा मैं मानती हूँ, क्योंकि इस गारंटी फ्रेमवर्क जो होता है रूरल एम्प्लॉयमेंट का, जिसमें पहले एमजी नरेगा के अंतर्गत 100 दिनों का रोजगार हमारे श्रमिक भाई बहनों को मिलता था जो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, अब वह गारंटी जो है वह 100 से बढ़कर जो है 125 होने जा रही है। सो 125 दिन का रोजगार हर एक वित्तीय वर्ष में इन ग्रामीण परिवारों को देने की गारंटी जो है, यह एक वैधानिक गारंटी है जो इस अधिनियम का सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान है। दूसरे प्रावधान की अगर मैं बात करूं तो जैसे कि हम कहते हैं कि गारंटी है, गारंटी का मतलब ही यह होता है कि अगर गारंटी फुलफिल नहीं होती तो कुछ दिया जाता है। तो इस अधिनियम में यह प्रावधान है कि अगर 15 दिन के अंदर किसी श्रमिक को काम मांगने पर अगर काम नहीं मिलता है तो उसे बेरोजगारी भत्ता, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस भी दिया जाएगा। अगर कोई श्रमिक भाई हमारा या बहन काम करती है तो 15 दिन के अंदर अंदर उनके बैंक के खाते में सीधे मजदूरी पहुंच जाएगी और यह वेजेस का जो रेट होगा, मतलब मजदूरी दर जो होगा, वह भी पहले एमजी नरेगा के अंदर जितनी मजदूरी मिलती थी उससे ज्यादा होने की संभावना है। कुछ ही दिनों में भारत सरकार मजदूरी दर भी नोटिफाई करने वाली है, तो बेहतर मजदूरी मिलेगी और बेहतर गारंटी मिलेगी। अब मैं आती हूँ दूसरे प्रावधान की ओर, जो कि लोगों के श्रम को एक सम्मान देगा और गांवों के विकास को जो है चालना देगा। आपको पता है कि एक्ट के नाम में ही विकसित भारत है, तो काम ऐसे होंगे जिससे कि पंचायतों का विकास हो। विकसित ग्राम पंचायत प्लान्स की बात इस एक्ट में कही गई है। कोई भी ऐसे अनप्रोडक्टिव काम नहीं लिए जाएंगे, ऐसे काम लिए जाएंगे जिससे कि ग्रामीण एरिया का विकास हो और ऐसे काम लिए जाएंगे जिसमें आजीविका के भी कई अवसर उससे पैदा हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक गाँव में कोई फूड प्रोसेसिंग का अगर कोई प्लांट लिया जाता है तो उससे और भी हमारे किसान भाई बहनों को आगे जाके आजीविका के अवसर उससे उपलब्ध हो सकते हैं। हमारी सेल्फ हेल्प ग्रुप की दीदियां हैं, लखपति दीदियां बन रही है उसमें से करोड़ों दीदियां, तो उनको भी आजीविका के कई साधन बनाने के लिए विकसित भारत जी राम जी के अंदर जो है वह काम लिए जा सकेंगे। 4 प्रकार के काम है मेनली। सबसे पहला, जैसे आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं, जल है तो कल है। वाटर सिक्योरिटी के काम जो है हमारे गाँव में बहुत जरूरी होते हैं क्योंकि हमारा किसान भाई भी वहीं पर बसता है, तो जल सुरक्षा के काम हमारा कामों का पहला क्षेत्र है। दूसरे काम जो होंगे वो कोर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारे गाँव में अगर बुनियादी ढांचा रहेगा, बुनियादी अवसंरचना रहेगी, तभी हमारे किसान भाइयों को या फिर हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को इकोनॉमी को भी चालना मिल सकती है, इसलिए कोर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर यह एक इम्पोर्टेंट क्षेत्र है। लाइवलीहुड इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसकी मैंने हल्की से अभी बात की कि आजीविका मूलक गतिविधियां कई सारी करने के लिए विकसित भारत जी राम जी के एक्ट में प्रावधान है। और चौथा जो है, आपने देखा होगा सोनू जी, कई बार यह रहा है, आजकल ज्यादा हो रहा है कि एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स जिसे कहते हैं, प्राकृतिक आपदाएं फ्रिक्वेंटली जो है फेस करना पड़ रहा है देश को, तो एक्सट्रीम वेदर से निपटने के लिए भी जो काम जरूरी है वह काम भी इसमें जो है लिए जाएंगे। तो एक तरीके से मैं अगर इसे सम अप करना चाहूंगी तो विकसित भारत जी राम जी में श्रम भी है, उसका सम्मान भी है और उससे विकास की भी जो है एक एनविसाज किया गया है। तो ऑल इन ऑल भारत देश के ग्रामीण एरिया के लिए विकसित भारत जी राम जी एक बहुत ही फ्यूचरिस्टिक विकसित भारत बनने की ओर जाने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण पहल है, ऐसा मैं मानती हूँ।
2: जी बिल्कुल, ही आउटकम ओरिएंटेड है ये स्कीम और ड्यूरेबल रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसा आप बता रही है चार प्रायोरिटी एरियाज में इससे विकसित होगा। एक और चीज जो है कि सेंटर ने नोटिफाई किया है ड्राफ्ट रूल्स और उसमें उन्होंने पब्लिक फीडबैक मांगा है 20 जून तक की कोई भी सुझाव हो या कोई आपत्ति हो, तो ये भी एक बहुत ही डेमोक्रेटिक अप्रोच है सरकार का जिसमें वो सबको साथ लेकर चल रहे हैं।
3: बिल्कुल, जैसा कि प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं कि हमें बॉटम अप मतलब गांव के लोगों को क्या चाहिए यह गांव के लोगों से हमें पता चलना चाहिए, इसलिए जो विकसित ग्राम पंचायत प्लान्स भी बनेंगे वो भी ग्राम सभा ही बनाएगी। तो जो आपने नियमों के बारे में पूछा कि अभी हमने 22 तारीख को 8 ऐसे नियम जो बने हैं विकसित भारत जी राम जी के अंतर्गत, उन नियमों को हमने पब्लिक कंसल्टेशन के लिए, वाइडर कंसल्टेशन के लिए जो है पब्लिक डोमेन में डाला है और हमारे भारत देश के ई गैजेट में भी वो पब्लिश हो चुके हैं। इसके माध्यम से हम फीडबैक मांगना चाह रहे हैं लोगों से, प्रैक्टिशनर से, स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिशियल से, जो श्रमिक इसमें काम कर रहे हैं उन भाई बहनों से, जो हमारे ग्राम रोजगार सहायक जो है जो कि यह योजना चलाने वाले हैं उनसे। तो ये एक वाइडर या फिर सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन हो, हमारे एकेडमिशियंस हो या फिर जितना भी वाइडर पब्लिक कंसल्टेशन इसमें हो सकता है वो हम करने की कोशिश कर रहे हैं। यह एक बहुत ही लोकतांत्रिक तरीका है टू इंश्योर कि ऑपरेशनलाइजेशन जो है वो बहुत ही स्मूथली हो जाए ताकि हमें अच्छे कंस्ट्रक्टिव सुधार इसमें मिल जाएं। तो 30 दिन तक यह रूल्स जो है पब्लिक डोमेन में रहेंगे और हम आपके इस कार्यक्रम के द्वारा मैं सभी से अपील करूंगी कि इन रूल्स के ऊपर आपके जो भी सुझाव होंगे वो हमने वेबसाइट का एड्रेस भी दिया है और कई सारे बाकी मोड्स भी है जिससे कि आप हम तक पहुंच सकते हैं और आपके सुझाव हमें दे सकते हैं ताकि यह जो विकसित भारत जी राम जी है वो अपने एक होलिस्टिक रूप में लोगों के लिए बेहतर बने, यही हमारी इससे अपेक्षा है।
2: रोहिणी जी, बेहतर व्यवस्था की और सुचारू रूप से बदलाव हो और सभी जो मौजूदा कार्य चल रहे हैं वो विधिवत पूरे हो, रोजगार सृजन ट्रांजिशन पीरियड जो है खासकर जून में वो निरंतर बना रहे, इस पर भी बल दिया जा रहा है, किस तरह की वित्तीय व्यवस्था या अन्य व्यवस्था की गई है?
3: सोनू जी, बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा। जब भी कोई बड़ा बदलाव आता है जिसे रिफॉर्म हम कहते हैं और यह एक बहुत बड़ा रिफॉर्म है, तो इस बदलाव के टाइम, इस रिफॉर्म के टाइम यह सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है कि इसमें जो हमारे सबसे इम्पोर्टेंट हितधारक है जो कि हमारे श्रमिक भाई बहन है उनको किसी भी तरह की दिक्कत ना आए। जब ये ट्रांजिशन होता है, एमजी नरेगा यह स्कीम चल रही है पिछले ऑलमोस्ट 20 साल से, तो इन 20 साल का यह जो एक चल रहा है उसको जब हम एक नए तंत्र में ट्रांजिशन करते हैं तो यह भारत सरकार की प्राथमिकता है कि किसी भी तरह की दिक्कत या किसी भी तरह के छोटे से जिसे फ्रिक्शन पॉइंट कहते हैं ये बिल्कुल भी हमारे श्रमिक भाई बहनों को उनका सामना ना करना पड़े। इसीलिए एक सुचारू और एक निर्बाध तरीके का एक ट्रांजिशन का प्लान भारत सरकार ने बनाया है जिससे कि हमें इंश्योर कर रहे हैं कि जो श्रमिक आज, मतलब मैं एग्जांपल के तौर पे बताना चाहूंगी कि 30 जून तक एमजी नरेगा रहेगा, 1 जुलाई से विकसित भारत जी राम जी आ जाएगा। तो मैं एक एग्जांपल ये देना चाहूंगी कि जो हमारा श्रमिक भाई अगर 30 तारीख को एक कार्य पर जा रहा है और वह कार्य अपूर्ण है, वो आगे भी चलता रहेगा, तो वह श्रमिक दूसरे दिन भी 1 जुलाई को भी जब विकसित भारत जी राम जी आ जाएगा तब भी बिना किसी दिक्कत के एमजी नरेगा का वह जो उसका जॉब कार्ड अभी उसके पास है उसी का सत्यापन हमने ऑल रखा है, तो उसी जॉब कार्ड को एक वैलिड डॉक्यूमेंट मानते हुए वह आगे भी कुछ दिनों तक विकसित भारत जी राम जी में निर्बाध तरीके से काम पा सकेगा। यह हमने केवल इसीलिए किया है, पीपल सेंट्रिक जो अप्रोच है प्रधानमंत्री जी का भी सिटीजन सेंट्रिक, ईज ऑफ लिविंग की बात करते हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ लिविंग की जब बात करते हैं प्रधानमंत्री जी, तो हम ये चाहते हैं कि लोगों को बिल्कुल भी दिक्कत ना हो जबकि ये ट्रांजिशन जाए अंडर विकसित भारत जी राम जी। बाकी एडमिनिस्ट्रेटिव चीजों का ट्रांजिशन जो है वो भी स्मूथली मैनेज करने की कोशिश है, परंतु सबसे इम्पोर्टेंट है कि श्रमिक भाई को इस ट्रांजिशन में किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो, इसीलिए यह अपूर्ण काम भी जो है वो नए फ्रेमवर्क में माइग्रेट करके हम उसे जल्द ही पूरा करने की कोशिश करेंगे ताकि लोगों को जो है बिल्कुल सुचारू रूप से निर्बाध तरीके से एम्प्लॉयमेंट कंटिन्यूअसली मिलती रहे, रोजगार कंटिन्यूअसली मिलता रहे,
2: और जो लंबित देनदारियां हैं उनका भी निपटारा सुव्यवस्थित तरीके से हो जाए।
3: बिल्कुल सही बात कही। यह भी एक ट्रांजिशन का इम्पोर्टेंट पहलू है कि एमजी नरेगा में राज्यों की कुछ देनदारियां होती है जो कि कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, या ऐसा नहीं है कि भारत सरकार ने पिछले दशक में 10-12 साल में जो है 8 से 10 लाख करोड़ का खर्चा जो है एमजी नरेगा पर किया है, और कोविड में भी 1,11,000 करोड़ से ऊपर की बहुत बड़ी धनराशि भारत सरकार ने राज्यों को और श्रमिकों के खाते में पहुंचाई है। तो यह कमिटमेंट भारत सरकार की इसमें भी बनी रहेगी कि एमजी नरेगा में जितनी देनदारियां हैं उनका भी सुचारू रूप से जो है सेटलमेंट किया जाएगा। और इस वर्ष विकसित भारत जीराम जी में अगर आप देखें सोनू जी, तो 95,692 करोड़ का एक बड़ा वित्तीय प्रावधान जो है विकसित भारत जीराम जी के लिए भारत सरकार ने किया है। तो इस 95,692 करोड़, दैट इज द बजट दैट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अलॉटेड। तो इस धनराशि का उपयोग भी जो है लोगों को 125 दिन के एनहांस गारंटी देने के लिए भी किया जाएगा।
2: जैसा आप कह रही थी कि किसानों को, रूरल इकोनॉमी को बहुत फायदा होने वाला है, इसमें ट्रांसफॉर्मेटिव बदलाव है। एक जो पीक एग्रीकल्चर सीजन जो 60 दिन विकसित भारत जी राम जी योजना के अंतर्गत काम नहीं होगा, इस एस्पेक्ट के बारे में थोड़ा बता सकती हैं?
3: सोनू जी, जब मैंने कहा कि हमारे किसान भाई ग्रामीण एरिया में ही बसते हैं और वहाँ वहीं के श्रमिकों को हम ये रोजगार 125 दिन की गारंटी दे रहे हैं, तब यह देखना बहुत जरूरी था कि क्या इस एनहांस गारंटी की वजह से हमारे जो किसान भाई हैं, ऑलमोस्ट 86% जो हमारे किसान हैं वो लघु और सीमांत किसान हैं, जिन्हें स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स कहा।

0: सुर्खियों में
1: नमस्कार। सुर्खियों में कार्यक्रम के आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं सोनू सूद और आज के कार्यक्रम में हम विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 के मुख्य प्रावधानों और उद्देश्य पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ रही हैं ग्रामीण विकास मंत्रालय में संयुक्त सचिव रोहिणी

0: Surgiome.
1: नमस्कार, सुर्खियों में कार्यक्रम के आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं सोनू सूद और आज के कार्यक्रम में हम विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 के मुख्य प्रावधानों और उद्देश्य पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ रही हैं ग्रामीण

0: विकास मंत्रालय में संयुक्त सचिव रोहिणी आर भाजी भाकरे। रोहिणी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आकाशवाणी में।
1: नमस्कार, थैंक यू सोनू जी।
0: रोहिणी जी, ये जो अधिनियम आया है विकसित भारत गारंटी रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण 2025, ये अब क्रियान्वित होने जा रहा है 1 जुलाई से, सो इसके बारे में बहुत उत्साह है। आप हमें अगर बता सकें कि जो महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना थी उसकी जगह इसको लाया गया है, इसे एक बहुत बड़ा सुधार माना जा रहा है रोजगार आजीविका और ढांचे में, तो आप हमें बताएं कि इसके प्रमुख महत्वपूर्ण सुधारात्मक प्रावधान कौन से हैं जो हमें सबसे ज्यादा प्रभावी कह सकते हैं कि जिनके कारण हमें सुधार देखने को मिलेंगे हमारे पूरे रूरल इकोनॉमी में, रूरल एम्प्लॉयमेंट इकोसिस्टम में।
1: सोनू जी, आपने बिल्कुल सही कहा, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण, जिसे बहुत ही प्यार से विकसित भारत जीराम जी नाम से जाना जा रहा है, यह अधिनियम 11 मई को भारत सरकार ने नोटिफाई कर दिया है।
2: सुर्खियों में
0: नमस्कार, सुर्खियों में कार्यक्रम के आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं सोनू सूद और आज के कार्यक्रम में हम विकसित भारत जीरा।
3: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुर्खियों में, ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। आकाशवाणी मध्य प्रदेश से अब आप सुनेंगे कार्यक्रम डगर विकास की। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर की प्रस्तुति है।
4: डगर विकास की, आइए सुनते हैं ये कार्यक्रम। आज का ये कार्यक्रम जल जीवन मिशन के कार्यों पर केंद्रित है। प्रस्तुति आकाशवाणी इंदौर की।

0: नमस्कार, आज हम उस अंचल की यात्रा पर हैं जहां रेवा की लहरें संस्कृति की कहानी सुनाती है। इंदौर की आधुनिकता से लेकर उज्जैन के महाकाल लोक तक और बुरहानपुर के ऐतिहासिक दर्रों से लेकर खंडवा के किशोरदा की यादों तक आज एक ही चर्चा है। वो चर्चा है जल जीवन मिशन की। एक ऐसा मिशन जिसने मालवा की पथरीली जमीन और निमाड़ की तपती धरती पर ठंडे पानी की फुहार पहुंचा दी। ये केवल पाइपलाइन बिछाने का काम नहीं, बल्कि करोड़ों सपनों में विश्वास का रंग भरने की कहानी है।
1: हर घर में नल लग गई है, साफ सुथरा पानी है, मशीन लगी है, उसके बाद दिक्कत खत्म हो गई।
2: अब ये यहाँ सुविधा होने से बहुत आनंद है गाँव में।
3: अच्छा,
4: अभी तो अच्छी व्यवस्था होगी, अब नल चालू हो गए हैं ना।
3: अभी नल लगी है तो अच्छा सुकेत करे सरकार ने।
5: जो टंकी से नल का पानी हो गया ना, बढ़िया हो गया,
3: नल लगी गया।
0: जब हम जल जीवन मिशन की बात करते हैं तो गौरव से सीना तब चौड़ा हो जाता है जब बुरहानपुर का नाम आता है। जुलाई सन 2022 में बुरहानपुर देश का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला बना। यहाँ के 254 गांवों के सभी 1,01,000 से अधिक ग्रामीण घरों में अब नल से शुद्ध जल पहुंच रहा है। भले श्रीवास्तव, अतिरिक्त मुख्य सचिव PHED मध्य प्रदेश।
6: मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले को माननीय राष्ट्रपति महोदया द्वारा जल जीवन मिशन के अंतर्गत पूरे देश का सर्वप्रथम हर घर जल प्रमाणित होने का पुरस्कार दिया गया है। उसके लिए ना सिर्फ बुरहानपुर, पूरा मध्य प्रदेश काफ़ी प्रसन्न है, खुश है।

0: ही बहुत ही शुभ होगा और लोगों को मोटिवेट करेगा, क्योंकि ये हमारे राज्य के अन्य ज़िलों को भी इस चीज़ के लिए मोटिवेट करेगा कि आज बुरहानपुर को ये सम्मान मिला है, कल मध्य प्रदेश के अन्य ज़िलों को भी ये सम्मान प्राप्त होगा।
1: बुरहानपुर के तत्कालीन कलेक्टर प्रवीण सिंह,
2: जब हमने ये काम शुरू किया था तब हम लोग लगभग 37,000 कनेक्शन बुरहानपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में थे, और आज हमने जो जितनी भी पात्र जनसंख्या है जो जेएजएम के मापदंड को पूरा करती है, लगभग 1,00,000 कनेक्शन ऐसे लोगों को दिए हैं। और बुरहानपुर की सबसे विशेषता ये है कि इन जल जीवन मिशन की योजनाओं को चलाने की जिम्मेदारी भी हमने ग्राम पंचायतों में महिला स्वयं सहायता समूह को दी है। इससे न केवल लोगों को पानी तो मिलेगा ही मिलेगा, बल्कि ये जल जीवन मिशन एक तरह से ग्राम पंचायतों में महिला सशक्तिकरण का जरिया भी बनेगा। और जल जीवन मिशन के साथ में हमने एक और महत्वपूर्ण भारत सरकार की स्कीम को जोड़ा है, वो है जल शक्ति मिशन। क्योंकि जल जीवन मिशन जो है वो जल शक्ति मिशन के बिना अधूरा है। जल शक्ति मिशन के तहत हम लोग जल जीवन मिशन के स्रोतों के चारों तरफ कुंडी, बावड़ियाँ, नए जल संस्थाओं का निर्माण, तालाब, पुरानी जल संस्थाओं का जीर्णोद्धार, चेक डैम, स्टॉप डैम, गली प्लग और बहुत से जल संरक्षण की संस्थाओं पर काम कर रहे हैं। तो उससे ये जो जल शक्ति के तहत जो संस्थाएं बन रही है उससे जल जीवन मिशन का स्रोत में पानी बना रहेगा, और जब जल जीवन मिशन के स्रोत में पानी बना रहेगा तो उस पानी से हम गांव में 12 महीने लोगों को पानी पिला पाएंगे। तो मेरा बुरहानपुर की जनता से अनुरोध रहेगा कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी हमको मिली है, पूरे देश में इसका नाम हुआ है, तो हम लोग पानी को सहज के रखें, धरती के अंदर पानी को वापस जाने दें, क्योंकि जितना पानी धरती माता में होगा उतना ही हम पानी वापस ले पाएंगे। तो हम लोग बहुत ही समझदारी से काम लेंगे और अच्छे से जल जीवन मिशन और जल शक्ति मिशन में काम करेंगे।
1: लेकिन ये सफर आसान नहीं था। धार और अलीराजपुर की पहाड़ियों पर जहां रास्ता बनाना भी एक चुनौती थी, वहां पानी चढ़ाना नामुमकिन लगता था। यहां काम आए हमारे इंजीनियर्स और सोलर तकनीक। शुद्ध जल का अर्थ है बीमारियों से मुक्ति। आंकड़े बताते हैं कि जिन क्षेत्रों में नल से जल पहुंचा है वहां जल जनित रोगों में 40% तक की कमी आई है। डॉक्टर योगेश शर्मा, जिला महामारी विशेषज्ञ, खंडवा।
3: पानी केवल जीवन नहीं बल्कि हर माँ की चिंता, हर बच्चे की मुस्कान और हर परिवार की सेहत से जुड़ी सबसे बड़ी जरूरत है। एक समय था जब गांवों की पगडंडियों पर सिर पर मटके उठाए महिलाएं दूर दूर तक पानी लेने जाती थी। कई बार वही पानी बीमारियों का कारण बन जाता था, लेकिन अब घर घर पहुंचा स्वच्छ जल केवल प्यास नहीं बुझा रहा बल्कि स्वस्थ और खुशहाल जीवन की नई उम्मीद भी जगा रहा है। स्वस्थ जीवन की पहली आवश्यकता है स्वच्छ जल। वर्षों तक ग्रामीण क्षेत्रों में लोग कुओं, तालाबों और हैंडपंपों पर निर्भर रहे, जहां कई बार दूषित पानी के कारण डायरिया, टाइफाइड, पीलिया और हैजा जैसी बीमारियां फैलती थी। इसी को ध्यान में रखते हुए सभी को नल से जल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 15 अगस्त 2019 को भारत सरकार द्वारा जल जीवन मिशन की शुरुआत की गई। इस मिशन की घोषणा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर की थी। इसका मुख्य उद्देश्य देश के प्रत्येक ग्रामीण परिवार तक कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से स्वच्छ पेयजल पहुंचाना है, अर्थात हर घर जल। अब जल जीवन मिशन के अंतर्गत नल से जल योजना ने इस स्थिति में बड़ा बदलाव लाना शुरू कर दिया है। घर घर नल से स्वच्छ पेयजल पहुंचने का सबसे बड़ा लाभ लोगों के स्वास्थ्य पर दिखाई दे रहा है। साफ पानी मिलने से जल जनित रोगों में कमी आई है, विशेष रूप से बच्चों और महिलाओं के स्वास्थ्य में सुधार देखा जा रहा है। पहले महिलाओं और बच्चियों को दूर दूर तक पानी लेने जाना पड़ता था, जिससे उनका समय और ऊर्जा दोनों खर्च होते थे। अब यह समय शिक्षा, रोजगार और परिवार की देखभाल में उपयोगी हो रहा है। श्रोताओं, स्वच्छ जल केवल प्यास बुझाने का साधन नहीं बल्कि स्वस्थ समाज की नींव है। जब पानी साफ होता है तो भोजन स्वच्छ बनता है, हाथ धोने और साफ सफाई की आदतें बढ़ती हैं तथा संक्रमण का खतरा कम होता है। मिशन की शुरुआत के बाद से ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्रों में खंडवा जिले में जल जनित बीमारियां जैसे एक्यूट डायरियल डिसीज, टाइफाइड और कॉलरा या हैजा केसों की संख्या में बहुत बड़ी कमी दर्ज की गई है। एक्यूट डायरियल डिसीज के आउटब्रेक 2019 के पहले काफी संख्या में हुआ करते थे,

0: जिसमें कि लगभग 60% की कमी दर्ज की गई है। इसके साथ में जो जॉइंडिस और टाइफाइड बीमारियां हैं, इनके आउटब्रेक वर्ष 2019 के बाद से जिले में एक भी आउटब्रेक रिपोर्ट नहीं किया गया है, और पिछले 2 वर्षों में कॉलरा या हैजा बीमारी का भी एक भी आउटब्रेक जिले में रिपोर्टेड नहीं है। इस प्रकार स्वच्छ जल उपलब्ध होने से जल जनित बीमारियों की संख्या और उनके आउटब्रेक में बड़ी कमी देखी गई है। नल से जल योजना सामाजिक और आर्थिक विकास का भी माध्यम बन रही है। स्वस्थ नागरिक ही मजबूत राष्ट्र का निर्माण करते हैं, इसलिए आवश्यक है कि हम पानी की बर्बादी रोकें, जल स्रोतों को स्वच्छ रखें और इस योजना को सफल बनाने में अपनी भागीदारी निभाएं। स्वच्छ पानी की हर बूंद अब केवल सुविधा नहीं बल्कि बेहतर स्वास्थ्य और सुरक्षित भविष्य का संदेश बन चुकी है। जब घर के आंगन में नल से साफ जल बहता है तब बच्चों की मुस्कान, माताओं की राहत और परिवार की खुशहाली भी साथ बहती है। आइए जल को सहेजें, स्वच्छता अपनाएं और स्वस्थ भारत के इस सपने को मिलकर साकार करें।
1: जल जीवन मिशन ने महिला सशक्तिकरण को एक नया आयाम दिया है। उज्जैन संभाग में हजारों जल सखियां आज इस मिशन की रीढ़ है।
2: सरकार तरफ से नल जल की योजना आई है तो अपने सभी ग्रामवासियों को सभी को साथ देना है और सभी का साथ चाहिए
3: कि हमारे वार्ड क्रमांक 1 में जो हमारे को जल कर वसूलना था उसमें से वार्ड क्रमांक 1 के 1200 रुपये आ गए हैं, वार्ड क्रमांक 2 में 790 रुपये आ चुके हैं और वार्ड क्रमांक 3 में 2780 रुपये आ गए हैं।
4: सभी को समझाइश दे रहे हैं कि जल कर अपने को जमा करना है जिससे अपनी व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके। उनकी जो समस्या है उसके विषय में भी जो वो बताते हैं उसके निदान के लिए हम जलकर समिति को अवगत कराते हैं। जलकर समिति और हम साथ में जाकर के पानी के वेस्टेज नहीं जाने दें, इसके विषय में भी हम सभी बहनों को भी समझाते हैं, सभी भाइयों को भी समझाते हैं, पानी की बचत करना है, पानी का दुरुपयोग नहीं होने देना है, नल अगर पानी भर जाए तो बंद कर देना है, ऐसी समझाइश भी देते हैं जलकर समिति द्वारा।
5: जल जीवन मिशन के अंतर्गत जिन भी गाँव में ये दिक्कत आ रही है, पहले से टंकी है या वाटर सप्लाई है और वहाँ पर जनसंख्या वृद्धि के कारण अगर पानी पीने में समस्या आ रही है, पानी घर घर पहुँचने में समस्या आ रही है, तो जल जीवन मिशन के अंतर्गत एक नई टंकी का निर्माण करेंगे यहाँ पर।

0: इंदौर और उज्जैन संभाग के हर घर से आती पानी की ये कलकल दरअसल आत्मनिर्भर भारत की धड़कन है। जहां कभी सूखे के कारण पलायन होता था, आज वहां हरियाली और मुस्कान है।
1: पहले हम कुएं से पानी पीते थे, पेट दर्द होने लग जाता था, बीमार होने लगते थे हम। नल जल का शुद्ध पानी पीने लग गए हैं, अब डॉक्टरी खर्च भी हमारा आधा हो गया है।
2: मजदूरी पहला सर जवाब तो भी नहीं था, पानी में दिन भर हो जाता तो माने टाइम बहुत व्यस्त हो जाता पहले, और अब पानी हो गया तो नल चालू करो, पानी भरो और मजदूरी भी चले जाओ।
3: जब से घर घर नल से जल आ रहा है तब से बहुत ही खुशहाली आ गई है, और पूरा परिवार मजदूरी पे जा पाता है और शुद्ध पानी मिल रहा है, स्वास्थ्य भी अच्छा है।
0: इस मिशन का लक्ष्य था हर घर जल, जिसे मध्य प्रदेश के इन जिलों ने एक जन आंदोलन बना दिया। पर याद रखिए, ये नल की टोंटी से गिरता पानी केवल एक सुविधा नहीं, एक अमानत है जिसे हमें आने वाली पीढ़ी के लिए बचाना है। प्रशासन ने रास्ता बनाया है, अब उस रास्ते पर जल संरक्षण के साथ चलना हमारा कर्तव्य है। विकास के ये रंग यूं ही खिलते रहे, अमृत की ये धारा यूं ही बहती रहे। आज की इस विशेष कार्यक्रम डगर विकास की में बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नए सफर पर। तब तक सुनते रहिए आकाशवाणी और सहजते रहिए जीवन की सबसे अनमोल बूंद।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम डगर विकास की। ये कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर की प्रस्तुति था। ये प्रसारण आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से।
1: मीडियम वेव पर हम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8:30 हुए हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत। आइए श्रोताओं, हम आप सभी को सुनवाते हैं इस कार्यक्रम का पहला नगमा चमत्कार फिल्म से। आवाज है कुमार सानू और अलका याग्निक की। संगीत निर्देशन है अनु मलिक का और इस गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने।

दामिनी फिल्म का ये गाना अभी आपने सुना, कुमार सानू और साधना सरगम की आवाज़ में, बोल समीर के और धुन बनाई नदीम श्रवण ने। अब सुनिए संजीव दर्शन के संगीत निर्देशन में समीर का लिखा हुआ ये गीत, अलका याग्निक की आवाज़ में। फिल्म का नाम है तलाश।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जया भारती। भारत और अमेरिका ने नई दिल्ली में हुई उच्च स्तरीय वार्ता में व्यापार समझौते, ऊर्जा सुरक्षा और गतिशीलता को सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों के रूप में महत्वपूर्ण बताया। पश्चिम बंगाल में फलता विधानसभा पुनर्मतदान में भाजपा उम्मीदवार देवांशु पांडा ने 1,00,000 से अधिक वोटों से जीत हासिल की। तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार की जमानत जब्त। पश्चिम बंगाल सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को संदिग्ध अवैध प्रवासियों के लिए हिरासत केंद्र स्थापित करने का निर्देश दिया। सरकार ने CBSE पुनर्मूल्यांकन पोर्टल की खामियों को दूर करने के लिए IIT मद्रास और कानपुर के विशेषज्ञों को शामिल किया। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले के थट्टे हक्कालू नदी में तेज बहाव के कारण 8 लोग डूबे। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री ने हादसे पर गहरी संवेदना व्यक्त की। देश के मध्य और उत्तर पश्चिम भागों में भीषण लू के कारण जनजीवन प्रभावित। अगले 7 दिनों तक यह स्थिति बनी रहेगी। और वियतनाम में एशियाई अंडर-23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवानों ने 3 स्वर्ण, 2 रजत और 3 कांस्य पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में कई मुद्दों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने भारत अमेरिका रणनीतिक भागीदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई और व्यापार, ऊर्जा, गतिशीलता तथा क्षेत्रीय सुरक्षा समेत कई क्षेत्रों में सहयोग का उल्लेख किया। डॉ जयशंकर ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को जल्द से जल्द अंतिम दिया जाना चाहिए।
1: हमने हाल ही में ऊर्जा क्षेत्र में विस्तार का स्वागत किया है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए आपूर्ति विविध माध्यम में उपलब्ध है। हमने परमाणु ऊर्जा सहयोग पर भी बातचीत की है। शांति अधिनियम के पारित होने से हमारे सामने नई संभावनाएं खुली हैं।
0: ईरान संघर्ष पर डॉ जयशंकर ने कहा कि भारत उन गिने चुने देशों में शामिल है जिनके अमेरिका, इसराइल, ईरान और अन्य खाड़ी देशों के साथ मजबूत रिश्ते हैं। उन्होंने कहा कि भारत के सामने मुख्य चुनौती अपने राष्ट्रहित और इन देशों के साथ संबंधों का संतुलन बनाए रखना है। उन्होंने कहा कि भारत क्षेत्र में शांति और स्थिरता तथा भारतीय समुदाय के कल्याण के साथ साथ ईंधन की कम कीमतें चाहता है।
1: हम इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता चाहते हैं। दूसरा, हमारे लिए प्रवासी समुदाय का कल्याण और भलाई बहुत आवश्यक है। तीसरा, हम चाहते हैं कि ईंधन की कीमतें कम हों क्योंकि हम इसके बहुत बड़े आयातक हैं और इसका अधिकतर हिस्सा इसी क्षेत्र से आता है।
0: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भागीदारी के रणनीतिक आयामों का उल्लेख किया और भारत को अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण भागीदार बताया।
2: जिन मुद्दों पर हम भारत के साथ मिलकर काम करते हैं उनकी व्यापकता और दायरा ही इस बात को दर्शाता है कि भारत दुनिया में हमारे सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में से एक है। इसकी शुरुआत हमारे साझा मूल्यों से होती है। हम दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्र हैं।

0: largest democracies in the world.
1: बाद में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने नई दिल्ली में अमेरिका के विदेश मंत्री से मुलाकात की। विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों पक्षों के बीच मुख्य रूप से रक्षा, सुरक्षा और रणनीतिक प्रौद्योगिकी सहयोग पर चर्चा हुई। अमेरिका के विदेश मंत्री क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। बैठक 26 मई को होगी। इसमें ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी भी भाग लेंगे। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार देबांशु पांडा ने फलता विधानसभा सीट जीत ली है। श्री पांडा ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार शंभुनाथ कुर्मी को बड़े अंतर से हराया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: तृणमूल कांग्रेस के तथाकथित डायमंड हार्बर मॉडल को तोड़ते हुए भारतीय जनता पार्टी ने फलता विधानसभा सीट पर रिकॉर्ड जीत दर्ज की। पार्टी के उम्मीदवार देवांशु पांडा ने सीपीआईएम के शंभुनाथ कुर्मी को 1,09,021 वोटों के अंतर से हराया, जिन्हें 40,645 वोट मिले। देवांशु पांडा को 1,49,666 वोट मिले। तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार जहांगीर खान केवल 7,783 वोट के साथ चौथे स्थान पर रहे। कांग्रेस तीसरे स्थान पर है। इस चुनाव में तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार की जमानत जब्त हो गई है। इस जीत के साथ विधानसभा की 294 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी की सीटों की संख्या बढ़कर 208 हो गई है। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
1: पश्चिम बंगाल सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार संदिग्ध अवैध प्रवासियों और निर्वासन की प्रतीक्षा कर रहे विदेशी कैदियों के लिए हिरासत केंद्र स्थापित करने का निर्देश दिया है। एक रिपोर्ट।
3: सभी जिलों को देश में अवैध रूप से रह रहे व्यक्तियों, कारावास की सजा पूरी कर चुके और निर्वासन की प्रतीक्षा कर रहे लोगों को वापस भेजने के लिए उचित कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। निर्देश में अधिकारियों को भारत में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों और रोहिंग्याओं के निर्वासन तथा स्वदेश वापसी प्रक्रियाओं के संबंध में गृह मंत्रालय के निर्देशों का पालन करने को कहा गया है। इससे पहले पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य पुलिस अधिकारियों को अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों को अदालत में पेश करने के बजाय सीधे सीमा सुरक्षा बल को सौंपने का निर्देश दिया था। पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा सीमा सुरक्षा बल को 27 किलोमीटर भूमि सौंपने के बाद सिलीगुड़ी उपमंडल के फांसी देवा क्षेत्र में भारत बांग्लादेश सीमा पर बाढ़ का काम भी शुरू हो गया है। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE को त्रुटि रहित पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया सुनिश्चित करने में सहायता के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास और IIT कानपुर के प्रोफेसरों और तकनीकी विशेषज्ञों का एक दल तैनात करने का निर्देश दिया है। यह निर्णय CBSE के परीक्षा परिणाम सेवा पोर्टल के संबंध में विद्यार्थियों और अभिभावकों की चिंताओं और समस्याओं को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। शिक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि दोनों IIT के विशेषज्ञ दल प्रणाली में तकनीकी सुधार लागू करेंगे और विशेष रूप से पोर्टल की स्थिरता तथा सर्वर के सुचारू संचालन की जाँच करेंगे। इस बीच शिक्षा मंत्री ने आज वित्त और कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारामन से मुलाकात की और CBSE परिणाम और पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान तकनीकी और भुगतान

से संबंधित चुनौतियों के बारे में बातचीत की। शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि विचार विमर्श के दौरान यह तय किया गया कि भारतीय स्टेट बैंक, बड़ौदा बैंक, कैनरा बैंक और इंडियन बैंक सीबीएसई की भुगतान प्रणाली को सुदृढ़ करने में मदद करेंगे। श्री प्रधान ने सीबीएसई को अपनी भुगतान प्रणाली में पूरी तरह बदलाव करने के निर्देश दिए हैं। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने आज सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा और भारतीय वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 का सफलतापूर्वक आयोजन किया। यूपीएससी ने बताया है कि ये परीक्षाएं देश के 83 शहरों में 2000 से अधिक परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई। अंतिम आंकड़ों के अनुसार 8 लाख से अधिक आवेदकों में से लगभग 5,49,000 उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए। यूपीएससी के अध्यक्ष डॉ अजय कुमार ने परीक्षा में के सफल आयोजन के लिए यूपीएससी टीम के साथ साथ राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के प्रयासों की सराहना की है। दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स की 4 सदस्यों की मेडिकल टीम ने आज भोपाल में पूर्व मॉडल और अभिनेत्री ट्विशा शर्मा के कथित दहेज हत्या मामले में दूसरा पोस्टमार्टम किया। ये पोस्टमार्टम कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच लगभग 3 घंटे तक चला। कानूनी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद शव परिवार को सौंप दिया गया। 33 वर्षीय ट्विशा की 12 मई को भोपाल में अपने ससुराल में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। इस बीच सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले का स्वतः संज्ञान लिया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता में एक पीठ कल इस मामले की सुनवाई करेगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपने पर सहमति व्यक्त की है। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में आज थट्टे हक्कालू नदी में एक ही परिवार के 8 सदस्य डूब गए। इनमें 7 महिलाएं शामिल हैं। पुलिस ने बताया कि शिराली गांव के लगभग 14 लोग सीप इकट्ठा करने के लिए नदी में उतरे थे, लेकिन रात्रि में तेज बारिश के बाद पानी के बहाव की चपेट में आ गए। उन्हें बचाने के लिए पानी में उतरे अन्य सदस्य भी तेज धारा में बह गए। मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने मृतकों के परिजनों को 5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने मृतकों के निकटतम परिजनों को प्रधानमंत्री राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। देश के मध्य और उत्तर पश्चिम हिस्सों में भीषण लू के कारण सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और तापमान औसत से काफी ऊपर पहुंच गया है। कई क्षेत्रों में तेज गर्म हवा चलने से दिन में भीषण गर्मी पड़ रही है। अगले 7 दिनों तक ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी भीषण लू का प्रकोप जारी है। वहीं मध्य प्रदेश से हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य के कई इलाके इस समय भीषण लू की चपेट में हैं।
2: प्रदेश के ज्यादातर शहरों में पारा 43 डिग्री सेल्सियस के पार जा चुका है। मौसम विभाग ने आज टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना और सतना में तेज लू का रेड अलर्ट जारी किया था। विभाग ने दतिया, निवाड़ी, सागर समेत 11 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट और ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन समेत 22 जिलों में येलो अलर्ट घोषित किया। प्रदेश के कुल 37 जिले हीट वेव की जद में रहे। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 4 दिनों तक गर्मी और लू से कोई राहत नहीं मिलेगी। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस अवसर पर आकाशवाणी अपनी श्रृंखला पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी के तहत कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहा है। इन एपिसोड में हम प्रतिदिन अलग अलग पद्म पुरस्कार विजेताओं के कार्यों और जीवन के बारे में जानकारी दे रहे हैं। कार्यक्रम के लिए कल सवेरे 9:10 से आकाशवाणी के FM गोल्ड से जुड़े रहें। वियतनाम में एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवानों ने 3 स्वर्ण, 2 रजत और 3 कांस्य पदक जीते। पुरुषों

मीडियम वेव पर हम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 9:30 हुए हैं। अब लीजिए सुनिए रूपक, जन आस्थाओं में नर्मदा, आलेख श्री विकास मिश्र का।

श्री मारकंडेय जी महाराज कहते हैं कि श्री नर्मदा मैया के स्मरण करने से एक जन्म के पाप नष्ट होते हैं। दर्शने त्रिजन्मजम, दर्शन करने से तीन जन्म के पाप नष्ट होते हैं। स्नाना जन्म सहस्त्राख्यम, स्नान कर लेने के बाद में हजारों जन्म के पाप हन्ति रेवा। कलयुग में रेवा मैया नष्ट करती हैं।

0: भगवान शिव जी महाराज कहते हैं कि नर्मदा मैया जैसी पुण्यशीला पति पावनी संसार में और दूसरी कोई देव महानदी नहीं है।
1: नर्मदा की ये महिमा, नर्मदा की ये कहानी केवल एक नदी की नहीं बल्कि आस्था से सराबोर जनजीवन की है। गंगा, यमुना, गोदावरी और कावेरी के साथ नर्मदा देश की पांच सबसे प्रमुख धार्मिक आस्था वाली नदियों में से एक है। धार्मिक आस्था यह है कि इन नदियों में स्नान मात्र से मनुष्य के सारे पाप धुल जाते हैं। इनमें भी नर्मदा का महत्व कुछ अलग ही है। नर्मदा किनारे लोकोक्ति यह भी है कि गंगा जब लोगों के पाप धोती धोती मैली हो जाती है तो काली गाय का रूप धारण कर गंगा दशहरा के दिन नर्मदा के पवित्र जल में स्नान के लिए आती है ताकि खुद को स्वच्छ बनाए रख सके। कहते भी हैं कि जो पुण्य गंगा स्नान से मिलता है वो केवल नर्मदा दर्शन से प्राप्त हो जाता है।
2: प्राचीन परंपरा की दृष्टि से अगर हम विचार करें तो नर्मदा का महत्व गंगा, सरस्वती और यमुना से भी अधिक माना गया है।
1: आप हैं संस्कृत के विद्वान और कालिदास अकादमी के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर कृष्णकांत चतुर्वेदी।
2: कहा गया, पुण्या कनखले गंगा, कुरुक्षेत्रे सरस्वती, ग्रामे वा यदिवारण्ये पुण्या सर्वत्र नर्मदा। कनखल में, हरिद्वार में गंगा का महत्व है, कुरुक्षेत्र में पुरातन नदी सरस्वती का महत्व है, पर चाहे गांव हो, चाहे शहर हो, कुछ भी हो, नर्मदा जहां से निकलती है वहां पर पवित्र करती हुई जाती है। 3 दिन तक कोई स्नान करे तो सरस्वती नदी पवित्र करती है, 7 दिन में यमुना नदी पवित्र करती है और गंगा तुरंत पवित्र करती है, दर्शना देव नर्मदा। लेकिन नर्मदा ऐसी असाधारण नदी है जो दर्शन करने मात्र से लोगों को तृप्त करती है, संतुष्ट करती है और पवित्र करती है। धन्वंतरी का नामोल्लेख करते हुए कहा गया, नर्मदा तो ये संस्पृष्टा वृक्षा प्रस्तरताम व्रजेत। जो नर्मदा के जल में पड़े हुए वृक्ष, लताएं, ये क्रमशः काल के वशीभूत होकर कुछ समय बाद पत्थर के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, अर्थात वो नष्ट होने वाली चीज भी।

लगातार स्थायी बन जाती है। और भी दूसरे स्थान पर कहा गया कि नर्मदा का जल विष को समाप्त करता, नर्मदा जल संस्पर्श ही क्षयम यान्ति विषादयः। सबसे बड़ी विशेषता नर्मदा की शास्त्रों में कही गई, आयुर्वेद शास्त्र में कही गई, और वो ये है कि नर्मदा विष का हरण करती है, विशल्यकरणी, वो विशल्यकरणी। अगर कोई घाव लग जाए, किसी प्रकार का कोई रोग हो, नर्मदा रोग को समाप्त करती है। और यही कारण है कि पिछले सैकड़ों वर्षों से बीमार, रोगी से रोगी व्यक्ति नर्मदा के किनारे, नर्मदा जल, नर्मदा की वायु, नर्मदा का परिवेश, उसके सहारे अपने आप को शुद्ध करता चला आ रहा है। इसीलिए महाभारत नर्मदा की स्तुति करते हुए कहता है, हे युधिष्ठिर, यह नर्मदा केवल पुण्य देने वाली नहीं है, पर्यटन की दृष्टि से भी असाधारण रमणीक है। जहां जहां नर्मदा का प्रवाह है, जहां जहां नर्मदा परिवर्तित होती है, वहां वहां नर्मदा का अद्भुत सौंदर्य दिखाई देता है। इसीलिए नर्मदा के अंदर, जल के अंदर जो वैशिष्ट्य है, जिसके कारण वहां पर उत्पन्न होने वाली जड़ी बूटियां आयुर्वेद के क्षेत्र में अपना असाधारण स्थान बनाए हुए हैं, मनुष्य की जिजीविषा को, दीर्घ जीविता को आगे बढ़ाने वाली नर्मदा शास्त्र की दृष्टि से अत्यंत पूज्य, पवित्र और हर तरह से मंगलमयी मानी जाती है।

0: स्कंद पुराण और वायु पुराण के रीवा खंड में नर्मदा का जिक्र तो मिलता ही है, दूसरे पौराणिक धर्म ग्रंथ भी इस नदी की पवित्रता को स्थापित करते हैं। नर्मदा के जन्म की कई कहानियां प्रचलित हैं। एक मान्यता यह है कि भगवान शिव ने एक बार बड़ा कठिन ध्यान किया, उनका पसीना वहीं कुंड में एकत्रित होता रहा और एक नदी बह निकली जिसे नाम मिला नर्मदा। संस्कृत में नर्मदा का अर्थ होता है प्यार से सराबोर। दूसरी मान्यता है कि ब्रह्मा जी की आंखों से दो बूंद गिरे और वो नदियां प्रवाहित हो गईं, एक नर्मदा और दूसरी सोन। दोनों का उद्गम स्थल अमरकंटक ही है। मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में वनों से आच्छादित अमरकंटक के एक कुंड को देखकर ऐसा लगता नहीं है कि यहाँ एक ऐसी नदी आकार ले रही है जो आध्यात्म की अनुभूति से जनजीवन को ओतपोत करते हुए अरब सागर में खंबात की खाड़ी तक पहुँचते हुए विशाल आकार ले लेती है। वह कई अनोखी है प्रकृति की लीला। इसी लीला के आगे तो नतमस्तक हो जाते हैं हम।
1: चाहे सोमवती अमावस्या हो, चाहे एकादशी हो, पूर्णिमा हो या और कोई पर्व, लोगों को सबसे पहले नर्मदा की याद आती है। हजारों लाखों लोग नर्मदा की ओर भागते हैं मुंह अंधेरे, और नवरात्र में तो हर दिन सुबह सुबह स्नान करने के लिए जाते हैं। तो ये कैसी जन आस्था है कि अपने आप स्वयं नर्मदा की ओर लोग भागते हैं।
0: आप हैं सुप्रसिद्ध चित्रकार, रचनाकार और एकाधिक बार नर्मदा की परिक्रमा कर चुके श्री अमृतलाल वेगड़।
1: डिंडोरी में पहले पुल नहीं था तो लोग पैदल ही नर्मदा को पार करते थे। ये दृश्य मुझे बहुत प्यारा लगता था। मैं कई बार गया इसी दृश्य को देखने के लिए, और मज़े की बात ये कि लोग कभी नर्मदा में पहले पैर नहीं रखते, पहले प्रणाम करते हैं, उसके जल को अपने माथे पर चढ़ाते हैं और उसके बाद ही नदी में उतरते हैं। अगर गठरी बड़ी हुई तो गठरी को नीचे उतारेंगे और उसके बाद ही नर्मदा को पार करेंगे। तो नर्मदा उनके लिए भूगोल की कोई नदी नहीं है, लेकिन साक्षात माँ हैं। एक बार एक साधु से मैंने कहा कि मान लीजिए आपको भिक्षा में कुछ नहीं मिला तो उसने कहा कि तो माई का दूध, नर्मदा का जल उनके लिए जल नहीं है, माँ का दूध है। ये कैसी प्रचंड आस्था है। यही आस्था उन लोगों से 3 बरस 3 महीने 13 दिन तक चला करके नर्मदा की परिक्रमा करवाती है। ये कोई आसान बात नहीं है, बिना आस्था के ये नहीं हो सकता। बूढ़े लोग, महिलाएं, बच्चे, चाचा भतीजे, ससुर दामाद, ये सब मिल करके परिक्रमा करते हैं।

0: और बरसात में चतुर्मास करते हैं। बहुत कठिन तपस्या है ये, बिना आस्था के ये संभव नहीं है।
1: नर्मदा की पूरी यात्रा को भौगोलिक रूप से और जनजीवन की संस्कृति के आधार पर तीन खंडों में विभाजित किया जा सकता है। अमरकंटक से जबलपुर के बीच ये विंध्य की वादियों में अटखेलियां करती हुई चलती है। यहाँ ये चंचला और वेगमयी है, सौंदर्य की ऊर्जा का एहसास होता है। मंडला के पास जब सहस्त्र धारा के रूप में ये बढ़ती है तो लगता है कि रुनझुन कोई बाला संगीत की सुर बिखेर रही है। इसके सौंदर्य का कण कण मोहित करता है। अमरकंटक से जबलपुर के बीच नर्मदा की कुछ खासियतें भी हैं। जिन वनों से होकर ये निकलती है उनमें से कई तो हिमालय के वनों से भी पुरानी हैं। इसी नर्मदा बेसिन में करोड़ों साल पुराने जीवाश्म मिल जाती हैं, जो दर्शाती है कि इस नर्मदा बेसिन का इतिहास कितना पुराना है और कितना गौरवशाली। विज्ञान की दृष्टि से इसकी भौगोलिक स्थिति भी कम रोचक नहीं है।
2: जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र है भारत का, उसमें सभी नदियाँ पूर्व दिशा की ओर बहती हैं, किंतु नर्मदा नदी और ताप्ती नदियाँ, ये दोनों नदियाँ हैं, ये पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर बहती हैं।
1: आप हैं विज्ञान अध्येता डॉक्टर विजय कुमार खन्ना।
2: अब नर्मदा का पूर्व दिशा से पश्चिम दिशा की ओर बहना हिमालय के उत्थान से जुड़ा है। भारतीय प्लेट के उत्तर दिशा में सरकने और निर्मित संपीड़न बलों की प्रवृत्ति से हिमालय का उत्थान हुआ था, और इसके साथ ही भारत के प्रायद्वीपीय भाग में तनाव बल उत्पन्न हुए थे और कई भ्रंशों का निर्माण हुआ था। इन्हीं सब विवर्तनिक हटेरों के कारण प्रायद्वीप का उत्तरी भाग धंसा और उसका झुकाव पश्चिम दिशा की ओर हुआ। इसी कारण नर्मदा नदी पश्चिम दिशा की ओर बहती है। इसका बहाव भ्रंश और रिफ्ट घाटी के द्वारा नियंत्रित है। हिमालय में कई उत्थान हुए हैं, कई चरणों में ऊपर उठा है, और हिमालय का जो पांचवा उत्थान था ये अंतिम उत्थान था, और ये प्रारंभिक अत्यंत नूतन कल्प का समय था। इसको हम कह सकते हैं 18 लाख वर्ष पूर्व, और नर्मदा नदी की उम्र भी अत्यंत नूतन कल्प में लगभग 15 लाख वर्ष आंकी गई है। नर्मदा नदी अत्यंत नूतन कल्प में उत्पन्न हुई, किंतु नर्मदा सोन लीनियामेंट यह एक कमजोरी का क्षेत्र है जो लेट आर्कियन में था, अर्थात वर्तमान से लगभग 300 करोड़ वर्ष पूर्व। यह लीनियामेंट केवल भारत में ही केंद्रित नहीं था, यह पश्चिम दिशा में अरब सागर पार करता हुआ अदन द्रोणी और ओवन फ्रैक्चर जोन तक पहुंचता है, और पूर्व में मुंगेर बिहार से होता हुआ डोकी भ्रंश आसाम में जुड़ जाता है। इस लीनियामेंट की लंबाई अदन द्रोणी से आसाम तक 400 किलोमीटर है, और यह लीनियामेंट या जो हम कमजोरी का क्षेत्र बोलते हैं, समय समय पर रिजुविनेट हुआ और वर्तमान रिफ्ट घाटी के रूप में लगभग 6.5 करोड़ वर्ष पूर्व आया।

0: विंध्य की वादियों में नर्मदा ने सैकड़ों औषधीय पौधों में जीवन रस घोला है। जितने औषधीय पौधे नर्मदा के किनारे मिलते हैं उतने शायद और कहीं नहीं। कमाल देखिए कि नर्मदा जीवन देती है और जीवन को बचाए रखने के उपचार भी। विंध्य पर्वतमाला से गुजरते हुए नर्मदा अपने बेसिन में जीवन के कई रंग भरती है।
1: मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कही जाने वाली नर्मदा हमारे जन जीवन में एक मूर्त मंत क्रांति है।
0: आप हैं रचनाकार श्री जगदीश प्रसाद स्थापक।
1: अब तक नर्मदा के विषय में जो ऐतिहासिक और पौराणिक साथ ही धार्मिक भी मान्यताएं हमें प्राप्त हुई हैं उनमें नर्मदा को जन्म से लेकर मृत्यु तक अपनाए जाने की चर्चा यहाँ के जनजीवन में व्याप्त है। नर्मदा नदी है लेकिन यहाँ के लोगों के लिए नर्मदा माँ है। जिस तरह माँ के प्रति आस्था व्यक्ति में होती है उसी तरह यहाँ के जन जन में नर्मदा के प्रति माँ जैसी आस्था है। यहाँ का किसान यह मानकर चलता है कि मैं नर्मदा स्नान करके आऊँगा और कृषि में कार्य करूँगा, बीज बोऊँगा तो निश्चित कई गुना अन्न पैदा होगा। यहाँ कोई भूखा नहीं मरता है। नर्मदा कछार के दोनों तटों पर चंदन लगाए बैठे हुए अनेक साधु संत केवल इस आशा में कि नर्मदा ही हमें सब कुछ देगी बैठते हैं और मिलता है उन्हें। मैं अब तक जो समझ पाया हूँ अपने 70 साल की उम्र में और मैंने समीप से देखा है कि नर्मदा का जल मरने वाले के लिए मोक्ष के लिए यहाँ के लोग देते हैं। नर्मदा स्नान से वे समझते हैं कि यम हमें अब किसी प्रकार से परेशान नहीं कर सकते। यहाँ गीतों में, श्लोकों में, आरतियों में और मैं समझता हूँ कि लोक गीतों में और हर चरण पर यहाँ नर्मदा को स्मरण किया जाता है।

0: नर्मदा जब जबलपुर के पास पहुंचती है तो उसका वेग कुलाचे भर रहा होता है। वो धुआंधार के करीब 9 मीटर की छलांग लगाती है और उसके बाद के 3 किलोमीटर में संगमरमरी वादियों को चूमते हुए निकलती है।
1: नर्मदा जन आस्थाओं में भी बहती है।
0: आप हैं रचनाकार श्री नारायण श्रीवास्तव।
1: प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी जब नर्मदा जी की परिक्रमा में निकले तो होशंगाबाद प्रवास के दौरान अपने सांध्य प्रवचनों में उन्होंने एक बार कहा कि गंगा यदि ज्येष्ठ है तो नर्मदा श्रेष्ठ है। ये बात उन्होंने तब कही जब उन्होंने नर्मदा जी की परिक्रमा में रहते हुए जन आस्थाओं का गहरा अनुभव किया। जन आस्थाओं में नर्मदा के ऐसे अनेक उदाहरण हैं। चूंकि करेली के पास ब्रह्मांड घाट है, भरमान घाट है, वहाँ सूरज कुंड है, लोग वहाँ स्नान करने इसलिए भी जाते हैं कि उनको संतान की प्राप्ति हो, इसलिए भी जाते हैं कि कोई किसी रोग की मुक्ति हो। और ऐसे ऐसे ये 40 वर्ष पहले सूर्य कुंड में कोई नहीं जाता था, वहाँ नितांत जंगल था। और आज की तारीख में प्रत्येक रविवार को बिना किसी प्रचार प्रसार के वहाँ बड़ा मेला भरने लगा, स्नानार्थियों की भीड़, पदयात्रा 35-35, 40-40 किलोमीटर से लोग पदयात्रा करते हुए वहाँ स्नान करने जाते हैं अपनी मनोकामनाएं पूरी करने के लिए। तो ये जनास्था का ही उदाहरण है। कहावतें तो बहुत सी हैं, नर्मदा के कंकर और सबरे शंकर। कोई आवश्यकता नहीं है कि हम प्राण प्रतिष्ठा कराएं इतने इंच शिवलिंग की या किसी विशेष आकार के भगवान शिव के आकार। वहाँ तो ये है कि जो कंकड़ मिल जाए वहीं अभिषेक हो, तो वो अभिषेक का महत्व लगता है कि नर्मदा जी के मार्फत भगवान शिव को मिल गया। ये आस्थाएं जो हैं ये इनमें नर्मदा है।

होशंगाबाद पहुंचते पहुंचते नर्मदा की चंचलता सौम्यता में बदलने लगती है। किनारे उर्वरता से भरपूर हो चुके होते हैं। विकास की नई गाथा लिखती हुई नजर आती है नर्मदा। पर्व त्योहारों पर जब अथाह जनसमूह इसके किनारों पर जुटता है तो महसूस होता है कि जीवनदायिनी नर्मदा के प्रति लोक आस्था कैसी है। यह है बम्बुलिया। बम्बुलिया नर्मदा के प्रति भक्ति गीत है। नर्मदा स्नान के लिए नर्मदांचल के परिजन जब बैलगाड़ी पर बैठकर यात्रा पर निकलते थे तब पुरुष और महिलाओं के दल बिना वाद्य यंत्रों के रात रात भर गाते थे। बाद में वाद्यों का प्रयोग होने लगा। ये बम्बुलिया गीत जन आस्थाओं में आज भी प्राणवान है।

0: लेकिन आस्था से उपजी विसंगतियों ने नर्मदा का क्षरण भी तो शुरू किया है। खासकर गर्मी के दिनों में नर्मदा में पानी इतना कम हो जाता है कि इसके वजूद का भय सताने लगता है। नर्मदा में प्रदूषण कई जगह अपने बीभत्स रूप में दिखने लगता है। लेकिन अतीत से आस्थाओं से प्रेरणा ली जाए तो प्रदूषण से हमें छुटकारा मिल सकता है।
1: नर्मदा जी से बहुत सी जनश्रुतियां भी यहाँ जुड़ी हुई हैं।
0: शिक्षा शास्त्री श्री माधव प्रसाद श्रीवास्तव।
1: कहा जाता है कि सिद्ध महात्मा गौरी शंकर जी ने, जो कि निरंतर नर्मदा जी की परिक्रमा किया करते थे, और उनके साथ जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है वो यह है कि वो कभी नर्मदा जी में प्रवेश करके स्नान नहीं किया करते थे, और जो भी उनसे कुछ कहता यही कहते कि मैं नर्मदा जी को अपवित्र क्यों करूं। ऐसे ही एक और सिद्ध पुरुष थे, वह भी स्नान करने के लिए जाते थे। नर्मदा जी के प्रति इतनी आस्था थी उनकी कि वो जब उन्होंने एक बार निवेदन किया कि अब मैं रोज़ रोज़ कैसे आऊं, नर्मदा जी ने कहा कि तुम चिंता ना करो, अपना कमंडल यहाँ छोड़ जाओ और मैं तुम्हें बतला दूंगी कि तुम्हारे निवास पर आ गई। कहते हैं कि वहाँ झरना फूट पड़ा और वह झरना आज भी नरसिंहपुर में मौजूद है। लोगों की आस्था है कि ये नर्मदा जी का ही रूप है। वहाँ पर त्योहारों के अवसर पर, विशेष करके मकर संक्रांति और शिवरात्रि के अवसर पर मेला भी लगता है।
0: नर्मदा कुछ और दूर बढ़ती है, लेकिन नेवावर से हिरण जलप्रपात तक इसके किनारे पथरीले होते चले जाती हैं। कुछ और यात्रा के साथ पहुंचती है ये ओंकारेश्वर, जो लोक आस्था का नर्मदा किनारे का सबसे महत्वपूर्ण स्थान कहा जा सकता है। मंधाता की पहाड़ियों के बीच यही है ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। खासियत यह है कि नर्मदा इस ज्योतिर्लिंग के चारों ओर से यहाँ प्रवाहित होती है, और एक उल्लेखनीय धार्मिक पहलू यह भी है कि आदि शंकराचार्य की मुलाकात अपने गुरु गोविंद भागवत पद से नर्मदा के तट पर ही हुई थी।

ओंकारेश्वर के बाद नर्मदा मंडलेश्वर के मैदानी इलाके में प्रवेश करती है। हालांकि नर्मदा की गोद पथरीली बनी रहती है और मंडलेश्वर के पास एक और सहस्त्र धारा का सौंदर्यमयी स्वरूप दिखाई देता है। मंडलेश्वर के बाद मालवा के किनारे से निकलती हुई नर्मदा गुजरात में प्रवेश करती है, लेकिन उसके पहले नर्मदा अपने तटों से दूर शहरवासियों को भी नया जीवन देती है। तकनीक ने नर्मदा को पाइपलाइनों से होते हुए मालवा के सबसे बड़े व्यावसायिक शहर इंदौर तक पहुंचा दिया है।

नर्मदा किनारे से 70 किलोमीटर दूर होते हुए भी करीब 30 लाख की आबादी वाले इस शहर के लिए नर्मदा ही जीवन है। यदि यहाँ हर रोज नर्मदा का पानी नहीं पहुंचे तो हलक सूख कर रह जाए। ये शहर नर्मदा किनारे भले ही नहीं हो, लेकिन पूरी आस्था के साथ ये नर्मदा को पूछता है। नर्मदा जल का कोमल व्यवहार इसके जीवन में साफ झलकता है।

मालवा के बाद ज्यों ही ये नदी गुजरात में प्रवेश करती है, इसके किनारे समृद्धि के प्रतीक बन जाते हैं। भरूच में खंबात की खाड़ी तक इसके दोनों किनारों पर व्यापार व्यवसाय का वैभव दिखाई देता है। लेकिन ये वैभव तभी बच रह सकता है जब इस नदी के प्रति हमारी आस्था के साथ ही व्यवहार भी बदले। सामान्य तौर पर जिस नर्मदा में हम पहले अपना पैर नहीं डालते, जिसकी बूंदों को पहले सिर से लगाने के बाद ही नदी में प्रवेश करते हैं, उसी नदी में हर साल लाखों टन कचरा फेंक देते हैं। ये अपनी ही आस्था पर कुठाराघात नहीं है तो और क्या है? क्या हम ये नहीं चाहते कि नर्मदा स्वच्छ रहे, पवित्र रहे? यदि ऐसा है तो उसकी पवित्रता की रक्षा के लिए नर्मदा भक्ति संपन्न पारंपरिक साधनों का उपयोग आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण को समझने समझाने के लिए किया जाना बहुत जरूरी है। नर्मदा के बगैर क्या हम जबलपुर, होशंगाबाद, ओंकारेश्वर, महेश्वर, बड़ौदा या गुजरात के दूसरे शहरों में जीवन की कल्पना कर सकते हैं? सौभाग्य से नर्मदा में अभी भी जल का सालाना बहाव करीब 41,000 मिलियन क्यूबिक मीटर है, जो रावी, व्यास और सतलुज नदी के संयुक्त बहाव से भी ज्यादा है। हम खुद से ऐसे व्यवहार की उम्मीद करें कि माँ नर्मदा अपने प्रवाह के रूप में हमें आशीष देती रहें। नर्मदा के किनारे का जनजीवन ऐतिहासिक काल से उल्लास, उत्साह और उमंग से भरपूर रहा है, उत्सव प्रिय जनजीवन रहा है। हम अपने कर्म को इतना प्राकृतिक बनाएं कि जीवन की उत्सव प्रियता बनी रहे। नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे।

धर्मदे। अलक्ष लक्ष लक्ष पाप लक्ष सार सायुधम, ततस्तु जीव जंतु तंतु भुक्ति मुक्तिदायकम्। विरंचि विष्णु शंकर स्वकीय धाम वर्म।

अभी आप सुन रहे थे रूपक, जन आस्थाओं में नर्मदा, प्रस्तुतकर्ता गर्जन सिंह फरखड़े। आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। रात्रि के 10 बजने को है। अगला कार्यक्रम हम आकाशवाणी

0: बांसुरी अखिल भारतीय संगीत सभा में आज रात प्रस्तुत है सितार वादन। कलाकार हैं पंडित हौरो शंकर भट्टाचार्य। जाने माने संगीतज्ञों वाली विशिष्ट परिवार में जन्मे पंडित हौरो शंकर भट्टाचार्य के दादा श्री लाल मोहन भट्टाचार्य जाने माने सितार वादक थे, जिन्होंने इस सांगीतिक विरासत की नींव रखी। अपने पिता श्री गंगा शंकर भट्टाचार्य के मार्गदर्शन में पंडित हौरो शंकर भट्टाचार्य ने शुरुआती तालीम हासिल की। आगे चलकर आपको विष्णुपुर घराना के श्री मुरलीधर ठाकुर से सीखने का सुअवसर भी प्राप्त हुआ। 1968 में पंडित हौरो शंकर भट्टाचार्य उस समय के बम्बई यानी मुंबई रवाना हुए। आपने वहां बीनकार शैली के लिए प्रसिद्ध इंदौर घराने के प्रवाद प्रतिम सितार वादक पद्म भूषण उस्ताद अब्दुल हलीम जाफर खान से सितार वादन सीखना आरंभ किया। आकाशवाणी और दूरदर्शन के शीर्ष श्रेणी के कलाकार पंडित हौरो शंकर भट्टाचार्य की जाफर खानी बाज के तौर पर एक विशिष्ट पहचान है। आपने देश और विदेश के तमाम संगीत समारोहों में अपनी बेहतरीन प्रस्तुतियां दी हैं। पंडित हौरो शंकर भट्टाचार्य भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद यानी ICCR के सूचीबद्ध कलाकार हैं। साथ ही आपको अनगिनत पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। यही नहीं, पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा आयोजित अपना उत्सव समारोह में आपने संगीत निर्देशक की भूमिका भी निभाई है। आज रात पंडित हौरो शंकर भट्टाचार्य के साथ तबले पर संगत करेंगे प्रशांतो दे रॉय।
1: इन द रवि वासरिय अखिल भारतीय संगीत सभा टुनाइट वी प्रेजेंट सितार रिसाइटल बाय पंडित हौरो शंकर भट्टाचार्य। बोर्न इन अ डिस्टिंग्विश्ड म्यूजिकल फैमिली ऑफ अकॉम्प्लिश्ड म्यूजिशियंस वेयर हिज ग्रैंडफादर द रिनाउंड सितारिया श्री लाल मोहन भट्टाचार्य इज सेड टू हैव लेड द फाउंडेशन of this rich legacy, and Pandit Hara Shankar Bhattacharya stepping into this world of music with initial training under the able guidance of his father Sri Ganga Shankar Bhattacharya. Further, he also received training from Sri Murali Das Thakur of the Bishnupur Gharana. Later in 1968, Pandit Hara Shankar Bhattacharya moved to Bombay, present day Mumbai, to undergo intensive talim under the legendary sitar maestro Padma Bhushan Ustad Abdul Halim Zafar Khan of the Indore Gharana, famous for his Beenkar style. A top grade sitar artist of Akashvani and Doordarshan, Pandit Hara Shankar Bhattacharya, with his unique artistic identity as a Jafar Khani Baj, has performed extensively at major classical music concerts and festivals across India and abroad. An empaneled artist of the Indian Council for Cultural Relations, Pandit Hauro Shankar Bhattacharya has received several awards and accolades and has also contributed as a music director for Apna Utsav, a festival organized by the government of West Bengal. In tonight's presentation, Pandit Hauro Shankar Bhattacharya is accompanied on the tabla by प्रशांतो दे रॉय।
0: पंडित हौरो शंकर भट्टाचार्य सितार वादन की इस प्रस्तुति का आरंभ राग दरबारी के साथ करेंगे। यह बंदिश आलाप और जोड़ के साथ शुरू होगी, जो गत में विलंबित तीन ताल तत्पश्चात मध्य लय तीन ताल में आबद्ध है।
1: पंडित हौरो शंकर भट्टाचार्य स्टार्ट्स हिज सितार रिसाइटल विद राग दरबारी। बिगिनिंग विद आलाप एंड जोर, द कंपोजिशन ऑफ द राग is set to gat in vilambit teen tal followed by madhyalaya teen tal।

0: सितार वादन के अंतर्गत आप पंडित हरशंकर भट्टाचार्य से राग दरबारी सुन रहे थे। आपकी अगली प्रस्तुति है राग छायानट, जो आप आलाप से शुरू करेंगे। यह बंदिश गत में विलंबित तीन ताल तत्पश्चात द्रुत तीन ताल में आबद्ध है।
1: You are listening to Rag Darbari on the sitar by Pandit Harishankar Bhattacharya. He continues with his presentation in Rag Chayanat, which begins in Alap with a composition set to Gat in Vilambit and Drut Tintal.

0: सितार वादन के इस कार्यक्रम में आप राग छायानट सुन रहे थे। पंडित हरशंकर भट्टाचार्य आज की इस प्रस्तुति का समापन राग जिला काफी के साथ करेंगे। शुरुआत आलाप से होगी और यह बंदिश गत में दीप चंदी, तत्पश्चात द्रुत तीन ताल में आवद्ध है।
1: यू आर लिसनिंग टू राग छायानट इन द सितार रिसाइटल। Pandit Harishankar Bhattacharya concludes his presentation with Rag Zila Kafi. Beginning with Alap, the composition of the Rag is set to Gat in Deep Chandi and Drut Tintal.

0: सितार वादन के इस कार्यक्रम में आप पंडित हरो शंकर भट्टाचार्य से राग जिला काफी सुन रहे थे। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे प्रशांत दे रॉय।
1: यू आर लिसनिंग टू राग जिला काफी इन द सितार रिसाइटल बाय पंडित हरो शंकर भट्टाचार्य। ही वॉज अकम्पनीड ऑन द तबला बाय प्रशांत दे रॉय।
0: इसी के साथ रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा आज रात यही संपन्न होती है।
1: एंड विद दिस वी एंड टुनाइट्स रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा। दिस प्रोग्राम वाज रिकॉर्डेड एट द स्टूडियोज ऑफ आकाशवाणी कोलकाता।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, BRM 810 किलोहर्ट्स पर। अब से कुछ ही क्षण बाद यानी ठीक 11 बजे आप सुनेंगे समाचार। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।

0: दीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में कई मुद्दों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने भारत अमेरिका रणनीतिक भागीदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई और व्यापार, ऊर्जा, मोबिलिटी तथा क्षेत्रीय सुरक्षा समेत कई क्षेत्रों में सहयोग का उल्लेख किया। डॉक्टर जयशंकर ने प्रतिनिधि मंडल स्तर की बातचीत के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को जल्द से जल्द अंतिम रूप दिया जाना चाहिए।
2: हमने हाल ही में ऊर्जा क्षेत्र में विस्तार का स्वागत किया है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए आपूर्ति विविध माध्यम में उपलब्ध है। हमने परमाणु ऊर्जा सहयोग पर भी बातचीत की है। शांति अधिनियम के पारित होने से हमारे सामने नई संभावनाएं खुली हैं।
1: ईरान संघर्ष पर डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत उन गिने चुने देशों में शामिल है जिनका अमेरिका, इसराइल, ईरान और अन्य खाड़ी देशों के साथ मजबूत रिश्ते हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भागीदारी के रणनीतिक आयामों का उल्लेख किया और भारत को अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण भागीदार बताया।
3: जिन मुद्दों पर हम भारत के साथ मिलकर काम करते हैं उनकी व्यापकता और दायरा ही इस बात को दर्शाता है कि भारत दुनिया में हमारे सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में से एक है। इसकी शुरुआत हमारे साझा मूल्यों से होती है। हम दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्र हैं।
1: अमेरिका के विदेश मंत्री क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए चार दिन की भारत यात्रा पर हैं। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार देवांशु पांडा ने फलता विधानसभा सीट जीत ली है। श्री पांडा ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी सीपीआईएम के शंभुनाथ कुर्मी को 109,021 वोटों के अंतर से हराया, जिन्हें 40,645 वोट मिले। पश्चिम बंगाल सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार संदिग्ध अवैध प्रवासियों और निर्वासन की प्रतीक्षा कर रहे विदेशी कैदियों के लिए हिरासत केंद्र स्थापित करने का निर्देश दिया है। सभी जिलों को देश में अवैध रूप से रह रहे व्यक्तियों, कारावास की सजा पूरी कर चुके और निर्वासन की प्रतीक्षा कर रहे लोगों को वापस भेजने के लिए उचित कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई को त्रुटि रहित पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया सुनिश्चित करने में सहायता के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी मद्रास और आईआईटी कानपुर के प्रोफेसरों और तकनीकी विशेषज्ञों का एक दल तैनात करने का निर्देश दिया है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने स्नातक पाठ्यक्रम के लिए सामान्य विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा 2026 के अंतर्गत 28 मई को होने वाली परीक्षाओं को स्थगित कर दिया है। एजेंसी ने बताया कि ये फैसला सरकारी अधिसूचना के अनुसार ईद उल जुहा, बकरी ईद की छुट्टी की तारीख में हुए बदलाव को देखते हुए लिया गया है। परीक्षा की नई तारीख की घोषणा जल्द ही की जाएगी। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने आज सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा और भारतीय वन सेवा की प्रारंभिक परीक्षा 2026 का सफलतापूर्वक आयोजन किया। आयोग ने बताया है कि ये परीक्षाएं देश के 83 शहरों में 2000 से अधिक परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई। अंतिम आंकड़ों के अनुसार 8 लाख से अधिक आवेदकों में से लगभग 5,49,000 उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में आज थट्टे हक्कालू नदी में एक ही परिवार के 8 सदस्य डूब गए, जिनमें 7 महिलाएं शामिल थे। पुलिस के अनुसार शिराली गांव के लगभग 14 लोग सीप इकट्ठा करने के लिए नदी में उतरे थे, लेकिन रात्रि में तेज बारिश के बाद पानी के बहाव की चपेट में आ गए। उन्हें बचाने के लिए पानी में उतरे अन्य सदस्य भी तेज धारा में बह गए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। देश के मौसम के मध्य और उत्तर पश्चिमी हिस्सों में भीषण लू के कारण सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और तापमान औसत से काफी ऊपर पहुंच गया है। स्वास्थ्य अधिकारियों ने लोगों को पर्याप्त मात्रा में पानी पीने, दोपहर से देर शाम तक धूप से बचने और बच्चों, बुजुर्गों तथा पहले से किसी बीमारी से पीड़ित लोगों को विशेष ध्यान रखने की सलाह दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

मीडियम वेव 314.5 मीटर अर्थात 80 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 102.9 मेगाहर्ट्ज़ एवं न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर हम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से बोल रही हैं। रात्रि के 11:10 हुए हैं। हमारी आज की दूसरी सभा अब यहीं संपन्न होती है। कल सुबह 5:55 पर अपने विविध कार्यक्रमों के साथ हम पुनः आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। शुभ रात्रि। जय हिंद।

जाती है। कल सुबह 5:55 पर अपने विविध कार्यक्रमों के साथ हम पुनः आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। शुभ रात्रि। जय हिंद।